0: कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नजर वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधू की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे, तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गो पपीतकम कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णु वादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रोत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थतः शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिव दत्त विभूषण प्रथमम स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
1: गर्ग मुनि ने,
0: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती है। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई, हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसन्ति अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्य रत्न समन्वितम वलयानी महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया, उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे, प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती, पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है? भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है, लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पाकर के हरी हो जाती हैं। कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है, और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता, जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है, वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे? भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो हैं पार्वती, वो हैं काली, वो हैं दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेड़िया, नगारे, बड़े ढोल, गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे, स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं, और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बारात के साथ आए, यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्त्या नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया।
1: हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए, जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
0: वही विधि विधान,
1: वही विधि
0: मंत्रोच्चारण द्वारा,
1: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है। और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है। शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती हैं। और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
2: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी, कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
1: जी,
2: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि, गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणि ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में, कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
1: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया, यानी कि वर वधु भी खा लेते हैं प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
2: बड़े आराम से।
1: हाँ,
2: बड़े आराम से लग जाते हैं,
1: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
2: लीला जी, आप याद करिए कि अभी भी, अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
1: हो जाते हैं।
2: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
1: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
2: क्योंकि एक
1: देवताओं का अनुग्रह बरसता है।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
2: ब्रह्म मुहूर्त में जब।
1: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
2: हुआ,
1: दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में
0: मधुर नहीं लगते हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।

0: नहीं, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में तीन सुबह के 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
1: लेकिन प्राय सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थी, नगर की वधुएँ थी, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधू ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुसोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए, उस समय भी ये चलन में था कि वर वधू की पूजा करे या वधू वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह कर के भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं कभी कभी। तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा, ये तीनों मिल जाएं तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताहा सकला महोत्सवम, के अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
0: तभी से है,
1: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधू वर वधू दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मीना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है। क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
0: सबसे बड़ा दान,
1: ये सबसे बड़ा दान,
0: दान कहलाता है।
1: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मीना आकर के खड़ी हो गई, पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ट सपुरोहित तम वरम वरियामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिवजी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिवजी से हंसते हुए कहा, हे शिवजी, अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय? क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम मा कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकरः तदा सुमुखो विमुखः सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः एवंविध सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि। जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन वाच्य महेश विषय अतिव असि तुम बहिर्मुख त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वच अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्मादेव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर देख नहीं पाते।
0: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानव शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
1: बिन बुलाए मेहमान,
2: बिन बुलाए मेहमान, जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
2: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
2: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की। तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है। आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इनबिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा। हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
4: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया जी। कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
4: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना।
2: ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
3: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
3: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं।

0: तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ ये है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर

0: जुड़े हुए होते हैं। तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देखो देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए। अगर शायद हम वहां हों, प्रैक्टिकली सोच के देखें, तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे। हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को, कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी, मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया। तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है। और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं, उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं। अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है, ज्ञान योग है। इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधियते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं। 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं। लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति.
1: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता नहीं है. एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहां मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स. आपको क्या पता चलेगा? नथिंग. एंड मेजोरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट. हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जा. चिल्ड्रन आर डूइंग दैट.
0: आई थिंक इट्स हैपनिंग एवरी डे.
1: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. डेफिनेटली.
1: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस. एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दें. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी आउटसाइड. आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे. तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है. क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की. तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे. लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत ईजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग. अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों? क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं तो फिर वो एक बात, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी.
0: वंडरफुल. सो लेट बी. एक्चुअली अगर हम,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो, पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप, मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. यू नो, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं, हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाए, वो पॉसिबल नहीं होता. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग. जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस. और फिर यहाँ रेजिस्टेंस, हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज. क्योंकि हर चीज़ जो हो रही है वो परफेक्ट.
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट, यू नो, पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
0: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
0: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है जब वो नीचे फ्लो कर रहा है? एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या?
0: जीवन.
1: किसको?
0: जीवनदायिनी, मनुष्य को देना.
1: एब्सोल्युटली. सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा में जो कुछ आता है
0: उसको जीवन देते.
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बींग, उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरी थिंग, एवरी लिविंग बींग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग
0: बींग.
1: दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
0: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके. देयर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रिएचर्स, दैट्स आल्सो ओके. बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ? बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. फ्लो करो और आपके फ्लो होने में, आपके कॉन्टैक्ट में जो भी आता है
0: उन्हें
1: नरिश. और नरिश करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
0: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा.
1: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
0: and give them happiness, you know? Yeah.
1: ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इमेजिन हाउ द डे विल पास एंड देन आई एम शेयरिंग एंड गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग. एट द एंड ऑफ द डे मुझे कैसा लगेगा? डू आई हैव टू थिंक सैटिस्फैक्शन क्या होती है, कंटेंटमेंट क्या होती है,
0: स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होती है? आई थिंक स्ट्रेस हैज गॉन समवेयर अप, यू नो. इट्स लाइक इन दिस होल कन्वर्सेशन आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में स्ट्रेस कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही.
1: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी. स्ट्रेस दिस इज मोर द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली. आई हैव टू गो टू वर्क.
0: वर्क इज अ स्ट्रेस. इतनी बार ये कहा जाता है कि माई वर्क एरिया इज अ स्ट्रेस एरिया, द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ इज माई वर्क.
1: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव
0: मिलता है.
1: स्टॉप, माई रोल इज ओनली टू
0: वंडरफुल. यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए, वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर,
1: you know, flow,
0: I am nourishing.
1: Flow, and just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे और वो अपने आप nourish होते जाएंगे.
0: You know, at times we stay.
1: रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है?
0: कई बार अपने साथ लोगों को, कईयों को ले चलते हैं. They can be part of your flow.
1: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को nourish करें. ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारी जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
0: हमसे होगी।
1: आई फील ब्यूटिफुल।
0: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग।
1: हीलिंग हो जाएगी उससे, कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है। मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना, हम मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज़ ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
0: बात करना बंद कर देते हैं।
1: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके, एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके, जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड। कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है, वो मुझे That's good for me, then I should follow that. So be quiet, let go, let be, accept everything, pass on to everyone as they come and listen inside.
0: Okay.
1: Simple, simple things. सुनने में इमीडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल नहीं बहुत डिफिकल्ट, नहीं सिंपल सिंपल।
0: और हर बार की तरह
1: स्टार्ट डूइंग दैट,
0: हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगारा है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है ये पूरा प्रोसेस, और कहाँ तक पहुँचता है।
1: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए। मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज है। But what we didn't realize is that every time we are inflicting so much of pain on ourselves, तो गुस्सा बार बार करना या कहें एक बार भी करना सारे दिन में तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ. तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माय इरिटेशन, या इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन. इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है. तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है. और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ. और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है. तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है. तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए. अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू कर दे,
2: watch it
1: and see it. तो what happens कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहाँ से हटा देते हैं और वहाँ से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है. अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
2: फ्यूल करते रहते हैं ना. वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी. खुद
1: जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है. तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है. अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी. सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, इट बिल्ड्स अप मोर एंड मोर एंड इट कैन स्टे विद मी टिल अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो उससे डिटैच हो जाएंगे एंड देन कम बैक टू माई स्टेज, द सेंटर, कि मैं कौन. ओम शांति, ये भी अगर याद रहे तो इट मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. तो आई कम बैक टू माई स्टेज दैट आई एम अ पीसफुल बींग. तो अवेयरनेस, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट के हाँ आ रहा है, फिर उससे डिटैच हो जाए एंड देन कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेज. तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस. और अगर उस टाइम नहीं कर पाते हैं तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था. तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
2: गुस्से के दौरान भी कर सकते
1: हैं. वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है.
2: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है. और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता या मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस. So again, it may not go completely in one day, but the moment we start watching and going through these 5 steps, I think gradually we should be able.
1: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते. अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा. लेकिन वो एक-एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है. लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा क्योंकि अवेयरनेस जाएगी. You know, अवेयरनेस चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है एंड देन इट विल गो. एंड ये जस्टिफिकेशन खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से. जब तक वो बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग है कि औरों की वजह से गुस्सा है, देन आई विल नॉट चेंज, देन आई विल कीप वेटिंग फॉर यू टू चेंज.
2: Yes, you know, we've always been saying it's just a, you know, thought way. So again, the thought that I am responsible, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ, इवन इफ उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता ये कि हम इतने गिल्ट और रैंक, मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया.
1: नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है, एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए औरों से और गुस्सा कर दें. यू नो, मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने. यू नो, इट इज जस्ट बिकम्स अ वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर.
2: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पर कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो, कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज यू नो ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है, वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं. बहुत सी ऐसी बिलीव्स कह सकते हैं हम, या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस.
1: पीस इज अ वर्ड विच वी यूज वेरी ऑफन बट रेयरली अंडरस्टूड. यू नो, वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर. तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक नेचुरल स्थिति है. लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते. हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है. You know, and at that time we say, I want peace. Peace is basically a state of the being. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका result क्या होगा कि जो मेरी thoughts होंगे वो बहुत positive और focused होंगे. अंदर एक silence होगा. एक है silence, एक है noise. You know, तो peace doesn't mean कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं. बाहर से हो सकता है कि बहुत peaceful है, अंदर बहुत noise है. और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. तो साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स. नो, थॉट्स फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है, बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है, वन थॉट होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
2: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे.
1: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं, एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर. तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा. अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना, अभी जो चीज़ जैसी है वैसी बिल्कुल.

0: ठीक है, बट विद द वर्किंग कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक. तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है नहीं इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर. तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना. पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
1: मेरे ओपिनियन से. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि व्हेन यू से कि आप एक्सेप्ट कर लूं, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूं जैसे आप हैं, तो मैं क्या है सोच के एक्सेप्ट करूं कि आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है.
0: आप अपने परिपेक्ष में अपने दृष्टिकोण से आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
1: उसके लिए.
0: एब्सोल्युटली
1: है ना. लेकिन मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ. क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिवन हो गया?
0: नहीं, गिवन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो हैं वैसे भी ठीक है. मैंने ये भी पहले तो अब देखो औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को.
1: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. पूरे कॉन्फिडेंस से अपने कह सकते हैं
0: ओम शांति.

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, ढेर सारी बातों के साथ मैं यानी कि आरजे साक्षी आ जाती हूँ आपके पास लेके अपने प्रोग्राम जिसमें बहुत सारी बातें करती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. आज है संडे का दिन और संडे वाले दिन आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर के आ जाती हूँ. जी हाँ, और आज ना हमारे साथ आज के एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे. जी हाँ, डॉक्टर राजेश आज हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, हैप्पीनेस कोच है और साथ ही साथ योग गुरु भी है. तो इनसे बातें करेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले ना अभी बहुत सारी जानकारी है जो आपके लिए लेकर के आई हूँ मैं. तो देखिए, जानकारी आपके साथ साझा करूँगी, बातें करूँगी आपसे. आप फिलहाल के लिए तो कहीं मत जाइए क्योंकि अभी प्यारे प्यारे गाने लेकर के आ गई हूँ. तो जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और इसी के साथ फैजाबाद से बाहर जाएंगे आप, तो ये मत सोचिएगा कि रेडियो मानव रचना के साथ आपका जो कनेक्शन है वो वीक हो जाएगा या टूट जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप हमारे साथ वर्ल्ड कहीं से भी जुड़ सकते हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, अपना एंड्रॉइड या इस मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, और ऐप को देखते ही आपको ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करते हैं, ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर एवरग्रीन हिट्स आप सुन सकेंगे वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमें सोशल मीडिया पर भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। अगर आप देखिए हमारे साथ और ज्यादा करीब आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो बस आपको हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को पेज को भी फॉलो करना है विद द नेम ऑफ रेडियो मानव रचना। तो चलिए फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, और भी होंगी बहुत सारी बातें, तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। अब मैं बात करूँ बहुत ही खास टॉपिक लेकर के आ गई हूँ। जी हाँ, और देखिए बात हम करेंगे अब रील्स की। देखिए जो रील्स की लत है ना, ये कहीं ना कहीं आपको अकेला करती जा रही है और डिप्रेशन के देखिए एक मैं कहूँगी डालती चली जा रही है। और कैसे, देखिए ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये हमारे दिमाग पर असर डाल रही है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए इंडिया में ना युवाओं में मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, क्रॉनिक स्ट्रेस जैसी समस्या सिर्फ उदासी या मूड खराब होने तक सीमित बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका जो युवाओं की सेहत पर और उनकी जिंदगी पर भी एक भारी एक जो असर है, गहरा असर जो है वो पड़ रहा है। ऐसे में ये देखिए सवाल पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है सभी से कि अगर आपके साथ भी ऐसा है तो क्यों हो रहा है? क्या आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, और ये स्ट्रेस आप क्यों ले रहे हैं? तो चलिए इस बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। बहुत सारी होती हैं बातें, मैं बात कर रही हूं रील्स की, इस आदत की। देखिए, कई बार हमने देखा ऐसे कि अगर आप सबके साथ बैठे, पहले के टाइम में ऐसा होता था जब हम खाना खाने जब बैठते थे ना तो सब अपना खाना एंजॉय करते थे। अच्छा, थोड़ी थोड़ी ना बातें भी हो जाती थी, सब बैठे हैं साथ में, बातें हो रही हैं, खाना खा रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है, हम खाना तो खा रहे हैं, शांति से खा रहे हैं, क्योंकि हम सभी के हाथ में, जितने भी परिवार वाले बैठे हैं, मम्मी अपना फोन चला रही हैं, पापा अपना फोन चला रहे हैं, बच्चे अपना मोबाइल फोन चला रहे हैं, और ये धीरे धीरे हम सभी को अपने परिवार से भी अलग कर रहा है और आपको अकेलेपन की ओर धकेल रहा है। यानी कि रात में जब आप अपना जो टाइम है अपने परिवार के साथ बैठ के बात करने में गुजारते, लेकिन अब क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, अपने अपने कमरों में अपने बड़े मोबाइल फोन के साथ बैठते हैं, रील्स को स्क्रॉल करते हुए, या फिर कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ लर्निंग कुछ कर रहे हैं, आप कुछ भी करें लेकिन अपने मोबाइल फोन पे लगे हैं, जिसकी वजह से आप अकेले पड़ रहे हैं। और धीरे धीरे ये जो रिश्ते हैं कमजोर पड़ जाते हैं, सब अपने अपने में काम में मशरूफ रहते हैं, अपने अपनी चीजों में मशरूफ रहते हैं, और उसके बाद आप अकेले पड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं दिस लेड टू डिप्रेशन, क्योंकि आप इतने ज्यादा अकेले हैं, अब आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, आपके पास वो चार दीवारें हैं जिनको आप बस देख रहे हैं, आपके पास वो मोबाइल फोन है, लेकिन आप मोबाइल फोन पे कितना चला पाएंगे, एक टाइम ऐसा आता है ना कि वो एक लिमिट जो है वो भी क्रॉस हो जाती है, हमारी आंखें थक जाती हैं, हमारी जो उंगलियां हैं वो थक जाती हैं, और उसके बाद जब आप चारों तरफ घूम के देखते हैं तो आपके चारों तरफ कोई नहीं होता, क्योंकि जब सब होते हैं तब हम अपने मोबाइल फोन में लगे होते हैं। और ये हमारे साथ अक्सर, हम जो लोग हैं अब वो जरूर नोटिस करेंगे, अब जो लोग हैं जो नई जनरेशन आ रही है उनके साथ ये ज्यादातर हो रहा है, और इसी वजह से स्ट्रेस के मामले हो गए या जो क्रॉनिक डिजीज के मामले हो गए वो तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये दबाव सीधा सीधा डिजिटल जो टॉक्सिन ये जो है हमारे अंदर बढ़ता चला जा रहा है, दबाव हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। चलिए, इसके बारे में और भी करेंगे बहुत सारी बातें, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel life.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। इसी के साथ बात मैं कर रही हूँ, अगर आप ज्यादा मोबाइल फोन अपना चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, आदत पड़ चुकी है, इससे क्या होगा, सीधा सीधा आपकी आंखों पर जोर पड़ता है, आंखें खराब होती हैं, नींद की समस्या रहती है। जिन लोगों को मोबाइल चलाने की आदत होती है ना, उनको नींद भी वैसी ही आती है फिर, या फिर वो पूरी रात जागते रहते हैं और फिर जब बॉडी हमारी थक जाती है तब अपने आप हमारी आंखों में दर्द होने लगता है और हम फोन रखते हैं। लेकिन वहां तक नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि आपकी आदत जो है वो खराब हो चुकी है रील्स देखने की। इसी के साथ साथ शारीरिक समस्या, गर्दन में दर्द होना या बैक पेन होना या मानसिक तनाव होना, ये भी आता है जब स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है और अकेलापन बढ़ जाना, या फिर देखिए मैं आपको बता दूं कि आप दूसरों से बात करने का ना मन नहीं करेगा, क्योंकि फिर आप इतने अकेले होने लगेंगे, इतना अकेला आपको अपने आप को अच्छा लगने लगेगा कि एक टाइम तो अच्छा लगेगा, उसके बाद जब आप अकेले पड़ जाएंगे तब आपके पास लोग नहीं होंगे। तो इसीलिए जो सोशल आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोशली लोगों से कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, घूमने जाइए, फैमिली के साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए और फ़ोन को एक लिमिटेड टाइम पर आप रखिए। आप बहुत ज्यादा फोन चला रहे हैं तो उसका लिमिटेड एक टाइम जो है वो सेट कर दीजिए कि इससे ज्यादा फोन नहीं चलाएंगे, तभी आप इस आदत से, इस लत से बच सकते हैं, रील्स की लत से। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद हमारे साथ आकर के जुड़ जाएंगे डॉक्टर राजेश, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, योग गुरु है और साथ ही साथ हैप्पीनेस कोच भी हैं। बहुत सारी होंगी इनसे बातें, तब तक के लिए कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, feel life.

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज संडे का दिन है और हमारे साथ डॉक्टर राजेश आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद है। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेश, मैं आपका स्वागत करती हूँ।
1: नमस्कार साक्षी, नमस्कार रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आप लोगों से मिलकर के बहुत ही अच्छा लगता है।
0: मैं अपने सारे लिसनर्स को बता दूं, डॉक्टर राजेश एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, योग गुरु हैं और साथ ही साथ एक हैप्पीनेस कोच भी हैं। इसी के साथ दो उपाधि और डॉक्टर राजेश के जो है इनको मिली है। और मैं खुद कहूंगी डॉक्टर राजेश आप अपने खुद अपने आप से बताएं, एक तो ऑथर, तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी एक बुक जो है आपने लिखी है कुंडलनी द सीक्रेट्स ऑफ ऑल सीक्रेट्स, ये जो बुक है ये आपने लिखी है, तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत यहाँ पर कंग्रेचुलेट आपको करना चाहूँगी। और ये बुक काफ़ी अच्छी है और कई सारी राज जो है मैं कहूँगी इस बुक में छुपे हुए हैं। अगर आपको भी अपनी बॉडी के बारे में, मन के बारे में जानना है तो ये बुक है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश क्या कहना चाहेंगे?
1: धन्यवाद साक्षी, आपने किताबों की बात की है और मैं श्रोतागण से हमेशा कहना चाहता हूँ कि शरीर को और मन को जानते हैं हम, लेकिन शरीर और मन के बाद एक और भी आयाम होता है, वह है ऊर्जा
0: जी,
1: वह है आध्यात्मिक ऊर्जा
0: जी जी।
1: तो ये जो कुंडलिनी सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स जो बुक मैंने लिखी है और ये मार्केटिंग कर रही है इस बुक की पेंगुइन रैंडम हाउस और न्यू वॉइस प्रेस ने इसको रिलीज किया है। तो ये किताब अपने आप में एक अहम किताब है जिसमें एक डिवाइन जर्नी के बारे में बातचीत होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कुंडलिनी है क्या। कुंडलिनी एक दैवीय शक्ति होती है जो हर इंसान में निहित है। आप कुछ भी हो, यह शक्ति आपके अंदर है, तभी आप इस संसार में, आपका जन्म हुआ है और आप अपने सारे स्किल्स को आप डेवलप कर रहे हो। इस किताब का एक बड़ा ही गूढ़ रहस्य है जो है शरीर, मन, ऊर्जा, भावना और आत्मा को हम कैसे समझें। और इसमें पूरा साइंटिफिक है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल वैल्यूज है और हमें डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल के साथ कैसे चलना है। और इस किताब में आपके लिए पर्टिकुलर 9 से 10 महीने की आपकी साधना की गाइडलाइन है। और ये किताब अभी अमेजोन पर भी अवेलेबल है और इस जरूर खरीदिए, बहुत सस्ते रेट में हम लोगों ने रखा है, लाइक 269 और 79 रुपीस। कुंडलिनी सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स।
0: बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आज हम बहुत सारी डॉक्टर राजेश के साथ बात करने वाले हैं। डॉक्टर राजेश, क्योंकि आज संडे है और हर संडे आप रेडियो मानव रचना के साथ आकर चुके जुड़ते हैं, कुछ अलग हम टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भी हम सभी लिसनर्स को मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक की इजाजत आपसे लूंगी।
1: जरूर जरूर,
0: बिल्कुल। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। डॉक्टर राजेश आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश, एक बहुत ही खास ये टॉपिक जो है वो आज आपसे मैं जानना चाहती हूँ। कुंडलनी की बात हो रही है, आम भाषा में, आम लोगों के लिए, हम सभी के लिए आप बताइए कि ये जो कुंडलनी है ये होता क्या है।
1: देखिए, कुंडलनी जो शब्द है ना, ये कुंडला वर्ड से आया है। कुंडला का अर्थ होता है पड़ा रहना। एक डेप्थ है, एक गड्ढा है, वहां पर कुछ पड़ा हुआ है। तो क्या पड़ा हुआ है? शक्ति, ऊर्जा। शक्ति और ऊर्जा, यही है कुंडलनी। कुंडलनी का अर्थ होता है एक दैवीय शक्ति जो हमारे अंदर पड़ी हुई है, उसे हमें जागृत करना है। तो जो भी हम योग का पाथ अपनाते हैं, चाहे वह भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग, इन सब का एक ही उद्देश्य होता है, आपके अंदर चेतना का विकास, चेतना का उत्थान। यही है कुंडलिनी योग का सार।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, मैं ये जानना चाहूंगी कि कुंडलनी क्या हर इंसान के

0: अंदर कुंडलिनी एनर्जी ये होती है
1: जी। हर इंसान इवन जानवर के अंदर भी,
0: अच्छा
1: जानवर के अंदर ये चक्रों का खेल है। हम लोगों के चक्र जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, अपवर्ड होते हैं, जानवर के पैरेलल होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सब में होता है। तो ये कुंडलिनी को हम समझने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि यह एक विशेष ऊर्जा है जो हमारे अंदर छिपी हुई है। इसको जगाने के पहले, इसको अवेक करने के पहले हमारे बॉडी माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है। आप ऐसे समझिए कि आप एक बल्ब को जब आप जलाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है 60 वाट की कैपेसिटी है।
0: करेक्ट।
1: अगर उस बल्ब के अंदर हजारों वाट का करंट आ जाएगा तो क्या होगा, बल्ब फ्यूज कर जाएगा। सेम वे कुंडलिनी एक हायर फोर्स है हमारे अंदर। अगर हमारा मन तैयार नहीं है, हमारे मन जो है उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अभी सृजन नहीं हुआ है, तो ऐसे समय में जब ये ऊर्जा जगती है तो आदमी पागल हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, कहता है। तो हमारे नजर से जो अगर आप देखेंगे जो पागल है उसकी भी ऊर्जा जगी हुई है, लेकिन उसकी ऊर्जा उसकी माइंड ने उसको संग्रह नहीं कर पाया। इसलिए कोई भी ऊर्जा पर अगर आप काम करते हैं तो आपका शरीर तैयार होना चाहिए, मन तैयार होना चाहिए, आपकी भावना जो होंगे वह संतुलित होनी चाहिए। यही है कुंडलिनी योग। और इसी में हम चक्रों का खेल भी समझते हैं। हमारे अंदर जो है कई प्रकार के चक्र होते हैं जो मेडिकल साइंस के रूप में हम देख नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका हम अनुभव कर सकते हैं। ऋषि मनुष्यों ने अनुभव किया है। ये जो चक्र है, सबसे पहला चक्र जो होता है वह है मूलाधार। मूलाधार चक्र जो है वह आपके पेरिनियम सेंटर में पुरुष में होता है, और महिलाओं में पोस्टीरियर पार्ट जो सर्विक्स सेंटर के पीछे वाले हिस्से पर होता है। और उसके सेकंड चक्र जो होता है उससे चार उंगली ऊपर जो कॉक्सिक बोन टेल बोन जो शुरू होती है उसको कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। ये दोनों चक्र का जो काम है आपकी सेक्सुअलिटी को मॉनिटर करना, सेक्सुअल एनर्जी को मॉनिटर करना। ये बेसिक इंस्टिंक्ट जो है अर्थ धर्म काम मोक्ष को भी गाइड करती है। आहार निद्रा भय मैथुन जो है ये चार जो हम समझते हैं ये दो चक्रों का काम है। इसके बाद क्या होता है, तीसरा चक्र आता है वह है नाभि के पीछे वाला हिस्सा जो स्पाइनल कॉर्ड पर है, वहां पर यह चक्र होता है मणिपुर। मणिपुर ऊर्जा जो भी हम खाते हैं उसमें इम्यूनिटी वाइटलिटी एंड डायनामिज्म प्रदान करता है आपके व्यक्तित्व को। ये पाचन तंत्र को गाइड करता है। मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र जो है आपकी सेक्सुअलिटी को गाइड कर रहा था, और वहां पर जो हार्मोन होते हैं टेस्टिस एंड गोनैड्स, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और गोनैड से प्रोजेस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन जो फीमेल को, ये तो हार्मोन, लेकिन मणिपुर चक्र से आपकी एड्रेनल ग्लैंड कंट्रोल होती है। उस पर जो दो हार्मोन है एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। उसके बाद फिर एक और चक्र आता है जो हार्ट चक्र के नाम से हम जानते हैं, जिसको कहते हैं अनाहत चक्र। वह स्टर्नम के पीछे वाला हिस्सा है जहाँ लव है, कंपैशन है, एम्पैथी है। इस स्टेट को जो हम कहते हैं ये डिवाइन स्टेट है, ये कंप्लीट जॉय और पीसफुल का है। और यहाँ पर जो हार्ट चक्र के जो ग्लैंड है स्पेशल वह है थाइमस, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप कभी कभी सुने होंगे किसी का ब्रेकअप हो गया, वो घर में सो रहा है, डिप्रेस्ड है, कोल्ड है, कफ है, वो है क्या, तो आपकी पूरी इम्यूनिटी जो है हो गई इनसाइड, कोलैप्स कर गई। वही अगर आप हैप्पी हैं तो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत हैप्पी हैं, जॉय है, किसी के साथ आप लव में हैं, तो ये हार्ट चक्र का खेल है। उसके बाद जो आता है विशुद्धि चक्र आता है वो थ्रोट चक्र जिसको कहते हैं। थ्रोट चक्र जो है स्पेशली आपके ग्लैंड वह थायराइड को मेंटेन करता है। यह आपके अंदर विशुद्धि का अर्थ होता है प्यूरिफिकेशन, बाहर के किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स एनर्जी को अंदर में आने से बचाता है। हम कहते हैं ना, भगवान शंकर गले में सर्प की माला लेके रखे हुए हैं, विष को उन्होंने पान कर लिया है, हलाल कर लिया है, और उनका नाम पड़ गया है नीलकंठ। अरे ये पॉइजन है क्या? एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो आ रहा है उसको हमने यहीं पर रोक दिया, अपने शरीर में आने ही नहीं दिया, मन के ही धरातल पर उसको डिसॉल्व कर दिया। यही है विशुद्धि चक्र। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है वह एंड ऑफ द स्पाइन, भ्रूमध्य के पीछे वाला हिस्सा है, और यहाँ पर जो चक्र का काम है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को मेंटेन रखना, पूरी नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करना। और इसके बाद दो और चक्र होते हैं जिसका विशेष उपयोग हम लोग करते हैं और साधक करते हैं, जहाँ पर शिखा और चोटी बांधते हैं ना, पुरुष चोटी शिखा बांधते हैं, स्त्रियां चोटी बांधती हैं, उस जगह को कहते हैं बिंदु चक्र। ये बिंदु चक्र से अमृत हमेशा गिरता है और नाभि में जाकर के वह खत्म हो जाता है, और इससे जो अमृत गिरता है, इस अमृत का उपयोग हम अपनी सेक्सुअलिटी में करते हैं, जनरल लाइफ में। लेकिन योगी क्या करता है, खेचरी मुद्रा को लगा करके अपने विशुद्धि चक्र पर इस अमृत को रोकता है कंठ पर, ताकि उसकी लाइफ जो हो लंबी हो और निरोग जीवन रहे। इसलिए अमृत को वह बचाता है, रसपान करता है अपने विशुद्धि चक्र पर। और लास्ट में जो होता है क्राउन चक्र, जिसको हम सहस्रार चक्र कहते हैं, वो तो कंप्लीट दिव्य रूप है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, स्वयं को हम स्वयं से जोड़ लेते हैं, और यही है समाधि का स्टेट। तो ये कुंडलिनी योग जो है, यह ऊर्जा जो है फेमिनिन एनर्जी है जो मूलाधार में निवास करती है, और जब आप योग का अभ्यास करते हैं हर चक्रों से यह गुजरते हुए धीरे धीरे धीरे धीरे सहस्रार तक पहुंचती है। तो जो शक्ति है वह शिव से मिलती है, शक्ति और शिव का मिलन ही कुंडलिनी योग है।
0: बिल्कुल।
1: तो शक्ति यहाँ ऊर्जा हो गई और शिव जो है यहाँ चेतना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, ये तो हमने अभी जाना है, चक्रों के बारे में हमने जाना है, और कुछ और भी मैं ज़रूर आपसे बातें जानना चाहूँगी, लेकिन अभी एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

भैया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: रहता है चोरा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश। संडे का आज दिन है और बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं, कुंडलिनी एनर्जी पे हम बातें कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगी, कुंडलिनी अवेकनिंग के साइंस की अगर हम बात करें, सिम्टम्स साइन की अगर बात करें, तो वो क्या होते हैं और कैसे हम ये पहचान सकते हैं कि अब जो है कुछ बदलाव तो आ रहा है।
1: संतुलन, जीवन में संतुलन, स्थिरता, सब में प्रेम भाव को देखना, किसी से राग द्वेष नहीं रखना, मैं और तुम के भाव से हट करके सब में ईश्वर के उसी गुण को हम दर्शन करते हैं, तो समझो इस आदमी ने अपनी चेतना का विकास किया है।
0: लेकिन डॉक्टर राजेश, मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के इस टाइम में जो लाइफस्टाइल इतनी भाग दौड़ भरी चल रही है और छोटी छोटी बातों पे हम स्ट्रेस लेते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो क्या एक नॉर्मल इंसान क्या इस कुंडलिनी एनर्जी को प्राप्त कर सकता है? क्योंकि एकदम से चेंज आना बहुत मुश्किल है कि आप अगर किसी ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ इतना सारा काम है, स्ट्रेस है, हम ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इसे अचीव किया जा सकता है?
1: साक्षी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं। जब से सृष्टि बना है, हम अगर आदि मानव के इतिहास को देखते हैं तो उनके भी जीवन में बहुत संघर्ष था, वो समय से भी। समय समय पर सारे चीजें जो हैं चैलेंजेस का रूप बदलता गया, अभी का रूप कुछ और हो गया है, लेकिन संघर्ष तो जीवन में हमेशा रहा, योगियों के साथ, तपस्वियों के साथ, हर लोगों के साथ, राजाओं के साथ, हमेशा संघर्ष तो है ही अगर इतिहास को जानेंगे। अब इस संघर्ष में अपने आप के लिए थोड़ा समय निकालना, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि हमारा जो जन्म है, इस जन्म का सिर्फ एक ही उपयोग थोड़ी है कि मुझे कमाना है, खाना है और बच्चे पैदा करना है, संपत्ति अर्जित करना है और चले जाना है, ऐसा नहीं। कुछ हमारे भी इस शरीर और आत्मा के लिए कुछ करना होगा, मन के लिए कुछ करना होगा। ये शरीर का जो है उपयोग सारे चीजों के लिए संतुलित में, जीवन के हर आयाम को संतुलित करना है, समाज के साथ, परिवार के साथ और अपनी जो भी जरूरत की चीजें हैं, लेकिन उससे एक समय निकालना है जिसमें अपने लिए कुछ तो करना होगा। यही है जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक पाथ।

0: और आध्यात्मिक बात जो है वह क्या करता है। योग को अगर हम जानेंगे ना, सारे योग का एक ही कंक्लूजन होता है, चाहे आप राजयोग करते हो, भक्ति योग करते हो, कर्म योग करते हो, ज्ञान योग करते हो, एक ही चीज है, चेतना का विकास। आज के युग में जो हम देखते हैं कि योग करने का अर्थ है कि हम शरीर का वजन कम करें, बीमारियों को खत्म कर लें, यह ऑब्जेक्टिव योग नहीं है। ये योग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तो हाथी के बल को हम चींटी मारने में उपयोग कर रहे हैं। योग का जो लक्ष्य है वह है आत्म संयम, आत्म शुद्धि, आत्म अनुशासन और आत्म साक्षात्कार। मैं कौन हूँ, जिस दिन मैंने समझ लिया मैं कौन हूँ, फिर तो सारा मैटर ही सॉल्व हो गया।
1: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या बिना प्रॉपर गाइडेंस के कुंडलिनी प्रैक्टिसेस डेंजरस हो सकती है? क्योंकि अभी आपने कहा जैसे कि एक बल्ब है, 60 वॉट का बल्ब है, अगर 1000 वॉट का उसमें पड़ जाता है तो फ्यूज हो जाएगा, तो क्या अगर अकेले किया जाए इसकी प्रैक्टिस तो क्या ये डेंजरस है या नहीं?
0: देखिए, डेंजरस तो कोई भी चीज है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं आपको आती नहीं है तो आप ठोक दीजिएगा। लेकिन इस किताब में जो कुंडलिनी सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स लिखने की जो मेरी इच्छा हुई है, तो इसमें प्रॉपर गाइडलाइन है आपके 9 से 10 महीने के जो प्रैक्टिसेस हैं, पूरा रोड मैप बना हुआ है कि आप इससे चलिए, सारे इसके अनुशासन, डिसिप्लिन, सारी चीजों के बारे में चर्चा है और बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है कुंडलिनी सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स।
1: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, मेरा अगला सवाल ये होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर कुंडलिनी को काफी ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, रियलिटी और मिथ में क्या डिफरेंस है?
0: देखिए, रियलिटी तो यही होता है कि जो चीज आपने सुना है और जब उसका आप अनुभव करते हैं। मैंने रसगुल्ला के बारे में बहुत सुना है, रसगुल्ला कभी खाया ही नहीं, तो वो मिथ हो गया। और रियलिटी, जिस दिन मैंने रसगुल्ला खा लिया तो अनुभव हो गया कि सफेद रसगुल्ला का टेस्ट कैसा है और गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा है, दोनों रसगुल्ला ही है। ये एक्सपीरियंस, रियलिटी का अर्थ होता है एक्सपीरियंस। सत्य जो है, ट्रूथ जो है ना, स्क्रिप्चर साहब को बताता है, बाइबल टॉक्स अबाउट द ट्रूथ, गीता टॉक्स अबाउट द ट्रूथ, कुरान टॉक्स अबाउट द ट्रूथ, गुरु ग्रंथ साहब टॉक्स अबाउट द ट्रूथ, बट हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस ट्रूथ इज अ रियलिटी ऑफ आवर सेल्फ।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा मिथ है जो आपने सुना हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या किसी के थ्रू आपने सुना हो, जो कि कुंडलिनी को जो है इसके बारे में आपने सुना हो और आपको लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, तो वो मिथ बस्ट आप आज कीजिए।
0: देखिए, सबसे पहले कुंडलिनी के पहले एक बार मैं बताऊं, जब मैं 28 इयर्स पहले जब मैं योग में आया था, जब मैं योग सीखने के लिए जाता था, तो कुछ लोग कहते थे क्या, अरे योग करोगे तो पगला जाओगे, ऐसे कहते थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों लोग समाज में कहते हैं। बाद में समझ में आया कि जब आप आदमी योग करने लगता है तो वह अपने आप में चेतना का विकास करता है, फिर वह छोटी मोटी चीजों में उसकी इच्छाएं नहीं रहती है, वह हमेशा ईश्वर के चिंतन में लगता है, वह अपने आप के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, एक सकारात्मक दृष्टि तैयार करता है, और यही चेतना का विकास है, और इसी का नाम है कुंडलिनी शक्ति। तो कुंडलिनी शक्ति जो है, यह हर को अवेकन करना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे, क्योंकि अब आपको मालूम है कि हमें कैसे आगे की ओर आना है
1: जी,
0: आगे बढ़ना है, मुझे कर्म करते चलना है। फल की इच्छा के हेतु के लिए हम कर्म नहीं करते हैं, ये तो चेतना का विकास होगा तभी तो हम इसको समझेंगे। रट करके तो हम भगवद गीता में सुनते आ रहे हैं बचपन से कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन इसको रियलाइज करना, जो रियलिटी में लाना है, इसके लिए तो साधना करना पड़ता है। साधना जो है आपके अंदर डार्कनेस को खत्म करती है, इग्नोरेंस को खत्म करती है। इसीलिए हम गुरु के पास जाते हैं, इसीलिए हम मास्टर के पास जाते हैं, इसीलिए हम अच्छे ज्ञानी की खोज करते हैं जो हमारे अंधकार को खत्म कर दे।
1: बिल्कुल।
0: और अंधकार हमारा जो है क्या है, राग द्वेष ईर्ष्या अभिनिवेश, यही पांच जो है जो इसको हम कैसे खत्म कर ले, हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, चलिए एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।
1: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 और दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज है सैटरडे का दिन और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, योग गुरु है और साथ ही साथ हैप्पीनेस कोच भी है। डॉक्टर राजेश, आपसे बातें हमारी चल रही हैं और कुंडलिनी योग के बारे में, कुंडलिनी एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कुंडलिनी की बात करें, क्या डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जो है कुंडलिनी जर्नी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर इसको जैसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग से टाइम निकाल के हम रोजाना प्रैक्टिस करें तो उससे भी मुमकिन है?
2: देखिए, जब साधना आप करते हो तो अनुशासन की जरूरत होती है, जब आप नौकरी करते हो अनुशासन की जरूरत होती है, जब आप शिक्षा ग्रहण करते हो गुरु के आश्रम में अनुशासन की जरूरत है। अनुशासन जो है मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जब आप पतंजलि योग सूत्र को खोलेंगे ना तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ, पहला शुरुआत जो सूत्र की होती है कहता है अथ योग अनुशासनम। अथ का अर्थ होता है नाव, योग अनुशासन की ओर ले चलता है। मतलब अब आप 40 इयर्स, 30 इयर्स, 50 इयर्स, जब भी आप योग जिस दिन शुरू करते हैं कहते हैं कि भूल जाओ, पीछे भूल जाओ, नाउ अब आप अनुशासन में आ गए। अथ योग अनुशासनम, योगा मेक्स यू डिसिप्लिन। और जब आप डिसिप्लिन को जब आप रोज लगेंगे साधना में तो दूसरा सूत्र महर्षि पतंजलि लिखते हैं वह क्या है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है। आपके चित्त के अंदर, आपके मन के अंदर जो मेंटल मॉडिफिकेशन होता है ना, जो तरंगे पैदा होती है, जो वृत्ति पैदा होती है, योग उसका निवारण कर देता है। और ये 5 वृत्तियां होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5ों जो स्मृतियां है ना, वृत्तियां है ना, इसको योग बहुत ही अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर देता है। और तब तीसरा सूत्र महर्षि पतंजलि लिखते हैं ततः दृष्टा स्वरूपे अवस्थानाम। अब आप अपने आप के प्रति दृष्टा हो, अपने आप के प्रति साक्षी हो, अपने आप के प्रति विटनेस भाव में अब आप जी रहे हो कि जो भी हो रहा है सब दृष्टा में हो रहा है,
3: बिल्कुल
2: सब साक्षी में। रियलाइजेशन कितना फास्ट हो गया, परसेप्शन कितना इजी, क्लैरिटी हो गई। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि सिर्फ 1 घंटे का योगा अभ्यास ही मत करो, थोड़ा सा इसके ग्रंथों के पीछे भी जाओ, बड़ा आनंद आता है।
3: बिल्कुल,
2: और बहुत ही अच्छे लॉजिकल वैल्यूज सब आपको मिलेंगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, एक आखिरी सवाल जरूर आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। और सभी लिसनर्स जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज है संडे का दिन और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, योग गुरु है और बहुत सारी हम इनसे बातें कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश कुंडलिनी योग पे हमारी बातें चल रही हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहती हूँ, क्या वो खास संदेश है जो आप हमारे सभी लिसनर्स तक पहुँचाना चाहते हैं? कुंडलिनी योग है, लाइफस्टाइल है, तो क्या कहना चाहेंगे?
2: कुंडलिनी योग लोगों को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए और इस किताब को अपने घर में जरूर लाइए। इसमें आपको प्रॉपर गाइडलाइन है, इसके पीछे जो साइंस है, साइंस बिहाइंड कुंडलिनी है। एंड एवरी रिलीजन व्हाट दे अंडरस्टूड एंड दे प्रैक्टिस अबाउट द कुंडलिनी, ये भी इसमें है। और एक आपको प्रॉपर रोड मैप है, गाइडलाइन है। इस किताब को जरूर अपने घर में लाइए और जरूर पढ़िए, बहुत सारी चीजें आपका मिथ से पर्दा उठेगा। और कुंडलिनी सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स जो है अवेलेबल है अमेजोन पर सिर्फ 270 और 80 रुपीस के।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश, आप हमारे स्टूडियो और इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
2: धन्यवाद साक्षी, धन्यवाद।

0: रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आप लोगों से मिलकर के काफ़ी अच्छा लगता है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप के प्रति सजग बनिए।
1: बिल्कुल, चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। कल होगी आपसे मुलाकात, होगी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: योर सिटी योर रेडियो, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो मनोरंजना 107.8 FM।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। ये शो हर बार एक आपके लिए एजुकेशनल शो के तौर पर आपको सर्व करता है, आपको बताता है कंपनी के बारे में, एक स्टार्टअप के बारे में, आपको बताता है इंडस्ट्री के बारे में। And there are so many elements that falls in between these two things, industry and startup. तो यहाँ पर हम आपको कोशिश करते हैं बताने की कि exactly ये चीजें काम कैसे करती हैं और कैसे हम ये बोल पाते हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। So this is our show. It is going to be really special and we're going to talk about so many things. पहले हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, उसके बाद हम कंपनी की बात करेंगे। So stay tuned with us, क्योंकि अभी हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। Stay tuned, feel good, feel live.
3: ज्वाला समंदर की लहरों को देखो, जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ, ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है, जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
4: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
3: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
4: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
3: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
4: तो फिर एक वादा करो,
3: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
4: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
3: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे। पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है, जो इसका ग्रोथ रेट है ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ भी करते हैं। एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।
1: ज्वाला समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो।
1: मेरी जान मांग लो जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला ये मेरा वादा है।

वेलकम बैक, मैं आरजी सागर। शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। So, UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, SEBI की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज़ हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज़ हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं, मैं हूँ सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गाँव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज़ बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि गांव में इस टेक्नोलॉजी को अगर पहुँचा दिया और वहाँ के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गाँव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहाँ के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। देन इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसके साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

का। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या क्यूआर बेस्ड यूपीआई। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइंजी, आईडीफाई, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग एआई एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था, जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। उसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या हैं। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिदम्स काफी एडवांस हो गए हैं, जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का वो इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं, जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव्स हैं, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी हैं और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए, सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए, यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। टीयर 2 एंड टीयर 3 जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

मैं हूं आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोज कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड देन उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइफ।

पुरस्कार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। नहीं फिलहाल इसी नोट पर बिना किसी देरी के शो को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ इंडस्ट्री को आप समझ पाए हैं। तो भैया आज की जो हमारी कंपनी है उसका नाम है हाइपरफेस। हाइपरफेस 2021 में स्टार्ट हुई थी, बेंगलोर से स्टार्ट हुई, आज भी इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और जैसे मैंने बताया कि फिनटेक में डील करती है, और थोड़ा प्रिसाइज होके अगर जाएं तो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, और अगर जाएं तो एम्बेडेड फाइनेंस में और स्पेसिफिक क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर। हाइपरफेस एशिया का पहला क्रेडिट कार्ड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर हाइपरफेस ने क्या किया कि इन्होंने डायरेक्ट जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो इशू नहीं किए। अमूमन जो ऐसी कंपनीज जो इस सेगमेंट में डील करती हैं वो HDFC या SBI कार्ड को अपने क्रेडिट कार्ड्स जो हैं डायरेक्टली इशू करके देते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने एक टेक इंफ्रा बनाया जिससे बैंक्स को, फिनटेक्स को, ब्रांड्स को हेल्प मिली लॉन्च करने में और मैनेज करने में। आज का जो मॉडर्न डिजिटल क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम है जो बहुत फास्ट है वो बिल्ड किया इन्होंने। वो एक तरीके से आप कह सकते हो पीछे का पूरा बैकएंड लेवल बिल्ड किया। सो दे कॉल इट AWS ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, सिंपल। तो ये एक इसको तरीका हो सकता है समझने का। एग्जैक्टली इन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी है, वाजिब क्वेश्चन है भाई, उठना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशनली भैया अगर आप क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च करते जो वो बहुत स्लो था, तो वहां पर क्या होता था, बैंक को जनरली चाहिए होता था 12 से 24 महीने का डेवलपमेंट का उनका टाइम लगता था। ठीक है, लेगेसी बैंकिंग सॉफ्टवेयर, मल्टीपल वेंडर्स, सेपरेट रिवॉर्ड सिस्टम, सेपरेट ऑनबोर्डिंग सिस्टम, कंप्लायंस इंटीग्रेशन, फ्रॉड मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड कस्टमर एंगेजमेंट टूल्स, और सब कुछ फ्रेगमेंटेड है। तो यहां पर हाइपरफेस की कंपनी है, इन्होंने पूछा कि व्हाई कांट लॉन्चिंग अ क्रेडिट कार्ड बी एज इजी एज लॉन्चिंग अ डिजिटल प्रोडक्ट। एंड ये जो क्वेश्चन था, इसके बाद ये भैया एक थॉट बना और ये पूरा एक आइडिया का सोल्यूशन लेकर के आया। एंड एग्जैक्टली वहां पर ये कंपनी बनके सामने आई जिसके बारे में आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम है हाइपरफेस। तो यहाँ पर इन्होंने बैंक बिल्डिंग नहीं करी, सब कुछ अपने आप से बनाने का नहीं सोचा। इन्होंने सिंपल सा एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर बैंक अपने हिसाब से चूज कर सकता था कि क्या कंपोनेंट उनको चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर इसको और अच्छे से समझते हैं। सो लेट्स से कि एक दुकान है आपके यहाँ पर राशन वाले की, सब मिलता है वहां पर। ओके, अब उसको सब कुछ अपना खुद खरीद के लेके आना होता है कि यहाँ पर ये चाहिए होगा, इसकी डिमांड है, इसकी डिमांड है। ठीक है, ये वाली सॉफ्ट ड्रिंक, ये वाला आटा, ये वाले बिस्किट, ये वाले नमकीन, ये वाली कैंडीज। लेकिन वहीं पर एक इंसान आता है, एक रिटेलर आता है जो लेके आता है सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स। अब आप बताओ आपको क्या चॉकलेट चाहिए, प्रोटीन वाली चाहिए, वेफर वाली चाहिए, या और कौन सी चाहिए आपको? तो वो एक प्रॉब्लम वहां पर उसने नीश पकड़ के उसको फिक्स किया कि आपकी चॉकलेट वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी तो आपका होता रहेगा। एग्जैक्टली यहां पर इस कंपनी ने यही काम किया कि इन्होंने पूरा एक क्रेडिट कार्ड या डिजिटल क्रेडिट कार्ड जो है उसका एक सिस्टम यहां पर लॉन्च किया इन्होंने। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप समझ पाए हैं एग्जैक्टली ये कंपनी करती क्या है। आगे इसके बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। मैं हूं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज की हमारी कंपनी है हाइपरफेस। हाइपरफेस में जो अगला पॉइंट आता है विच इज यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। एशिया का पहला क्रेडिट कार्ड एज अ

फॉर एग्जाम्पल आपका एक बैंक है, अब आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए कि जो आपकी हेल्प कर पाए क्रेडिट कार्ड को समझने में, क्योंकि अगर अगर आपको वो कंपनी नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पूरी टीम बनानी पड़ेगी कि किस कस्टमर को आप क्रेडिट कार्ड दे सकते हो, किसको नहीं दे सकते हो, जिसको क्रेडिट कार्ड दोगे उनमें से भी किस कस्टमर को कितनी आप लिमिट दोगे, उसकी लाइफ साइकिल कितनी होगी, पोर्टफोलियो कैसा होगा, कंप्लायंस कैसे मैनेज होंगे, रिवॉर्ड्स आप कैसे देंगे, ये सब आप एक डिपार्टमेंट के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते हो ना। तो आपको एक क्रेडिट कार्ड सेटअप करने के लिए अपने बैंक में एक पूरी टीम बिठानी पड़ेगी, जो नए सेल की टीम भी उसमें आपको चाहिए होगी, डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए भी आपको कुछ सॉफ्टवेयर के वहाँ पर टूल्स चाहिए होंगे, ठीक है, आपको क्रेडिट लाइन मैनेज करना पड़ेगा, आपको रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा कस्टमर्स को ताकि वो यूज करते रहे, कस्टमर एंगेजमेंट भी आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करोगे? और अगर आप एक ऐसी कंपनी के पास जाते हो जो आपके बैंक को सर्विस प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जाम्पल बाकी सारे प्रोसेस वही देखती है, सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी है, अगर वो सारे प्रोसेस देख पा रहे हैं तो उन्हें क्रेडिट कार्ड देखने के लिए अलग से एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पर ये कंपनियां ये बोलती है कि यार बाकी सब तुम करते रहो, तुम्हें एफडी देखना है, लोन्स देखने हैं, वो सब तुम देख लो अपने हिसाब से, हाउस लोन देखने हैं, कार लोन देखने हैं, या जो भी और तुम्हारा कैश का तरीका होता है सब देख लो, हम सिर्फ और सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। और ये इन्होंने करके दिखाया एंड इसलिए ये बहुत खास बन गई। तो एक प्रॉब्लम को पिक करके, एक प्रॉपर बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर जो नीश है उसको पिक करके इन्होंने इस प्रॉब्लम को उठाया, फिक्स कर दिया, दैट इज हाइपरफेस फॉर यू। फिलहाल उम्मीद कर रहा हूं ये वाला पॉइंट आपको समझा पाया हूं, दीज आर द यूएसपीज ऑफ दिस कंपनी। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे कंपनी के फाउंडर्स की। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

आपके पास कोई फीडबैक होता है हमारे लिए तो 8010781078 बहुत आसान सा हमारा नंबर है, बिंदास अपनी बात हम लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। आइए बात करते हैं हाइपरफेस के फाउंडर्स की। पहला नाम आता है रामानाथन आरवी। रामानाथन जी इज द को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी। थोड़े से एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करेंगे, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी शॉर्ट फॉर्म बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, ओके, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इनकी पढ़ाई हुई है जो कि तिरुचिरापल्ली में फॉल करता है ये इंस्टीट्यूट, सॉरी अगर मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया हो तो। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करें तो अमेजॉन इंडिया में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है, बैंक बाजार एक कंपनी है उसमें इंजीनियरिंग लीडरशिप जो है वो उन्होंने सर्व किया है। जस्टपे नाम की एक कंपनी है उसमें एज अ को फाउंडर एंड सीटीओ इन्होंने सर्व किया है। और मेजर अचीवमेंट्स की अगर बात करें, वन ऑफ द की पीपल इन्वॉल्व्ड इन बिल्डिंग भीम, इंडिया का पहला ऑफिशियल यूपीआई ऐप था वो। तो बिफोर हाइपरफेस ही वॉज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स एंड इंडिया का बिगेस्ट डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट जो है वो बना चुके थे, उसका पार्ट रह चुके थे भीम। दूसरा नाम आता है ऐश्वर्या जयशंकर। ऐश्वर्या जयशंकर इज द को फाउंडर एंड सीओओ, डिजिटल बैंकिंग एक्सपर्ट है, HSBC इंडिया के साथ प्लस कोटक महिंद्रा बैंक के साथ उन्होंने काम किया है। एंड she played an important role in launching Kotak 811. Kotak 811 सुना होगा ना हम सबने, exactly उसमें इनका बहुत important role था उसको launch करने में, क्योंकि वो इंडिया का first large scale fully digital savings account जो है वो बना था उस time पर, अपने time पर। एक्सपर्टीज की बात करें तो बैंकिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, रेगुलेटरी कंप्लायंस है एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इनके पास बैंकिंग की नॉलेज है। और वहीं पर रामानाथन की अगर बात करेंगे उनके पास इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज है, एंड दैट्स हाउ इट बिकेम अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ कंपनी, टू को फाउंडर्स सॉर्टेड। सो या दैट्स ऑल अबाउट द फाउंडर्स ऑफ दिस कंपनी। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम बात करते हैं आगे फर्दर कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वंस अगेन वेलकम बैक। हाई परफेज हमारी आज की कंपनी है। अभी तक हम बात कर चुके हैं ओवरव्यू के बारे में, हम बात कर चुके हैं फाउंडर्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में। आइए बात करते हैं कि व्हाट मेक्स दिस कंपनी डिफरेंट। पहला है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। बैंक्स को अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। हाइपरफेस आता है, अपने कुछ प्लगइन्स लेके आता है, सॉर्टेड। नीड ऑनबोर्डिंग, टेक ओनली ऑनबोर्डिंग। एग्जांपल के तौर पर पूरा प्रोसेस मत दो भाई, ऑनबोर्डिंग के लिए चाहिए ना, हम देते हैं। रिवॉर्ड के लिए चाहिए, हम देते हैं। एनालिटिक्स, ओके हम देते हैं। सब कुछ चाहिए क्रेडिट कार्ड में, वो भी हम देते हैं। कोई एक पार्ट चाहिए, वो हम दे देंगे। तो बैंक्स को काफी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी इस कंपनी ने। सो बैंक्स के लिए और इजी हो गया कि ठीक है भाई, जितना चाहिए होगा उतना ले लेंगे। सेकंड इज एपीआई फर्स्ट डिजाइन, एवरीथिंग वर्क्स थ्रू एपीआईज। तो डेवलपर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग देयर ओन थिंग्स, दे ऑलरेडी हैव समथिंग जिसके ऊपर ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो यहां पर लॉन्च करना महीनों सालों की जगह कुछ हफ्तों में हो सकता है। दैट इज अनदर पार्ट। थर्ड इज एम्बेडेड फाइनेंस। इमेजिन आपने एक फ्लाइट बुक करी किसी एक पोर्टल के ऊपर। सो इंस्टेड ऑफ लीविंग द ऐप टू अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड, कार्ड जो है उस ऐप में ही आपको जो है ऑफर कर दिया गया। वहीं पर जब आप बुक कर रहे हो वहीं पर आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे दिया। तो सीमलेसली ये सारी चीजें इंटीग्रेशन कर दिया, सब कुछ एम्बेड कर दिया उसमें। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया, स्मूथ हो गया, फास्ट हो गया, यू आर गुड टू गो। तो हाइपरफेस वो कंपनी है जो इन तमाम एक्सपीरियंसेस को आपके अपलिफ्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्लायंस, क्योंकि बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करता है आरबीआई की तरफ से भी, एंड एट द सेम टाइम हर कंपनी का कंप्लायंस फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा क्रूशियल या मेजर रोल प्ले करता है। थोड़ी सी भी इधर उधर कोई चीज हुई, बूम। तो यहां पर फाइनेंशियल रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चेंज होती रहती है। तो ऐसे में ऐसी कंपनी में चाहिए भैया जिसको पता हो सब कुछ, और ये भी पता हो कि फ्लेक्सिबल कैसे होना है और कैसे अगर कुछ चेंजेस आए तो कैसे करना है उसको चेंज। तो हाइपरफेस जो है कंप्लायंस को अच्छे से इंटीग्रेट करके रखता है अपने प्लेटफॉर्म के साथ, जो बैंक्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर एंगेजमेंट। हाइपरफेस इज नॉट जस्ट अबाउट इश्यूइंग कार्ड्स। यहां पर ये बैंक्स की हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग स्पेंडिंग, कस्टमर रिटेंशन, रिवॉर्ड रिडेम्पशन, पर्सनलाइज्ड ऑफर्स, रियल टाइम नोटिफिकेशंस। सो अ क्रेडिट कार्ड इज नॉट जस्ट अ पेमेंट प्रोडक्ट, इट्स एन एंगेजमेंट प्रोडक्ट। दैट इज अ फिलॉसफी ऑफ दिस कंपनी। तो ये है वो चीजें जो इस कंपनी को अलग बनाती है। आई होप इट हेल्प्स। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया, महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: इस उठता तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: एक और बार स्वागत है आपका। अब यहाँ पर हमारा शो अपने लास्ट स्टेज पर आ चुका है। आइए बात करते हैं व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस कंपनी। तो इस कंपनी के जो सीईओ हैं रामानाथन जी, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी कि डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो बहुत स्मूथ होती जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, बट क्रेडिट कार्ड वो अभी भी है, वो दशकों पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं। इस आइडिया, अगर पेमेंट डिजिटल हो सकती है, क्रेडिट कार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं? सिंपल सा थॉट, कितना एक्सपेंड किया ये हमने आपको बताया यहाँ पर, कि कैसे इन्होंने एक नीश को उठाकर के इतनी बड़ी कंपनी बना ली। इसी वजह से इस कंपनी की ग्रोथ ड्राइवर्स भी बहुत आपको पता होना चाहिए कि बहुत स्मूथली कंपनी ने ग्रो किया है। एम्बेडेड फाइनेंस, जो मैंने कहा कि ट्रैवल एप्स, ई कॉमर्स, रिटेल, फिनटेक, सब कुछ यहाँ पर है भैया, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की मार्केट ने ग्रो किया, बाय डिफॉल्ट कंपनी ने ग्रो किया, कंपनी को पोटेंशियल दिखाई दिया, एट द सेम टाइम वहाँ पर अर्ली इन्वेस्टर बन के सामने आए, ठीक है। को ब्रांडेड कार्ड्स, बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो अपने कार्ड्स को रिवॉर्ड करते हैं, तो इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। सिंपल सी बात है, हर बैंक के कार्ड को जैसा बैंक को चाहिए वैसे उनके कस्टमर को रिवॉर्ड मिल सकता है। यूपीआई प्लस क्रेडिट, पूरा इंडिया जब यूपीआई के ऊपर मूव कर रहा है तो ये क्रेडिट को भी यूपीआई पर ले गए। सो हाइपरफेस हैज बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये है जी वो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, और उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए इतना काफ़ी है समझने के लिए कि भैया कैसे लोगों ने छोटे से छोटे चीज़ों को उठाया, एक्सपेंड किया और उनको इतना बड़ा बना दिया कि लोगों को पसंद आई वो चीज़ें, लोगों की एक्चुअली हेल्प हुई। अब इसी के साथ अपने शो को यहाँ पर हमें कंक्लूड करना होगा। सो हमने आज बात करी हाइपरफेस के बारे में, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंटरेस्टिंग फिनटेक स्टार्टअप, 2021 में स्टार्ट हुआ, नॉट जस्ट अबाउट बैंक, नॉट जस्ट अबाउट इशूइंग क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली, तो इन्होंने सिंपल एक टैग बनाया जहां पर क्रेडिट कार्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बाकी बैंक्स को ये एक्सेस दे करके कि आपको जो प्रोसेस चाहिए हम आपकी हेल्प उसमें कर देंगे। अब इसी के साथ इजाजत दीजिए, उम्मीद कर रहा हूं आज का शो आपको पसंद आया होगा। नाउ दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम ऑल इज वेल, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो देता है आपको हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां, और वो भी एक्सपर्ट्स के द्वारा। इस प्रोग्राम को आप तक लाने का श्रेय जाता है SSV हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद को। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाली हैं वो बहुत चर्चाओं में है, सोशल मीडिया पर, न्यूज में, अखबारों में आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा, खास तौर पर से तब जब आपके घर में कोई डायबिटिक हो, डायबिटिक भी उस लेवल का कि जिनकी शुगर कंट्रोल में ना आ रही हो या फिर वो इंसुलिन लेते हो। अब इंसुलिन बेसिकली क्या है ये बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते, ये मैं नहीं बताना चाहती, लेकिन इंसुलिन को लेकर एक बहुत ज्यादा चर्चा में पिछले कुछ 10-15 दिनों से जो बात है वो ये है, अवीकली यानी हफ्ते में एक बार लगने वाला इंसुलिन। अगर आप इंसुलिन की प्रक्रिया को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि इंसुलिन दिन में 4-5 बार कई केसेस में पेशेंट्स को लगाया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में नेचुरल इंसुलिन नहीं

0: बन रहा होता है और वो पूरी बॉडी में ब्लड में शुगर जो है, जो हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें से जो शुगर रिलीज होता है वो पूरे ब्लड में चला जाता है, इसीलिए शुगर लेवल हाई हो जाते हैं। सो इसी वजह से पेशेंट को इंसुलिन रिकमेंड किया जाता है इंजेक्शन की फॉर्म में। अब ये इंसुलिन अगर आपको दिन में 4-5 बार की जगह एक बार लगानी पड़े, वो भी हफ्ते में, जी हाँ अ वीकली, समझ रहे होंगे आप इस नाम से ही, पर ये एक्चुअली है क्या, आखिर ये काम कैसे करती है, ये इंसुलिन आया कहाँ से, क्या भारत में बना है, या फिर इसका इस्तेमाल किन पेशेंट्स को करना चाहिए, ऐसे तमाम सवाल। और इन तमाम सवालों के जवाब आपको मैं नहीं देने वाली हूँ बल्कि हमारे एक्सपर्ट देने वाले हैं, HOD इंटरनल मेडिसिन SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा जी। एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानवराज।
1: थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।
0: सर अ वीकली के बारे में जितना हम जानते हैं, हमने सुना है, बहुत चर्चा में ये टॉपिक रहा है पिछले लगभग 10 दिन से। अब ये चर्चा में इसलिए भी रहा है क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो बहुत खुश हैं इसके बारे में जानकर, पर अभी भी इसको लेकर कन्फ्यूजन बहुत है क्योंकि डॉक्टरी एडवाइस अभी भी देखने को नहीं मिले क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट सिचुएशन अलग होती है। सो अ वीकली बेसिकली ये कैसा इंसुलिन है?
1: जी मैम, जैसा आपने कहा कि नाम तो सब लोगों ने सुन लिया है कि एक नया इंजेक्शन आया है जो कि 7 दिन में एक बार देना पड़ता है और जिसका नाम है अवीकली। जैसा कि नाम बताता है वंस इन ए वीक, अगर हम इसको ब्रेकअप करें तो ए वीकली एक ऐसी चीज जो कि सप्ताह में 7 दिन में एक बार देनी पड़े, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई कर दूं कि ये ओनली 7 ही दिन हुए हैं इसको और ये लॉन्च एक्चुअली 9 जुलाई को हमारे देश में हुआ था।
0: जी
1: 9 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था और 10 को ये आया, तो मैं कहूँगा आपको कि 7 दिन से आप कह सकती हैं कि ये सोशल मीडिया में हाँ चर्चा पे, ए वीकली जैसे कि आप कहें वीक, एक वीक से चर्चा में। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कई बार हमारे यहाँ ये होता है कि इंसुलिन, अब ये इंसुलिन सब मरीजों के लिए कारगर है क्या या सब डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ये ठीक कर सकता है क्या, ऐसा नहीं होता है। जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर ये नया इंसुलिन आया तो काफ़ी लोगों को, हमारे जो डायबिटीज़ की बहुत सारे पेशेंट्स की ऐसी प्रोफाइल है जिनको कि काफ़ी ट्रेवल करना पड़ता है या जिनको इंसुलिन कम लेना पड़ता है, जिनकी डोज एक बार होती है, बेसिकली लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है मैम ये, जैसे आप समझ रही हैं कि 7 दिन में एक बार देना पड़ता है, तो ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, बेसिकली 7 दिन में देना पड़ता है। तो जो हमारा लेंटस, जिसको लोग आमतौर पर पेशेंट समझते हैं इस ब्रांड को, मैं इसलिए इसका नाम लेना चाहता हूँ लेंटस, और एक होता है ट्रेसिवा, वैसे तो हमें किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन लोगों की जानकारी की वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। तो जो एक वंस इन ए डे, मतलब जो रात के टाइम पे या सुबह के टाइम पे जो एक बार इंसुलिन लेते हैं, और वो लोग भी 7 दिन में 7 बार इंसुलिन बेसिकली लेते हैं। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉम्प्लायंस अच्छी नहीं रहती, उनको तकलीफ होती है रोज रोज इंसुलिन लेने में और प्रिक करने में, और उनके लिए ये बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन कौन सी प्रोफाइल में हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, पर डेफिनेटली ये बहुत सारे पेशेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगा और लॉन्ग टर्म में ये डायबिटीज़ की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लंबे समय पे, उनमें भी हेल्प करेगा। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात ये भी बताना चाहता हूँ कि स्टडी हुई थी रिसेंटली, उसमें ये पता चला था कि नॉट 40 एक्चुअली 90% पेशेंट जो होते हैं वो इंसुलिन को डिले करते हैं, लेना नहीं चाहते। जब भी डॉक्टर मैम उनको एडवाइस करता है कि आपको इंसुलिन की जरूरत है, उनको काउंसलिंग भी करता है, तो ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट ईयर्स तक, नॉट फॉर मंथ, फॉर ईयर्स दे डिले द इंसुलिन। सो व्हेन दे डिले द इंसुलिन दे अट्रैक्ट कॉम्प्लिकेशंस, यू नो दे एम्ब्रेस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। तो ये स्टडी है कि 10-10 साल तक लोग कहते हैं कि नहीं मुझे इंसुलिन नहीं लेना, और कोई तरीका बता दो, इंसुलिन मैं नहीं लूंगा। तो उनके लिए ये बहुत कारगर होगा और उनको समझाना हमारे लिए काफी आसान होगा।
0: जी बिल्कुल, यानी हफ्ते में एक बार लगने वाला इंसुलिन अ वीकली के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी है लेकिन वो जानकारी आधी अधूरी है। आज हम प्रोग्राम ऑल इज वेल में अवीकली से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक ऐसा इंसुलिन जो हाल ही में आया है, एक हफ्ता ही हुआ है इसे भी आए हुए, लेकिन इस एक हफ्ते में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए जमा करके लाए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010781078। वक्त है एक छोटे से

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सी बातें चल रही हैं आज इंसुलिन के बारे में, क्योंकि हाल ही में आया अ वीकली यानी हफ्ते में एक बार लगने वाला इंसुलिन काफी चर्चा में है। बहुत सारे पेशेंट्स को इसको लेकर कंफ्यूजन है, डॉक्टरों से बात हो या ना हो, लेकिन हमारे एक्सपर्ट आपसे जानकारी जरूर साझा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर मीणा, बहुत सारी बातें हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है। किसी से पूछें या कोई वीडियो देखें तो वो कहते हैं ये टाइप 2 वालों के लिए ज्यादा अच्छी है। अब डायबिटीज मोटे तौर पर टाइप 1 टाइप 2 में जो है उसे बांटा गया है, पर ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो दवाई खाते हैं टाइप 2 वाले उनके लिए ज्यादा अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये टाइप 1 के लिए भी अच्छी है। तो रियलिटी क्या है इसकी?
1: जी मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो डायबिटीज़ होता है वो दो तरह का होता है, जैसा आपने भी कहा टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। अगर इसको मैं हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा ब्रेक करूँ तो टाइप 1 जब आपकी बॉडी में इंसुलिन खत्म हो जाता है इसको टाइप 1 बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। और दूसरी डायबिटीज़ है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़, या हम दूसरे वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डायबिटीज़। तो जो दूसरा है वो है जीवन शैली में, जब आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है, ओबेसिटी उससे जुड़ी हुई है जैसा आप समझ रही हैं तो टाइप 2 से। तो मैं अगर अवीकली की बात करूं, जो हमारे देश में भी इस पे बात हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में यही कहना चाहता हूं मैम कि टाइप 1 डायबिटीज़ के जो लोग हैं उनके लिए अवीकली अभी फ़िलहाल में नहीं है। मैं ये पहले ही इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा डेंजर साइड इफेक्ट और मैं कहूँगा काफ़ी कॉम्प्लिकेट टेड साइड इफेक्ट होता है, वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर को काफी ज्यादा कम कर देती है और काफी लंबे समय तक कम कर देता है, क्योंकि मैम ये लंबे समय तक काम करता है, 7 दिन में एक ही बार लगता है। तो टाइप 1 डायबिटिक्स जो होते हैं उनका क्या होता है कि उनको एग्जैक्ट डोज और उनकी डोज को हमको ऊपर नीचे करना पड़ता है, प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, बहुत ही स्पेसिफिसिटी चाहिए इंसुलिन को देने की। इसलिए टाइप 1 डायबिटिक्स इसको अगर अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेडिकल सुपरविजन में वो ले सकते हैं और हर मरीज डॉक्टर के सुपरविजन में ऑल टाइम रहता नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसलिए टाइप 2 डायबिटीज जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं, क्योंकि जो एवीकली है ये इंसुलिन जो है ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है, जैसे कि हमारे लेंटस ग्लार्जिन जो होता है जीन ग्रुप और डेग्लूडेक जो होता है, मैं नाम ले रहा हूं, इन इंसुलिन्स में एक और होता है आइकोडेक, इंसुलिन आइकोडेक, दैट इज एवीकली। तो इसका जो हाफ लाइफ होता है मैम वो होता है मोर देन 190 आवर्स, आप समझेंगे 190 घंटे से ज्यादा इसकी हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है मैम कि इतने घंटे तक, 190 घंटे तक मतलब 7 दिन तक ये आपके शरीर में रहेगा, तभी आप देख रहे हैं कि 7 दिन में एक ही बार देना पड़ता है और शुगर को स्टेडी मतलब कंट्रोल करके रखता है,
0: कंट्रोल करके रखेगा।
1: तो अगर कोई पेशेंट इसको ले लेता है, और जैसे किसी को लेंटस में उदाहरण के रूप में बताना चाहूं, तो किसी को अगर रात में लेंटस चल रहा है, मान लो सपोज करो 20 यूनिट एक दिन में लेता है वो, तो आप देखेंगे 7 दिन में वो 140 यूनिट ले लेगा। आप देखेंगे अगर लेंटस वो एक दिन में 20 लेता है तो 7 दिन में 140 ले लेगा। तो उसको एवीकली का 140 यूनिट डोज अपन को एक ही दिन में देना है।

0: लेना है और कितना डोज लेना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो मैंने बताया हाफ लाइफ जिसको बोलते हैं वो 190 घंटे होती है। तो गलती से अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो बहुत ही लंबे समय तक रहेगा।
1: हाँ, और बार बार कई बार आप सो रहे होते हैं तो भी ये रिस्क बरकरार रहता है।
0: यस यस, और खासतौर पर मैंने जैसा बोला कि पेशेंट की प्रोफाइल, अगर पेशेंट अवेयर नहीं है, अनअवेयर है, हम जिसको एक चीज बोलते हैं अनअवेयर हाइपोग्लाइसीमिया, खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन होते हैं और जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, जिनका हमारा जो सिस्टम होता है जो ये पता करता है कि अगर शुगर कम हो रही है तो बेचैनी, घबराहट, रेस्टलेसनेस हो रही है, यही ना पता चले लक्षण और उसको हम एवीकली दे दें तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। इसलिए इसमें सतर्कता बहुत जरूरी है, जैसा हम बात करें।
1: मतलब सुपरविजन तो बहुत जबरदस्त चाहिए इसमें कि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं इस इंसुलिन को लगाते हुए। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि खुद ही खरीद ली और खुद ही इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिस डॉक्टर से आप परामर्श ले रहे हैं उनकी परमिशन के बिना ये एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये लंबे समय तक आपकी बॉडी में रहती है और अगर आपकी शुगर ज्यादा लो हो गई है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे और भी जानेंगे कि आखिर शुगर कितनी होनी चाहिए, यानी आपका HbA1c कितना होना चाहिए जब आपका इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस इंसुलिन का, या फिर आपकी रेगुलर शुगर कितनी है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या बहुत हाई शुगर में ये काम करती है या फिर एवरेज शुगर में भी आप इसको लगाकर इजीली अपनी लाइफ जी सकते हैं। ऐसे कुछ सवाल और उनके जवाब लेंगे हम इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. हम बात कर रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन अ वीकली के बारे में. क्यों बात कर रहे हैं? हम किसी ब्रांड को या किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं कैसे इंसुलिन के बारे में जो कि हाल ही में यानी हफ्ता भर पहला लॉन्च की गई है. बहुत सारे डायबिटिक जो हैं लोग यानी डायबिटीज के जो मरीज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा खुशी है क्योंकि हर रोज़ 4 से 5 बार इंसुलिन लगा रहे हैं, 1 बार लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लगा रहे हैं. इतनी बार इंसुलिन लगाने के बाद बंदा थोड़ा सा तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ऐसे में कम इस्तेमाल होने वाली ज़्यादा असर दिखाने वाली इंसुलिन आपके लिए वाकई एक अच्छी चीज़ है. लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स जानने भी ज़रूरी हैं. वो हम बता रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीना जी जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में हमारे साथ आज जुड़े हैं और इंसुलिन से जुड़ी ही बहुत सी बातें हम उनसे जान रहे हैं. डॉक्टर सुरेंद्र, काफ़ी सारी डिटेल आपने दी है, एक अच्छी खासी रिसर्च आपने करी हुई है इसके बारे में. लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ, जब हम बात कर रहे थे कि टाइप 2 वालों को ये ज़्यादा सूट करेगी अभी फिलहाल के लिए, सो टाइप 2 में भी कोई लेवल ऑफ जो शुगर होता है उसको देखकर ये प्रिस्क्राइब की जाएगी? HbA1c का डेटा देखना जरूरी है इसमें या किस प्रकार से किसी भी टाइप 2 वाले को ये रिकमेंड कर दी जाएगी?
1: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम कि एक्चुअली अगर आपके पास 100 पेशेंट है तो आप 100 को एक इंजेक्शन डायबिटीज़ में नहीं दे सकते. जैसा कि हम बात कर रहे थे तो हर पेशेंट की प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर पेशेंट की पर्सनल प्रोफाइल होती है खासतौर पे डायबिटीज़ मैनेजमेंट में. तो मैं अगर इफ़ टू बी वेरी स्पेसिफिक, इफ पीपल हु आर हैविंग HbA1c ऑफ 8.5, जो हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं जनरली वो जिनका HbA1c 8.5 के आसपास होता है उनको हम जनरली लॉन्ग एक्टिंग एक बार 24 घंटे में एक बार लेंटस या दूसरा जो इंसुलिन होता है वो देते हैं. तो अगर मैं बात करूँ वीकली की भी की तो ये भी वैसे ही रहेगा कि अगर किसी का HbA1c 8.5 के आसपास है या किसी का फास्टिंग शुगर 120 के ऊपर जाता है अगर हम नॉर्मली बोलें, क्योंकि नॉर्मल फास्टिंग 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसिलीटर होता है. तो अगर किसी की HbA1c 8.5 है या किसी का फास्टिंग बहुत ज़्यादा रहता है तो उसको जिसको हम लेंटस पहले दे रहे थे जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है उसको बंद करके उन पेशेंट्स को हम वीकली पे ले सकते हैं. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको हम हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में प्रो एंड कॉन्स इसके बताएं कि इसका साइड इफेक्ट काफ़ी डेडली हो सकता है और उनको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उनकी ईटिंग हैबिट्स कैसी है मैम, उनकी एक्टिविटी कैसी है, उनका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है. तो मैं वही कह रहा था कि ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके और उनको हम वीकली जिनका HbA1c 8.5 से ज़्यादा है उनको दे सकते हैं और उनको स्ट्रिक्ट सुपरविजन में भी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंजेक्शन नया है. कुछ साइड इफेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अभी तक ऑब्जर्व नहीं किए गए हों, वो पेशेंट को देने के बाद ही पता चलें. तो ये है कि आप उनको दे सकते हो और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बोला हाइपोग्लाइसीमिया होता है और एक और डेडली साइड इफेक्ट इसका होता है कि कई बार ये हेडेक और बीपी को कम कर देता है जिसको हाइपोटेंशन कहते हैं. तो उसके उस समय भी आपको चक्कर, वॉमिटिंग या वीकनेस लग सकता है. और एक जो जिनको हार्ट की इश्यूज होते हैं, जिनको हार्ट फेलियर होता है या जिनको फ्लूड रिटेंशन मतलब पैरों में सूजन होती है और उनका हार्ट का फंक्शन कम होता है, उनको भी ये वीकली रिकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि ये फ्लूड रिटेंशन या आपकी बॉडी में पानी को बढ़ा सकता है और हार्ट को फेल कर सकता है. इवन जो पेशेंट पहले से हार्ट की बीमारी वाले नहीं है उनको भी हार्ट का रिस्क कर सकता है. तो ये साइड इफेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट और काफी डेंजरस है. तो ये चीजें देख के और अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट को ये सब कुछ नहीं है तो आप वीकली आराम से दे सकते हो और सुपरवाइज कर सकते हो. 100% इसके बारे में ये पता चला है कि जो पेशेंट्स पहले लेंटस पे लॉन्ग एक्टिंग पे थे और उनको अगर हम वीकली देते हैं तो उनका शुगर बहुत बेटर कंट्रोल होता है और पेशेंट की कॉम्प्लायंस बहुत अच्छी होती है मैम कि पेशेंट को लगता है यार मुझे 7 दिन में एक ही बार इंजेक्शन लगाना है.
0: 365 होता है.
1: यस मैम, 365 इंजेक्शन की जगह ओनली 52 इंजेक्शन लगाने तो पेशेंट पॉजिटिविटी फील करता है और वो जो ट्रीटमेंट कॉम्प्लायंस है और परसिस्टेंस है और खासतौर पर जिनको क्रॉनिक डायबिटीज है मैम लंबा और जिनका शुगर लगातार हाई रहता है उनके लिए बहुत कारागर है.
0: बिल्कुल. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका शुगर हाई रहता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो थोड़ा ध्यान रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बॉडी में होता है.
1: और इसमें एक चीज़ और है कि वीकली लगाने के बावजूद भी आपको प्रांडियल इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है. कई बार पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये लगा लिया तब और दूसरा इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो जिनका HbA1c आपने जैसे बात करी, जिनका HbA1c 10 से भी ऊपर रहता है, मैं उदाहरण के रूप में बात करूँ, जिनका 300 से ऊपर शुगर है मैम, तो उनको हम वीकली भी दे सकते हैं. और अगर उनका प्रांडियल मतलब खाने के समय अगर शुगर बढ़ता है तो हम वो इंसुलिन दे सकते हैं जो कि ओनली खाने वाली शुगर को नीचे करते हैं. बात करूँ जिसमें आके आपका हमारे फियास पाता है, हमारा NPH आता है, कई तरह के इंसुलिन होते हैं जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग होते हैं, उनको हम दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ये तो हमने बात कर ली टाइप 1 टाइप 2 की, लेकिन अभी जेस्टेशनल की बात करते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को शुगर हो जाती है और डायबिटीज़ जब होती है, हालांकि वो बाद में कई बार रिवर्स भी हो जाती है, ठीक भी हो जाता है सब कुछ, लेकिन उस दौरान एक स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अभी ये दवाई लेनी है, अभी इस तरीके की डाइट रखनी है, तो क्या यहाँ पर ये काम करेगी?
1: जैसा मैम आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम टेबलेट ज़्यादा दे नहीं सकते हैं और उसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इंसुलिन होता है, जैसा आपने अभी बोला। या तो आप एक दवाई जिसका नाम है मेटफॉर्मिन, वो ओनली दे सकते हो, सेफ है। इसके अलावा अगर किसी को प्रेगनेंसी में जिसकी शुगर ज़्यादा जाती है और जेस्टेशनल डायबिटीज, जैसा कि आपने कहा प्रेगनेंसी के दौरान की डायबिटीज़ है, तो उसमें हम इंसुलिन के अलावा और कुछ दे नहीं सकते हैं। तो मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि एवीकली उनको आप दे नहीं सकते हैं, बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि अगर एवीकली जो है अगर हाइपोग्लाइसीमिया करेगा तो उनको फीटस बच्चे को भी काफ़ी तकलीफ हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे को भी हो सकता है मदर के साथ साथ। और जैसा हमने बोला था कि इसकी हाफ लाइफ 190 घंटे से ज़्यादा है, तो हाइपोग्लाइसीमिया तो लंबा
0: कंट्रोल भी नहीं होगा
1: और काफ़ी घातक हो सकता है। तो बिल्कुल अच्छा सवाल है, अभी मेरे को लगता है प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन को देना बिल्कुल ठीक नहीं है। जनरली हम प्रेगनेंसी में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं और थोड़ी देर में काम करके खत्म हो जाते हैं, प्रांडियल इंसुलिन जिनको बोलते हैं, जितना आपने खाना खाया आपकी शुगर ऊपर गई और जैसे ही हमने वो इंसुलिन दिया और आपकी शुगर कंट्रोल और खत्म हो गया,
0: इतना ही काम वाले दे सकते हैं। असर भी 3-4.5 घंटे,
1: इतने लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हम जनरली दे ही नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल, यानी जेस्टेशनल डायबिटीज में भी इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये आप इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये भी जानना जरूरी है, जो हम आपको बताएंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो हमारी ऐप यानी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर ऐप स्टोर से, और पॉडकास्ट सेक्शन में आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको डॉक्टर सुरेंद्र मीणा के साथ हुई ये सारी बातचीत, जो खासतौर पर से इस 7 दिन में लगने वाली इंसुलिन के बारे में है, आपको मिल जाएगी, और जिसको आप कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में ऐसे शख्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिसे वाकई इस जानकारी की जरूरत हो। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करें हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के बारे में, जो हाल ही में रिलीज हुई है, यानी हाल ही में लॉन्च हुई है, मार्केट में आई है. अ वीकली इसका नाम है और अ वीकली से आप समझ ही गए होंगे हफ्ते में एक बार लगने वाली इंसुलिन, यानी रोज रोज के झंझट से काफी हद तक छुटकारा उन पेशेंट्स के लिए जो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हर चीज जब आती है तो उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं. हालांकि नुकसान ऐसे नहीं है, पर हाँ अगर आप ध्यान ना दें तो ये नुकसान काफी खतरनाक भी हो सकते हैं. अब ये सब आपको मैं नहीं बता रही हूँ, ये बता रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. डॉक्टर मीणा, फाइनली अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब ये इंसुलिन लगाने वाले जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं या फिर कहें वो सारे लोग जो इंसुलिन का इस्तेमाल करने वाले हैं वीकली का, सबसे ज्यादा किन बातों का ध्यान रखें, क्या एहतियात बरतें?
1: सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैम, जो पहले से इंसुलिन लगा रहे होते हैं तो वो इंसुलिन के बारे में भी समझते हैं, इंसुलिन का ऐसे काम करता है और इंसुलिन का साइड इफेक्ट जो हाइपोग्लाइसीमिया में होता है उसको भी काफ़ी समझते हैं. कहते हैं ना कि वो उन्होंने इसको अनुभव किया है और उन्होंने ऑलरेडी इसको यूज़ किया था, दे हैव गॉट ए बैकग्राउंड ऑफ इट इन देयर माइंड बैक ऑफ इट. तो इसमें यह होता है कि अगर उनको हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा तो वो बहुत अलर्ट होते हैं, वो ये भी समझते हैं कि आपको डोज को ऊपर नीचे कैसे करना है,
0: कैसे करना.
1: लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट में जैसा आपने कहा कि एक तो आपको इसमें हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आप डोज को बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप 0.2 सीसी जिसमें कि 140 यूनिट होता है, जैसा मैं बता रहा था कि 1 ml एवीक्ली का 700 यूनिट होती हैं, अगर आपने 0.2 से 0.3 कर दिया तो आप ऑलमोस्ट 40 यूनिट ऊपर चले जाओगे. तो 40 यूनिट ऊपर जाने का मतलब है कि आपकी शुगर 200-250 नीचे गिर जाएगी. तो आपको इसमें सतर्कता बहुत ज्यादा बरतनी है कि एग्जैक्ट डोज जाए, जो डोज है उसका क्वांटिफिकेशन जो है बिल्कुल प्रिसीजन एग्जैक्टली होना चाहिए. अगर 140 है तो 140 ही जाए, इसमें कैजुअल ना हो, इसमें हम लोग लापरवाही ना करें. दूसरा, जैसा मैंने कहा कि आपको इंसुलिन स्टोर जैसे आप औरों को करते हैं वैसे इसका भी स्टोरेज होता है, रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं. और जैसा मैंने कहा कि एक लो बीपी करता है तो ये ध्यान रखें, खासतौर पर कुछ लोग या कुछ महिलाएं जिनका कि जनरली बीपी हाइपोवोलेमिया लो बीपी होता है जिसको हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, और जिनको पहले से हेडेक या माइग्रेन वगैरह होता है उनको हो सकता है हेडेक प्रेसिपिटेट हो सकता है बीपी कम होने की वजह से, और जिनको हर्ट के इश्यूज हैं जैसा हमने कहा वो भी नहीं ले सकते हैं. और खासतौर पर जो अगर मैं कहूँ कि जो यंग जनरेशन होती है, और यंग जनरेशन को भी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर प्रॉपरली करें, क्योंकि कई बार वो ट्रेवल कर रहे होते हैं और उस समय उनके पास खाने की कोई चीज़ भी नहीं होती है, और अगर उस समय उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया और उन्होंने एवीक्ली ले लिया तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि यू शुड डेफिनेटली कैरी समथिंग इन योर पॉकेट ऑल द टाइम. सो इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया यू शुड इमीडिएटली टेक इट.
0: एक्चुअली में
1: ये बहुत जरूरी है,
0: ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, एक हफ्ते तक आपकी बॉडी में एकदम ठीक मात्रा में रहने वाली है, आपकी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से इंसुलिन रिलीज होने वाली है. सो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी शुगर लो हो जाती है आम भाषा में तो आपके पास खाने पीने का सामान होना चाहिए उसको नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि एक हफ्ते तक आपको इस बात का ध्यान तो रखना ही
1: क्योंकि
0: पड़ेगा.
1: जैसे हम देखते हैं कि लेंटस और ट्रेसिबा जो है उनसे ही हाइपोग्लाइसीमिया 24 घंटे काम करता है, डेग्लूडेक उससे हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा होता है, तो आप सोचो एवीक्ली से तो बहुत ही ज़्यादा होगा.
0: बिल्कुल,
1: तो डेफिनेटली वी शुड यूज़ इट, बट देयर शुड बी एवरीबॉडी शुड बी केयरफुल एंड दे शुड बी अवेयर अबाउट.
0: बिल्कुल, यानी सतर्कता के साथ आप इसका इस्तेमाल जरूर करें, और बिना किसी डॉक्टरी सलाह के, ये अवेलेबल भी नहीं होगी यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इसको खरीद भी नहीं सकते हैं, बट अगर कहीं से खरीद भी लेते हैं किसी वजह से, आपको लगता है कि आपको बहुत नॉलेज हो गई है, सो प्लीज इसका इस्तेमाल, इसकी डोज डॉक्टर की सलाह से ही सेट करें, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं. उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको इस हफ्ते में एक दिन लगने वाली इंसुलिन के बारे में ज़रूर मिली है. हमने पूरी कोशिश करी है कि आपके सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सकें. फिलहाल आज प्रोग्राम ऑल इज वेल में इतना ही. डॉक्टर सुरेंद्र मीणा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए.
1: थैंक यू मैम, थैंक यू.
0: तो अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ. तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत.

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव मंच ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा, जहां हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में महारत हासिल की होती है। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया के एक बेहद प्रतिभाशाली और प्रॉमिसिंग यंग सितार मेस्ट्रो अधिराज चौधरी जी। अधिराज ने मात्र 6 वर्ष की आयु में सितार की साधना शुरू की और आज अपनी मेहनत, डेडिकेशन और एक्सेप्शनल टैलेंट के दम पर देश विदेश के कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। ये प्रसिद्ध जयपुर सेनिया घराना से जुड़े हैं और 17 फ्रेट सितार की दुर्लभ परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और संगीत तो मानो इन्हें विरासत में ही मिला है, क्योंकि ये महान सितार वादक पंडित देबू चौधरी जी के ग्रैंडसन हैं और पंडित प्रतीक चौधरी जी के सुपुत्र हैं। वर्तमान में ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत

0: विदुषी श्रीमती अनुपम महाजन जी, श्री नील रंजन मुखर्जी तथा इंटरनेशनली एक्लेम्ड सितार मेस्ट्रो एंड संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी पंडित नीलाद्री कुमार जी के मार्गदर्शन में सितार की गहन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हें CCRT स्कॉलरशिप, MS सुबुलक्ष्मणी फेलोशिप, कला उत्सव में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां और G20 समिट जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर प्रस्तुतियां और लगातार मिल रही सफलताएं इन्हें युवा पीढ़ी के सबसे प्रेरणादायक कलाकारों में शामिल करती हैं। और अपनी साधना, अनुशासन और संगीत के प्रति समर्पण के साथ अधिराज भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अधिराज की इंस्पायरिंग म्यूजिकल जर्नी, रियाज और इनके गुरुओं से मिली सीख और इनके सपनों और संगीत के प्रति इनके जुनून के बारे में। अधिराज जी, सबसे पहले क्रिएटिव मंच में आपका हार्दिक स्वागत है, और संगीत से आपका पहला परिचय कैसे हुआ इस बारे में हमें बताइए।
1: थैंक यू सो मच। संगीत से मेरा पहला परिचय ऐसा ही हुआ कि मैं जब बहुत ही छोटी उम्र से मैं संगीत के ही माहौल में पला बड़ा हूँ। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी क्लासेस लेते थे, वह सितार वादक थे, तो फिर वही मैं सितार के माहौल में पला बड़ा हूँ। तो मैं बचपन से ही म्यूजिक सुनता आ रहा हूँ, तो मुझे इसीलिए म्यूजिक बहुत पसंद आने लग गया बचपन से। और उनके स्टूडेंट्स जब क्लास के लिए आते थे, मैं वहाँ भी बैठता था, मैं सबको सुनता था और मुझे बहुत मजा आता था। तो ऐसे ही करके मेरा संगीत से इंट्रोडक्शन हुआ था पहले।
0: लेकिन जैसे आपने बताया कि आपने 6 वर्ष की आयु से मतलब सीखना शुरू किया, तो हमें तो 6 साल का बच्चा बहुत ही छोटा लगता है कि अभी उसे सही से ABCD वगैरह भी सीख रहा है। और सितार तो एक अपने आप में बहुत शायद मुश्किल इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो कैसे आपने उस चीज को किया, या दादाजी और फादर की डांट से, मतलब क्या था उसके पीछे का आपका एक व्यू पॉइंट?
1: जी, मुझे जैसे कि बचपन से ही म्यूजिक बहुत पसंद आता था छोटी वर्ष की आयु से, और इसीलिए तो मुझे म्यूजिक, मेरे दादाजी और पिताजी मतलब सबने सोचा कि मुझे भी म्यूजिक में कुछ करना
0: सिखाना चाहिए।
1: तो और वो सितार वादक थे, तो उन्होंने मुझे शुरू करवाया सितार से
0: जी।
1: और फिर मुझे सितार, मैंने जैसे ही शुरू किया, मुझे सितार इतना पसंद आया कि मैं बस सितार ही करना चाहता था। बस मैंने यही सोचा कि मैं अब सितार ही बजाऊंगा। और मुझे तो मुझे उसी उम्र से सितार बहुत पसंद आने लग गया, तो मुझे उन्होंने फिर सिखाना शुरू करा। तो ऐसे ही करके मेरी रुचि बढ़ी म्यूजिक में और सितार की तरफ, इसलिए इस उम्र में मैंने सितार बजाना शुरू करा था।
0: जी जी जी। और अभी इस टाइम आपकी कितनी एज है?
1: जी, इस टाइम मैं 17 साल का हूँ।
0: वाओ, मतलब 6 से बहुत साल हो गए आपको स्टार्ट किया। आपका पूरा अभी तक की लाइफ सितार बजा रहे हैं आप, और फुल ऑन इंटरेस्ट के साथ, जैसे कि आप अपने बहुत स्टेज शोज भी करते हैं हमने देखा। सो एक चीज बताइए, आपका कभी वोकल में भी ध्यान गया या इंस्ट्रूमेंट के प्रति ही रुचि थी?
1: जी, मुझे वोकल भी बहुत पसंद है, पर इंस्ट्रूमेंट के प्रति मेरी रुचि ज्यादा है क्योंकि मैंने सितार ही सीखा है। तो जो चीज़ मैंने सीखी है उसके प्रति मुझे सुनना, मुझे सभी चीज़ें सुननी बहुत अच्छी लगती है, पर सितार के लिए मेरी एक अलग ही डेडिकेशन है, मुझे सितार बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
0: अच्छा, तो जैसे हमने देखा है कि गिटार जब सीखते हैं तो उंगलियां काफ़ी मतलब फिंगर पे लगती है, और कहते हैं छिल भी जाता है, तो आपने सितार तो मुझे लगता है और टफ है, तो किस तरीके से आपको भी कभी ऐसा होता था कि बहुत प्रैक्टिस करने से आपकी फिंगर्स ऐसे छिल गई है या कुछ चोट लग गई हो?
1: जी, वैसे तो सितार अगर आपको बजाना है तो उंगलियां छिलनी है, आई थिंक कंपलसरी है, जरूरी
0: अच्छा।
1: है ये उंगली, अगर आपकी उंगली छिलेगी नहीं तो सितार आप बजा नहीं सकते, क्योंकि
0: अच्छा।
1: वो उंगलियों में कैलसेस जो होते हैं, लाइंस जो होते हैं, जो हम इसको बोलते हैं, वो सितार बजाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और शुरुआत में तो किसी को भी दर्द होगा अगर बजाएंगे, जैसे आपने कहा गिटार जो लोग बजाते हैं उनकी उंगलियां इतनी छिलती है, लेकिन सितार में 2 ही उंगली का प्रेशर पड़ता है और तार स्ट्रिंग ज्यादा हार्ड होता है बेसिकली, तो सितार में और ज्यादा डीप छिलती है उंगली, छिलती नहीं है बट डीप लाइन पड़ जाते हैं, एंड शुरुआत में दर्द बहुत होता है। सो इसीलिए सितार काफी डिफिकल्ट है शुरू करना और बजाना भी बाद में, तो शुरुआत में भी काफी दर्द होता है, बट इसको कंटिन्यू अगर करते जाओगे तो दर्द भी कम होता जाएगा और लाइन को मेंटेन करना पड़ता है। तो बजाने के लिए लाइन जरूरी है, कैलसेस जरूरी है उंगली में मेरे हिसाब से। जी,
0: मतलब आपके अकॉर्डिंग, और मेरे ख्याल से गुरुओं का भी यही मानना है
1: जी,
0: ना? सब,
1: जी गुरुओं का भी यही मानना है
0: जी, जी,
1: क्योंकि लाइंस के बिना सितार बजाना बहुत मुश्किल है और उसमें फिर दर्द भी बहुत होगा तो जी।
0: और अधीरा, जैसे चलिए आपने तो 6 वर्ष की आयु से सितार हाथ में लिया अपने, और आपके दादाजी थे आपके गुरु रहे, आपके पिताजी आपके गुरु रहे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो जनरल जैसे कोई व्यक्ति अगर सीखना चाहे, अपने किसी बच्चे को सिखाना चाहे, तो क्या एज होनी चाहिए? मतलब आपके तो घर का माहौल, चलिए हम कह सकते हैं कि वही था बचपन से, तो बट अगर किसी को प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है तो क्या 6 वर्ष में पॉसिबल है?
1: जी वैसे तो सीखने की कोई एज नहीं है
0: जी,
1: आप जब चाहो जिस एज में चाहो आप सब सीख सकते हो, सीख अगर डेडिकेशन है तो सब पॉसिबल है। पर अगर एक स्टार्टिंग में अगर एक कम वर्ष की आयु से आप सीखते हो और अगर आपके घर में म्यूजिक का माहौल है तो एक एडवांटेज मिल जाता है पहले से ही कि आप अच्छे से सीख पाते हो बचपन से। पर मेरे हिसाब से सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए।
0: जी जी जी, जी। बिल्कुल, मतलब कोई एज नहीं है आपके हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में सीखी हुई चीज बहुत अच्छे से हमें याद रहेगी, इंस्टेड ऑफ कि हम अगर 10th 11th 12th की एज में सीखे तो, है ना?
1: यस।
0: ओके, तो संगीत के क्षेत्र में आपके दादाजी और पिताजी दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं हमें पता है, तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का अनुभव कैसा है आपका?
1: जी तो अभी अभी तो मेरी एज उतनी ज़्यादा है नहीं कि मुझे अच्छे से अनुभव हुआ हो और मुझे ज़्यादा म्यूज़िक में मैंने मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट अभी तक जो मैंने अपने ट्रेडिशन को आगे ले जाने की कोशिश रखी है, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी ऐसे ही अपने ट्रेडिशन को ले जाते रहूँ और काफ़ी बड़े बड़े मंचों पे परफॉर्म करूँ, अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाऊँ और अपने दादाजी और पिताजी का नाम रोशन करूँ आगे जाके। तो अभी तक मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है और मैं आगे जाके और अच्छा करना चाहता हूँ।
0: जी अधिराज, और हमारे तो यही विशेष है कि आगे जाकर आप और भी सक्सेसफुल रहें। सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त तो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से वापस आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को अधिराज जी के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सितार वादक अधिराज चौधरी जी। सो अभी तक अधिराज, हमने जाना कि आपने 6 वर्ष की आयु से सितार सीखना शुरू किया। आपके घर का माहौल था बहुत ही अच्छा, जिसके प्रति आपने अपना सितार बजाने की क्रिया को जारी रखा। सो, अब हमें एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपका घराना है जयपुर सेनिया घराना, और गुरु शिष्य परंपरा, इन दो चीज़ों के बारे में हमें बताइए कि घराने एक्चुअल में क्या है, क्योंकि जनरल जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उन्हें नहीं पता कि घराने क्या होते हैं और गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, तो थोड़ा इसके बारे में हमें समझाइए।
1: तो घराने बेसिकली होते हैं स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक, जैसे ट्रेडिशन होता है, जो लोग ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो घराने के लोग ही करते हैं। तो एक घराना बेसिकली एक स्कूल ऑफ म्यूज़िक हो गया
0: जी।
1: जैसे कि बहुत अकेडमिक्स में, बहुत स्कूल, जैसे आपने पढ़े होंगे बहुत सब्जेक्ट्स में स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं साइकोलॉजी में, जैसे वैसे ही घराने भी स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक है। और हर घराने का अलग स्टाइल है म्यूज़िक अप्रोच करने का। कुछ घराने इंस्ट्रूमेंटल घराने होते हैं, सबसे पहले घराने वोकल घराने होते थे, उससे काफ़ी और घराने आए जो इंस्ट्रूमेंटल के घराने भी बने हैं। तो ऐसे ही कर करके बहुत घराने डेवलप हुए हैं और सबका स्टाइल अलग होता है और यूनिक होता है। वैसा ही हमारा घराना है जयपुर सेनिया घराना। तो हमारे घराने की का हमारा घराना एक इंस्ट्रूमेंटल घराना है। तो उसका यूनिक स्टाइल ये है कि हमारे घराने में 17 पर्दे का सितार बजता है
0: जी,
1: 17 फेटेड सितार, और किसी घराने में नहीं है।
0: अच्छा।
1: हमारे घराने का यही यूनिक स्टाइल है 17 फेटेड सितार का, जो जनरेशन से पास होते आया है
0: जी।
1: हमारा घराना मसीद सेन जी से आता है, उस टाइम से लेके अभी तक ये जनरेशन में हमारा ट्रेडिशन पास होता गया है। तो ये हमारे घराने की खासियत है। और जी गुरु शिष्य परंपरा, उसमें जैसे मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे दादाजी और पिताजी से सीखने का मौका मिला, मेरे घर में ही म्यूज़िक का माहौल था, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट उस लिए। तो मैंने उनसे सीखा घर पे, तो मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। और मैं मानता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा म्यूज़िक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप म्यूज़िक करना चाहते हैं तो आपको अपने गुरु के साथ रहना भी पड़ेगा, उनके साथ रहने के साथ साथ

0: अपना टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा म्यूजिक अगर आपको करना है सीरियसली तो, और डिवोशन ऑफकोर्स, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो आपको उस फील्ड में अपने आपको पूरा डिवोट करना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा
1: जी।
0: तो जी यही है,
1: मतलब तन मन धन से अपनी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, रियाज भी करना है और एक सच्चाई के साथ
0: एंजॉय भी करना है, म्यूजिक को सुनना भी है।
1: हाँ, कहीं वो प्रेशर लेकर नहीं करना।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: म्यूजिक तो ऐसी चीज ही नहीं है कि प्रेशर लेकर किया जाए। बिल्कुल। तो आप कितने घंटे रियाज करते हैं?
0: जी वैसे मेरा फिक्स तो नहीं है, जब मुझे अभी मैंने 12th खत्म करा है।
1: अच्छा,
0: तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब रियाज कर लेता हूँ। मैं रोज रियाज करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा फिक्स टाइम नहीं है जी, बट कोशिश करता हूँ कि मैं और आगे अपने टाइम को बढ़ाऊँ रियाज में और मेहनत करूँ। तो जी यही मेरी कोशिश है
1: जी। तो आपने 12th में क्या स्ट्रीम थी आपके पास?
0: जी 12th में मेरे पास ह्यूमैनिटीज थी।
1: ओके, तो साथ में अपना प्रैक्टिस का समय निकाल पाते थे अपने लिए स्कूल के साथ साथ?
0: जी जी, मैं निकाल पता
1: जैसे बोर्ड्स के एग्जाम है तो एक अलग प्रेशर होता है कि मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए।
0: वो तो होता है।
1: हाँ, तो उसी के चलते मैं बोल रही हूँ कि आप कितना समय दे पाते थे अपनी प्रैक्टिस को, रियाज को?
0: उसी के मैं तब शाम के आज में रियाज करा करता था, 7 बजे इस टाइम के अराउंड रियाज करता था
1: जी।
0: तो इस टाइम पे मैं कोशिश करता था रोज 1-1.5 घंटा निकाल लूं रियाज के लिए। तो कोशिश होती थी, कभी कभी नहीं हो पाता था, बट मेरी कोशिश तो थी कि मैं रोज रियाज करूँ फिर भी।
1: जी जी। वैसे कोई भी अगर चीज़ है तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो वोकल है, डांस है या इंस्ट्रूमेंटल है, तो प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो जैसे सितार को ही आपने अपना वाद्य, मेन वाद्य जो चुना है, तो आपको कभी ऐसा ही लगा कि सितार की जगह कुछ और मुझे इंस्ट्रूमेंट चुनना चाहिए था? कभी वो चीज़ मन में नहीं आई आपके?
0: नहीं, ऐसी चीज़ मेरे मन में कभी भी नहीं आई, क्योंकि पहले से ही मैंने जब सितार सीखना शुरू करा था सितार काफ़ी पसंद था, और अब भी मुझे तब से यही लगता आया है कि मैंने सितार को चूज़ करके काफ़ी अच्छी चीज़ करी, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर एंड फादर ने मुझे सितार के बारे में बहुत सिखाया, सितार मुझे सिखाया उन्होंने, तो तब से लेके और हमेशा मुझे यही लगता रहेगा कि सितार मेरे लिए बेस्ट है। मुझे बाकी और इंस्ट्रूमेंट सीखने का बहुत मन है, पर सितार ही मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट रहेगा, क्योंकि सितार की टोन बहुत पसंद आती है और सितार मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल, हमें भी मतलब सुनने में बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ओके, और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है धीराज के आपको थकान है या आपका मन नहीं कर रहा है, मतलब करना चाहते हैं प्रैक्टिस बट एक होता है ना कि अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रहा, कभी होता है ऐसा या कभी भी नहीं होता?
0: वैसे ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि जब मैं सितार बजाता हूँ, जब मैं रियाज करने जाता हूँ, तो इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी
1: जी,
0: क्योंकि पूरा दिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे थकान हो, दिन की थकान हो, काम कुछ भी हो जाए, जैसे स्कूल की थकान हुई करती थी पहले, तो कुछ भी दिन में हो जाए, तो सितार जब मैं बजाने बैठता था और जब मैं अब भी बजाने बैठता हूँ, इट फील्स लाइक थेरेपी फॉर मी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बजा के
1: जी।
0: और उसमें तो मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मोटिवेशन नहीं आ रही बजाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होता है
1: जी।
0: उल्टा मुझे काफी अच्छा लगता है बजाने के बाद। तो जी, यही
1: मतलब एक फ्रेशनेस आती है,
0: फ्रेशनेस आ जाती
1: जी,
0: है
1: जी जी जी। बिल्कुल। सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से वापस आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को अधिराज जी के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: अरे अरे, अरे भैया आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: वेलकम बैक साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सितार वादक अधिराज चौधरी जी। अधिराज, आपने आपकी जो उपलब्धियां हैं हमने बहुत सारी देखी है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर। आपने देश के कई बड़े मंचों पर प्रस्तुति दी है अपनी, तो कौन सा मंच आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों?
1: जी, मेरे दिल के सबसे करीब है यूमैक फेस्टिवल। जब भी होता है मुझे उसमें बजाने का मौका मिलता है, तो वह इंस्टीट्यूशन मेरे दादाजी का है, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था पहले, तो यूमैक फेस्टिवल में मुझे बजाने का जब भी मौका मिलता है, हमेशा मौका मिलता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वह मंच मेरे मेरे दिल के बहुत करीब है।
0: जी। और यहाँ आपने अपने दादाजी की बात की, मैं चाहूँगी एक बार आप उनके बारे में और अपने पिताजी के बारे में अपने मुँह से खुद बताइए।
1: मेरे दादाजी एक गुरु से बढ़कर थे, वो मेंटर थे सबके लिए, उनके जितने भी स्टूडेंट्स आते थे सबको वो अच्छे से सिखाते थे, उनके लिए एक मेंटर थे। और जैसे उन्होंने उनको ज़िंदगी जीनी भी सिखाई और म्यूज़िक भी सिखाया, उन्होंने हमारे घराने के बारे में सबको सिखाया और सब सारी चीज़ें बताई जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और वो एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट होते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, और उनको जब भी वो अच्छा करते थे वो उनकी तारीफ नहीं करते थे, वो कहते थे और मेहनत करनी है हर बार में, ताकि ताकि ताकि वो और मेहनत कर सके स्टूडेंट्स। बट अंदर ही अंदर जब भी उनके स्टूडेंट्स अच्छा करते थे उनको भी अच्छा महसूस होता था, बट वो बताते नहीं थे। पर मेरे साथ मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे साथ कभी स्ट्रिक्ट नहीं थे वो, मुझे बहुत प्यार से सिखाते थे और मैंने ज़्यादा उन्हीं से सीखा है, अपने पिताजी से भी सीखा है पर मैंने दादाजी से ज़्यादा सीखा है। और मेरे पिताजी भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से सिखाते थे। पिताजी का स्टाइल बहुत यूनिक था, उनका लयकारियों पे ज़्यादा ध्यान था, लयकारी, और उनकी स्पेशलिटी थी लयकारी, स्पीड, और उनका अलग ही स्टाइल था, उनका बहुत यूनिक स्टाइल था मेरे पिताजी का। और उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी चीज़ें सिखाई, तो जी सब ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे सबसे सीखने का मौका मिला।
0: जी लिसनर्स, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं अधिराज से, उनके दादाजी और उनके पिताजी के बारे में मैं आपको बता दूं, पद्म भूषण पंडित देबू चौधरी जी अधिराज जी के दादाजी हैं और प्रतीक चौधरी जी इनके पिताजी, तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अधिराज को उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला, उनसे इतनी चीज़ें सीखने का मौका मिला। अधिराज, आई थिंक आप बहुत ही लकी, मैं कहूँगी आपको, क्योंकि अगर शायद वो ना होते तो 6 साल की वर्ष में बच्चा क्या करता है कुछ हमें पता ही नहीं होता।
1: मैं आज जो हूँ, मतलब मैंने सितार की फील्ड में उन्हीं की वजह से आया।
0: जी जी जी बिल्कुल। तो अभी हमने आपके जो उपलब्धियों की बात की, अब एक है G20 समिट, तो इसमें किस तरीके से आप पहुंचे यहाँ पर, इसके बारे में बताइए हमें।
1: G20 समिट में मुझे इनविटेशन, जो वो स्टूडेंट्स को या म्यूजिशियंस को इनवाइट करते हैं, तो मुझे भी ऐसे इनवाइट करा था जी SNA के थ्रू, कि मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं G20 समिट में परफॉर्म कर सकता हूँ। एंड आई फील दैट आई एम वेरी लकी टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे G20 समिट में परफॉर्म करने का मौका मिला। एंड जी,
0: और आई थिंक वो बहुत ही बड़ा स्टेज,
1: बहुत बड़ा स्टेज था, वहाँ पे प्रेसिडेंट्स डिनर पे हमको परफॉर्म करने का मौका मिला और बहुत लोगों से मिला भी मैं, देश के अलग अलग जगह से लोग आए थे वहाँ पे, पूरे इंडिया के लोग थे, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत रेयर रेयर इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे थे वहाँ पे, तो मुझे बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिला और मुझे बहुत नए नए लोगों से मिलने का मौका भी मिला, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी अच्छा था।
0: जी, और इतनी कम उम्र में आपको एक इतना बड़ा स्टेज मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। जी। अधिराज, जहां हमने आपकी उपलब्धियों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो साथ ही आपकी एक दो उपलब्धियां और बहुत ही अच्छी है, जैसे की CCRT स्कॉलरशिप और MS सुब्बुलक्ष्मिनी फेलोशिप, ये दोनों मिलने के बाद आप कैसा आपने महसूस किया और क्या है इसके बारे में थोड़ा हमें एग्जैक्टली बताइए।
1: जी, जब मुझे स्कॉलरशिप और फेलोशिप अवार्ड मिला, तो फिर मुझे बहुत ऑनर्ड और गर्व फील हुआ कि एंड आई फेल्ट वेरी लकी टू गेट दीज अवार्ड्स। एंड CCRT में जब मेरा नाम रजिस्टर हुआ, तब मुझे ज़्यादा पता नहीं था CCRT के बारे में, क्योंकि तब मैं काफ़ी छोटा था, जब मैं 2019 में था CCRT। एंड CCRT इज़ बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यंग आर्टिस्ट को मौका देती है परफॉर्म करने के लिए, सो वो हर साल या वो टाइम टू टाइम में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जहाँ पे वो यंग आर्टिस्ट को बुलाते हैं और साथ में परफॉर्म करवाते हैं, और म्यूजिशियन वहाँ पे सब कुछ होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है और भी चीजें होती है, थिएटर भी होता है.
0: अच्छा.
1: और वो बहुत एक्सपोजर भी देते हैं सब यंग आर्टिस्ट को और लोगों लोग के और वो लोगों से मिल भी सकते हैं सब आर्टिस्ट.
0: मतलब यंग आर्टिस्ट के लिए बेसिकली ये है.
1: जी.
0: Nice, yeah, very nice.
1: मुझे फेलोशिप मिला था उसके लिए आई एम वेरी ऑनर्ड बिकॉज फेलोशिप हर साल 50 स्टूडेंट्स को मिलता है, 50 म्यूजिक स्टूडेंट्स या म्यूजिशियंस को मिलता है फेलोशिप अवार्ड. और वहाँ पे भी सेम, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, वहाँ पे बहुत इंडिया के बहुत बहुत जगहों से लोगों से मिलने का मौका मिलता है. जी.
0: नाइस. आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है आपकी उपलब्धियों की. हम आशा करते हैं ऐसे ही आप और नाम रोशन करिए. सो अब हम बात करते हैं अधिराज, युवा पीढ़ी और शास्त्रीय संगीत. तो आप क्या मानते हैं कि युवाओं को अगर शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित करना हो तो किस तरीके से किया जाएगा?
1: जी, युवाओं को शास्त्रीय संगीत की ओर अगर आकर्षित करना है तो उन्हें शास्त्रीय संगीत पहले सुनना पड़ेगा क्योंकि शास्त्रीय संगीत बहुत गहरा है.
0: बिल्कुल.
1: और अगर जैसे कि अगर इंटरेस्ट आपका बाकी फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में है तो शुरुआत में आपको अगर आप शास्त्रीय संगीत सुनेंगे तो आपको ज्यादा ज्यादा सुनना पड़ेगा अगर आपको आकर्षित होना है तो.
0: जी.
1: और शास्त्रीय संगीत क्योंकि अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप उसमें खो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा क्योंकि शास्त्रीय संगीत, म्यूजिक इज एंडलेस चाहे किसी भी फॉर्म में हो. तो आकर्षित अगर करना है तो आपको सुनना पड़ेगा पहले अच्छे से.
0: अधिराज, आपकी बातें भी ना बहुत गहरी है, उम्र आपकी इतनी छोटी है लेकिन आप इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं. डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को भी आज बहुत अच्छा लग रहा होगा आपका ये इंटरव्यू सुन के. आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान दे रहा है?
1: जी जरूर, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान मिल रही है क्योंकि पहले जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो ज़्यादा लोग यंग जनरेशन जो थी वो शास्त्रीय संगीत को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती थी और म्यूजिशियंस को एक्सपोजर नहीं मिलता था. अभी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत म्यूजिशियंस को एक्सपोजर भी मिल रहा है और सब शास्त्रीय संगीत को सुन भी पा रहे हैं, लोगों तक संगीत पहुंच पा रहा है.
0: जी.
1: तो जी, सोशल मीडिया के थ्रू शास्त्रीय संगीत
0: मतलब पहचान मिल रही है और लोग सुन भी रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल.
1: और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं लोग.
0: जी. सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे अधिराज चौधरी जी के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: दिया प्यार हो गया
1: सच
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अधिराज जी। और अधिराज एक बहुत ही अमेजिंग सितार प्लेयर हैं। सो अधिराज, अगर आप एक सितार प्लेयर ना होते तो आप क्या होते?
1: जी वैसे मैंने सोचा तो नहीं था कि अगर मैं सितार प्लेयर नहीं होता तो क्या होता। अच्छा। पर मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि मैं आगे एकेडमिक्स ही परस्यू करता अगर मैं सितार प्लेयर नहीं होता।
0: जी जी।
1: मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है।
0: अच्छा।
1: शायद वो परस्यू करता।
0: जी। और सितार के अलावा आपकी और क्या हॉबीज है? जैसे अभी तो जो भी आपका फ्री टाइम होता होगा आप सब अपना रियाज में ही देते होंगे, बट उसके अलावा क्या और हॉबीज है वो हम जानना चाहेंगे।
1: जी बाकी मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो अच्छा। मुझे स्पोर्ट्स देखना भी बहुत पसंद है।
0: तो स्पोर्ट्स में आप क्या खेलना पसंद करते हैं?
1: मुझे क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता भी हूँ और देखता भी हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है।
0: जी
1: जी।
0: नाइस। और अधिराज एक लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे जो यंग पीढ़ी के लोग सितार सीखना चाहते हैं या संगीत को अपना आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
1: जी उनके लिए मैं वैसे मैं संदेश देने के लिए मेरी उम्र काफ़ी छोटी है, बट फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको सितार सीखना है यंग पीढ़ी को, तो फिर आपको पहले एक आप किसी भी गुरु के पास जाइए, क्योंकि आप खुद से सीखने की कोशिश मत करिए।
0: जी।
1: क्योंकि एक गुरु ही है जो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: जी। तो आपको एक अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए और उसके बाद आपको जो भी गुरु जी बताए आपको उसमें अपना ध्यान से आपको उसमें ट्रेन करना चाहिए और अपने टेक्निक्स सही करने चाहिए और आपको सुनना चाहिए म्यूजिक अच्छे से। सुनना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: बजाने के साथ साथ सुनना भी बहुत जरूरी है। तो जी आप अगर म्यूजिक सुनेंगे ज्यादा तो आपको और आइडियाज आएंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा।
0: जी आई होप जो लोग सुन रहे हैं और म्यूजिक में अपना करियर चुनना चाहते हैं उन्हें अधिराज की ये जो उन्होंने सजेस्ट किया है उसे फॉलो जरूर करेंगे। सो अधिराज अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ करेंगे, ठीक है? सो आर यू रेडी?
1: जी जी।
0: ओके। सुबह का राग या शाम का राग?
1: वैसे मुझे सारे राग पसंद है, चाहे सुबह के हो कि शाम के हो, बट मैं शाम को रियाज ज्यादा करता हूँ, इसलिए मेरा शाम का राग।
0: जी। दादाजी पिताजी या गुरुजी की डांट सबसे ज्यादा किसकी पड़ी है डांट आपको?
1: दादाजी की।
0: अच्छा। मंच पर जाने से पहले एक आदत?
1: मैं मंच पर जाने से पहले मैं उस दिन रियाज नहीं करता, उस दिन मुझे फ्रेश रहना होता है कि सीधा जाके स्टेज पे ही या उससे पहले थोड़ा वार्म अप कर लूं, पर उस दिन मैं रियाज नहीं करता हूँ।
0: वाओ। पसंदीदा कलाकार कौन है आपके?
1: जी मेरे दादाजी।
0: जी
1: मुझे बहुत कलाकार पसंद है पर मेरे दादाजी मेरे फेवरेट।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक शब्द में संगीत को अगर डिफाइन करेंगे किस तरीके से?
1: डेडिकेशन।
0: वाओ। तो थैंक यू सो मच अधिराज, आपके साथ आज बात करके बहुत ही अच्छा लगा हमें। और जाते जाते एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपके क्या आगे गोल्स हैं, क्या लक्ष्य हैं, किस तरीके से आप करेंगे उनको?
1: जी आगे तो अभी मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स तो अभी ऐसे तो मैंने सोचा नहीं है, पर मुझे बस यही है मेरे दिमाग में कि मुझे अपने घराने का ट्रेडिशन आगे लेके जाना है। मुझे आगे सितार परस्यू करना है और आगे अपने घराने को लेके जाना है और बहुत मेहनत करनी है, बस यही है मेरा गोल।
0: बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आपकी एक सोच और आप बहुत ही अच्छे आपने जो हमारे लिसनर्स को आज सीख दी डेफिनेटली वो अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे। और इतनी छोटी उम्र, सबसे बड़ी बात इतनी छोटी उम्र में इतना ठहराव, दिस इज अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच अधिराज, आपके साथ आज हमें बहुत ही अच्छा लगा, आप हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हमारे स्टूडियो में। तो सो थैंक यू सो मच। सो लिसनर्स अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी एक ऐसे ही कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। ये शो हमारा बहुत खास अपने आप में हो जाता है, क्योंकि हर बार यहां पर हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। उन एक्सपर्ट्स से हम लोग ढेर सारी बातें करते हैं, हम कोशिश करते हैं जानने की स्किल सेट्स के बारे में, हम कोशिश करते हैं उनकी एक्सपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर पाएं, सो दैट आपके पास बाय द एंड ऑफ दिस शो कुछ वैल्यूज हो। आज हमारे साथ यहाँ पर दो बहुत खास मेहमान, बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं। ये दो एक मूवी के कास्ट हैं, मूवी के स्टार कास्ट हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक सज्जन हमारे साथ हैं जो डायरेक्टर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, दूसरे हमारे साथ हैं जो कि एक्टर हैं। आइए बात करते हैं दोनों से, लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे हरीश जी और जावेद जी का। हरीश जी, स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
1: जावेद जी, स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
1: मैं शुरुआत करना चाहूँगा आप दोनों के डोमेन के बारे में। हमारे लिसनर्स को बताइए आप लोग क्या करते हैं, क्या प्रोफाइल है आपका, जितना आप बता सकते हैं प्लीज।
2: मैं बेसिकली एक्टर हूं और लिखने की कोशिश करता हूं, काफ़ी कुछ लिखा है अपनी फीलिंग्स, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या एक्चुअली में होता है क्या लाइफ में। तो क्योंकि मेरे जितने भी सॉन्ग्स हैं वो मीनिंगफुल रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप कई लोग राइटर्स को मैंने देखा लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, देखिए सभी अच्छा लिखते हैं, बट मुझे लगता है अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसका मतलब पता होना चाहिए कि आप क्या दे रहे हैं। तो ये मेरी कोशिश है कि अच्छा लिखने की।
1: सो बेसिकली आप एक राइटर हैं और एक एक्टर हैं
2: जी,
1: और फरीदाबाद से हैं
2: जी।
1: सो अमेजिंग। जावेद जी।
3: जी सर, मैं इस मूवी में सेकंड पार्ट मैंने किया है, सेकंड लीड की है मैंने इसमें। इससे पहले भी हम मूवी कर चुके हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग कर चुके हैं।
1: ओके
3: जी। और ये मूवी करने में हमने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी लगन से हमने काम किया है इसमें, और मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसको देखें और हमें प्यार दें
1: जी। जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, इससे पहले क्या करते थे आप?
3: इससे पहले तो सॉन्ग किए हैं मैंने और मूवी भी की है।
1: तो बेसिकली आप एक एक्टर हैं
3: जी,
1: फरीदाबाद से ही हैं आप
3: जी। जी,
1: सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। हरीश जी, बात करना चाहूंगा आपकी मूवी के बारे में। दोस्तों, ये मूवी आ रही है, उसका नाम है वाकिफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म है, लव ट्राइंगल और थ्रिलर फिल्म है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फरीदाबाद से ही हैं और मूवी यहाँ पर आ रही है फरीदाबाद में, आज ही हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं। पैन इंडिया मूवी लगने वाली है, तो बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग जाकर देखिएगा ज़रूर। लेकिन थोड़ा समझते हैं मूवी के बारे में, मुझे बताइए क्या है वाकिफ?
2: देखिए, वाकिफ क्या है, एक ऐसी लव स्टोरी है जो स्टार्टिंग में दर्शकों को लगेगा कि हाँ बिल्कुल सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाएगी तो परत दर परत आपको चीज़ें खुलती चली जाएंगी, और आप एक टाइम पे ऐसे शौक, पहले 10 मिनट के बाद ही आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, आप चल रहे हो एकदम सीधा चल रहे हो, और सीधा चलते चलते आपको टर्न आ जाता है, तो जैसे शॉकिंग हो जाते ना, तो वो चीज़ है हमारे इसके अंदर। और सबसे हमारी खास बात इसमें यह है कि हमने बहुत अच्छा म्यूजिकल फिल्म बनाने की कोशिश की है, जिसमें आपका हमारे जो मेल सिंगर हैं, आपका अमजद बागड़बा हैं, जिनका भी बहुत ही फेमस सॉन्ग हुआ था फुक फुकरे करके, फुकरे फिल्म का, तो दोनों फिल्म फुकरे का उन्होंने टाइटल ट्रैक किया है। इसके अलावा फिल्म आई थी अभी जिसमें सॉन्ग था गदर 2, सॉन्ग था अपना चलते रिश्क में पड़ जाते हैं, तो उसकी जितनी रुबाइयाँ की उन्होंने की है, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो हमारे इसमें जितने भी मतलब मेल पार्ट सॉन्ग हैं उन्होंने किया है, और फीमेल हैं हमारे आपका संचिता भट्टाचार्य, जो पहले सारे का मापा लिटिल चैंप्स थी, तो उन्हीं से किया है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है उनकी, तो अच्छे सॉन्ग करने की कोशिश की है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप फिल्म देखने जा रहे हो, जब तक आपको फील ना आए फिल्म के अंदर, जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ ये तो मेरी कहानी चल रही है, तब तक मज़ा नहीं आता। क्योंकि हम जब फिल्म देखने जाते हैं 3 घंटे बैठते हैं सिनेमा के अंदर, तो सारी चीज़ें भूल के आप घर में फिल्म देखते हैं, आप कभी कहीं से आवाज़ आ रही है, कभी कहीं से, कभी कुछ है, लेकिन जब आप सिनेमा में देखते हैं तो आपको पूरा फोकस फिल्म पे होता है, और जब आपको फिल्म देखने में मज़ा आता है तो आप 3 घंटे के लिए दुनियादारी भूल जाते हैं। तो हमारी वही कोशिश है कि 3 घंटे के लिए लोगों को दुनिया से कनेक्ट ना होने दें और अपनी फिल्म से कनेक्ट कराएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। क्या थॉट था, कैसे आइडिया ये पनपा वाकिफ का?
2: हाँ, वाकिफ का एक्चुअली क्या है, मैंने अभी लास्ट फिल्म की थी हमारी समायरा, रिलीज हुई थी 2022 में, उसके बाद ये जो इसके राइटर हैं त्रिलोक चंद, कंटिन्यू मेरे कांटेक्ट में थे। तो लास्ट टाइम हम मुंबई में थे तो उन्होंने मुझे दो तीन स्टोरियाँ सुनाई, लेकिन ये स्टोरी मुझे मतलब बिल्कुल कनेक्ट कर गई दिल को। तो मैंने उनसे बोला कि हम जब भी काम करेंगे साथ में इस स्टोरी पर काम करेंगे। पहले हम इसको वेब सीरीज का प्लान कर रहे थे, तो मैंने उनसे दो तीन बार सुना और उनके कुछ पॉइंट्स थे उन पर डिस्कस किया कि इसको अगर हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा। तो उनको अच्छा लगा सजेशन कि हाँ अगर हम इसको बड़ी फिल्म करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब बेसिकली उसमें एक करेक्टर ऐसा है कि आपको लगेगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सडन आपको पता लगता है इसका तो एक ये रूप भी है। तो वो चीज़ मुझे बहुत कनेक्ट की।

0: ओके जावेद जी, आप बताइए फिल्म के बारे में कुछ।
1: फिल्म के बारे में मैं अगर बोलूँ तो इस मूवी में जो मेन लीड है हीरो, उसका फ्रेंड हूँ मैं और बहुत क्लोज फ्रेंड दिखाया गया हूँ इस मूवी में। हमने काफ़ी मेहनत की है और 17-18 शहरों में हमने शूट किया है और मूवी के जो कलाकार हैं ज़्यादातर हमारे फरीदाबाद के हैं, कुछ कोलकाता के हैं, मनोज बख्शी जी भी हैं इसमें जो बजरंगी भाईजान में थे, पुलिस वाले बने हुए थे, वो भी हैं इसमें और उनका भी बहुत अच्छा काम है। तो उनके साथ काम करके हमें कुछ सीखने को मिला तो हमें लगा कि ये बेस्ट है। तो आप लोगों को भी, ऑडियंस को, जब ये मूवी देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया है जिससे हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मूवी को देखें और जो हमारी गलतियां हैं उन्हें हमें आप लोग बताएं जिससे हम आगे और बेस्ट कर सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ऑल राइट, हम दोस्तों लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपनी शो कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कास्ट बैठी हुई है वाकई फिल्म की और जो हम बात कर रहे हैं जावेद जी और हरीश जी के साथ, आगे और डिस्कस करेंगे क्या प्रोसेस होता है एग्जैक्टली, हाउ इट गोज, हाउ टू फाइंड प्रोड्यूसर्स, हाउ एग्जैक्टली टू मेक श्योर दैट दिस इज समथिंग रिलेटेबल एंड यू शुड वॉच इट। वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक मार्ज सागर शो, यहाँ पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ यहाँ पर वाकिफ फिल्म की कास्ट बैठी हुई है और हम हरीश जी और जावेद जी से बात कर रहे हैं। अभी तक हमने समझने की कोशिश करी एग्जैक्टली ये मूवी क्या है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। आइए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। हरीश जी, बात करना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो फिल्म बनाना चाहते हैं अपनी। प्रोसेस क्या होता है एक फिल्म बनाने का? फॉर एग्जांपल, आपको एक थॉट अच्छा लगा, अब उसको वहां से लेकर के पर्दे तक पहुंचाने तक का पूरा प्रोसेस मेरे को जानना है।
1: देखिए, अगर आपको कोई थॉट लगा अच्छा तो आप उसको पहले वन लाइन स्टोरी आप लिख सकते हैं। वन लाइन में क्या है कि आपको जो मेन मेन पॉइंट लिखे जाते हैं, लेकिन फिल्म को सजाया कैसे जाता है फिल्म पे एक एक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टोरी लिखी और हो गया कंप्लीट। आपको स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स वगैरह सब कराने पड़ते हैं, जिसके लिए एक अनुभवी आपको राइटर की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी चीज़ों को सेम उतार सके। जब आपको चीज़ें हो जाती है, उसके बाद फिर आपको रिवाइज करते हैं कि हमारा कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं रहा कि जिसमें जो दर्शकों को पसंद ना आए। तो वो क्या होता है, हमारी फीलिंग्स कई कई बार बहुत हाई चली जाती हैं, लेकिन हमें दर्शकों के उससे भी देखना पड़ता है कि क्या, अगर मैं एज ए दर्शक हूँ और देखना है मुझे, तो मुझे क्या पसंद आएगा और क्या कनेक्ट करेगा मेरे दिल को। तो जब ये चीज़ें अच्छी हों, अगर अच्छी स्टोरी है आपके पास, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है अच्छी कास्ट की। जैसे करेक्टर है, एक मान लो कि इनोसेंट करेक्टर है और आपने उसमें कोई एरोगेंट करेक्टर डाल दिया तो वो नहीं चलेगा। अगर इनोसेंट है तो आपको फेस देखना पड़ेगा कि कई डायलॉग्स नहीं होते, आपका सीन बिना कुछ बोले ही आपका करेक्टर बोल जाता है, तो आपको वो देखना पड़ता है। एक कास्टिंग डायरेक्टर अगर अच्छा है तो आपको ना कास्ट करेगा कि हाँ ये करेक्टर इसके लिए परफेक्ट है। अगर आपकी प्रॉपर कास्टिंग हो जाती है, फिर आपको एक अनुभवी डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा कुछ होने के बाद फिर आपको एक एक आपकी लोकेशंस हैं, आपको लोकेशन से कहाँ कहाँ क्या क्या आपका सीन क्या मांग रहा है। जैसे हमारा एक सॉन्ग था, उसके लिए मैंने 3 महीने वेट किया। मौसम जैसे बारिश आएगी, लास्ट जून में हमने इसका शूट किया था गोवा में। पहले हमारा प्लान था कि हम इसको इधर ही शूट करेंगे स्टूडियो में, लेकिन सारे लोग कह रहे कि नहीं सर कर लो स्टूडियो में कर लो। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं करना, थोड़ा रुको, वेट करते हैं मौसम का। मौसम जैसे चेंज हुआ, जून में बारिश स्टार्ट हुई, तो पूरा गोवा खाली पड़ा था, हम ही पूरा गोवा में घूम रहे थे। तो हमने गोवा में शूट किया, बहुत खूबसूरत गाना बना वो, और उसकी लाइन है वहाँ तुम चले आना जहाँ ख्वाबों की बारिश हो। तो जहाँ ख्वाबों में बारिश हो और अगर बारिश नहीं है तो फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए हमने उसका, देखो कई बार क्या होता है, क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, कहते हैं थोड़ा मूडी होते हैं, अगर आपको फील नहीं मिल रहा है तो फिर मज़ा नहीं, जब हमें मज़ा नहीं आया तो दर्शकों को कैसे मज़ा आएगा। तो मेरा मानना क्या है कि पहले हमें खुद को मज़ा आना चाहिए। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे हमने फिल्म की कंप्लीट और हमने प्रीव्यू रखा, मैंने पूरी कास्ट को, पूरे जो भी टेक्नीशियन सबको बिठाया, हमने प्रोजेक्टर लगाया, फिल्म चलाई स्टूडियो में अपने, और मैंने उनको बोला आप ये मत सोचो कि मुझे बुरा लगेगा, आप ये सोचो कि आप सिनेमा में फिल्म देख रहे हो, और अगर आपको कुछ चीज़ ख़राब लगी तो आप डायरेक्टर को किस वजह से गाली देना चाहोगे। आप पूरी फिल्म देखो, जहाँ आपको पॉइंट लगे अपना पॉइंट लिखो और आप वहाँ पे मुझे बोलो। तो टचवुड ये रहा कि सबने फिल्म देखी और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर हमारा वीक पॉइंट हो सकता है। तो इससे क्या होता है, जब हम अच्छी चीज़ बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। और देखो, गलतियाँ हम सभी करते हैं, आप जितने मर्जी बड़े अपना मेकर हो, लेकिन गलतियाँ करते हैं और हम उन गलतियों से सीखते हैं। कि जब तक हम करेंगे नहीं तो गलती कैसे करेंगे, नहीं तो कैसे पता लगेगा कि हमने क्या किया है। उसके लिए भी तो काम करना पड़ेगा ना, गलती के लिए। अब काम ही नहीं करेंगे तो गलती भी कैसे करेंगे। तो इसलिए कोशिश है कि ये चीज़ें करनी चाहिए। अब जब हमने पूरी फिल्म मेकिंग कर ली, उसके बाद अच्छा आपका एडिटर है, एडिट किया, उसके लिए उस बीच में आपका अच्छे सॉन्ग सेलेक्शन, कि आपके थीम के अकॉर्डिंग आपके सॉन्ग्स क्या होने चाहिए, अच्छे राइटर हों। अब ये कि ऊपर वाले का कर्म है कि मेरे को उसने थोड़ी अच्छी लिखने की ताकत दी है तो लिख लेता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ हमने इस पर की, कंपोजिशंस की, उसका म्यूजिक वगैरह सारा कंप्लीट किया, फिर मिक्स विक्स करके सारा कुछ, उसके बाद फिर हमने उस सॉन्ग्स को कंप्लीट करने के बाद फिर हमने उसको शूट किया। अब शूट हो गया तो फिर एडिट वेडिट कंप्लीट करने के बाद हमने पूरी फिल्म को इकट्ठा किया, एडिट हो गई, सब कुछ हो गया, फिर हमने उसका प्रीव्यू रखा। प्रीव्यू के बाद फिर हमने सोचा कि अब हम इस पर काम कर सकते हैं आगे। फिर उसका प्रोसेस होता है, फिर आप सेंसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेंसर के बाद फिर यहाँ देखते हैं क्या सेंसर आपके, आपने कुछ ऐसा तो नहीं बनाया कि आपकी फिल्म में कट लगे। तो इसका भी हमें बहुत अच्छा वो रहा कि हम, मेरी फिल्म में कोई कट नहीं लगा। इवन जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे, उनसे मेरी मीटिंग हुई, जब उन्होंने पूरी फिल्म देख ली तो मुझे अंदर बुलाया, तो कह रहे सर आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं इसके? मैंने हाँ मैं ही हूँ। तो कह आपने कहाँ पे काम किया है इसका? तो मैंने कहा मैंने तो दिल्ली NCR में किया है, मैक्सिमम गोवा और मुंबई शूट किया है।

0: चीज़ अच्छी चलती हैं तो वो भी फैलती हैं, और ख़राब चलती हैं तो वो भी फैलती हैं। तो वहाँ पे जितने भी लाइन के लोग होते हैं वहाँ देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडियो में कोई ना कोई एक देख के गया, अच्छा यार उसका ये सीन बड़ा अच्छा लगा, तो उसने दूसरे से डिस्कस किया, तो ये चीज़ें करके फिर घूम फिर के हमारे पास ही आ जाते हैं वापस, यार इसने ऐसा किया था और आपको ये चीज़ लगी। तो इससे मतलब अच्छे मतलब व्यूज़ आ रहे हैं उन लोगों के, मतलब अच्छा लग रहा है, तो हमें भी मज़ा आ रहा है उनके। और एक होता ना कि अंदर गुदगुदी सी हो रही है कि यार देखो रिलीज होगी तो देखते हैं क्या होता है लोगों का।
1: बहुत सुंदर। प्रोड्यूसर कैसे ढूंढे जाते हैं? ये सारी बात तो हो गई कि चलो हमने मूवी को लिख लिया, हमारे पास आइडिया अच्छा है, हमने स्क्रीन प्ले लिख लिया, उसको स्टोरी लाइन हमारे पास कन्फर्म है, हमने रैकी कर ली, लोकेशन हमने ढूंढ ली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पैसा जो डालेगा, बिना पैसे के मूवी नहीं बन सकती। प्रोड्यूसर कैसे ढूंढे जाते हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सच बताऊँ ना, मैंने प्रोड्यूसर नहीं ढूंढा इसके लिए, क्योंकि मैंने खुद प्रोड्यूस किया। उसका कारण है कि मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई गया था तो वो मेरा 7-8 डेज का मतलब टूर था मेरा। वो पहली बार में मुझे समझ में आ गया था कि अगर आपको कुछ करना है ना तो अपने आप को स्टैंड करो पहले, तब आना। देखिए क्या होता है, बेसिकली जो न्यू कॉमर्स होते हैं यहाँ से बड़े बड़े सपने लेके मुंबई चले जाते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, बट उनको हकीकत में भी रखना चाहिए। देखो क्या होता है, मुंबई ऐसा नहीं है कि आपको बांह फैलाए खड़ा है कि आओ मैं आपको एक्टर या एक्ट्रेस बना दूँ, ऐसा नहीं है। वहाँ आपके लिंक होने चाहिए सबसे पहले। अगर आपके लिंक हैं तो आपको काम मिल सकता है, लेकिन वो भी छोटा मोटा काम मिल सकता है। आपको डायरेक्ट कोई कास्ट लीड में नहीं करेगा, ये कड़वा है मगर सच यही है, क्योंकि मुझे पहली बार में समझ में आ गया था। क्योंकि मैंने पहले दिल्ली लेवल पर काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए, फिर मुंबई में ऑडिशंस दिए। ऑडिशंस में आपको क्या, जो ऑडिशंस लेते थे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स आज खड़े होते थे, स्टैंडिंग ओवेशन देते थे कि बहुत अच्छा किया, लेकिन काम पे नाम, काम के नाम पे कुछ भी नहीं। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ऑडिशन नहीं दूंगा और किसी से काम मांगूंगा भी नहीं। मैं अपने आप को वैसा बनाऊंगा कि मैं लोगों को काम दे सकूँ, जो सच में टैलेंटेड लोग हैं उनको काम दे सकूँ, जो ब्रेक मुझे नहीं मिले मैं लोगों को दे सकूँ। और अपना था कि मेरा था बचपन से कि मुझे एक्टर ही बनना है। तो अभी काफ़ी सारी, देखो अगर आपकी सफलता बड़ी चाहिए तो स्ट्रगल भी बड़ा ही होगा, और मैं इसको स्ट्रगल की तरह भी नहीं देखता। एक मतलब आपकी एक सफ़र है ज़िंदगी का, जिसको आपको कैसे जीना है। हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कभी भी लाइफ ना आसान नहीं है, और अगर आसान होगी तो फिर वो लाइफ ही नहीं है। आप क्या कहानियाँ सुनाओगे लोगों को अगर आपकी आसान लाइफ हुई तो? अभी क्या है कि मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, मतलब खुद को आपकी कहानी से प्रेरणा मिलती है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो ये आपके लिए मतलब ऊपर वाले ने आपको चुना है उस करने के लिए कि हाँ आप अच्छा करो ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो सकें।

0: नहीं हो तो डॉक्टर को बताइए, तो कुछ कर नहीं सकता, तो इसको ठीक है साइड में खड़ा कर दो। तो अगर लाइफ आपसे करा रही है चीज़ें तो इसका मतलब है कि उसको पता है कि आप कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें हम लोग ये चीज़ें करते हैं। अब प्रोड्यूसर, आपने कहा कि प्रोड्यूसर कैसे ढूंढा जाता है, देखिए कई लोगों के पास है, खुद के पास होता है, कई लोग ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढने का क्या, अभी जैसे मेरी कई अपना OTT प्लेटफॉर्म से मेरी बात चल रही थी, उनका सबका होता है कि आपके पास स्टार कास्ट क्या है। अगर आपके पास स्टार कास्ट अच्छी है, जिसका फेम है, तो आपको इजी प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोस्टली न्यू कास्ट है तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने दूसरा ही चुना कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मान लो कि मेरे पास स्टार कास्ट है तो ठीक है, मिल जाएंगे प्रोड्यूसर्स। लेकिन कई लोग क्या होता है, जिनको फिल्म की नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नहीं होते, तो वो क्या, अगर पैसा लगा दिया पर आपने वो चीज़ भी आप करवाओगे जो चीज़ें नहीं है टेक्निकल अच्छी, लेकिन मैं खुद का पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या अच्छा है, तो जो अच्छा है मैं वही करूँगा, ऐसा नहीं है किसी प्रोड्यूसर के प्रेशर में आके मैं कुछ भी कर दूँगा। तो ये मैंने दूसरा रास्ता, मुश्किल है लेकिन वो चुना, तो ये चीज़ है। लेकिन जो नए लोग हैं जो नहीं कर सकते, तो उनको यही है कि आप अपने आप को पहले स्टैंड करो, अपने आप को प्रूव करो कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप वास्तव में टैलेंट हैं तो अच्छे टैलेंट को भी ब्रेक मिलता है, ऐसा नहीं है। और मेरा तो जितने भी लिसनर्स हैं आपके सुनने, उनको यही है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप मेहनत करिए, अपने आप को स्टैंड करिए, प्रूव करिए और सही प्रोडक्शन हाउस तक जाइए। देखिए आपके पास ना लाइफ में दो ऑप्शन आते हैं, या तो होता है शॉर्टकट या होता है लॉन्ग कट। अगर आपने जल्दी करना है, जल्दी का मतलब जल्दी की चीज़ें कभी भी ना आपको ईमानदारी से नहीं मिल सकती, ये सच है। लेकिन अगर आप पे खुद पे कॉन्फिडेंस है और पेशेंस है आपके अंदर, तो आप लंबा रास्ता चुनिए। लंबा रास्ता में क्या है कि अगर आप मंजिल जरूर थोड़ा धीमे पहुंच सकते हैं, लेकिन जो आपका सफर का मजा रहेगा ना, उसको कोई बयान नहीं कर सकता। और लेकिन आप पहुंचोगे जरूर।
1: बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत बात आपने बोली हरीश जी कि अगर एक एक्टर अच्छा है बहुत, तो उसको हमेशा मुश्किल रोल देने की कोशिश की जाती है, रीजन बीइंग कि उसको निभा लेगा, इसलिए शायद लाइफ जो आपको देती है, समटाइम्स द डिफिकल्टीज आर नॉट इवन द डिफिकल्टीज, दीज आर योर हिडन लॉक्ड पोटेंशियल्स दैट यू गॉट अनलॉक इट। सो ये बात हरीश जी यहाँ पर बहुत सुंदर अभी हमें बताई। लेते हैं और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे थोड़ा सा हम एक्टिंग के प्रोसेस को समझेंगे, थोड़ा सा हम राइटिंग के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

0: Once again, welcome back. मैं हूं आरजे सागर. शो यहां पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ. आप हमारे साथ जुड़े हुए रेडियो 107.8 एफएम पर. हमारे साथ यहां पर वाकिफ फिल्म के कास्ट मौजूद हैं. हरीश जी हमारे साथ हैं, जावेद जी हमारे साथ हैं, और इन दोनों से बहुत सारी बातें अभी तक हमने कर ली हैं. आगे और बहुत सारी बातें हैं जो करनी है. अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, मैं राइटिंग के बारे में बात करना चाहूंगा. जब मैं टर्म यूज करता हूँ राइटिंग, मेरे दिमाग में कहानी है, लेकिन वो कहानी बहुत वेग है. अब मुझे उसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है, उसका क्या प्रोसेस होता है?
1: देखिए, कोई भी कहानी है, पहला नंबर तो कोई भी कहानी वीक नहीं होती. हर कहानी अपने आप में एक स्ट्रेंथ रखती है. डिपेंड करता है कि हम उसको कितना डीप थिंकिंग रख सकते हैं उसके बारे में. क्योंकि जब तक आप उसकी डीपनेस में नहीं जाएंगे, जब तक अंदर नहीं जाएंगे, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा. क्योंकि आप उस करेक्टर का, अगर मान लो आपने कोई करेक्टर बिल्ड किया है, तो उस करेक्टर को आप अपने आप को रोक दो, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता. जिस दिन आप ये सोचेंगे कि ये करेक्टर मैं हूँ और मुझे कैसे जीना है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपको कर. और फिर क्या होता है, जितने चैलेंजेस होते हैं ना, उतना ही निखार भी आता है आपके अंदर. कोई स्टोरी अगर आपने लिखी है कि सिंपल जी, देखिए सिंपल तो आपने देखा होगा, जब हॉस्पिटल के अंदर होते हैं आप, वेंटिलेटर पे होते हैं, तो एक लाइन वहाँ पे चल रही होती है हार्ट बीट की, वो अगर वो सीधी चली गई तो इंसान खत्म हो जाता है ना. तो उसी तरीके से जैसे जितना वो अप एंड डाउन चल रही है, तो उतना मतलब आपकी हार्ट बीट चल रही होती है. तो वैसे ही राइटिंग का है, अगर आपने स्मूथ लिख दी तो ना तो दर्शकों को मजा आएगा और ना आपको खुद को मजा आएगा. तो जितनी आपके उतार चढ़ाव होंगे कहानी में, आप देखो कई बार चलता है ना, बहुत चीज़ें स्मूथ चल रही है, एकदम से अटैक ब्रेक आ गया, तो अगर ये क्या हुआ. आपने बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे, सब कुछ चल रहा है, उनका जो ब्रेक लेंगे बीच में, वो ऐसे मौके पर छोड़ देंगे कि आपको देखना ही पड़ेगा कि उसके बाद क्या, ब्रेक के बाद क्या. तो वही कहानी का मेन वो होता है कि आप लोगों को अंदर उनकी जिज्ञासा कितनी जगा के रखते हैं कि अब क्या होगा, नेक्स्ट सीन में क्या होगा. जहाँ आपने ये चीज़ जगा ली, तो समझ लो कि आप एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं. उसके बाद फिर आपको जैसे अपना स्क्रीन प्ले डायलॉग्स करते हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, यार आप ये चीज़ करो, इसमें ऐसा करेंगे. क्योंकि हमारे जो इस फिल्म के जो राइटर हैं त्रिलोक चंद जी, उनसे मेरी काफ़ी डिस्कशन हुआ, मेरे क्लोज फ्रेंड है काफ़ी, तो उनसे काफ़ी डिस्कस होता था कि यार इसको ऐसे काफ़ी सारे सीन हमने चेंज किए जैसे उन्होंने लिखे, तो मुझे लगा यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसको आप मेरे तरीके से ऐसे लिखो. तब उनको मैंने समझाया, पहले हमारे थोड़ा सा उस पर होता था, बहस भी होती थी कि यार नहीं ऐसे नहीं, मैंने ऐसा लिख दिया तो ऐसा हो गया. तो मैंने कहा ये आपने लिखा, ये आपने अपना थॉट लिखा है, अब एज ए व्यूअर्स मुझे देखना है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ. तो फिर उनको समझ में आया, फिर बाद में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करते हैं. तो ये जब पूरी स्क्रिप्ट लॉक हो जाती है, फिर उसको आप 2-3 बार रिवाइज करते हैं, एज ए राइटर नहीं, एज ए व्यूअर्स, क्या हमें ये चीज़ में ख़राब लगेगा या कुछ ऐसा पॉइंट है तो ये सही लगेगा नहीं लगेगा. जैसे मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, एक फिल्म आई थी वो 7 दिन, जिसमें अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह थे. तो उसमें एंड होता है जिसमें अनिल कपूर होते हैं पंजाब से आए हुए एक मतलब लोकल सिंगर होते हैं, जो उनका सपना होता है कि मुंबई में बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनूँ, क्योंकि उनको ब्रेक नहीं मिलता. तो उनका लव अफेयर अपना पद्मिनी कोल्हापुरी ना, हाँ भाई पद्मिनी कोल्हापुरी, उनसे होता है, उनकी मतलब बॉन्डिंग होती है. एक टाइम पे क्या, तो उनकी शादी हो जाती है, और शादी जब उनकी हो जाती है तो उनकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, क्योंकि वो शादी कहीं और करना चाहते थे और हो गया कहीं और. लेकिन उनकी शादी नसीरुद्दीन शाह से होती है, जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं पहले से, लेकिन उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो उनकी सेकेंड शादी होती है, उनकी बेटी होती है. तो जब वहाँ उनको नसीरुद्दीन शाह को पता लगता है कि जो मेरी वाइफ है अभी फिलहाल, लेकिन ये मतलब किसी और को चाहती थी और उनसे शादी करना चाहती है, वो बहुत ही मतलब अच्छे इंसान को दिखाया, तो वो चाहते हैं कि मैं इनकी शादी करा दूं दोबारा. तो वो अनिल कपूर जी को बुलाते हैं और ऐसे ऐसे बोलते हैं कि भाई मुझे एक म्यूजिक मतलब मैं फिल्म बना रहा हूँ, उसमें ऐसे म्यूजिक, उनको कहानी सुनाते हैं कि ऐसे है एक लड़की है, उसकी शादी होगी, लेकिन वो शादी कहीं और करना चाहती थी. तो जब उनको बताया तो उस पर सॉन्ग लिखने के लिए बोलते हैं, तो वो सॉन्ग लिखते हैं तो उनको समझ में आता, तो उन्होंने एक ही बोलते हैं कि भाई इसमें क्या है, किसी की प्रेमिका किसी की बीबी हो सकती है, मगर किसी की बीबी किसी की प्रेमिका नहीं हो सकती. तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो दर्शकों को कनेक्ट करता है. आपने देखा है कि किसी की वाइफ है, उसका अफेयर हो गया, ठीक है, वो किसी और के साथ शादी कर ली, हस्बैंड ने किया, वो अपने एकदम हो गया कि वो देवता स्वरूप हो गया, लेकिन उसका क्या, वो जो करेक्टर उस लेडीज का क्या, या उसके जो पार्टनर है उसका क्या, वो तो विलेन बन गए ना. हालांकि विलेन वाला कुछ किया नहीं उन्होंने, भाई उनकी चाहत है, भगवान ने बना के उनको भेजा हो सकता है एक दूसरे के लिए, लेकिन वो विलेन साबित हो गए. लेकिन अनिल कपूर उनको बोलते हैं कि किसी की प्रेमिका किसी की वाइफ हो सकती है, लेकिन किसी की वाइफ किसी की प्रेमिका नहीं हो सकती, ये दर्शकों को पसंद नहीं आएगा. तो ये वो पॉइंट हैं जो आपको पिच करते हैं. तो वो किया, एंड गया, वो ठीक है, उनके वियोग रहा, उनकी जुदाई रही, लेकिन वो जुदाई भी लोगों को पसंद आई। और सच में क्या होता है, देखो अगर आपका प्यार लव जो भी आप बोलते हैं वो कंप्लीट, देखो कंप्लीट तो कभी होता नहीं, और कंप्लीट हो गया तो प्यार है ही नहीं एक्चुअली। क्योंकि आप कोई भी कहानी देख लो, आप हम बोलेंगे भगवान की कहानी देख लो, राधे कृष्ण की कहानी देख लो, वो मिले नहीं कभी, लेकिन अलग भी हुए नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्यार के लिए शादी की ज़रूरत है, प्यार मतलब फीलिंग्स होती है, अगर आपने फील किया, हासिल करना एक्चुअली कभी प्यार होता ही नहीं है, प्यार का मतलब ही त्याग होता है। आप किसी को फील कर लो तो समझ लो वो प्यार होता है। तो वो जब ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम करते हैं तो एक अच्छी कहानी बन जाती है। जब ये अच्छी कहानी बनती है तो जब हमारे दिल तक कनेक्ट करती है तो लोगों को, जो कहते हैं जो दिल से निकलता है वो दिल तक जरूर पहुंचता है, तो ये चीज़ है।
0: एक्टिंग की बात करना चाहूंगा,
1: जी
0: एक्टिंग का प्रोसेस बताइए थोड़ा सा कि क्या प्रोसेस होता है एक्टिंग का।
1: देखिए, एक्टिंग का मैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन एक्टिंग हमारे उसमें बोला जाता है कि तीन चीज़ें, एक तो आपका लिरिक्स यानी कि सॉन्ग्स लिखना, राइटिंग, एक्टिंग और पागल, ये आपको कोई बना नहीं सकता, ये ऊपर वाला ही दे, ये कुदरत की देन होती है। आप जितना मर्जी एक्टिंग किसी को सिखा लो, बहुत सारे एक्टर हैं इंडस्ट्री में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बहुत अच्छे अच्छे हैं जिनको आज भी एक्टिंग नहीं आती, और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमें एक्टिंग नहीं आती, वो किस्मत का खा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लीजेंड्स हैं जो मतलब पूरा एक्टिंग की यूनिवर्सिटी है, आप उनसे एक एक चीज़ में से, जैसे मैं सबसे पहले फॉलो करता था कादर खान जी को, मतलब आप उनका करेक्टर देख लो, आप जिस करेक्टर में आप उनको डाल दोगे आपको लगेगा कि नहीं कि वो करेक्टर अलग है। अगर आपने उसको कॉमेडी डाला तो उनसे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं, अगर आपने उनको सीरियस डालो, सीरियस करेक्टर में, तो जब तक आपको रुला ना दें तब तक वो, तो जैसे मैं जो एक्टिंग में फॉलो करता हूँ अपना कादर खान जी, जो अब नहीं रहे हमारे बीच में, इसके अलावा इरफान खान जी, तो वो भी नहीं, इत्तेफाक देखो वो भी नहीं रहे, लेकिन मतलब लीजेंड, एक्टिंग के लीजेंड। उस देखिए सभी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये किसी को भी नहीं कह रहा कि अच्छा है, लेकिन जो मेरे आइडल हैं इरफान खान, कादर खान ये हैं। और मैंने एक्टिंग किसको देख के शुरू किया है, मैं अक्षय कुमार को बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली फिल्म देखी थी उनकी खिलाड़ी, तो उसमें कुछ ऐसा सीन था कि लास्ट में एक्शन सीन चल रहा था, उसके वो मर्सिडीज गाड़ी के ऊपर से जंप करके एक किक मारते हैं विलेन को, तो वो मैंने सीन देखा था, और तभी से मैंने सोचा कि मुझे इनके जैसा बनना है, और तभी से मैंने ठाना और टच दिया है कि मैं अपना मार्शल आर्ट में कराटे में ब्लैक बेल्ट 4 डन हूँ, तो इसलिए मैंने उनको फॉलो किया, और तो मैंने अपना कैरियर ऐसे किया। लेकिन मेरा अभी फ़िलहाल मैं टीचिंग भी करता हूँ इसकी, कराटे की मेरी अकेडमीज हैं काफ़ी, तो उनमें बच्चों को सिखाता हूँ, और पिछले मतलब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल्स काफ़ी खिलाए हुए हैं, अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेस लेते हैं। तो ये चीज़ है कि एक्टिंग ऐसी चीज़ है कि आपको कोई सिखा नहीं, हाँ, लेकिन आपको अगर आप में एक्टिंग के स्किल्स हैं आपको पॉलिश किया जा सकता है, और पॉलिश आप तब होते हो जब आप काम करते हो, परफेक्ट एक दिन में कोई भी नहीं होता, आप करते जाओ, गलतियां करोगे तभी सीखोगे, आप गलती करो सीखो फिर आगे सीखोगे, जब आपको उसके बाद अपनी गलतियां ढूंढो, ये नहीं कि अगर किसी ने बोला कि यार आपने तो अच्छा नहीं किया तो आप, अरे नहीं मैंने तो अच्छा किया, अगर अच्छा नहीं किया एक्सेप्ट करो उनको कि हाँ ठीक है आगे मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा।
0: जी, जावेद जी आपसे बात करना चाहूँगा, आप बताइए आपका क्या प्रोसेस है एक्टिंग का।
2: एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो जैसे हम रियलिटी में आ जाएं, अगर हम रियल लाइफ में जो कर रहे हैं अगर उसी हिसाब से करी जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर दूसरे के कहने पे कि हमको ऐसा करना है, फिर गुस्सा लाना है, तो नहीं आ सकता। जब तक हम अपने दिल से इस बात को नहीं समझेंगे ना, अपने मन में हमें गुस्सा लाना होगा तभी गुस्सा आएगा। और एक्टिंग के लिए जितनी मेहनत की जाए इतनी कम है। कुछ हीरो ऐसे भी हैं जिनको अगर आज कोई सीन मिला है तो पूरे 12-12 घंटे वो कमरे में बंद रहते हैं, उसके बाद एक्टिंग करते हैं, फिर गलती करते हैं, उसके बाद फिर अपने आप में सुधार लाते हैं। तो जितना मेहनत की जाए मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा अच्छा है, और एक्टिंग का कोई सीमा नहीं होती। एक्टिंग एक एक्टिंग ऐसी होती है कि हम ना कुछ बोल के हमारी आंखें ही बहुत कुछ बोल जाती हैं, और कुछ एक्टिंग ऐसी होती है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हम मान लिया कि कोई एक्शन सीन है या कुछ ऐसा है तो उसमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन जो अच्छा एक्टर है वो तो अपनी इशारों में ही सब कुछ कर देता है, उसकी स्माइल ही काफ़ी होती है। अगर उसको बोलना है, किसी को डराना है, तो ज़रूरी नहीं कि वो गुस्से से डराए, वो अपनी आँखों से भी डरा देता है, तो इसको एक्टिंग बोलते हैं।
0: बहुत सुंदर। थोड़ा सा अपनी फिल्म के बारे में बताइए, आपके कुछ गाने आउट हुए हैं, उनके नाम बताइए लोगों को, ताकि हमारे दर्शक हमारे श्रोताओं को पता लगे कौन कौन से गाने हैं।
1: हमारे फिल्म का जो एक सॉन्ग, मतलब 3 सॉन्ग अभी हमने आउट किए हैं, बाकी के अभी थोड़ा होल्ड किए हैं, अभी करेंगे बस जल्दी, अभी कुछ टाइम बाद आपको देखने को और सुनने को मिल जाएंगे। एक सॉन्ग है हमारा इसमें ख्वाबों की बारिश, उसके कुछ मैं आपको लाइनें सुना देता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मेल फीमेल दोनों डू इट है, उसकी लाइन है, दुआ मांगू क्या मैं रब से,

बारिश है तो एक सॉन्ग हमारा ये है ख्वाबों की बारिश। दूसरा है जैसे अब लव ट्रायंगल है तो इसमें हमारा एक सॉन्ग है दिल को मेरे चाहिए और एक तू।

0: तो ये बस एक तू और एक तू, इस पे कहानी चल रही है पूरी। एक सॉन्ग इसमें सुना, जैसे लव ट्रायंगल दिखाया है, तो उसमें जो मेरी वाइफ का करेक्टर जिन्होंने किया है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत ही इमोशनल फिल्म लगती है इसमें। तो उसके वर्ड हैं उसमें, एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो चीट कर रही हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि वो गलत है। एक्चुअली दोनों में कोई गलत नहीं होता। तो उसका ये है कि वर्ड है इसके, सपने सुहाने दिखाए ही क्यों थे, गीत मिलन के गाए ही क्यों थे, दिल मेरा जब तूने तोड़ना ही था, तो इतने वादे निभाए ही क्यों थे, जिंदगी से जाना था, जिंदगी से जाना था तो आए ही क्यों थे, जिंदगी से जाना था तो
1: तो
0: आए ही
1: आए
0: क्यों
1: क्यों
0: थे।
1: थे।
0: तो ये मतलब काफ़ी इमोशनल टच थी इस वाले सीन में। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग जो ये सीन कर रहे थे तो मेरे मतलब अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब उतना मतलब मैं इमोशनल हो गया था, मतलब आज भी मतलब वो ऐसे हम डबिंग पे कर रहे थे तो उस वाले सीन में भी मैं रो गया था। मतलब वो जो फील उसके अंदर आया सच में, जैसे अभी जावेद भाई ने कहा कि मतलब उसको आप रियल करते हो, तो जब आप करेक्टर में घुस जाते हो तो आपको फील आने लगता है। और उस करेक्टर में मतलब वो सीन करने के बाद कम से कम आधा घंटा मेरी मतलब आंसू नहीं रुके, उस करेक्टर को मैंने फील किया। अगर आपके बच्चे को, आपको पता लगे कि आपके बच्चे को किसी ने मार दिया, आपकी वाइफ ने आपके बच्चे को मार दिया, आपकी वाइफ ने आपके बच्चे को मार दिया और वो मुझे चीट कर रही है, तो और वो मुझे एक्सप्लेन कर रही है कि मैंने ऐसे मारा, तो मतलब क्या बीतेगी आपके ऊपर। तो ये इमोशंस जो निकल के आते हैं वो एक्चुअली अच्छी चीज़ है।
1: जी बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगस्त में ये मूवी आउट होगी, वाकिफ फिल्म का नाम है, लव ट्रायंगल है और थ्रिलर फिल्म है। हरीश जी ने इसको डायरेक्ट किया है, हरीश जी ही इसके प्रोड्यूसर हैं। और जाइएगा, अगर आपको दिखाई दे इसका पोस्टर तो ज़रूर जाकर के देखिएगा। फरीदाबाद शहर से निकली एक फिल्म है, फरीदाबाद में लिखी गई कहानी है और बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म है। पैन इंडिया आपको नजर आएगी, जब मौका मिले ज़रूर देखिएगा। मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोनों का।
0: थैंक यू,
2: थैंक यू सर।
1: थैंक यू और ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे हमारे परिवार की तरफ से रेडियो मानवरचना की, कि आपकी फिल्म अच्छी हिट हो।
0: जी जी बिल्कुल, थैंक यू। आपको भी आना है, सभी को रेडियो मानवरचना का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कि उन्होंने हमें इनवाइट किया है यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी पसंद आएगी लोगों को। और मैं सभी जितने भी आप मेरे लिसनर्स हैं उनको बोलना चाहूँगा कि एक बार आइए, आप फिल्म देखिए और फील करिए कि वाकिफ़ में एक्चुअली है क्या, किस चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो आप लोग आइए, सभी का वेलकम है।
1: थैंक यू। बिल्कुल। और एक दोस्तों, ऑन दिस नोट वक्त अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का भी हमने बात करी यहाँ पर मिस्टर हरीश और मिस्टर जावेद के साथ, और फिल्म थी वाकिफ जिसके बारे में यहाँ पर पूरी बात की गई। और उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स, वी टच्ड द प्लॉट ऑफ द मूवी, वी टच्ड सो मेनी थिंग्स अबाउट राइटिंग, डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड अ प्रोड्यूसर, हाउ टू बी एन एक्टर एंड सो ऑन। अगर आपको ये शो पसंद आया तो हमें अपना फीडबैक जरूर लिखकर भेजिएगा 8010781078 पर। बाकी जब मौका मिले वाकिफ फिल्म जरूर देखिएगा। और नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ।
1: देखिए किसान भाइयों, रबी मौसम में गेहूं भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ये ठंडी जलवायु में अच्छी वृद्धि करती है और हल्के पाले को भी सहन कर लेती है। लेकिन अनुकूल मौसम के साथ साथ गेहूं की फसल कई गंभीर रोगों की चपेट में भी आ जाती है। अगर इन रोगों की समय पर पहचान और उचित प्रबंधन ना किया जाए तो उत्पादन और दाने की गुणवत्ता दोनों पर गहरा असर पड़ता है, जिससे आप लोगों को आर्थिक हानि होती है। इसलिए किसान भाइयों, आपके लिए जरूरी है कि वो गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोगों, उनके लक्षणों और प्रभावी नियंत्रण उपायों की जानकारी होनी चाहिए। आज मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, उन रोगों के नाम बताऊंगा कि जो रोग आपकी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। आइए किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे रोग की जिसका नाम है भूरा रतुआ, जो कि गेहूं की फसल में लग जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भूरा रतुआ रोग है ना किसान भाइयों, ये फफूंद से फैलता है। ये रोग भारत के लगभग सभी गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो अक्सर हिमालय और नीलगिरी पहाड़ियों से होती है, जहां से ये हवा के जरिए मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच जाता है। अब सवाल आता है कि इसकी यानी कि भूरा रतुआ की पहचान कैसे करें। इस रोग के लक्षण सबसे पहले पत्तियों पर दिखाई देते हैं किसान भाइयों। हाँ, पत्तियों पर नारंगी भूरे रंग के सुई की नोक जैसे छोटे छोटे धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, जो धीरे धीरे फैल कर पूरी पत्ती को ढक लेते हैं और बाद में ये धब्बे गहरे भूरे या काले रंग में बदल जाते हैं। अब फिर एक सवाल आता है कि इससे नुकसान क्या होता है। तो किसान भाइयों, भूरा रतुआ प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है, जिससे दाने का भराव ठीक से नहीं हो पाता और उपज में अच्छी खासी कमी आ जाती है। तो ये तो मैंने बात बता दी आपको भूरा रतुआ के बारे में। एक और रोग है जिसका नाम है पीला रतुआ। अब पीला रतुआ रोग कैसा होता है, इसकी पहचान कैसे करें और इससे नुकसान क्या होता है, ये सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं पीला रतुआ रोग के बारे में। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये जो रोग है ना पीला रतुआ, ठंडे मौसम में बड़ी तेजी से फैलने वाला रोग है। पीला रतुआ या इसको स्ट्राइप रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, कवक के कारण होता है। ये रोग ठंडे और नमी वाले वातावरण में बड़ी तेजी से फैलता है और उत्तर भारत में विशेष रूप से नुकसानदायक माना जाता है। इसकी पहचान कैसे करें, बताता हूँ। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग की लंबी धारियां दिखाई देती हैं, जो पत्तियों की नसों के समानांतर होती हैं। समय के साथ साथ ये जो धारियां है ना, पूरी पत्ती को पीला कर देती हैं और पीले रंग का पाउडर खेत में गिरने लगता है। नुकसान क्या है ये भी सुन लीजिए। अगर ये रोग कल्ले निकलने से पहले या उसी समय आ जाए तो बालियों का बनना रुक जाता है और उपज लगभग नष्ट हो सकती है। तापमान बढ़ने पर रोग का असर कम हो जाता है और पीली धारियां काले रंग में बदल जाती हैं। तो ये तो बात हो गई पीला रतुआ की। एक और रोग होता है जिसका नाम है काला या तना रतुआ। इसके बारे में भी आपसे बात होगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं उस रोग के बारे में जिसका नाम है काला या तना रतुआ। ये जो रोग है ना किसान भाइयों, फसल को गिराने वाला रोग है। काला रतुआ, जिसे तना रतुआ भी कहा जाता है, ये जो फफूंद होती है ना, उससे फैलता है। ये रोग ज्यादातर दक्षिण और मध्य भारत में पाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में ये आम तौर पर फसल पकने की अवस्था में दिखाई देता है। इसकी पहचान है पत्तियों और तनों पर गहरे भूरे या काले काले रंग के उभरे हुए धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये धब्बे पौधे की जो मजबूती होती है, मजबूती को कमजोर कर देते हैं। नुकसान की बात करें तो इस रोग के कारण पौधे गिरने लगते हैं, जिससे कटाई में कठिनाई होती है और उपज घट जाती है। पुरानी किस्मों की बात करें तो जैसे लोक वन में इसका प्रकोप अधिक देखा जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि फहीम ने तीन रोग बता दिए हैं, उन तीनों रोगों की पहचान बता दी है और उससे जो नुकसान होते हैं वो भी बता दिए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं बताया। ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं ना आपके जहन में, तो चलिए आपके इन प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: तो किसान भाइयों, मैंने आपसे तीन रतुआ रोगों के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन अब आपको मैं समस्या का समाधान बताऊंगा और किस तरह से गेहूं की फसलों का बचाव किया जा सकता है इन रतुआ रोगों से। ये सारी बातें आपके साथ बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तीनों रतुआ रोगों से बचाव के लिए रोकथाम सबसे प्रभावी उपाय है कि बुवाई के समय रोग प्रतिरोधी और उन्नत किस्मों का चयन करें। जो भी आपकी किस्म होगी उसके हिसाब से आपकी फसल होती है, इसलिए जब भी आप किस्मों का चयन करें तो किस्में अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि ये रोग आपकी फसल को कुछ हानि पहुंचा ही ना सकें। आइए किसान भाइयों, अब आपको मैं कुछ तकनीकी बातें बताता हूं, जिससे कि आपकी फसल बेहतर से बेहतर हो सके। बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, रोग के शुरुआती लक्षण दिखते ही प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी का 0.1% घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये जो उपाय है ना किसान भाइयों, ये उपाय रोग के फैलाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। लेकिन एक रोग और होता है, बताना आपको भूल गया, माफी चाहता हूँ, और वो रोग है करनाल बंट के नाम का रोग। ये रोग ऐसा होता है किसान भाइयों कि आपकी फसल की जो गुणवत्ता है उसको प्रभावित करने वाला रोग है। करनाल बंट रोग गेहूं का एक गंभीर रोग है, जिसकी पहचान सबसे पहले 1931 में हरियाणा के करनाल जिले में हुई थी, और ये रोग टिलेटिया इंडिका नाम के कवच के कारण होता है, जो मिट्टी में लंबे समय तक जीवित रह सकता है। प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो ये रोग ठंडे और नम क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मैदानी भाग, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अधिक पाया जाता है। गर्म जलवायु वाले राज्यों में इसका जो प्रकोप है वो कम होता है। अगर नुकसान की बात करें तो इस रोग में दानों के अंदर काला चूर्ण भर जाता है, जिससे दाने की गुणवत्ता, अंकुरण क्षमता और बाजार मूल्य घट जाता है। इसके कारण गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चलिए, समस्या की बात तो मैंने कर ली, अब समाधान भी सुन लीजिए, इससे बचाव के उपाय भी सुन लीजिए। बुवाई से पहले बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए और रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। दाना बनने की अवस्था में प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी का 0.1% घोल बनाकर छिड़क देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो फसल है उसका बचाव हो जाएगा और जो रोग आपकी फसल को हानि पहुंचाने वाले थे वो हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, अगर आपने इन बातों पर अमल कर लिया। तो किसान भाइयों, कुछ और भी बातें हैं आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फहीम के साथ अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं उन रोगों के बारे में, यानी कि गेहूं की फसल में जो रोग लग जाते हैं उनके बारे में आपको बहुत कुछ बताया है, किस तरह से उसकी पहचान की जाए, उससे नुकसान क्या होते हैं और इस रोग से बचाव के तरीके कौन कौन से हैं, वो सारी बातें आपसे की हैं। अगर गेहूं की फसल में इन रोगों का समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो उपज और गुणवत्ता दोनों को भारी नुकसान हो सकता है। नियमित फसल निरीक्षण, शुरुआती लक्षणों की पहचान और वैज्ञानिक तरीके से उपचार अपनाकर आप किसान भाई अपनी गेहूं की फसल को इन घातक रोगों से सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी बात के साथ अपने दोस्त फहीम को आज्ञा भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, आपसे फिर मुलाकात करूंगा और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुकाम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गोंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं, आप कहते हैं इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की संतरास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गोंडवी ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देखकर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कह उठते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अदम अपनी कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की। तो ये अंदाज है अदम गौंडवी का। देखिए दोस्तों, अदम गौंडवी के कुछ प्रमुख गजल संग्रह हैं, उनका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं, जैसे धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। ये इनके प्रमुख गजल संग्रह हैं। कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। इनके शब्दों से आपको सच्चाई की महक आती महसूस होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।
1: पल भर

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अदम गोंडवी के बारे में आज आपसे बात हो रही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन मैं इनकी कुछ उपलब्धियां हैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 1998 में इन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार और 2001 में शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रतन सम्मान दिया गया था। आलोचकों का मानना है कि अदम को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो काबिल थे। अदम सत्ता के किसी पद्म सम्मान की परवाह किए बगैर हमेशा भारत की आम आवाम की आवाज बनते रहे। सत्ता प्रतिष्ठानों और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं और ता जिंदगी गूंजती रहेंगी। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।
2: आज

0: दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।
1: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
2: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
3: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और इस हफ्ते फिर से आ गई हूं मैं आपके लिए लेकर कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक। और साथ ही हर संडे शाम 4 से 5 हम करते हैं मुलाकात, जिसमें हम करते हैं बहुत सारी ट्रेंड की बातें। साथ ही चाहे बात हो सोशल मीडिया की, या बात हमारी सोसाइटी की, या बात हमारे देश की, बात हो विदेश की, हर टॉपिक को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर करते हैं। मैं आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, और इसी के साथ आज भी ना आपके लिए खास टॉपिक लेकर आई हूँ। जी हाँ, खास टॉपिक ये इसलिए है क्योंकि आज के टाइम में हम जिन भी मीडियम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, रेडियो हो, हमारे इंटरनेट हो, या फिर जो भी चीज़ हमारी ब्रॉडकास्ट होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये एपिसोड आज थोड़ा सा खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मीडियम की जिसने दुनिया को जोड़ कर रखा हुआ है, और जिसने खबरों को घर घर तक पहुँचाया है, जिसने मनोरंजन, शिक्षा और जानकारी को हर इंसान तक पहुँचाने का काम किया है। जी हाँ, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के। जी हाँ, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है इसलिए क्योंकि इसी दिन से इसकी शुरुआत की गई थी। इसी दिन साल था 1927 जिसमें भारत में पहली बार ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई थी। शायद आज के डिजिटल युग में हम स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से घिरे हुए हैं, अगर हम अभी की बात करें ना तो ब्रॉडकास्टिंग शब्द ना बहुत पुराना सा लगता है, लेकिन सच बात तो ये है कि आज हम जितने भी कम्युनिकेशंस जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब के पीछे जो जड़ कहते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग में छुपी हुई है। जी हाँ, सबसे पहले समझते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है। जब हम किसी संदेश को या फिर किसी जानकारी को या किसी कंटेंट को एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो हम किसके थ्रू करते हैं? वो हम ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू करते हैं, उसे ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। बहुत सारे लोगों तक एक मीडियम से कोई भी खबर या फिर जानकारी पहुंचाना, पहले ये काम रेडियो के माध्यम से होता था, फिर उसके बाद टेलीविजन आया, आज इंटरनेट ने इस दायरे को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया है, लेकिन उद्देश्य वही है, लोगों तक जानकारी को पहुंचाना। जरा कल्पना कीजिए कि अगर ब्रॉडकास्टिंग ना होती तो दुनिया कैसी होती? शायद किसी बड़े फैसले, किसी प्राकृतिक आपदा या फिर किसी महत्वपूर्ण खबर को लोगों तक पहुंचाया ही नहीं जा पाता। पहुंचाने में दिनों या फिर हफ्ते लग जाते अगर कोई इंसान एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है या फिर कहीं जाकर के उसको खबर पहुंचानी है। ब्रॉडकास्टिंग ने समय और दूरी दोनों की सीमाओं को तोड़ दिया है, इसी वजह से इसे कम्युनिकेशन की दुनिया का सबसे बड़ा क्रांति माना जाता है। ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ खबरें देने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि ये लोगों को जोड़ती है, उनकी आवाज को प्लेटफॉर्म देती है और समाज को एक दूसरे के करीब भी लेकर आती है। जब किसी गांव का किसान मौसम की जानकारी सुनता है, या फिर जब कोई विद्यार्थी शिक्षा संबंधी कार्यक्रम देखता है या फिर सुनता है, जब किसी दूर बैठे व्यक्ति तक एक जरूरी संदेश पहुंचाता है, तब ब्रॉडकास्टिंग अपना असली काम कर रहा होता है। आज के समय में ब्रॉडकास्टिंग का रूप जरूर बदल गया है, लेकिन रेडियो के साथ टेलीविजन के साथ पॉडकास्ट, इंटरनेट रेडियो और साथ ही यूट्यूब चैनल्स, लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। एक तरह से देखा जाए तो हर स्मार्टफोन ब्रॉडकास्टिंग का एक छोटा सा सेंटर पॉइंट है। तो दोस्तों, आज के इस खास नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे स्पेशल में आज हम जानेंगे ब्रॉडकास्टिंग को और साथ ही उसके सफर पे आज हम निकले हैं रेडियो से लेकर AI तक का और माइक्रोफोन से लेकर मोबाइल स्क्रीन तक का, ये ट्रेडिशनल मीडिया से लेकर डिजिटल दुनिया तक का आज हम सफर तय करने वाले हैं। तो चलिए, अब मेरा सवाल आपसे है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है, हमें जरूर बताइएगा। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078 पर। अभी मैं लूंगी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और ट्रेंडिंग तड़का में आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। जी हां, अब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत और उसके महत्वता के बारे में। जी हां, चलिए अब बात करते हैं उस मीडियम की तरफ जिसने भारत में ब्रॉडकास्टिंग की मजबूत नींव को रखा, यानी कि रेडियो। आज जब हम म्यूजिक एप्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, तब शायद रेडियो एक सिंपल डिवाइस लग सकता है, लेकिन एक समय जब था तब रेडियो सिर्फ एक मशीन ही नहीं था बल्कि घर का एक अहम सदस्य हुआ करता था। जी हाँ, सुबह की खबरें हो, शाम का गीत हो, क्रिकेट कॉमेंट्री हो या फिर मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे और वही रेडियो की सबसे बड़ी खासियत थी और आज भी है इसकी पहुँच भारत जैसे विशाल देश में, जहां भाषा, संस्कृति और भौगोलिक स्थितियां अलग अलग है, वहां पर रेडियो ने हर कोने तक अपनी आवाज को पहुंचाया है। ऐसे कई गांव और दूर दराज के इलाके थे जहां पर टेलीविजन और इंटरनेट पहुंचने से पहले रेडियो ही जानकारी का सबसे भरोसेमंद स्रोत था। खेती किसानी से जुड़ी हुई सलाह, मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाओं की सूचना और शिक्षा संबंधी कार्यक्रम ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया था। रेडियो ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं दिया बल्कि जागरूकता और विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर हम भारत के रेडियो इतिहास की बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। विविध भारती जैसे चैनल्स ने संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बना ली। क्रिकेट कमेंट्री का जुनून भी रेडियो के माध्यम से हर घर तक पहुंचता था। लोग कल्पना के सहारे पूरे मैच को अपनी आंखों से सामने महसूस कर लेते थे और आज भी रेडियो का रेलिवेंस कम नहीं हुआ है। एफएम स्टेशंस, इंटरनेट रेडियो और कम्युनिटी रेडियो नए रूप में लोगों तक पहुंच रहे हैं। खास तौर पर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थानीय मुद्दों, स्थानीय भाषा और समुदाय की आवाज को एक मजबूत मंच प्रदान करती है। ये ब्रॉडकास्टिंग का वो रूप है जो सीधे लोगों से जुड़ते हैं और उनकी बात उन तक ही नहीं बल्कि समाज तक पहुंचाते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि रेडियो सुनने के लिए आपको स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आप एक सफर में हो, काम कर रहे हो या फिर घर पर आराम क्यों ना कर रहे हो, रेडियो हमेशा आपके साथ चल सकता है। शायद इसीलिए रेडियो को अक्सर सबसे पर्सनल मीडियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आपके लिए एक और सवाल, क्या आपके पास रेडियो से जुड़ी कोई याद है?

जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है, हमें जरूर बताइएगा। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 पर। लूंगी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज ट्रेंडिंग तड़का में हम बात कर रहे हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में। जी हां, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग के बारे में इस सफर पर आज हम चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ समझाने की। अब तक हमने रेडियो के सुनहरे दौर की बात की, लेकिन फिर आया एक ऐसा मीडियम जिसने सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि तस्वीरों को भी लोगों के घर तक पहुंचाना शुरू कर दिया, यानी कि टेलीविजन। टेलीविजन ने ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू किया था। रेडियो पर लोग आवाज सुनकर कल्पना करते थे, लेकिन टीवी ने उन कल्पना को तस्वीरों का रूप दे दिया। भारत में टेलीविजन की शुरुआत धीरे धीरे हुई, लेकिन देखते ही देखते ये हर घर का हिस्सा बन गया। एक समय था जब घरों में सिर्फ एक टेलीविजन होता था, पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखा करता था। संडे का दिन खास होता था, लोग अपने काम जल्दी निपटाकर टीवी के सामने बैठ जाते थे। ये सिर्फ मनोरंजन ही नहीं था बल्कि परिवार को साथ भी लेकर आना था, एक माध्यम सा बन गया था। टेलीविजन ने खबरों को भी एक नई पहचान दी। जब किसी घटना को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि देखा भी जा सकता था, तो लोगों की समझ और जुड़ाव दोनों बदलने लगे। देश और दुनिया की घटनाएं अब सीधे ड्राइंग रूम तक पहुंचने लगी थी। लोगों को महसूस हुआ कि वे दुनिया से और भी ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी टेलीविजन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नॉलेज बेस्ड शोज ने सीखने की प्रक्रिया को और ज्यादा अधिक रोचक बना दिया था। कई लोगों ने टीवी के माध्यम से विज्ञान, इतिहास, संस्कृति और अन्य विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करी थी। मनोरंजन की बात करें तो टेलीविजन ने सीरियल्स, रियलिटी शोज, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग और लाइव इवेंट्स को भी नए स्तर तक पहुंचाया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक गेम्स हो या फिर किसी राष्ट्रीय उत्सव का सीधा प्रदर्शन क्यों ना हो, टेलीविजन ने लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया है। जब पूरा देश एक ही समय पर एक ही दृश्य देख रहा होता है, तब ब्रॉडकास्टिंग अपनी असली ताकत दिखाती है। लेकिन टेलीविजन का सफर यही नहीं रुका। समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली, केबल टीवी आया और फिर सैटेलाइट चैनल्स और फिर स्मार्ट टीवीज। व्यूअर्स के पास ऑप्शंस बढ़ने लगे और कंटेंट भी ज्यादा डाइवर्स होता गया। अब भले ही मोबाइल स्क्रीन्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म का जमाना आ गया है, लेकिन टेलीविजन ने ब्रॉडकास्टिंग को जिस तरह बदला, उसका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसने आवाज को चेहरा दिया और कहानियों को और भी ज्यादा जीवंत बना दिया। तो दोस्तों, आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा है जिसे देखने के लिए आप सब काम छोड़ देते हैं, हमें बताइएगा जरूर। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 पर। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज ट्रेंडिंग तड़का में हम बात कर रहे हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में। जी हां, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। ब्रॉडकास्टिंग जो एक शब्द ही नहीं है बल्कि अपने पीछे लिए बहुत सारी कहानी छुपाए हुए है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उसने हमें क्या क्या चीजें दी जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं और इतने दूर दूर बैठे हुए लोगों से भी कनेक्ट कर पाते हैं या उनकी जानकारी हम तक पहुंच रही है। दोस्तों, रेडियो से टेलीविजन तक की जर्नी ने कम्युनिकेशन को एक नई पहचान दी, लेकिन फिर आई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने ब्रॉडकास्टिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट की। एक समय था जब ब्रॉडकास्टिंग का मतलब था कि कुछ चुनिंदा संस्थाएं या फिर मीडिया हाउसेस कॉन्टेंट बनाएंगे और लोग उसे देखेंगे या फिर सुनेंगे, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद ये इक्वेशन ही बदल दिया गया। आज सिर्फ बड़े चैनल से ब्रॉडकास्टर्स नहीं है बल्कि एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के साथ लगभग हर व्यक्ति ब्रॉडकास्टर बन चुका है या फिर बन सकता है। सोचिए, आज अगर किसी स्कूल में इवेंट हो, किसी कॉलेज में फेस्ट हो, किसी आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस हो या फिर किसी सोशल इश्यू पर बात क्यों ना करनी हो, तो उसे कुछ नहीं सेकेंड में दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। उसे कुछ नहीं करना होता, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, एक्स स्पेस और कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ब्रॉडकास्टिंग को पहले से कहीं ज़्यादा एक्सेसिबल भी बना दिया है। इंटरनेट ने कंटेंट को सिर्फ ब्रॉडकास्ट ही नहीं किया बल्कि इंटरैक्टिव भी बना दिया है। पहले लिसनर्स और व्यूअर्स सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते थे, आज वे कमेंट्स भी कर सकते हैं, पोल्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लाइव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और अपनी राय को तुरंत वहां पर दे भी सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग अब एक तरफ से होने वाला कम्युनिकेशन नहीं रहा बल्कि दोनों तरफा कन्वर्सेशन बन चुकी है। इसी दौर में एक और शब्द बहुत पॉपुलर है, वो है कॉन्टेंट क्रिएटर। आज लाखों लोग एजुकेशनल वीडियोस, ट्रेवल वीडियोस, कुकिंग वीडियोस, टेक्नोलॉजी रिव्यूज और मोटिवेशनल कंटेंट बना रहे हैं। कई क्रिएटर्स की ऑडियंस ट्रेडिशनल टीवी चैनल से भी ज्यादा हो चुकी है। ये ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को तेजी से फैलाया है, लेकिन कभी कभी गलत जानकारी भी उतनी ही जल्दी फैल जाती है। इसीलिए डिजिटल लिटरेसी और रिस्पॉन्सिबल कंटेंट कंजप्शन आज के समय में बहुत बड़ी जरूरत हो गई है। हमें समझना होगा कि वायरल होने वाली हर बात सच नहीं होती है। इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसने आवाजों को लोकतांत्रिक बना दिया है। आज छोटे शहरों, गांवों और अलग अलग समुदायों के लोग भी अपनी बात दुनिया के सामने रख सकते हैं। जहां पहले प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल था, आज प्लेटफॉर्म हर किसी की जेब में मौजूद है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इंटरनेट ने ब्रॉडकास्टिंग को बेहतर बनाया है या फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी बढ़ा दिया है? हमें जरूर बताइएगा। हमारा नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 पर। अभी लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, इसके बाद करेंगे और भी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर आज हम कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बात। जी हाँ, इस ब्रॉडकास्टिंग के सफर पे आज हम निकले हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, कब से शुरू हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे उसने अपनी जर्नी को आगे लेकर के आया, रेडियो से टेलीविजन, टेलीविजन से इंटरनेट तक की जर्नी के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे मीडियम की जिसने डिजिटल युग में आवाज की ताकत को फिर से साबित कर दिया है, यानी कि पॉडकास्ट। जी हाँ, अगर आपसे 10 से 15 साल पहले पूछा जाता कि लोग बिना वीडियो देखे सिर्फ आवाज सुनने के लिए घंटों का समय देंगे तो शायद बहुत से लोग इस बात पर यकीन ना करते हो, लेकिन आज पॉडकास्ट दुनिया भर में तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। चाहे सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो या फिर बिजनेस हो, हेल्थ हो, स्टोरी टेलिंग हो, कॉमेडी हो या फिर करंट अफेयर्स हो या फिर कोई भी हर टॉपिक पर पॉडकास्ट जो है आजकल आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पॉडकास्ट होता क्या है। पॉडकास्ट असल में एक डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम होता है जिसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी उसे सुन सकते हैं, यही उसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। रेडियो में प्रोग्राम एक निर्धारित समय पर आता था, जबकि पॉडकास्ट आपके शेड्यूल के हिसाब से चलता है। आप ट्रेवल कर रहे हो, जिम में हो, वर्कआउट कर रहे हो या फिर घर में हो, घर का काम क्यों ना कर रहे हो, पॉडकास्ट आपके साथ चल सकता है। पॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण भी है कि उसका पर्सनल कनेक्शन, जब कोई होस्ट सीधे आपसे बात करता है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है या फिर किसी एक्सपर्ट के साथ गहरी चर्चा करता है तो लिसनर को लगता है कि जैसे वो भी उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हो चुका है। इसी वजह से पॉडकास्ट को अक्सर इंटीमेट मीडियम भी कहा जाता है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि पॉडकास्ट ने कहानी सुनाने की पुरानी परंपरा को भी एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया है। पहले लोग रेडियो ड्रामास और कहानियां सुनते थे और आज वही स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट के रूप में वापस आ रही है। और अगर इस तरह देखा जाए तो पॉडकास्ट कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग के पुराने और नए रूप का एक खूबसूरत संगम ही कहा जा सकता है इसको। आज के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स पॉडकास्ट के माध्यम से नए स्किल्स सीख रहे हैं। कुछ लोग मोटिवेशन के लिए सुनते हैं, कुछ लोग नॉलेज के लिए और कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। ये मीडियम कॉन्टेंट को स्क्रीन से आजाद करके सीधा कानों और दिमाग तक पहुंचाता है। पॉडकास्ट की सफलता हमें एक बात सिखाती है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल क्यों ना जाए, एक अच्छी आवाज, एक अच्छी कहानी और एक अच्छा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन की वैल्यू कभी कम नहीं होती। तो दोस्तों, आप पॉडकास्ट सुनते हैं या नहीं? अगर हाँ तो किस टॉपिक के पॉडकास्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मोटिवेशन, स्टोरी टेलिंग, बिजनेस, हेल्थ या फिर कुछ और? हमें बताइएगा जरूर। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 पर। चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। इसके बाद बची है अभी हमारी और भी बहुत सारी बातें, वो भी करेंगे हम। तब तक सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग की। जी हां, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। और अब तक हमने रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और पॉडकास्ट की बात करी, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी या फिर प्लेटफॉर्म की कहानी नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो है सही और भरोसेमंद जानकारी लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। ब्रॉडकास्टिंग की सबसे बड़ी ताकत है कि उसकी रीच, एक संदेश, एक खबर या फिर कहें एक विचार कुछ ही पलों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन इसी ताकत के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो बात लोग सुनते हैं या देखते हैं अक्सर उन्हीं को सोचते हैं, उन्हीं पर फैसले लेते हैं और कभी कभी जिंदगी में भी उससे यूज करते हैं। तो इसलिए हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम उसे देखें कि वो सही है या गलत है। आज के डिजिटल युग में इंफॉर्मेशन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है। किसी भी घटना की वीडियो हो, फोटो हो, कुछ ही मिनट्स में वायरल हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर वायरल चीज सच होती है? ये जरूरी नहीं है। इसी वजह से फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन आज की दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। कभी कभी बिना वेरिफिकेशन के शेयर की गई एक गलत खबर लोगों में डर, भ्रम या फिर गलत फहमी पैदा कर सकती है। इसीलिए ब्रॉडकास्टर्स, जर्नलिस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए फैक्ट चेकिंग बहुत जरूरी हो गई है। खबर सबसे पहले देना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सही खबर देना। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स की नहीं है, बल्कि ऑडियंस की भी एक भूमिका होती है इसमें। आज हम सब कॉन्टेंट कंज्यूम तो कर रहे हैं और कॉन्टेंट शेयर भी करते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को आगे भेजने से पहले उसके सोर्स को चेक करना, उसकी ऑथेंटिसिटी को समझना और बिना सोच विचार के शेयर ना करना हमारी जिम्मेदारी होती है। ब्रॉडकास्टिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है इंक्लूसिविटी। एक अच्छा ब्रॉडकास्टर सिर्फ जानकारी नहीं देता है, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों की आवाज को भी जगा देता है। जब मीडिया में विविधता और संवेदनशीलता होती है, तो तब ब्रॉडकास्टिंग सच में लोगों को जोड़ने का काम करती है। आज के समय में कंटेंट की कमी नहीं है, हर मिनट हजारों वीडियोस, पोस्ट, ऑडियो क्लिप्स अपलोड हो रहे हैं। ऐसे में क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी और एथिक्स पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। ब्रॉडकास्टिंग का असली उद्देश्य सिर्फ अटेंशन पाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक, सोचने के लिए प्रेरित और समाज को जोड़ना भी है। तो दोस्तों, आप क्या करते हैं जब आपको सोशल मीडिया पर कोई शॉकिंग या फिर कोई ऐसी खबर मिलती है जो शायद आप सुनकर आपको शॉक लगे, तो क्या आप उसे तुरंत शेयर कर देते हैं या पहले उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं क्या ये सच है या नहीं? हमें बताइएगा ज़रूर। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 पर। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: ये हुई ना बात।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग की। जी हाँ, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, कैसे आई, कब आई, क्या क्या चीजें लेकर आई अपने साथ, उन सभी चीजों के बारे में जान रहे हैं। सफर पर हम चल रहे हैं आज, ब्रॉडकास्टिंग की कहानी सुन रहे हैं और उसके बारे में जान रहे हैं। तो दोस्तों, शुरुआत से लेकर अब तक बदलते रूप ने बहुत कुछ समझाया है हमें, रेडियो से टेलीविजन, टेलीविजन से इंटरनेट, इंटरनेट और पॉडकास्ट तक की जर्नी के बारे में बात की। अब वक्त है एक नज़र भविष्य पर डालने का। जी हाँ, आखिर ब्रॉडकास्टिंग का अगला चैप्टर कैसा होगा, हम जानते तो नहीं है, पर हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले सालों में ब्रॉडकास्टिंग और भी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड, इंटरेक्टिव और इंटेलिजेंट होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पहले ही मीडिया इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी है। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर AI जनरेटेड वॉइसेस का इस्तेमाल भी हो रहा है, ऑटोमेटेड न्यूज समरीज तैयार की जा रही है और ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट रेकमेंड किया जा रहा है। सोचिए, एक ऐसा रेडियो स्टेशन या डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपकी पसंद, आपके इंटरेस्ट और आपकी लिसनिंग हैबिट्स को समझकर कंटेंट तैयार करे, ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि ये आज की टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन चुका है। स्मार्ट स्पीकर्स, वॉइस असिस्टेंट्स और रिकमेंडेशन एल्गोरिदम ब्रॉडकास्टिंग को और भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड बना रहे हैं। लेकिन भविष्य सिर्फ AI तक ही सीमित नहीं है, ये वर्चुअल रियलिटी जैसे कॉन्सेप्ट भी कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया को नए डायमेंशन दे रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में लोग किसी इवेंट को सिर्फ देखें या फिर सुने ही नहीं, बल्कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। एक तरह से ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ कॉन्टेंट देखने का अनुभव नहीं है, बल्कि कॉन्टेंट को महसूस करने का अनुभव बन सकती है। साथ ही क्रिएटर्स और ऑडियंस के बीच की जो दूरी भी लगभग कम हो रही है, आज लोग लाइव चैट्स, रिएक्शन और इंटरैक्टिव फीचर्स के जरिए कंटेंट का हिस्सा बनते हैं। फ्यूचर में ये एंगेजमेंट और भी ज्यादा गहरी हो सकती है। ब्रॉडकास्टिंग के एक कम्युनिटी ड्राइवन एक्सपीरियंस भी बन सकता है, जहां पर ऑडियंस सिर्फ लिसनर्स या फिर व्यूअर्स नहीं होगी बल्कि पार्टिसिपेंट भी होगी वहां पर। लेकिन इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बीच एक चीज नहीं बदलेगी, वो है इंसानी कनेक्शन। जी हाँ, चाहे मीडियम रेडियो हो, टेलीविजन हो, पॉडकास्ट हो या फिर AI पावर्ड प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, लोग हमेशा मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन, ऑथेंटिक स्टोरीज और भरोसेमंद इंफॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। टेक्नोलॉजी टूल्स दे सकती है, लेकिन इमोशंस, क्रिएटिविटी और ह्यूमन टच की जगह नहीं ले सकती है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो कि 23 जुलाई को मनाया जाता है, हमें सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास ही याद नहीं दिलाता है, बल्कि उसके भविष्य के बारे में भी सोचने का मौका देता है। यह हमें बताता है कि कम्युनिकेशन के माध्यम बदलते रहेंगे, लेकिन लोगों से जोड़ने का मकसद हमारा वही रहेगा। इसी के साथ इस खास एपिसोड को, इस खास बातचीत को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और ले रही हूं आपसे इजाजत। और आप याद रखिएगा, आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती है बल्कि कभी कभी वो समाज को बदलने की ताकत भी रखती है। तो इसलिए कुछ भी चीज करें, वो जिम्मेदारी के साथ करें। तो चलिए, वक्त हो गया है इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे हम संडे शाम 4 से 5, पर तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर।

0: इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ और प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे हम लेकर आते हैं आपके लिए खास तौर पर से फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं फरीदाबाद पुलिस के एक ऐसे अधिकारी से जो विभिन्न विभागों की देखरेख कर रहे हैं, शहर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश तभी कामयाब होती है जब आप और हम मिलकर इसमें पुलिस का साथ देते हैं। हम कमियां तो बहुत निकाल लेते हैं लेकिन कई बार अपनी कोशिशों से पीछे हट जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि पुलिस वाले हमसे प्यार से बात नहीं करते, पर क्या आपने देखा है कि वो 12-14 घंटे किस तरीकों से सड़कों पर खड़े रहकर बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी, हर मौसम में आपकी सेवा के लिए तत्पर भी रहते हैं। चाहे एक्सीडेंट हो या फिर किसी तरीके का कोई झगड़े का मामला, हर जगह पुलिस पहुंचती है और कोशिश करती है कि चीजों को वहीं पर सॉर्ट किया जाए। किसी की डेथ भी हो जाती है तो बॉडी को हाथ लगाने के लिए कोई रिश्तेदार नहीं आता, अक्सर पुलिस ही आती है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, पुलिस वाले हमेशा आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ परेशानियां होती हैं उनसे तो आप तो इधर उधर मुंह बनाकर चले जाते हैं, पर वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हैं। खास तौर पर से मैं ट्रैफिक की बात करूं, क्योंकि ट्रैफिक तो हम सब अपने सामने 2400 घंटे देखते हैं। हम सुबह ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कहीं के लिए भी निकले, हमें ट्रैफिक दिखता ही दिखता है। और उन ट्रैफिक की जिम्मेदारी भी निभाती है ट्रैफिक पुलिस। कैसे? ट्रैफिक किस तरीके से मैनेज होगा, ट्रैफिक जाम लगेगा, चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म हो या फिर बारिश हो रही हो, ट्रैफिक पुलिस आपको हमेशा सड़कों पर दिख जाएगी। बारिश में भी घुटनों घुटनों पानी भरा हो और आप अगर ट्रैफिक में फंस गए हो या बारिश में फंस गए हो, तो पुलिस वाला ही आपका हाथ पकड़ के आपको वहां से निकाल कर लाता है। जी हाँ, लेकिन इस बढ़ते हुए एक्सीडेंट और ट्रैफिक पे जो मैनेज हो रही है आजकल, या फिर हम कहें कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा वॉयलेट करने लगे हैं लोग, इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कदम उठा रही है, खासतौर पर से फरीदाबाद पुलिस, इस पर आज हम चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं ट्रैफिक इंचार्ज NIT फरीदाबाद जयबीर सिंह जी, जो कि इंस्पेक्टर हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। जयबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी। तो जयबीर जी, आपने हाल ही में ट्रैफिक की जिम्मेदारी जो है वो फरीदाबाद पुलिस के साथ निभानी शुरू की है, उठाई है।
1: जी मैम।
0: तो मैं आपसे बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगी।
1: जी मैम।
0: मैं सवाल वो पूछूंगी जो एक आम इंसान से जुड़े हुए हैं।
1: जी।
0: हम फरीदाबाद की बात करते हैं और कुछ साल पहले फरीदाबाद शहर में लोगों को सीट बेल्ट लगाने में भी दिक्कत होती थी।
1: जी मैम।
0: यहाँ पर अक्सर वो लोग देखे जाते थे जो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच के सीट बेल्ट लगाते थे।
1: जी मैम।
0: उससे पहले सीट बेल्ट नहीं लगाते थे।
1: जी मैम।
0: अगर बाइक या स्कूटी पे जा रहे हैं तो भी हेलमेट दिल्ली बॉर्डर के पास ही लगाया जाता था।
1: यस मैम।
0: लेकिन अब ये ऐसा शहर बन गया है जहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या फिर जेवर एयरपोर्ट को जाने वाली सड़कें एक्सप्रेसवेज बन गए हैं।
1: जी मैम।
0: जहाँ पर लगातार हाईवे पर एक के बाद एक 7 फ्लाईओवर्स बन गए हैं, जहां पर सूरजकुंड रोड इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि आप गुड़गांव जाएं या फिर दिल्ली जाएं, आपको ट्रैफिक तेज रफ्तार से चलता हुआ मिलेगा।
1: जी मैम।
0: तो ऐसी परिस्थिति में जयबीर जी, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि कौन सी ऐसी सबसे कॉमन मिस्टेक है या गलती है जो हम जैसे नॉर्मल नागरिक करते हैं और ट्रैफिक को खराब कर देते हैं या फिर एक्सीडेंट्स को बढ़ा देते हैं।
1: जी मैम। ड्राइविंग करता है तो आदमी का आजकल स्ट्रेस में बहुत रहता है या फोन पे बिजी रहता है।
0: जी।
1: वो अपने फोन पे बिजी होने के कारण सीट बेल्ट भी लगानी ध्यान नहीं रहती उनको। पहली गलती ये करता है।
0: जी।
1: और फिर वो सीट बेल्ट भी लगाता है, फिर ध्यान फोन पे, जैसे फोन पे चला जाता है, वहाँ पर से फोन आ गया या दोस्त है या जैसे ऑफिस जा रहा है वहाँ से आ गया, तो ये चीज इसके लिए हम उसको रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग का चलान करते हैं।
0: जी जी, यानी दो तीन चीजें ऐसी हैं जो वो नहीं करते हैं।
1: और जैसे सीट बेल्ट नहीं लगा रहा था उसका चलान करते हैं हम, और स्पीड में है तो उसका चलान करते हैं। और हमें ये लगता है भाई नशे में लगता है तो उसको चेक करके उसको अगर उसका नशे का संबंधित है वो चलान भी करते हैं हम।
0: जी जी। जयबीर जी, नशे की आपने बात करी है तो हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वहाँ पर जो ठेके खुले हुए हैं, जिनको भाषा में, सिंपल भाषा में कहते हैं या फिर अंग्रेजी में आप वाइन शॉप्स भी कह सकते हैं, दूर से जगमगाती हुई दिख जाती है, ऐसा लगता है कोई 5-star होटल खुला हुआ है, और वहां पर धड़ल्ले से आपको गाड़ियां दिख जाएंगी खड़ी।
1: जी मैम।
0: क्या जयबीर जी आपको लगता है कि ड्रंक ड्राइविंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है शहर में अपराध और ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स बढ़ने का?
1: जी मैम।
0: तो पुलिस इसको रोकने के लिए क्या करे?
1: पुलिस जैसे मैम ये रोड पे आते हैं तो हम जैसे नाका लगाते हैं।
0: जी जी।
1: जैसे जिला पुलिस के द्वारा, जैसे फरीदाबाद पुलिस के द्वारा सप्ताह में एक दिन या दो दिन जैसी भी आवश्यकता है तो जैसे CIA है, जिला पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, मिलके हम जैसे पूरी नाइट को भी 10-11 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक नाका लगाते हैं,
0: जब मेन टाइम होता है लोगों के पी के जाने का।
1: उस टाइम हम उनको अच्छी तरह चेक करते हैं, जो जो भी ड्रिंक करे मिलता है तो हम उसका उनका भारी से भारी चालान करते हैं।
0: कितना चालान होता है सर इसमें? क्या गाड़ी इंपाउंड करने का भी कुछ सिस्टम है या सिर्फ चालान करके?
1: चालान ही का सिस्टम है,
0: चालान का सिस्टम। सो लोग डरते हैं इससे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि एक बार चालान 10,000-15,000 दे दिया, उसके बाद फिर से वही चीज चल रही है।
1: वैसे ये डरते नहीं मैम, आजकल फिर एक ये हो गया मैम, जैसे चालान कर देते हैं, ऑनलाइन चालान होते हैं तो ये बात देखते हुए कोर्ट लगेगी।
0: हाँ
1: तो कोर्ट में जैसे माफ हो जाता है,
0: ये कोर्ट में माफ हो जाता है, चलिए ठीक है आप आधा दे दीजिए।
1: हाँ आधा दे दीजिए
0: जी जी जी।
1: हाँ इसलिए फिर आजकल क्या है जैसे माँ बाप की कमाई यूज करते हैं ना कि अपनी उसमें दुख महसूस होता है, तो ये माँ बाप जैसे बाप दादा है उनकी कमाई के लिए थोड़ा तो ही नहीं देते अपनी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि अपराध भी बढ़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ने इतनी सारी सुविधाएं दे दी हैं, माता पिता ने बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी हैं, पैसे काफी दे दिए हैं, फोन अच्छे हैं उनके पास, तो उनको ये अफसोस नहीं होता कि हमारी जेब से 10-15,000 रुपए चला
1: गया। ये मायने नहीं रखते
0: जी, ये मायने नहीं
1: के लिए मायने रखते
0: जी जी।
1: उनके जो जैसे कई बार पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स सॉरी फील करते हैं, बच्चे सॉरी फील नहीं करते, वो कहते हैं आप चालान करिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पेरेंट्स को दुख होता है, बच्चों को दुख नहीं होता। So, बहुत सारी बातें दोस्तों सुरक्षा संवाद में चलती रहेंगे, हमारे साथ जयवीर सिंह जी मौजूद हैं और जयवीर सिंह जी से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं फरीदाबाद के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बारे में। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010781078, या फिर आप ये सारी बातचीत हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं, अलग अलग रील्स के माध्यम से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम रेडियो मानव रचना और फेसबुक पर भी, और इसके साथ साथ हमारी इंटरनेट ऐप डाउनलोड कीजिए रेडियो मानव रचना, जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर में मिल जाएगी। पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आपको मिल जाएगी सारी बातचीत ट्रैफिक इंचार्ज जयवीर सिंह के साथ हुई। अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक जी, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। कार्यक्रम सुरक्षा संवाद एक ऐसा प्रोग्राम सीरीज जो हम आपके लिए लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर। और इस सीरीज में बहुत सारी बातें हम करते हैं पुलिस अधिकारियों से मिलकर, कभी ट्रैफिक के बारे में, कभी महिला सुरक्षा के बारे में, कभी साइबर फ्रॉड के बारे में, तो कभी किसी और मुद्दे के बारे में। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करें वो है ट्रैफिक, यानी रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है और ट्रैफिक इंचार्ज एनआईटी फरीदाबाद श्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। बहुत सारी बातें इनके साथ जारी हैं, आइए जानते हैं और भी कुछ खास पहलू। तो जयवीर जी, जब हम बच्चों और पेरेंट्स की बात करें तो यहाँ पर मैं अंडर एज ड्राइविंग की बात जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल्स हैं, महंगी महंगी फीस है और इन स्कूलों के बाहर हमने देखा है कि अक्सर बच्चे, स्कूल वाले प्रशासन मना करता है कि बच्चे स्कूटी या बाइक ना लाएं, लेकिन अब बच्चे स्कूटी बाइक से ज्यादा 18 साल से कम की उम्र में गाड़ियां भी ले आते हैं, खासतौर पर से एग्जाम वाले दिन कि आज तो 3 घंटे में बाहर निकलेंगे और उसके बाद घूमने जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए जयवीर जी क्या किया जा रहा है?
1: ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा था, इनको मैम अपना इनका जैसे लाइसेंस नहीं है, अतः इन पर फाइन

0: माँ बाप के जो पेरेंट्स को हो उनको भी बुला गए, वे कभी कभी समझाते भी हैं और चलान भी करते हैं, जो उसके बाद भी बावजूद नहीं जैसे बार बार चलान जाते हैं तो गाड़ी को भी इम्पाउंड कर लेते हैं और माँ बाप के पेरेंट्स के ऊपर भी मतलब कानूनी कार्रवाई की जाती है,
1: FIR वगैरह दर्ज हो जाती है।
0: FIR माँ बाप का, इसमें दोष माँ बाप का ज्यादा माना जाता है ना कि बच्चा 18 साल से नीचे बच्चा नाबालिग रहता है, मतलब उसकी बजाय पेरेंट्स पर ज्यादा कार्रवाई होती
1: यानी
0: है।
1: आपने गाड़ी दी क्यों बच्चे को?
0: हाँ, बच्चे को क्यों, उसमें गलती पेरेंट्स की रहती है। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को थोड़ा समझाए गाइड
1: जी
0: तब जान कितनी अहमियत रखती है हमारे लिए।
1: जी जी, तो इन बच्चों को सर आपने देखा है कि इन बच्चों को डर लगता है पुलिस से या नहीं लगता?
0: नहीं, आजकल क्या हमें जो पहले पिटाई वाला था ना
1: जी, वो तो
0: स्कूल का लाले या पुलिस का लाले हो तो रहा नहीं, ये नियम अनुसार जो है कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं
1: जी,
0: कार्रवाई में वो इतना डरते नहीं।
1: हाँ, मतलब उनको लगता है कि चलो पेरेंट्स पे ये चीज हो रही है, हम तो बचे हुए।
0: हाँ, पेरेंट्स से ही परेशान होते हैं
1: वैसे।
0: हाँ,
1: तो देखिए दोस्तों, बहुत ही एक विडंबना है आज के टाइम में, आयरनी है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और अगर बच्चे पे कोई बच्चे की गलती से वो फंसते भी हैं तो पेरेंट्स ही फंसते हैं और इसमें भी बच्चे को कई बार अफसोस नहीं होता है, उसे ये ग्लानी नहीं होती है, उसे ये तकलीफ नहीं होती कि उसके पेरेंट्स ही इस चीज़ में फंस रहे हैं, वो नहीं फंस रहा है। सो ये जिम्मेदारी जो है ये बच्चे की भी बनती है, सिर्फ पेरेंट्स की या स्कूल की नहीं बनती है कि आप गाड़ी ना दें, बच्चे को इस तरीके से समझाएं। और मुझे लगता है थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस इस मामले में ज़रूरी है, थोड़ी सी तो देखिए कठोरता चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तक आप स्ट्रिक्टनेस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कई केसेस में नॉर्मल नहीं हो पाती हैं। तो जयवीर जी, अब हम बात करते हैं थोड़ा शहर को और ज़्यादा बेहतर बनाने की, हेलमेट और सीट बेल्ट
0: जी मैम
1: पहनना कितना ज़रूरी है एक आम इंसान के लिए, क्योंकि हमने कई बार समझाया, घर वालों ने भी कई बार समझाया पर लोग समझते नहीं
0: है। ये बहुत ज़रूरी है मैम, हेलमेट पहनना, जैसे भाई टू व्हीलर पर चलता है भाई उसका पैर भी फिसल जाता है या कोई और कोई ओवरटेक कर देते हैं उसको, मतलब तो चोट लगनी ही है उसको मैम, तो हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसे हमारा सिर बच जाता है तो जान बच जाती है, अगर जो हेलमेट नहीं है तो उसमें जान भी जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है।
1: जयवीर जी, छोटे बच्चे आगे खड़े होते हैं स्कूटर के या बाइक के आगे बैठे होते हैं और जब एक्सीडेंट होता है तो उनके लिए कोई हेलमेट नहीं होता है और उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है, तो क्या इसका सोल्यूशन है, आपको क्या लगता है, एक पुलिस अधिकारी हैं आप और ट्रैफिक इंचार्ज हैं, क्या सोल्यूशन है इसका?
0: जी मैम, बच्चे को भी पीछे बैठा जैसे उस पर अलाउड ही दो आदमी अलाउड है, ये अनऑथराइज है भाई, जैसे तीन तीन चार चार जैसे थ्री राइडिंग का हम चलान करते हैं।
1: अच्छा, मतलब चलान कर सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और बीच में दो बच्चे बैठे हैं।
0: हाँ, थ्री राइडिंग का चलान होता है।
1: ओके।
0: अगर तो तीन बैठे हैं तो थ्री राइडिंग का चलान होता है।
1: पर फिर वो कैसे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ये भी आप सोच के कई बार छोड़ भी देते होंगे।
0: हाँ, वैसे उसमें थोड़ा
1: समझा के। तो इसमें क्या बच्चों के भी हेलमेट मिलते हैं मार्केट में?
0: बिल्कुल मिलते हैं मैम,
1: मिलते हैं बच्चों के हेलमेट। देखिए मैं नहीं जानती हूँ ये चीज़ के बच्चों के हेलमेट मिलते हैं, लेकिन अगर आप बाइक चलाते हैं स्कूटी चलाते हैं और आपके घर में बच्चे हैं तो उनका हेलमेट जरूर लेंगे।
0: 14-15 साल का बच्चा है उसका तो हेलमेट मिल जाता है।
1: जी जी, तो वो थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए पेरेंट्स को। और जैसे गर्मियों की छुट्टियां हैं तो सब अपनी नानी दादी के घर जाते हैं, स्कूटी पे बैठ के जा रहे हैं या बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके जा रहे हैं, तो प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। इसकी जगह अगर आप बस पे, ट्रेन पे, मेट्रो पे चले जाएं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा, बहुत सेफ है, ना गर्मी लगेगी और ना ही कोई एक्सीडेंट होने का खतरा होगा।
0: आजकल तो ये जैसे भाई ऐप आ रहे हैं, ओला है, उबर है, टैक्सी वगैरह भी हो जाते हैं, जो ज्यादा स्ट्रेंथ है ना
1: जी,
0: दो से ज्यादा स्ट्रेंथ है तो अपने वो फोर व्हीलर व्हीकल को ज्यादा।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये ज्यादा जरूरी है कि आप एक बाइक पे पांच जने बैठ के जा रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है।
0: हाँ, ये बहुत खतरनाक है
1: जी। जयवीर जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, इतनी तेज स्पीड होती है कि आप उनको देख के डर जाते हैं, आपके साथ से निकलते हैं और स्कूटी वाले लोग जो हैं, टू व्हीलर वाले, वो घबरा जाते हैं और बहुत बार वो गिर भी जाते हैं इस चक्कर में कि कोई गाड़ी वाला इतनी तेज निकला है। और ओवर स्पीडिंग का कंसेप्ट लोग समझते नहीं है, मुझे थोड़ा सा समझाएंगे कि ओवर स्पीडिंग जो है, जैसे 50 लिखा है, 60 लिखा है, 70 लिखा है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करें तो इंटरसेप्टर कैसे पकड़ता है?
0: वो जैसे हम ये मोबाइल ये वाकी टाकी सेट होते हैं मैम
1: जी,
0: उसी टाइम हम कॉल कर देते हैं भाई, जो भी जैसे भाई यहाँ से अंखीर चौक है या बाटा चौक है, जहाँ भी जाओ कंट्रोल में मैसेज कर देते हैं भाई इस नंबर की गाड़ी है बाइक है तो इसको अपना हाँ पकड़ लो इसको इंपाउंड कर लो। तो जैसे सभी जो नाके हैं जड्डो हैं एरिया सभी सक्रिय हो जाता है उस पर जहाँ भी जिधर कभी आते हैं वहीं वो कंट्रोल कर देते हैं।
1: जी जी ये जो इंटरसेप्टर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ये इनका काम ओवर स्पीडिंग पकड़ना होता है।
0: ओवर स्पीडिंग है जैसे जाम लग रहा है मैम वहाँ पे भी जैसे भाई एक मुलाजिम की ड्यूटी है या दो की है वो उनसे काम नहीं चलता व्हीकल तरफ जाता है तो वो गाड़ी से जल्दी पहुंच जाते हैं जो भी नजदीक है ना उसको हम मैसेज कर देते हैं फोन भी कर देते हैं और वायरलेस साइट पे भी मैसेज दे देते हैं।
1: तो इंटरसेप्टर जो है वैसे ओवर स्पीडिंग पकड़ने के लिए उसमें कैमराज वगैरह लगे होते हैं।
0: हाँ उसमें जैसे अगर जो उसका कंट्रोल में आता है ठीक नहीं तो उससे वीटी भी कर देते हैं भाई अगला जो अगला ट्रैफिक पॉइंट है वो जैसे हम बैरियर लगाते हैं बैरियर लगा देते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ हाँ
1: तो ये गाड़ी जो है इसे पकड़ना है।
0: हाँ हाँ इसे पकड़ना है
1: तो ये नजर में रखने के लिए
0: जरूरी है। हाँ कंट्रोल से वीटी हो जाती है सभी के पास भाई इस नंबर की गाड़ी है तो ये राउंड अप करनी है।
1: जी और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप वीआईपी मूवमेंट में भी काफी इन्वॉल्व रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैरिकेडिंग तोड़ के भी निकल जाते हैं आज के टाइम में।
0: जी मैम
1: सिर्फ बचने के लिए।
0: जी मैम
1: वो आगे जाके पकड़े जाते हैं तो उनके साथ सुलूक क्या होता है?
0: सुलूक तो मैम जो अपना नियम अनुसार कार्रवाई है वही होती है।
1: जी
0: हाँ उसके एफआईआर होती है और जो चलान है ज्यादा से ज्यादा होता है उसका।
1: जी जी
0: हाँ उस पर कानूनी कार्रवाई होती है पूरी
1: मतलब एफआईआर वगैरह होगी फिर उसके बाद जो है वो केस चलेगा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। ठीक है ये बात तो होगी जी ओवर स्पीडिंग की लेकिन आगे बात करते हैं स्कूल और कॉलेज के बच्चों को।
0: जी मैम
1: सर क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: स्कूल और कॉलेज के बच्चों को मैम जैसे भाई अपना टू व्हीलर पर चला है तो हेलमेट लगा के चलना चाहिए। अगर तो 18 साल से ऊपर है तो अपना लाइसेंस बनवाओ डीएल बनवाओ उसके बाद ही व्हीकल चलाना चाहिए रोड पे।
1: जी जी जी
0: और अपना जैसे फोर व्हीलर पर है तो सीट बेल्ट लगाओ और आउट स्पीड में नहीं चलाओ
1: जो स्पीड है
0: हाँ हाँ रॉन्ग साइड में मत चलाओ।
1: तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं 8010781078 पर पूछ सकते हैं। मैं हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, बता तो उस वक्त मैं कहां था, बता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: तो दोस्तों बातें चल रही हैं बहुत सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बारे में, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले अधिकारी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जयबीर सिंह जी जो कि ट्रैफिक इंचार्ज हैं और एनआईटी एरिया की पूरी देखरेख करते हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में आइए जानते हैं कुछ और ट्रैफिक नियमों से जुड़ी हुई बातें और कैसे एक आम इंसान को थोड़ा सा कंट्रोल करना है बढ़ते हुए ट्रैफिक को भी, और उसके प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है। सर, अब मैं चालान की बात पूछना चाहूंगी आपसे। 2025-26 में बहुत चालान कटे, बहुत ज्यादा, तो कुछ आंकड़ा मुझे देंगे फरीदाबाद में कितने चालान कटे हैं पिछले 3-4 महीनों में?
1: हाँ जी मैम, ये मैम जैसे टोटल ऑफेंस चालान है ये जनवरी महीने में 57,866 है।
0: 57,000 चालान, ये सिर्फ फरीदाबाद का आंकड़ा?
1: हाँ, ये ऑफेंस इन चालान है, जो टोटल चालान है वे 52,690 है मैम
0: जी।
1: और ये फरवरी महीने के जो टोटल ऑफेंस इन चालान है ये 45,200 है।
0: अच्छा।
1: हाँ, और जो टोटल चालान है ये 40,807 है।
0: मतलब आपने एक महीने में 57,000 के आसपास, जनवरी की बात मैं करूं जिसमें न्यू ईयर भी आता है और सिक्योरिटी भी बहुत होती है 26 जनवरी को लेके,
1: जी मैम,
0: उस दौरान आपने 57,000 चालान जो है वो करे,
1: जी मैम,
0: तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है सिर्फ फरीदाबाद के।
1: हाँ, फरीदाबाद ही है।
0: तो आप दोस्तों सुन रहे हैं कि 57,000 चालान अगर एक शहर में और आपके अपने शहर में एक महीने में चालान हो रहे हैं तो कितने लोग ट्रैफिक के रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं तब जाके ये चालान होते हैं।
1: टोटल तो मैम ये 32,99,400 है मैम
0: कैश जो कलेक्ट किया आपने।
1: हाँ, जो टोटल कैश है मैम
0: जी,
1: जो इतने रुपए के
0: जी, यानी टोटल अगर मैं इसको पैसे में कैलकुलेट करूं तो 32 लाख के आसपास पैसा जो है वो चालान जो है वो किए गए, मतलब
1: 32,99,000
0: यानी आप 33 लाख के आसपास मान लें
1: जी मैम
0: कि इतना पैसा का चालान जो है, इतने रुपए का चालान जो है वो किया गया है
1: जी मैम।
0: अब मैं आपसे जयबीर जी एक और चीज पूछना चाहूंगी, चालान को लेकर लोगों में इस टाइम इतना डर नहीं है
1: जी मैम।
0: डर इसलिए भी नहीं है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि वो कोर्ट में जाते हैं और वहां पर थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, इसलिए उनको लगता है कि 4-5 चालान हो गए, 6 चालान हो गए, जब गाड़ी बेचेंगे तब उसको माफ करवा लें। ये ज्यादातर लड़कों के दिमाग में, मैं कहूँ यंग लड़कों के दिमाग में ये चीज रहती है
1: जी मैम।
0: सो इसको कैसे रोका जाए या चालान की प्रक्रिया क्या है आज की तारीख में? अगर सपोज मैं गाड़ी चला रही हूँ और मैंने रेड लाइट तोड़ दी और मुझे किसी पुलिस वाले ने रोका और चालान बनाया
1: जी मैम,
0: तो पहली बात तो चालान रेड लाइट जंपिंग का है कितना? 5,000 है।
1: हाँ, 5,000
0: मैम। 5,000 चालान है। अब 5,000 चालान को मैं वहाँ कैसे पे करूँ? अगर मेरे पास 5,000 नहीं है तो मैं कैसे पे कर सकती हूँ?
1: वो मैम अब तो जैसे या तो चालान ब्रांच है हमारी, जैसे अपना DCP ऑफिस है ना सेक्टर 12 में जो लघु सचिवालय है उसमें चालान ब्रांच है
0: जी,
1: वहाँ जाके भर सकते हैं आप।
0: अच्छा, वहाँ जाकर मैं चालान भर सकती
1: हूँ जी मैम।
0: ओके।
1: और अब ये जैसे QR है ये कम काम कर रहा है, हमारी जो मशीन है ना वहाँ भी जमा करा सकते, जो हम मौके पर जो चालान करते हैं इंटरनेट कम चलने की वजह से कई बार काम कम करता है, उसकी बजाय चालान ब्रांच में जो ट्रैफिक पुलिस है सेक्टर 12 लघु सचिवालय में वहाँ पर जाकर जमा कर सकते हैं
0: जी, जी।
1: और जो मौके पर भी जमा कराना चाहो तो मौके पर भी हो जाता है, कई बार इंटरनेट की वजह से सर्वर
0: रुक जाता, हाँ, सर्वर
1: रुक जाता है जी। और बाकी जैसे कोर्ट की में जाना चाहता है तो कोर्ट में भी, और जैसे कोर्ट लगती स्पेशल
0: जी जी
1: 2-3 महीने में
0: तो उसका नोटिस आता है उस व्यक्ति के पास कि आपके चालान बचे हैं वो बकाया
1: नहीं, वो जैसे एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं अखबार में भी निकाल देते हैं भाई इस तारीख की
0: अदालत लग रही है तो आप वहाँ पहुँचे।
1: हाँ, अपना जो चालान भरना चाहो तो भर सकता है अपना वहाँ जज साहब के सम्मुख पेश होकर, तो जो भी उसकी वे गलती है जो भी वो सॉरी फील करता है तो उसमें कुछ उसके उनके माफ कर देते हैं
0: जी जी जी। यानी अगर आपके चालान ऑलरेडी कट चुके हैं, आपको फाइन जो है वो लगाया गया है और आपने अभी तक वो फाइन नहीं भरा है तो आप अगर ऑनलाइन नहीं भर पाए हैं किसी वजह से तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अखबार में ऐड देखते रहिए, अगर कोई ऐसी ट्रैफिक की अदालत का जहां पर चालान जो है वो आपको सबमिट कराने हैं, फाइन जमा करना है, इसका कोई ऐड आपको दिखता है लोकल अखबार में तो आप ज़रूर उसका लाभ उठाएं और वहां पर जाकर अपने चालान भरें। शायद यही वजह है जयबीर जी के लोगों में डर थोड़ा कम हो गया कि चालान का अमाउंट जो है वो 5,000 से 2,500 हो जाएगा
1: जी। जी मैम
0: जी, ये दिक्कत है। तो लोगों में बेसिकली मुझे लगता है कि डर कम हो गया है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ना होने की वजह से भी हल्के में ले लेते हैं
1: जी मैम
0: ट्रैफिक रूल्स को
1: जी मैम।
0: पर सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने एरिया को, क्योंकि आप एनआईटी के ट्रैफिक इंचार्ज है और एनआईटी में वो सारी सड़कें आती हैं जहां पर दिन भर ट्रैफिक होता है। नीलम फ्लाईओवर भी एनआईटी में आता है, बाटा फ्लाईओवर भी एनआईटी में आता है, ओल्ड कांडर पास भी एनआईटी में आता है। और ऐसी परिस्थिति में कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, क्या प्लान है आपका?
1: इसमें मैम हम ज्यादा से ज्यादा अपने मुलाजिम लगा के और गाड़ी को रोक रोक के, जैसे बत्ती पे है तो वो रोक रोक के चलाते हैं, जो ट्रैफिक है वो दाएं बाएं से नहीं घुसे और नियम अनुसार ही चलाए
0: जी। और जयवीर जी, अगर कोई व्यक्ति अपने सामने कोई अपराध होते हुए देख रहा है, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करें, जैसे मैं आज आपको आज का अपना किस्सा बताना चाहती हूँ। मैं सुबह ऑफिस आ रही थी सूरज कुंड रोड से और अचानक से अनखीर वाले गोल चक्कर पे आगे एक ऑटो वाला अचानक से आ गया, तो सबकी गाड़ियां रुक गई
1: जी मैम,
0: लेकिन मेरे पीछे बिल्कुल एक वैगन आर थी
1: जी मैम,
0: और उस वैगन आर वाले ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया कि मुझे निकलना है, रास्ता दो
1: जी मैम,
0: और बजाता ही जा रहा है, नॉन स्टॉप हॉर्न बजाता जा रहा है, आसपास वाले सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसको आगे निकलने का रास्ता मिला
1: जी मैम,
0: वो आगे गया और उसने पीछे वाले सबको देख के जोर जोर से शीशे के अंदर से ही अपनी गालियां देना शुरू कर दिया
1: जी मैम,
0: बदतमीजी करी
1: जी मैम।
0: अब गाड़ी का नंबर भी बहुत सारे लोगों ने नोट किया, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि ऐसी परिस्थिति में अब क्या करें, क्योंकि वो बहुत तेज आगे निकला और बहुत सारे लोगों रैश ड्राइव करता हुआ ओवर स्पीडिंग में आगे निकल गया। अब ऐसे में अगर मेरे जैसी कोई महिला है और वो फंसना नहीं चाहती किसी चक्कर में कि भाई उसको कल को कोई परेशान करे या कोई पुलिस स्टेशन में बुलाए, तो वो क्या करे?
1: जी मैम, उसकी वीडियो बना के और जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है,
0: पर सर जैसे मैं भी गाड़ी चला रही हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना सकती उस टाइम, तो क्या करना चाहिए? अब गाड़ी का नंबर मुझे
1: नंबर नोट करके उसकी डिटेल लिख जाती है मैम
0: जी,
1: हमारे पास भी निकल आएगी।
0: अच्छा,
1: हाँ मशीन हमारे पास, उसका जो भी उसका नाम है, एड्रेस है, वो सभी निकल आएगा और उसके अपने बयान दिए जाएंगे, जैसे जो अपना डीसीपी की साहब की जीमेल आईडी है उस पर डाल सकते हो।

0: बार दो, फिर 5 और 3 बार 9। बहुत सिंपल सा नंबर है, इस नंबर को आप अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं।
1: जी मैम।
0: जब भी आपको दिखे ऐसी परिस्थिति कि कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, राह चलते रोड रेज कर रहा है, या फिर आपकी गाड़ी को टक्कर मार गया है, या फिर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट आप देख रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं एक बार फिर बता देती हूँ, 01 2 9 2 5 9। तो बातों का सिलसिला जारी है दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नंबर है बहुत आसान, 8010781078।

0: Dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na
1: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ बहुत सारी बातों का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, और ट्रैफिक को ठीक रखने के लिए, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए क्या चालान करना ही सही है, कभी कभी स्ट्रिक्टनेस जरूरी होती है, मुझे भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हम आप सड़कों पर जाते हुए देखते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, जो रॉन्ग साइड जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर स्पीडिंग कर जाते हैं, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे गलियां, चाहे हाईवे, कहीं पर भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और जब इनका चालान काटा जाता है तो फिर ये इधर उधर फोन मिलाना शुरू कर देते हैं। आपके भी नोन को इस कैटेगरी में आते हैं तो हमें जरूर बताइएगा 8010781078 पर, या फिर आप अगर कभी ऐसे सिचुएशन होते हुए देखें तो 112 पे कॉल भी कर सकते हैं, खुद भी एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। अगर आपको कोई शख्स ऐसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ता हुआ मिलता है तो बस आपको ये बातचीत, ये जानकारी या फिर कोई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया, फरीदाबाद पुलिस ट्विटर यानी एक्स और इंस्टाग्राम पर डालनी है, या फिर आप 112 पे कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी नंबर आपको असाइन किया जाएगा, जो भी पुलिस अधिकारी आप तक पहुंचेंगे, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल बात चल रही है बहुत सारी ट्रैफिक से जुड़ी हुई। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री जयवीर सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज NIT फरीदाबाद। जयवीर जी, ट्रैफिक की बात तो हमने कर ली है और बहुत सारी बातें आपने कर ली हैं। हाल ही में डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा था कि एक्सप्रेस वे पर अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, बीच में एक बहुत बड़े वकील थे जिनकी डेथ हो गई रॉन्ग साइड गाड़ी आने की वजह से, और अक्सर एक्सीडेंट एक्सप्रेस वे पर होते रहते हैं, तो ऐसे में एक्सप्रेस वे के एक्सीडेंट्स रोकने के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि रॉन्ग साइड कोई आएगा तो गाड़ी इंपाउंड कर ली जाएगी।
2: बिल्कुल मैम।
1: तो क्या ऐसा होगा या हो रहा है?
2: हाँ हो रहा मैम, जैसे वहाँ पर हमारी ड्यूटी रहती है, गाड़ी रहती है इंटरसेप्टर वगैरह, जो रॉन्ग साइड मिलता है उसका चालान करते हैं। अगर जो किसी कारण एक्सीडेंट भी हो जाता है तो तुरंत क्रेन को बुला के अपना साइड में करवा के, जो लोकल पुलिस से बुला के उसके खिलाफ कार्रवाई करते, जिसकी वजह से
1: तो रॉन्ग साइड गाड़ियों को क्या आप इंपाउंड कर रहे हैं अभी, क्योंकि रॉन्ग साइड बहुत कॉमन है हमारे देश में।
2: हाँ, ये जो भी रॉन्ग साइड गाड़ी चलती है वो हमारे DCP साहब के आदेश के अनुसार उन गाड़ियों को हम राउंड अप कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, फरीदाबाद पुलिस भी अब स्ट्रिक्ट हो गई है रॉन्ग साइड को लेकर। तो अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, खासतौर पर से एक्सप्रेस वे से, जो कि सबसे खतरनाक होता है अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर गाड़ियां 100, 80, 110 की स्पीड में चलती हैं।
2: जी
1: वहां से अगर रॉन्ग साइड आप जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी को चालान तो देना ही पड़ेगा, जो कि काफी हैवी चालान है, पेनल्टी काफी हैवी है। इसके साथ साथ फरीदाबाद पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त भी कर सकती है, यानी इंपाउंड भी कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में आपने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई है तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी पर FIR, आप पर FIR दर्ज कर सकती है। ये हाल ही में अभियान चलाया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा, जिसमें 22 और 23 मई के सिर्फ दो दिन में 1170 FIR हो चुकी है रॉन्ग साइड वालों की। बाकी चीजों की हम बात नहीं करें, हम सिर्फ रॉन्ग साइड की बात करें, क्योंकि रॉन्ग साइड एक ऐसा रूल ब्रेक है जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस 110 गुना बढ़ जाते हैं।
2: जी मैम।
1: आप सीधे सीधे अपनी रोड पे चल रहे हैं, आप अपनी धुन में आराम से चल रहे हैं, सामने से अगर कोई रॉन्ग साइड आ रहा है तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। तो इसीलिए रॉन्ग साइड को बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो पुलिस लेके चल रही है, चाहे वो फरीदाबाद पुलिस हो या कोई और पुलिस हो। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने ये गलती करी तो फिर आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए क्यों ऐसी गलती करें जिससे जो है आपको ही नुकसान हो। तो क्या कहना चाहेंगे जयवीर जी, अब चलते चलते लोगों से कुछ जानकारी देना,
2: जैसे उनको स्पेशल अभियान चला जाता है, समझाया भी जाता है भाई रॉन्ग साइड में कितना, मतलब खुद को भी कैजुअल्टी है और आगे से आने वाला हाथ अपना टारगेट करके चलता है।
1: जी।
2: और वो एकदम व्हीकल दिखता है, सहम जाता है।
1: जी बिल्कुल।
2: और
1: बिल्कुल।
2: स्पीड में गाड़ी रहती है, उस कारण बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है उसको भी और खुद को भी, और आसपास है तो उसको दूसरे व्हीकल आगे पीछे उनको भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है
1: जी। तो मैं बस जयबीर जी आपसे अब ये चाहूंगी चलते चलते आप हमें थोड़े चालान का अमाउंट बता दें।
2: जी मैम,
1: कुछ चालान ऐसे होते हैं जैसे सीट बेल्ट ना पहनना, कितना उसका चालान है, या फिर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे लोग निकल लेते हैं।
2: इनके ज्यादातर 5,000 के चालान है मैम
1: जी।
2: जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो 5,000 रुपए चालान है इसके
1: जी।
2: सेक्शन 318 लगती है
1: जी। अंडर एज ड्राइविंग का कितना चालान है?
2: इनका भी 5,000 रुपए चालान है।
1: 5,000 रुपए चालान, और इसमें पेरेंट्स को भी जो है उन पर कार्रवाई होगी।
2: हाँ, कार्रवाई होगी
1: जी जी। साथ ही ओवरलोडिंग वाली गाड़ियां हमने बहुत देखी हैं, रोकी भी जाती हैं सड़कों पर, ऐसा नहीं है
2: जी मैम,
1: लेकिन ओवरलोडिंग की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि साथ में चलता हुआ ट्रक है, गाड़ी है, उस पे से पत्थर गिर गए
2: जी मैम,
1: तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं
2: जी मैम। ये मैम सेंक्शन 113(3), 194(1) के तहत कार्रवाई होती है, उनके FIR भी होती है और उनका भारी चालान किया जाता है
1: जी जी। यानी इसमें FIR का सीधा,
2: FIR का इसका सीधा FIR का वो।
1: इसके अलावा सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत कॉमन है गाड़ी चलाते हुए, इसका कितना चालान है?
2: इसमें मैम 10,000 का चालान है और 184 सेंक्शन के तहत कार्रवाई की जाती है
1: जी। यानी 10,000 का चालान है सिर्फ फोन का इस्तेमाल करने
2: जी मैम
1: जी। अगर आप अपना फोन का इस्तेमाल करें गाड़ी चलाते हुए, जो कि बहुत कॉमन है, तो 10,000 रुपए का चालान आप पर हो सकता है। इसके साथ साथ ड्रंक एंड ड्राइविंग की बात आपने करी थी, बहुत बड़ा अभियान जो है वो फरीदाबाद पुलिस द्वारा चलाया भी जाता है, अक्सर सैटरडे संडे नाइट को बहुत लोगों को देखा गया है कि वो पकड़े भी जाते हैं
2: जी मैम।
1: सो ऐसे में कितना चालान होता है?
2: इसमें मैम 185 सेक्शन 185(88) के तहत FIR भी होती है,
1: सीधा FIR।
2: हाँ, उसमें कोर्ट उनका कोर्ट में पेशी होती है और वहीं उनका भरा जाता है, अमाउंट भरा जाता है
1: जी। एक समस्या और है जयवीर जी, जो मुझे लगता है पूरे देश में गलत पार्किंग करना, इतनी गलत पार्किंग हो रही है मोहल्लों में, गलियों में, मार्केट में, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? कितना?
2: इसमें 500 से 1500 तक अमाउंट का चालान का है।
1: यानी आपने अगर गलत गाड़ी पार्क,
2: जैसे हम मौका देख भाई कहाँ पे नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करती है ना, 500 से 1500 तक चलान रहता है
1: जी जी,
2: और ट्रैफिक में बाधा पहुंचाते हैं
1: जी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि कहीं भी पार्किंग कर रहे हैं, एक तो अगर मार्केट एरिया में जा रहे हैं तो बिल्कुल भीड़भाड़ वाले एरिया में गाड़ी ना लेके जाएं, दूर खड़ी करें
2: जी मैम।
1: और अगर आप किसी वजह से लेके भी जा रहे हैं, सो आप ऐसी जगह पर पार्क करें जहां पर रास्ता ना रुके, क्योंकि अगर ट्रैफिक लगा रास्ता रुका तो आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, फंसी जाएगी। इसके साथ साथ जयवीर जी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है सीट बेल्ट का ना लगाना
2: जी मैम।
1: तो फरीदाबाद में इसका कितना चालान है?
2: इसका मैम 1,000 रुपए चालान है, जो सीट बेल्ट लगाता है ना
1: जी जी,
2: 1,000 रुपए चालान है इसका
1: जी, 1,000 रुपए चालान है। और एक समस्या और बहुत बड़ी है जो यंगस्टर्स के साथ देखी गई है, गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ मजाक करना
2: जी मैम।
1: गाड़ी का नंबर अगर 8055 है तो उसको ऐसे फॉन्ट में लिखवाएंगे कि वो बॉस दिखता है
2: जी मैम,
1: और गाड़ी के नंबर ऐसे डिजाइन से बनाए जाएंगे, यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वो नहीं लगवाते,
2: नहीं लगाते मैम।
1: तो इसका कितना चालान है और क्या कार्रवाई होती है?
2: इसका 500 से 1500 रुपए तक चालान है,
1: सिर्फ 500 से 1500 रुपए चालान है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो अपराध होते हैं वो गलत नंबर की, जो नंबर प्लेट एक्सचेंज कर ली जाती है, बदल दी जाती है, इसकी वजह से भी होते हैं, और बाद में ये चीज जो है वो खुल के आती है। सो
2: इनको जैसे अभियान भी चलाते हैं, चेक भी करते हैं कि जैसे RC के साथ भी मिलान करते हैं, जैसे मशीन में हम नंबर डालते हैं तो उसको पता भी लग जाता है भाई इस बंदे की है और दूसरे का नाम है ये
1: जी जी, क्योंकि गाड़ी के शीशे पे जो नंबर लिखा हुआ वो अलग होता है और गाड़ी की नंबर प्लेट पे नंबर है वो अलग होता है, तो ऐसे में नकली नंबर जी जी
2: जी।
1: तो बहुत सारे चालान और उनके अमाउंट हमने आपको बता दिए हैं, उम्मीद है आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ अपने शहर को और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सेफ बनाएंगे। जयवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए
2: जी मैम
1: और आपने जानकारी दी, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू मैम जी, मैम वेलकम।
1: तो दोस्तों बहुत सी बातें हमने आपके साथ की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब ट्रैफिक पुलिस की बात आती है ना तो ये दो तरफा बातें होती हैं, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी गुस्सा जो है या फिर स्ट्रिक्टनेस जो है वो ही चीज़ों को कंट्रोल कर पाती है। ये बात आज की नहीं है, ये बात बरसों पुरानी भी है, क्योंकि जब भगवान राम को समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो उन्होंने कहा था, बिने नमानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक भयभीन होई न प्रीत। समझे आप, यानी भय के बिना प्रीत भी नहीं हो सकती है, कई चीजें आसानी से ठीक नहीं हो सकती हैं। तो चालान और स्ट्रिक्टनेस अगर ट्रैफिक पुलिस आपके लिए कर रही है तो उसको समझिए, उसकी जरूरत को समझिए, सिर्फ क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक पुलिस का साथ नहीं देंगे तो फिर आप जिंदगियों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हमारे देश में लगभग 2.25 लाख लोग हर साल अपनी जान ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स में गंवाते हैं और 4 से 5 लाख घायल हो जाते हैं, और घायल भी ऐसे जो कई बार ठीक भी नहीं हो पाते। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए है, उनके रूल्स को फॉलो करिए। ट्रैफिक रूल्स आपकी सुरक्षा के लिए बने हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते ही आपको इन सब रूल्स को समझना है और इन्हें फॉलो करना है। बस अपना ख्याल रखिए। सुरक्षा संवाद में आज बस इतना ही, फिर से होगी मुलाकात एक नए अधिकारी के साथ, आपकी सुरक्षा को लेकर करेंगे बातचीत और वार्तालाप। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम जिसमें मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूं जो मानवता की राह पर चलते हैं, ऐसी संस्थाओं के बारे में जानकारी देती हूं जो मानवता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप तक वो सारी मानवता की प्रेरणा लेकर आती हूं जिससे कि हम अपने समाज में और अपने आप में मानवता जिंदा रखें। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक ऐसी संस्था है जो बहुत फेमस है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। जी हाँ, एक ऐसी संस्था जो नशा मुक्ति का काम करती है। कैसे करती है, क्यों करती है, कब इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, और इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में जुड़ रहे हैं चेतन, जो कि चेयरमैन है पब्लिक इंफॉर्मेशन दिल्ली इंटर ग्रुप। और चेतन, आपका स्वागत है रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद मैम।
1: चेतन, सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई और कब हुई?
2: मैम, मैं आप बताना चाहूंगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत 10 जून 1935 को एक्रॉन ओहायो USA के एक शहर में हुई। और हुआ ये था कि उस समय दो लोग ऐसे थे जिनमें से एक का नाम है डॉक्टर बॉब स्मिथ और दूसरे थे बिल डब्लू, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर थे, और डॉक्टर बॉब जो कि उस समय एक जाने माने सर्जन थे। इन दोनों की एक मुलाकात हुई थी और इन दोनों की मुलाकात में इनकी आपसी बातचीत में ये चीज सामने आई कि जब एक शराबी दूसरे शराबी से बात करता है तो उस पल के लिए वो शराब पीने की जो इच्छा थी वो खत्म हो जाती थी, और यहीं से हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो एक संस्था है इसकी नींव पड़ी। और आज लगभग दुनिया के हर कंट्री में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स होती है, और भारत में अगर मैं बात करूं तो हर बड़े राज्य में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग अभी कार्यरत
1: है। देखिए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस 1935 में शुरू हुआ, और आज अगर हम देखें तो शायद मैं कह सकती हूं कि नेटफ्लिक्स की तरह हर देश में आपको अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अलग अलग विंग्स और साथ के साथ मीटिंग्स मिल जाएंगी। लेकिन ये मीटिंग्स क्या है और ये किस तरीके से काम करती हैं, और मजेदार चीज ये है कि ये मीटिंग्स किसकी होती हैं, इसके बारे में ना बहुत सारी बातें हैं जो मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं लेने वाली हूँ एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, छुड़े रहिएगा रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। ये जो आज की बातचीत है ना, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके घर में, आपके आसपास, आपकी जानकारी में, आपकी विजिनिटी में कोई भी ऐसा शख्स है जिसे नशे की लत है, तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आपके लिए है। तो जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ। दरअसल इनका जो ध्येय है या कहना चाहिए मोटो है, कहता है यूनिटी सर्विस रिकवरी। जब यूनाइटेड होंगे और मिलकर सर्विस करेंगे तभी तो रिकवर होंगे। लेकिन ये किस तरीके से रिकवर करते हैं और डी एडिक्शन का ये जो इनका तरीका है क्या है, चलिए जानते हैं चेतन से। आज हमारे साथ चेतन हैं जो कि चेयरमैन है पब्लिक इंफॉर्मेशन दिल्ली इंटर ग्रुप, और ये हमें बता रहे हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बहुत सारी जानकारी। चेतन जी, आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से काम करते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस। आपने कहा मीटिंग्स होती हैं पूरे विश्व के अलग अलग कंट्रीज में, और हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में भी इसके बहुत सारी जगह पर मीटिंग्स होती हैं। तो ये क्या मीटिंग्स हैं और किस तरीके से ये होती हैं, और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप कितने लंबे समय से जुड़े हैं इसके साथ?
1: अल्कोहलिक्स एनोनिमस दरअसल एक ऐसी संस्था है जो उन लोगों के लिए काम करते हैं जो शराब से पीड़ित हैं, और मीटिंग्स में हम अपना अनुभव एक दूसरे से साझा करते हैं कि हम क्या थे, हमारे साथ क्या हुआ, और आज हम किस तरीके से इस शराबीपन से निकल पा रहे हैं। हम वहाँ इकट्ठा होते हैं, वही लोग जो शराब से पीड़ित हैं, अपना अनुभव, अपनी शक्ति और अपना आशा एक दूसरे से साझा करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और जो भी नया आने वाला सदस्य होता है उसको एक हिम्मत देते हैं कि अगर हम ठीक हो गए हैं तो आप भी ठीक हो सकते हो। और मीटिंग्स में वही लोग आते हैं जिनको प्रॉब्लम है, जो इस लत से जूझ रहे हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स उनके लिए हमेशा के लिए ओपन रहती है। और मैं अपना बताऊं तो मुझे लगभग 7.5 साल हो गए इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संस्था से जुड़े हुए, और मैं भी किसी टाइम में मेरे पास भी कोई उम्मीद नहीं थी और मैं काफ़ी टूट चुका था और काफ़ी परेशान था। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैं डिप्रेशन में था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन आखिरी बार मेरे को कहीं से संस्था का पता चला, और 10 दिसंबर 2018 को मेरा पहला दिन था जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में गया, और आज का दिन है मुझे शराब पीने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव है वो आज मेरी परिवार में खुशहाली का एक अच्छा माहौल बना हुआ है। नहीं तो एक समय ऐसा था मेरी वजह से मेरी पूरी की पूरी फैमिली परेशान रहती थी, और बहुत कुछ मेरा नुकसान हुआ, मेरी नौकरी गई, मेरा काम धंधा गया, मेरे पैसे बर्बाद हुए, मैं फिजिकली मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ, लेकिन आज इन सब चीज़ों से मैं निकल आया हूँ सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद से।
0: चेतन जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप कहते हैं मीटिंग्स होती हैं, तो क्या इन मीटिंग्स में नशा मुक्ति के लिए या शराब मुक्ति के लिए, खास तौर पर मैं अगर स्पेसिफाई करना चाहूँ हमारे सभी लिसनर्स को, तो शराब मुक्ति के लिए कोई दवाई दी जाती है, कोई सलाह दी जाती है, या किसी तरीके का मेडिकेशन दिया जाता है?
1: देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, हमारी मीटिंग्स में ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही हम प्रोफेशनल है, ना ही कोई किसी प्रकार की दवाई दी जाती है, और ना ही कोई फीस ली जाती है। दरअसल ये उन लोगों की संस्था है जो कभी इस लत और आदत से घिरे हुए थे। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भी कभी इस बीमारी से ग्रस्त था, और आज मैं सोवर हूं सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वजह से। यहां सिर्फ हम अपना अनुभव शेयर करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, आज हम कैसे और हमने क्या किया। एक हमारा 12 कदमों का रिकवरी प्रोग्राम होता है जिसको हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो हमारी शराब पीने की जो तलब होती है वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म होने लगती है, और उसके साथ साथ मेरे विचारों में, मेरे व्यवहारों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और मेरी जो इच्छा एक टाइम में ऐसी होती थी कि मैं शराब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या मेरे को शराब चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं।
0: ओके, सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन मीटिंग्स में ना तो कोई दवाई दी जाती है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई इस प्रकार की सलाह दी जाती है, सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है।
1: हाँ जी।
0: और इस एक्सपीरियंस शेयरिंग से आप ये कह रहे हैं कि लोगों की शराब की लत खत्म हो जाती है, मतलब लोग बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिकेशन के, बिना लंबे समय में किसी नशा मुक्ति केंद्र में रहे हुए, आइसोलेशन में रहे हुए, उन्हें इसकी नशे मुक्ति के पूरे जाल से बाहर निकाला जा सकता है। सुनने में बहुत अचंभित करता है मुझे, आई कैन नॉट इमेजिन, मतलब नशा मुक्ति डी एडिक्शन, मुझे तो पता है कि बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर होते हैं जो बहुत मोटी फीस लेते हैं, और यहाँ तक कि अगर आप देखें तो वहाँ पर लोगों को रखा जाता है, अलग किस्म का खाना दिया जाता है, उनके अलग अलग किस्म के विड्रॉल्स होते हैं, और इन सारी चीज़ों से उन्हें बाहर निकाला जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग जो डी एडिक्शन सेंटर्स में जाते हैं, वापस आकर फिर से उन्हें इसकी लत लग जाती है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस अलग किस तरीके से है, जरूर जानने वाली हूँ, बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्यूरियस। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं जिस संस्था के साथ, वो संस्था वाकई में साइकोलॉजी पर काम करती है, एल्कोहलिक्स एनोनिमस। एल्कोहलिक्स एनोनिमस जिसका मोटो है यूनिटी सर्विस रिकवरी, और यूनाइटेड होकर जिस तरीके से वो सर्विस कर रही है, रिकवर तो बहुत सारे लोगों को कर रही है। हमारे साथ आज स्टूडियो में है चेतन जी, जो कि चेयरमैन है पब्लिक इंफॉर्मेशन दिल्ली इंटर ग्रुप, और ये हमें एल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में बता रहे हैं। चेतन जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी मीटिंग्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है और एक 12 स्टेप्स का कोई पूरा प्रोग्राम है। तो इन 12 स्टेप्स के प्रोग्राम में मुझे बताइए किस तरीके का ये प्रोग्राम है और किस तरीके से आप लोगों का ये पूरा का पूरा नशा मुक्ति का जो प्रोग्राम है ये बाकी प्रोग्राम से अलग है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र में जाकर देखा है और वहां पर लोगों को काफी हद तक मैंने जूझते हुए देखा है। आइसोलेशन में होते हैं, कई बार उन्हें मारा पीटा भी जाता है क्योंकि वो वायलेंट हो जाते हैं। तो मुझे बताइए आप लोगों का ये 12 स्टेप्स का प्रोग्राम क्या है।
1: पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो फेलोशिप है वो कुछ आध्यात्मिक प्रिंसिपल पे काम करती है, जिसमें से एक है हमारा 12 कदमों का प्रोग्राम
0: जी।
1: ये 12 कदमों का जो कार्यक्रम है वो हमें दिन प्रतिदिन बेहतर बनाती है और हमारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं उन पे नजर रखने का एक मौका हमें प्रदान करती है। और इससे होता ये है कि मुझे मेरे बारे में पता चलता रहता है कि आज मेरी आध्यात्मिक स्थिति किस प्रकार की, क्या मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, या कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, या मैं खुद से बेईमान तो नहीं हूँ। इन सभी चीजों को जब मैं अपने ऊपर अमल करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी जो आध्यात्मिक जागृति है वो उसमें सुधार होना शुरू हो जाता है। और ये सब मेरी जो शराब की तरफ ले जाने वाली एक मानसिकता है उस पे एक गहरा प्रभाव डालती है, जिस वजह से मेरे को शराब की ओर जाने का एक इच्छा नहीं करती।
0: Okay.
1: और यही चीज मैं अपनी जीवन में अप्लाई करता हूँ। और दूसरी चीज आपने बताया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस अलग कैसे है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी संस्था से जुड़ने के लिए कोई आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेता, ना ही आपसे कोई फॉर्म साइन कराता है। एक तरीके से हम एक गोपनीयता का खास ध्यान रखते हैं कि जो भी नया आने वाला सदस्य हो उसकी जो गोपनीयता है उसको बनाए रखते हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं शराब पिया करता था तो मैं बहुत आइसोलेटेड हो जाता था। अगर मेरे को कोई बाहर निकल के अगर मैं जाऊं और कोई मेरे को कह दे वो शराबी जा रहा है तो मेरे को बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन हमारी संस्था में कोई किसी को ये नहीं कहता कि आपको आप शराबी हो या आपको शराब से समस्या है। हम सब सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और सामने वाला सेल्फ एग्जामिनेशन यानी वो खुद ही अपनी एक इन्वेंट्री लेता है कि क्या मुझे प्रॉब्लम है। और अगर उसको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ सामने जो बैठा इंसान अपने बारे में बता रहा है वो चीज़ मेरे साथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम उसके अंदर भी है। और जब ये चीज़ उसको पता चल जाती है तो यहीं से हमारी जो कहते हैं ना एक सुधार की जर्नी शुरू हो जाती है, जिसे हम रिकवरी जर्नी भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह कई फीस भी ली जाती है, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लेता, कोई चंदा नहीं लेता, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि आपकी इच्छा है शराब से दूर रहने की। बस यही इच्छा ही एल्कोहलिक्स एनोनिमस आपसे मांगती है सदस्यता के लिए।
0: सो चेतन जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस लत के शिकार हैं, बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स में भी वो जाते हैं। सो मुझे बताइए कि एल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब लोग आते हैं, सो क्या आपने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो बहुत वर्स कंडीशन जिन्हें कहा जाता है, एंड क्या आपने उन्हें ठीक होते देखा है?
1: हाँ जी, मेरे अभी जो सोब्राइटी पीरियड है वो शायद अभी थोड़ा कम है, 7 या 8 साल मेरे को तकरीबन होने वाले हैं। लेकिन मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं मीटिंग्स के अंदर जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज वो सोबर हैं और एक अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि फर्स्ट मीटिंग में मैंने देखा था कि एक न्यू कमर आए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये नहीं, इनके अंदर सुधार आ पाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद देखा तो उनको भी काफ़ी समय हो गया है शराब से दूर। सिर्फ उन्होंने एक ही काम करा जो हमारे बताए गए सिद्धांत जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में बताए जाते थे उनको उन्होंने ईमानदारी के साथ फॉलो किया। एक पाथ होता है, इस पाथ को अगर मैं ईमानदारी के साथ फॉलो करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी जो रिकवरी की यात्रा है वो शुरू हो जाती है।
0: जी, तो आपका ये कहना है कि ये जो 12 स्टेप्स की रिकवरी की यात्रा है, इस 12 स्टेप्स की रिकवरी की यात्रा से गारंटीड अगर कोई इच्छा रखता है तो वो इस नशे की लत से दूर हो सकता है।
1: देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जैसे अभी आपने शब्द यूज करा गारंटी, ये एक तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि अल्कोहलिज्म जो है वो एक बीमारी है
0: जी,
1: और बीमारी रिलैक्सेबल बीमारी है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर मैं पहली मीटिंग में आया और पहली मीटिंग से ही मैं सोबर हूँ, हो सकता है मुझे थोड़ा समय लगे
0: जी।
1: या ऐसा भी हो सकता है मुझे थोड़ा समय हो गया है उसके बाद मैंने दोबारा शराब पी ली
0: जी,
1: क्योंकि इसको हम कहते हैं कि रिलैक्सेबल डिजीज है। लेकिन देखा गया है कि अगर मैं नियमित रूप से बैठकों में हिस्सा लेता हूँ, इन 12 कदमों का अभ्यास अपने जीवन में करता हूँ, तो अधिकतर लोग, उनको ये रिलैप्स होने की नौबत नहीं आती
0: जी।
1: और उनकी जो ये रिकवरी है ये मरते दम तक उनके साथ चलती है। ये बहुत देखा गया है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलैप्स हो जाते हैं और उनमें से भी ये देखा गया है कि वो भी जब नियमित रूप से इन बैठकों में हिस्सा लेते हैं तो धीरे धीरे करके वो भी सुधार का हिस्सा बन जाते हैं और उनकी भी रिकवरी की जर्नी शुरू हो जाती है।
0: एक बड़ा अहम सवाल है चेतन जी, जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे लिसनर्स को एक प्यारा सा गाना सुना रही हूँ। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM के साथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में। अगर आपके पास है कोई भी सवाल तो जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठा लीजिए, मुझसे पूछिए और मैं आपका सवाल पूछने वाली हूँ चेतन जी से 8010781078 पर। तो प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाना, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टू वर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस खास संस्था से आज हमारे साथ चेयरमैन पब्लिक इंफॉर्मेशन दिल्ली इंटर ग्रुप चेतन हमारे साथ है। इनका सबसे बड़ा ध्येय है एनोनिमिटी। जी हाँ, तो ना तो नाम रिवील करते हैं ना चेहरा, और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान या कहना चाहिए सबसे बड़ी यूएसपी है। चेतन जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ मीटिंग्स होती हैं, तो ये जो आपकी बैठकें हैं या मीटिंग्स हैं, इन्हें एग्जैक्टली कितना अटेंड करना होता है, और अमूमन कितनी मीटिंग्स में आने के बाद, जैसे आपने कहा कि मैं तो 6-7 सालों से बिल्कुल सोबर हूँ और रिलैप्स नहीं हुआ है, तो जो रिकवरी है वो कितने टाइम पीरियड में होती है, एज मिनिमम या एज मैक्सिमम कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि रिकवरी कितने टाइम पीरियड में होती है, ये निर्भर करता है मेरी होनेस्टी के ऊपर
0: जी।
1: क्योंकि जब मैं पहली बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इन मीटिंगों में जब मैं आया, तो जो वहाँ मेंबर्स बैठे थे उनके अनुभव जब मैंने सुने, तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो सामने लोग बैठ के अपना अनुभव बता रहे हैं, ये मेरे साथ हुआ था।

0: उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि ये किस वजह से हुआ, उसका एक पार्ट बताया था इन्होंने डिजीज का
1: जी,
0: कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हूँ। शारीरिक रूप से इस प्रकार से कि अगर मैं एक घूट या एक पैक शराब अपने शरीर के अंदर डालता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी एक एलर्जी ट्रिगर होती है जो डिमांड करती है मुझे और शराब चाहिए
1: जी।
0: दूसरा इन्होंने बताया कि मानसिक रूप से अगर मैं शराब नहीं पी रहा या आज शराब पीने के मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे को जुगाड़ कैसे करना है शराब के लिए, है ना, किसको टोपी पहनानी है, किससे उधार लेना है, हेरा फेरी करनी है, अगर पैसे हैं तो शाम को पीनी है तो कैसे पीनी है, आज पानी में पीनी है, सोडे में पीनी है, तो ये सब चीजें इन्होंने मेरे को बताई तो मेरे को पता चला कि हाँ ये मेरे साथ हुआ। और कहीं ना कहीं मेरी एक इच्छा हुई कि मुझे भी अब अपने अंदर बदलाव लाना है, वो इच्छा मेरे दिल से ही उत्पन्न हुई। और जब ये इच्छा मेरे अंदर उत्पन्न होती है तो कहते हैं कि आपकी रिकवरी की यात्रा शुरू हो जाती है। तो इसका मैं ये नहीं कह सकता कि आप कितने समय में ठीक हो सकते हो या आपको कितना समय लग सकता है ठीक होने में, बस ये कह सकता हूँ कि अगर आप नियमित रूप से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में आओगे, ध्यान से मेंबर्स के अनुभव को सुनोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो एक इच्छा है शराब से दूर रहने की या आपकी जो शुरुआत है रिकवरी की वो शुरू हो जाती है।
1: चेतन जी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स कितनी ऑफनली होती हैं या कैसे होती हैं और इसमें कोई कैसे आ सकता है, और क्या मतलब मान लीजिए कि किसी के परिवार में कोई ऐसा इंसान है जिसे एडिक्शन की परेशानी है तो परिवार के सदस्य भी उन्हें वहां ला सकते हैं?
0: देखिए मैं बता देता हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो मीटिंग्स होती है, जब कोई नया सदस्य अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में आता है तो उसके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में एक न्यू कमर मीटिंग अरेंज की जाती है जिसमें सभी मेंबर्स एक एक करके आते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं। कोई मेंबर अपनी जीवन के बारे में बताता है कि किस तरीके से शराब उनके जीवन में आई, शराब पी के उन्होंने क्या क्या किया और वो किस स्टेज तक पहुंच गए थे आखिरी समय में। उसके बाद कोई मेंबर आके इसके डिजीज के पार्ट को समझाता है कि किस तरीके से अल्कोहलिज्म एक शराबी के ऊपर काम करती है और क्या क्या उसके इफेक्ट होते हैं। उसके बाद कोई इसकी रिकवरी प्रोसेस के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। ये पहली मीटिंग होती है न्यू कमर मीटिंग के लिए। उसके बाद कुछ मेंबर्स उठकर अपना नाम देते हैं कि हम इस न्यू कमर को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। स्पॉन्सर मतलब वो एक ऐसा इंसान जो इस लत से निकल चुका है, जिसको काफी समय हो चुका है और इन 12 कदमों के कार्यक्रम का वो अभ्यास कर रहा है, वो एक तरीके से एक मार्गदर्शक का काम करता है एक नए आने वाले सदस्य को। वो बताता है कि हमें इन 12 कदमों को किस तरीके से अपने जीवन में अमल करना है, है ना, और डेली रूटीन के हिसाब से हमें क्या क्या काम करना है जिससे कि हम शराब से दूर रह सके। और इस तरीके से ये पूरी जो न्यू कमर मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज होती है। और जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई परिवार वाला परिवार के सदस्य अल्कोहलिक को मीटिंग्स लाना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है, वो ला सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं बता सकता हूँ कि अगर एक शराबी समस्या में होता है तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली भी इस समस्या से जूझ रही होती है, तो उसके पैरेलल एक और फेलोशिप है जिसका नाम है एलानॉन फेलोशिप। तो अगर वो चाहे उनके परिजन एलानॉन फेलोशिप में जाके उसका हिस्सा बन सकते हैं।
1: क्या बात है, तो न सिर्फ जिन्हें एडिक्शन है उनके लिए, लेकिन जो इस एडिक्शन का हिस्सा बने हुए हैं, कहना चाहिए कि वो मजबूरी में ही सही इसे बियर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी फेलोशिप है। वहां पर उन्हें तरीके बताए जाते होंगे कि किस तरीके से इस एडिक्शन की पूरी जर्नी में आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। चेतन जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, सुनने में ये सब कुछ बहुत आसान लग रहा है, जैसे आपने कहा कि एक मीटिंग अरेंज की जाती है, उनके लिए कोई एक स्पॉन्सरर भी बनता है और उनके इन 12 स्टेप्स की जर्नी में वो उनके साथ एक मेंटर के या फिर कहना चाहिए एक गाइड की तरह हमेशा उनके साथ रहता है, बट क्या किस प्रकार के चैलेंजेस हैं जो आते हैं इस पूरी जर्नी में?
0: देखिए, सबसे पहला चैलेंज यही आता है कि जब कोई एक नया सदस्य अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में आता है या उससे पहले की जो उसकी ज़िंदगी रहती है वो एक तरीके से एक डिनाइल में रहती है कि मैं अगर अपना अनुभव शेयर करूं तो मैं कभी नहीं मानता था कि मैं शराबी हूं। यानी मेरे परिवार वालों को ये चीज़ पता थी कि मैं मेरी शराब की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, जिस वजह से मेरे को नुकसान भी हो रहा है। ये चीज़ें मेरे जो बाहरी लोग थे, जो मेरे परिवार के सदस्य थे, जो मेरे यार दोस्त थे, उनको ये चीज़ पता चल रही थी, लेकिन मैंने कभी इन बातों पे गौर ही नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं कभी नहीं मानता था कि मैं शराबी बन चुका हूँ या मैं मुझे शराब से अब समस्या होनी शुरू हो चुकी है। मुझे हमेशा यही लगता था कि सामने वाला गलत है या मेरे फैमिली गलत है या मेरे यार दोस्त गलत है। कभी कभी जब मेरे को रात को ज़्यादा ड्रिंक हो जाया करती थी तो सुबह उठ के मैं सोचता था कि वो आखिरी ड्रिंक जो ले लिया था वो गलत था। मेरे को इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि अगर मैं अपनी शराब की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, उससे मैं नियंत्रण खो चुका हूँ, तो मेरी जो डिजीज़ है वो प्रोग्रेस कर रही है, यानी मेरी बीमारी अब बढ़ रही है और मैं अपनी शराब पे से नियंत्रण हो चुका हूँ, इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं थी। और सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि एक शराबी को जब तक इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तब तक शराबी उस हद तक शराब पीता रहेगा कि जहाँ कहना नहीं चाहिए कि उसकी मौत हो जाए या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए उसके साथ जो कभी उसने ना सोचा हो। और यही सेम कहानी मेरे साथ भी थी। मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं शराब को नियंत्रण करके पीऊंगा और जैसे एक नॉर्मल इंसान शराब पिया करता है, एक पैक लगाता है या एक क्वार्टर लगाता है, घर जाता है, खाना खाता है, सो जाता है, ठीक उसी तरीके से मैं पीऊंगा। लेकिन मैं कभी नहीं कर पाया। मैंने जब भी पीनी शुरू करी मैंने फटे तक शराब पी, यानी या तो शराब का ढक्कन खोल के मैं भूल गया हूँ या मैं शराब की बोतल के सामने ही गिर गया हूँ। इस तरीके तक मैंने शराब।
1: जी हाँ दोस्तों, तो ये हालत हो जाती है और ये जो रियलाइजेशन है, इस रियलाइजेशन को या इस डी एडिक्शन को बहुत खूबसूरती से कुछ मीटिंग्स, कुछ मेंटर्स और कुछ सपोर्टर्स कर देते हैं आपको बिल्कुल ठीक, और वो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। बहुत सारी बातें हैं। वैसे तो देखिए ये एक ऐसी जर्नी है जो बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन इस जर्नी के उतार चढ़ाव में बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं और ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल अलग होती हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन समय का तकाजा है। एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आएंगे। फील गुड, फील लाइक।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं चेतन जी के साथ, जो कि चेयरमैन है पब्लिक इंफॉर्मेशन दिल्ली इंटर ग्रुप अल्कोहलिक्स एनोनिमस। चेतन जी, अब एक सवाल, मान लीजिए कि कोई आपको कनेक्ट करना चाहता है और कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में आना चाहता है, तो उन्हें कैसे पता लगे कि हमारे शहर में ये कहाँ पर होती हैं, किस तरीके से कंडक्ट होती हैं, क्या कोई हेल्पलाइन, क्या कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस, कहाँ पर कैसे कनेक्ट हो कोई आपसे?
1: देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके श्रोताओं जो सुन रहे हैं अभी ये प्रोग्राम, अगर वो दिल्ली या दिल्ली NCR के आसपास कहीं रहते हैं, तो उनके लिए मैं ये दो हेल्पलाइन बताना चाहूंगा। हेल्पलाइन नंबर है 9811907, और दूसरी हेल्पलाइन नंबर है 9810915234। और अगर कोई श्रोता जो दिल्ली से बाहर हैं, वो अगर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो वेबसाइट पे जाएं और aagsoindia.org, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इंडिया की वेबसाइट है, ये आप टाइप करेंगे तो एक लिंक ओपन हो जाएगा aagsoindia का। उस पे आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको AA नियर बाय यू इसका एक ऑप्शन आ जाएगा, और जिस भी आप स्टेट में रहते हो, जिस भी आप राज्य में रहते हो इंडिया के, उस राज्य में कहाँ कहाँ मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स का समय क्या है, मीटिंग्स किस किस जगहों पे होती है, उसके पते और उनके हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये सभी आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति जो इस समस्या से जूझ रहा है या उसकी कोई जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इस प्रकार की समस्या है, तो वो इस तरीके से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग से जुड़ सकते हैं।
0: जी हाँ, सो दोस्तों, एक हेल्पलाइन नंबर है जो मैं आपको बता देती हूँ, 9811908707, और दूसरा नंबर है 9810902534। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और इस संस्था से जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा चेतन जी आज आपके साथ जुड़कर, आपने संस्था के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, तहे दिल से धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन फिलहाल आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ का आज का हमारा सफर बस यहीं तक। अगले हफ्ते मेरी होगी आपसे मुलाकात। टिल देन, आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लव।

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिखकर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का 2 कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। 2 बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का ये अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा, मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता, पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी न सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ, और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था। हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थे। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
2: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था। निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की ओर उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर, वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन।
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम करते हैं उन लोगों की बातें जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने हौसले और अपनी लगन से सफलता की एक नई मिसाल को कायम किया है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों की हम लाइफ की जर्नी लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आप भी अपनी लाइफ में उनसे इंस्पायर हो सके और साथ ही मोटिवेट हो सके कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। पता है कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में, जब हम किसी की स्टोरी सुनते हैं, किसी के बारे में जानते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला इंसान अगर अपनी लाइफ में इतना कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। पता क्या होता है, कभी कभी ना हम अपनी लाइफ में ना उम्मीदें छोड़ देते हैं, या फिर कहे तो एक बार अगर हार मान जाते हैं तो उसके बाद हम ना सोचते हैं कि शायद अब हमसे होगा ही नहीं। पर मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम है ही इसलिए ताकि हम आपको ना मोटिवेट कर सके, हम आपको बता सकें कि सक्सेस की जो मंत्राज हैं जिसे आप फॉलो करके ना आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस आज के टाइम में हर किसी को चाहिए। हर कोई चाहता है कि मैं सक्सेस बनूं, पर आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे नाम मिल गया, मुझे फेम मिल गया, मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं सक्सेस हो गया या फिर हो गई। पर नहीं, मैं आपको सही बताऊं, सक्सेस के असली मायने वही होते हैं जहां पर आप खुद तो सक्सेस होते हैं पर साथ ही आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं, जहां पर आप अपनी सक्सेस के बदौलत लोगों की मदद करते हैं, उनके काम आते हैं, साथ ही आप हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए भी कुछ करते हैं, तो असली सक्सेस का मतलब वही कहलाता है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारी जर्नी, और आज भी इसी जर्नी के साथ मैं आपके पास आ गई हूँ दोबारा से। जी हाँ, और आज हम करने वाले हैं जिनकी बात, वो मुझे पता है आप सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनका नाम सुना जाता है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस का नाम, जिनका नाम मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अभी लूँगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। इस ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आज हम किसकी जर्नी की बात करने वाले हैं, किसकी जर्नी के साथ आज हम चलने वाले हैं। पर उससे पहले सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने हौसले से और अपनी सफलता की लगन से एक नई मिसाल को कायम किया है। और आज भी हमारी कहानी एक ऐसी ही शख्सियत की है जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। और आज हम बात कर रहे हैं एक एक्ट्रेस की, एक प्रोड्यूसर की, एंटरप्रेन्योर की और ग्लोबल आइकन की, यानी कि जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा की आज जर्नी के साथ हम चलने वाले हैं। दोस्तों, जब हम प्रियंका चोपड़ा का नाम सुनते हैं ना तो हमारे जहन में एक रेड कार्पेट इवेंट होता है और बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर और फिर हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें उभर कर आती है। लेकिन हर सफलता के पीछे एक सफर भी होता है और प्रियंका चोपड़ा का सफर भी उन चुनौतियों, मेहनत और निरंतर सीखने की कहानी है। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18th ऑफ जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ था। उनके माता पिता डॉक्टर अशोक चोपड़ा और डॉक्टर मधु चोपड़ा इंडियन आर्मी में डॉक्टर्स थे। आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से उनके परिवार को अक्सर अलग अलग शहरों में रहना पड़ता था। प्रियंका ने बचपन में बरेली, लखनऊ, पुणे और दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ाई की है। बार बार स्कूल और शहर बदलने के कारण उन्होंने हर बार लोगों के बीच खुद को एडजस्ट करना पड़ता था। लेकिन शायद यही वजह थी कि बचपन से ही उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। ये क्वालिटी आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनी। कुछ समय के लिए प्रियंका पढ़ाई के लिए अमेरिका भी गई थी। वहाँ उन्होंने नए कल्चर और नए एनवायरनमेंट को देखा, लेकिन हर नई जगह की तरह वहाँ भी उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि इन अनुभव ने उन्हें और ज़्यादा मजबूत बना दिया और ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना भी सिखाया। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा की कहानी हमें ये बताती है कि सफलता की बुनियाद बचपन में ही तैयार होने लगती है। हर नया अनुभव, हर नई चुनौती और हर नई जगह हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। प्रियंका ने भी हर परिस्थिति को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और खुद को बेहतर बनाती गई। और बस यही था उनकी जिंदगी का सबसे पहला सक्सेस मंत्रा, यानी कि हर बदलाव को एक मौके की तरह देखिए, क्योंकि कभी कभी वही बदलाव आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। वक्त हो गया है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्र। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए आपके सक्सेस होने के मंत्रास। और आज हम बात कर रहे हैं इस जर्नी में प्रियंका चोपड़ा की। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने प्रियंका चोपड़ा के बचपन और उनके शुरुआती जीवन के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे अलग अलग शहरों और देशों में रहने के अनुभव ने उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस और अडेप्टेबिलिटी को मजबूत बना दिया। लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उन्हें पूरी दुनिया के सामने लाने वाला था। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा ने कभी सोचा नहीं था कि वो ब्यूटी पेजेंट की दुनिया में इतनी बड़ी पहचान बना लेंगी। कहा जाता है कि उनकी मां ने उनकी कुछ तस्वीरें फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन के लिए भेजी थी। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसी कदम ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। साल 2000 में प्रियंका ने फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन में भाग लिया। देश भर से आई टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट कंटेस्टेंट के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन प्रियंका ने अपनी पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस के दम पर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उनकी मेहनत रंग लाई और वो मिस इंडिया पेजेंट के टॉप विनर में शामिल भी हुई। और इसके बाद उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, यानी कि मिस वर्ल्ड 2000 कंपटीशन में। सोचिए दोस्तों, सिर्फ 18 साल की एक यंग लड़की जो पूरे देश की उम्मीदों को लेकर इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ी हो, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़े प्रेशर हो सकता है। लेकिन प्रियंका ने इस प्रेशर को अपनी ताकत बना लिया। दिसंबर 2000 में लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड कंपटीशन में प्रियंका चोपड़ा ने दुनिया भर के कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ वो दुनिया भर में पहचानी जाने लगी। भारत के लिए भी ये एक गर्व का पल था। लेकिन दोस्तों, इस जीत के पीछे सिर्फ खूबसूरती ही नहीं थी, इसके पीछे था कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, तैयारी और खुद पर भरोसा। प्रियंका ने साबित कर दिया कि असली पहचान सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि व्यक्तित्व और सोच से बनती है। यहाँ से हमें प्रियंका चोपड़ा का दूसरा सक्सेस मंत्र मिलता है कि जब जिंदगी आपको एक मौका दे तो उसे पूरी तैयारी और पूरे विश्वास के साथ अपनाइए। कभी कभी एक मौका

ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की, और आज इस सक्सेस मंत्रा की जर्नी में हम चल रहे हैं प्रियंका चोपड़ा के साथ। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा की जर्नी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे प्रियंका चोपड़ा ने सिर्फ 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब जीत कर पूरे देश का नाम रोशन किया। लेकिन दोस्तों, एक टाइटल जीतने और उसके बाद उस सफलता को बराबर रखना दोनों अलग बातें होती हैं। प्रियंका के लिए असली चुनौतियां अब शुरू होने वाली थी। मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका चोपड़ा के पास कई नए अवसर आए। इस दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उनकी शुरुआती फिल्मों में साउथ इंडियन सिनेमा के प्रोजेक्ट भी शामिल रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में पहले से कई स्टेब्लिश्ड और मजबूत लोग थे और हर साल नए चेहरे भी आ रहे थे। ऐसे में किसी नए कलाकार के लिए अपनी अलग जगह बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रियंका को भी कई बार क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों को लगता था कि ब्यूटी पेजेंट विनर सिर्फ ग्लैमर तक ही सीमित रहते हैं और एक्टिंग में ज्यादा सफल नहीं हो पाते, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने इन बातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने लगातार मेहनत की, एक्टिंग को सीखा और नए रोल के साथ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उनकी मेहनत नजर भी आने लगी। फिर आया साल 2003। साल 2003 में आई फिल्म अंदाज ने उन्हें पहली बड़ी सफलता दी। इस फिल्म में उनके काम को काफी सराहा गया और उन्हें अवार्ड्स भी मिले। इसके बाद मुझसे शादी करोगी, एतराज और कई अन्य फिल्मों में उनके करियर को मजबूती दी। खास बात तो ये थी कि प्रियंका सिर्फ ग्लैमरस रोल तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने हर तरह के किरदार निभाने की कोशिश की और अपनी पहचान को साबित किया। दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, बल्कि प्रियंका चोपड़ा की जर्नी हमें बताती है कि पहली जीत के बाद भी लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो मिस वर्ल्ड जीतने के बाद रुक जाती तो शायद आज उनका नाम दुनिया के सबसे सफल एंटरटेनर में शामिल ना होता। यहाँ से हमें प्रियंका चोपड़ा की जर्नी से तीसरा सक्सेस मिलता है, और वो ये है कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक कंटिन्यूस जर्नी है। हर अचीवमेंट के बाद खुद को और बेहतर बनाने की और असली ग्रोथ को हासिल करने की। वक्त हो गया है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। सक्सेस मंत्रा में आज हम चल रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की जर्नी के साथ। पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआती संघर्षों का सामना किया और धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी शुरू की। लेकिन एक अच्छी एक्ट्रेस और एक सुपरस्टार में फर्क होता है। सुपरस्टार वही बनता है जो नए चैलेंजेस लेने से नहीं डरता, और प्रियंका चोपड़ा ने भी कुछ ऐसा ही किया। दोस्तों, जब कई एक्टर्स एक ही तरह के रोल्स करके अपनी सेफ इमेज बनाए रखना पसंद करते थे, तब प्रियंका ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने ऐसे किरदार निभाने शुरू किए जो चैलेंजिंग भी थे और रिस्क भरे भी। उनका मानना था कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। फिर आया साल 2008। साल 2008 में आई फिल्म फैशन उनके करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। इस फिल्म में उन्होंने एक स्ट्रगलिंग मॉडल का किरदार निभाया जिसमें सक्सेस, फेलियर, प्रेशर और कमबैक की कहानी दिखाई गई थी। प्रियंका ने इस रोल को इतनी ईमानदारी के साथ निभाया कि दर्शक और क्रिटिक्स दोनों ही उनके फैन हो गए। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। इसके बाद कमी ने सात खून माफ, बर्फी और मैरी कॉम जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग की रेंज को और ज्यादा मजबूती से सबके सामने रखा। खासकर मैरी कॉम में उन्होंने ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर की भूमिका निभाई और उसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की तैयारी भी की। ये दिखाता है कि वो हर रोल को सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह लेती थी। प्रियंका की खास बात तो ये थी कि वो हर फिल्म के साथ कुछ नया करने की कोशिश करती थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे या फिल्म चलेगी या नहीं। उनका फोकस हमेशा अपने काम को बेहतर बनाना था। इसी सोच ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल और सम्मानित एक्ट्रेस में शामिल कर दिया। दोस्तों, जिंदगी में ना कई बार हमें भी ऐसे ही फैसले लेने पड़ते हैं जहाँ पर रिस्क होता है, लेकिन अगर हम डर की वजह से नए मुकामों को छोड़ दें तो शायद हम भी अपनी असली क्षमता को कभी नहीं जान पाएंगे। प्रियंका चोपड़ा का चौथा सक्सेस मंत्र है कि ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस करते हैं। रिस्क के बिना बड़ी सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की जर्नी के साथ। अब तक हमने प्रियंका चोपड़ा की जर्नी के कई अहम पड़ाव देखे हैं। एक छोटे शहर की लड़की ने मिस इंडिया बनने तक का सफर तय किया, बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना और फिर चैलेंजिंग रोल्स के जरिए सुपरस्टार के रूप में उभरना। लेकिन प्रियंका चोपड़ा की सोच हमेशा बड़ी रही। जब उन्होंने बॉलीवुड में सब कुछ हासिल कर लिया था, तब उन्होंने एक और बड़ा सपना देखने की हिम्मत की कि हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाएं। वो भी कैसे दोस्तों, किसी नए देश, नए इंडस्ट्री और नए ऑडियंस के बीच खुद को एस्टेब्लिश करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप पहले ही अपने देश में एक सक्सेसफुल स्टार हो। लेकिन प्रियंका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए सीखने और आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा भी बन गई। उनके करियर का एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो था अमेरिकन टेलीविजन सीरीज क्वांटिको। इस सीरीज में प्रियंका ने लीड रोल निभाया और फिर पहली साउथ एशियन एक्ट्रेस में से एक बनी जिन्होंने अमेरिकन टेलीविजन पर इतना बड़ा लीड रोल प्ले किया। क्वांटिको की सफलता के बाद दुनिया भर के दर्शकों ने प्रियंका चोपड़ा को एक नए रूप में भी देखा। उनकी एक्टिंग, उनके कॉन्फिडेंस और स्क्रीन प्रेजेंस ने इंटरनेशनल ऑडियंस को भी प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया और कई बड़े ग्लोबल इवेंट्स का हिस्सा भी बनी। लेकिन इसमें सबसे खास बात तो ये थी कि ग्लोबल सक्सेस मिलने के बाद भी प्रियंका ने अपनी भारतीय पहचान को कभी नहीं छोड़ा। वो हर मंच पर अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों पर गर्व करती हुई नजर आई। इसी वजह से वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं है बल्कि भारत की एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव भी बन गई। दोस्तों, अक्सर लोग अपने सपनों की सीमा खुद तय कर लेते हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा की कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप अपनी मंजिल किसी एक शहर या फिर किसी एक देश या फिर किसी एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रखते। यहाँ से हमें प्रियंका चोपड़ा की लाइफ से पांचवा सक्सेस मंत्र मिलता है, वो है कि सपने हमेशा बड़े देखिए। जब आप अपनी सोच की सीमा बढ़ा देते हैं तब आप अपनी संभावनाओं की असली ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सुनी बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय किया, खुद को एक ग्लोबल आइकन के रूप में स्थापित भी किया। लेकिन दोस्तों, असली सफलता सिर्फ नाम, शोहरत या फिर अवार्ड्स तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि असली सफलता तब होती है जब आप अपनी पहचान और अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करते हैं। प्रियंका चोपड़ा की कहानी का ये पहलू भी उतना ही प्रेरणादायक है। एक्टिंग के साथ साथ प्रियंका ने बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में भी अपने कदम मजबूती से बनाए रखे। उन्होंने कई बिजनेस वेंचर्स और ब्रांड के साथ काम भी किया। ये साबित किया कि एक कलाकार सिर्फ एक फील्ड तक सीमित नहीं होता है, बल्कि उनकी सोच हमेशा नई चीजें सीखने और नए अवसर तलाशने की राह देखते रहते हैं। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किया। उनकी प्रोडक्शन हाउस ने ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है जो मीनिंगफुल स्टोरीज को सामने लेकर आते हैं। ये दिखाता है कि उनका फोकस सिर्फ कॉमर्शियल सक्सेस पर नहीं, बल्कि क्वालिटी कंटेंट और नए टैलेंट को मौका देने पर भी रहा है। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा एक सक्सेसफुल ऑथर भी है। उनकी बुक दुनिया भर में काफी चर्चा में रही है। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभव, संघर्ष और सफलता और साथ ही सीखों को खुलकर साझा किया है। इससे ये भी पता चलता है कि हर सफलता व्यक्ति के पीछे एक इंसान होता है जो लगातार सीखता रहता है और इवॉल्व करता रहता है अपने आप को। लेकिन उनके काम का सबसे प्रेरणादायक पहलू है कि उनके सोशल कॉजेस के प्रति समर्पण। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने सालों से यूनिसेफ के साथ जुड़ी रही हैं और उन्होंने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी है और अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए किया है। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा की जर्नी हमें ये सिखाती है कि सफलता का असली मतलब सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना होता है। जब आप अपनी उपलब्धियों का इस्तेमाल समाज के हित में करते हैं, तब आपकी सफलता और भी ज्यादा मायने रखने लग जाती है। यहाँ हमें प्रियंका चोपड़ा की लाइफ से, उनकी जर्नी से हमें एक और छोटा सक्सेस मंत्र मिलता है कि अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिए, बल्कि उसे दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाने के लिए इस्तेमाल करिए, एक जरिया बन जाइए। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हुस्ती हूँ आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज की इस खास सफर में हमने प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी के अहम पड़ाव देखे हैं। एक आर्मी फैमिली में जन्मी एक लड़की जो बचपन में अलग अलग शहरों में रही, फिर मिस वर्ल्ड बनी, बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, हॉलीवुड तक पहुंची और आज दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली भारतीय हस्तियों में से एक बन गई। लेकिन दोस्तों, हर सफलता की कहानी के पीछे कुछ ऐसे सबक भी होते हैं जो हम सबको अपनी लाइफ में काम आ सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा का पहला सक्सेस मंत्र है कि कभी भी अपने सपनों को मत छोड़िए या उसे छोटा मत समझिए, उसके ऊपर हमेशा काम करते रहिए। दूसरा सक्सेस मंत्र है, बदलाव से मत डरिए। जी हाँ, लाइफ में जब तक चेंजेस नहीं आएंगे, हम अपने आप को उसके साथ कैसे ढाल पाएंगे और या उसके साथ कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जब चैलेंजेस आते हैं या कोई बदलाव आता है तो सोचिए कि कुछ हमारे भले के लिए ही हो रहा है। तीसरा है, खुद पर विश्वास रखिए। जी हाँ, विश्वास खुद पर रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई बड़े बिजनेसमैन बन गए हो या कोई पेजेंट क्यों ना हो, बॉलीवुड के स्टार क्यों ना हो, हॉलीवुड के स्टार क्यों ना हो, हर जगह पर कंपटीशन था, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझा और हमेशा अपने एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती रही। चौथा सक्सेस मंत्र है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन लगातार मेहनत ही आपको लंबे समय तक सफल बनाती है। प्रियंका की जर्नी इसका बेहतरीन उदाहरण भी है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सीख, सफलता के साथ विनम्रता और जिम्मेदारी भी जरूरी है। अपनी अचीवमेंट के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कार्यों, बच्चों की भलाई और मीनिंगफुल इनिशिएटिव में भी योगदान दिया है। ये बताता है कि असली सफलता वही है जो दूसरों के भी काम आए। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा की कहानी हमें ये बताती है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई ये उतना मायने नहीं रखता, बल्कि मायने रखता है आपका विजन, आपकी मेहनत और आपका हौसला। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं और सीखना कभी नहीं छोड़ते तो दुनिया की कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं है। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ मैं आरजे स्नेहा ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और नई शख्सियत की कहानी के साथ, जिनकी जिंदगी से हमें सफलता का एक नया मंत्र मिलेगा। तब तक के लिए बड़े सपने देखते रहिए, उनके लिए मेहनत कीजिए और अपने आप पर भरोसा रखिए और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: दोस्तों मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। ये शो हर बार एक आपके लिए एजुकेशनल शो के तौर पर आपको सर्व करता है, आपको बताता है कंपनी के बारे में, एक स्टार्टअप के बारे में, आपको बताता है इंडस्ट्री के बारे में। एंड देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स दैट फॉल्स इन बिटवीन दीज टू थिंग्स, इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप। तो यहाँ पर हम आपको कोशिश करते हैं बताने की कि एग्जैक्टली ये चीजें काम कैसे करती हैं और कैसे हम ये बोल पाते हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। सो दिस इज आवर शो, इट इज गोइंग टू बी रियली स्पेशल एंड वी गोना टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। पहले हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, उसके बाद हम कंपनी की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि अभी हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।
1: ज्वाला समंदर की लहरों को देखो, जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ, ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है, जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो,
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है। ज्वाला,

0: उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%, जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ भी करते हैं। एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।
1: ज्वाला समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो,
1: मेरी जान मांग लो जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला ये मेरा वादा है।

वेलकम बैक, मैं आरजी सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफ़ी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज़ जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफ़ी तारीफ होती है। So, UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, SEBI की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज़ हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज़ हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं, मैं हूँ सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गाँव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज़ बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है, और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

का। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या क्यूआर बेस्ड यूपीआई। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइंजी, आईडीफाई, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो है वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग एआई एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या, दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था, जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशंस। RBI ने नई गाइडलाइंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस हैं वहाँ पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI एंड ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिदम्स काफ़ी एडवांस हो गए हैं, जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीज़ें निकल के सामने आई हैं, जो हम कहते हैं कि काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं चीज़ें, काफ़ी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव जो हैं वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव हैं, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी है और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। उसके बाद

हम बात करें अगर यूपीआई मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं यूके में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, यूएई में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड 400 बिलियन US डॉलर्स। टीयर टू एंड टीयर थ्री जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया यूपीआई जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं, उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

मैं हूं आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है, और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंसिस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो हैं वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसिस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइफ।

पुरस्कार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। नहीं फिलहाल इसी नोट पर बिना किसी देरी के शो को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ इंडस्ट्री को आप समझ पाए हैं। तो भैया आज की जो हमारी कंपनी है उसका नाम है हाइपरफेस। हाइपरफेस 2021 में स्टार्ट हुई थी, बेंगलोर से स्टार्ट हुई, आज भी इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और जैसे मैंने बताया कि फिनटेक में डील करती है, और थोड़ा प्रिसाइज होकर अगर जाएं तो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, और अगर जाएं तो एम्बेडेड फाइनेंस में और स्पेसिफिक क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर। हाइपरफेस एशिया का पहला क्रेडिट कार्ड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर हाइपरफेस ने क्या किया कि इन्होंने डायरेक्ट जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो इशू नहीं किए। अमूमन जो ऐसी कंपनीज जो इस सेगमेंट में डील करती हैं वो HDFC या SBI कार्ड को अपने क्रेडिट कार्ड्स जो हैं डायरेक्टली इशू करके देते हैं। बट यहां पर इन्होंने एक टेक इंफ्रा बनाया जिससे बैंक्स को, फिनटेक्स को, ब्रांड्स को हेल्प मिली लॉन्च करने में और मैनेज करने में। आज का जो मॉडर्न डिजिटल क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम है जो बहुत फास्ट है वो बिल्ड किया इन्होंने। वो एक तरीके से आप कह सकते हो पीछे का पूरा बैकएंड लेवल बिल्ड किया। सो दे कॉल इट AWS ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, सिंपल। तो ये एक इसको तरीका हो सकता है समझने का। एग्जैक्टली इन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी है, वाजिब क्वेश्चन है भाई, उठना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशनली भैया अगर आप क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च करते जो वो बहुत स्लो था, तो वहां पर क्या होता था, बैंक को जनरली चाहिए होता था 12 से 24 महीने का डेवलपमेंट का उनका टाइम लगता था। ठीक है, लेगेसी बैंकिंग सॉफ्टवेयर, मल्टीपल वेंडर्स, सेपरेट रिवॉर्ड सिस्टम, सेपरेट ऑनबोर्डिंग सिस्टम, कंप्लायंस इंटीग्रेशन, फ्रॉड मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड कस्टमर एंगेजमेंट टूल्स, और सब कुछ फ्रेगमेंटेड है। तो यहां पर हाइपरफेस जो कंपनी है, इन्होंने पूछा कि व्हाई कांट लॉन्चिंग अ क्रेडिट कार्ड बी एज इजी एज लॉन्चिंग अ डिजिटल प्रोडक्ट। एंड ये जो क्वेश्चन था, इसके बाद ये भैया एक थॉट बना और ये पूरा एक आइडिया का सोल्यूशन लेकर के आया। एंड एग्जैक्टली वहां पर ये कंपनी बनके सामने आई जिसके बारे में आज हम यहां पर बात कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम है हाइपरफेस। तो यहां पर इन्होंने बैंक बिल्डिंग नहीं करी, सब कुछ अपने आप से बनाने का नहीं सोचा। इन्होंने सिंपल सा एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर बैंक अपने हिसाब से चूज कर सकता था कि क्या कंपोनेंट उनको चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर इसको और अच्छे से समझते हैं। सो लेट्स से कि एक दुकान है आपके यहां पर राशन वाले की, सब मिलता है वहां पर। ओके, अब उसको सब कुछ अपना खुद खरीद के लेके आना होता है कि यहां पर ये चाहिए होगा, इसकी डिमांड है, इसकी डिमांड है। ठीक है, ये वाली सॉफ्ट ड्रिंक, ये वाला आटा, ये वाले बिस्किट, ये वाले नमकीन, ये वाली कैंडीज। लेकिन वहीं पर एक इंसान आता है, एक रिटेलर आता है जो लेके आता है सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स। अब आप बताओ आपको क्या चॉकलेट चाहिए, प्रोटीन वाली चाहिए, वेफर वाली चाहिए, या और कौन सी चाहिए आपको। तो वो एक प्रॉब्लम वहां पर उसने नीच पकड़ के उसको फिक्स किया कि आपकी चॉकलेट वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी तो आपका होता रहेगा। एग्जैक्टली यहां पर इस कंपनी ने यही काम किया कि इन्होंने पूरा एक क्रेडिट कार्ड या डिजिटल क्रेडिट कार्ड जो है उसका एक सिस्टम यहां पर लॉन्च किया इन्होंने। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप समझ पाए हैं एग्जैक्टली ये कंपनी करती क्या है। आगे इसके बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। मैं हूं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज की हमारी कंपनी है हाइपरफेस। हाइपरफेस में जो अगला पॉइंट आता है विच इज यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। एशिया का पहला क्रेडिट कार्ड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है ये। ओके, ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है इस कंपनी का अपने आप में, और यही इनकी स्पेशलाइजेशन है। तो बहुत सारी जो फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं वो हैंडल करती हैं पेमेंट, बैंकिंग, एपीआईज, लैंडिंग, केवाईसी, अकाउंट्स। हाइपरफेस जो कंपनी है ये एंटायरली फोकस करती है क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पेशलाइजेशन इन्होंने अपनी डीप एक्सपर्टीज जो है वो बिल्ड करी है इन डिजिटल ऑनबोर्डिंग, क्रेडिट लाइन मैनेजमेंट, रिवॉर्ड, कस्टमर एंगेजमेंट, क्रेडिट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स, कंप्लायंस, ये तमाम चीजें। अभी से होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक बैंक है, अब आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए कि जो आपकी हेल्प कर पाए क्रेडिट कार्ड को समझने में, क्योंकि अगर आपको वो कंपनी नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पूरी टीम बनानी पड़ेगी कि किस कस्टमर को आप क्रेडिट कार्ड दे सकते हो, किसको नहीं दे सकते हो, जिसको क्रेडिट कार्ड दोगे उनमें से भी किस कस्टमर को कितनी आप लिमिट दोगे, उसकी लाइफ साइकिल कितनी होगी, पोर्टफोलियो कैसा होगा, कंप्लायंस कैसे मैनेज होंगे, रिवॉर्ड्स आप कैसे देंगे, ये सब आप एक डिपार्टमेंट के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते हो ना। तो आपको एक क्रेडिट कार्ड सेटअप करने के लिए अपने बैंक में एक पूरी टीम बिठानी पड़ेगी, जो नए सेल की टीम भी उसमें आपको चाहिए होगी, डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए भी आपको कुछ सॉफ्टवेयर के वहाँ पर टूल्स चाहिए होंगे, ठीक है, आपको क्रेडिट लाइन मैनेज करना पड़ेगा, आपको रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा कस्टमर्स को ताकि वो यूज करते रहे, कस्टमर एंगेजमेंट भी आपको चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कैसे करोगे? और अगर आप एक ऐसी कंपनी के पास जाते हो जो आपके बैंक को सर्विस प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जाम्पल बाकी सारे प्रोसेस वही देखती है, सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी है, अगर वो सारे प्रोसेस देख पा रहे हैं तो उन्हें क्रेडिट कार्ड देखने के लिए अलग से एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पर ये कंपनियां ये बोलती है कि यार बाकी सब तुम करते रहो, तुम्हें एफडी देखना है, लोन्स देखने हैं, वो सब तुम देख लो अपने हिसाब से, हाउस लोन देखने हैं, कार लोन देखने हैं, या जो भी और तुम्हारा कैश का तरीका होता है सब देख लो, हम सिर्फ और सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। और ये इन्होंने करके दिखाया एंड इसलिए ये बहुत खास बन गई। तो एक प्रॉब्लम को पिक करके, एक प्रॉपर बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर जो नीच है उसको पिक करके इन्होंने इस प्रॉब्लम को उठाया, फिक्स कर दिया। दैट इज हाइपरफेस फॉर यू। फिलहाल उम्मीद कर रहा हूं ये वाला पॉइंट आपको समझा पाया हूं। दीज आर द यूएसपीज ऑफ दिस कंपनी। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे कंपनी के फाउंडर्स की। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

आपके पास कोई फीडबैक होता है हमारे लिए तो 8010781078 बहुत आसान सा हमारा नंबर है, बिंदास अपनी बात हम लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। आइए बात करते हैं हाइपरफेस के फाउंडर्स की। पहला नाम आता है रामानाथन आरवी। रामानाथन जी इज द को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी। थोड़े से एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करेंगे, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी शॉर्ट फॉर्म बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, ओके, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इनकी पढ़ाई हुई है जो कि तिरुचिरापल्ली में फॉल करता है ये इंस्टीट्यूट, सॉरी अगर मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया हो तो। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करें तो अमेजॉन इंडिया में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है, बैंक बाजार एक कंपनी है उसमें इंजीनियरिंग लीडरशिप जो है वो उन्होंने सर्व किया है। जस्ट पे नाम की एक कंपनी है उसमें एज अ को फाउंडर एंड सीटीओ इन्होंने सर्व किया है। और मेजर अचीवमेंट्स की अगर बात करें, वन ऑफ द की पीपल इन्वॉल्व्ड इन बिल्डिंग भीम, इंडिया का पहला ऑफिशियल यूपीआई ऐप था वो, तो बिफोर हाइपरफेस ही वॉज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स एंड इंडिया का बिगेस्ट डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट जो है वो बना चुके थे, उसका पार्ट रह चुके थे भीम। दूसरा नाम आता है ऐश्वर्या जयशंकर। ऐश्वर्या जयशंकर इज द को फाउंडर एंड सीओओ, डिजिटल बैंकिंग एक्सपर्ट है, HSBC इंडिया के साथ प्लस कोटक महिंद्रा बैंक के साथ उन्होंने काम किया है। एंड शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लॉन्चिंग कोटक 811, कोटक 811 सुना होगा नाम सबने, एग्जैक्टली उसमें इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था उसको लॉन्च करने में, क्योंकि वो इंडिया का फर्स्ट लार्ज स्केल फुल्ली डिजिटल सेविंग्स अकाउंट जो है वो बना था उस टाइम पर, अपने टाइम पर। एक्सपर्टीज की बात करें तो बैंकिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, रेगुलेटरी कंप्लायंस है एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इनके पास बैंकिंग की नॉलेज है। और वहीं पर रामानाथन की अगर बात करेंगे, उनके पास इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज है, एंड दैट्स हाउ इट बिकेम अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ कंपनी, टू को फाउंडर्स सॉर्टेड। सो या दैट्स ऑल अबाउट द फाउंडर्स ऑफ दिस कंपनी। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम बात करते हैं आगे फर्दर कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वंस अगेन वेलकम बैक। हाई परफेस हमारी आज की कंपनी है। अभी तक हम बात कर चुके हैं ओवरव्यू के बारे में, हम बात कर चुके हैं फाउंडर्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में। आइए बात करते हैं कि व्हाट मेक्स दिस कंपनी डिफरेंट। पहला है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। बैंक्स को अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। हाई परफेस आता है, अपने कुछ प्लगइन्स लेके आता है, सॉर्टेड। नीड ऑनबोर्डिंग, टेक ओनली ऑनबोर्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पर पूरा प्रोसेस मत दो भाई, ऑनबोर्डिंग के लिए चाहिए ना, हम देते हैं। रिवॉर्ड के लिए चाहिए, हम देते हैं। एनालिटिक्स, ओके हम देते हैं। सब कुछ चाहिए क्रेडिट कार्ड में, वो भी हम देते हैं। कोई एक पार्ट चाहिए, वो हम दे देंगे। तो बैंक्स को काफी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी इस कंपनी ने। सो बैंक्स के लिए और इजी हो गया कि ठीक है भाई, जितना चाहिए होगा उतना ले लेंगे। सेकेंड इज API फर्स्ट डिजाइन। एवरीथिंग वर्क्स थ्रू APIs। तो डेवलपर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग देयर ओन थिंग्स, दे ऑलरेडी हैव समथिंग जिसके ऊपर ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो यहाँ पर लॉन्च करना महीनों सालों की जगह कुछ हफ्तों में हो सकता है। दैट इज अनदर पार्ट। थर्ड इज एम्बेडेड फाइनेंस। इमेजिन आपने एक फ्लाइट बुक करी किसी एक पोर्टल के ऊपर। सो इंस्टेड ऑफ लीविंग द ऐप टू अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड, कार्ड जो है उस ऐप में ही आपको जो है ऑफर कर दिया गया। वहीं पर जब आप बुक कर रहे हो वहीं पर आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे दिया। तो सीमलेसली ये सारी चीजें इंटीग्रेशन कर दिया, सब कुछ एम्बेड कर दिया उसमें। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया, स्मूथ हो गया, फास्ट हो गया, यू आर गुड टू गो। तो हाइपरफेस वो कंपनी है जो इन तमाम एक्सपीरियंसेस को आपके अपलिफ्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्लायंस, क्योंकि बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करता है RBI की तरफ से भी, एंड एट द सेम टाइम हर कंपनी का कंप्लायंस फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा क्रूशियल या मेजर रोल प्ले करता है। थोड़ी सी भी इधर उधर कोई चीज हुई, बूम। तो यहां पर फाइनेंशियल रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चेंज होती रहती है। तो ऐसे में ऐसी कंपनी भी चाहिए भैया जिसको पता हो सब कुछ, और ये भी पता हो कि फ्लेक्सिबल कैसे होना है और कैसे अगर कुछ चेंजेस आए तो कैसे करना है उसको चेंज। तो हाइपरफेस जो है कंप्लायंस को अच्छे से इंटीग्रेट करके रखता है अपने प्लेटफॉर्म के साथ, जो बैंक्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर एंगेजमेंट। हाइपरफेस इज नॉट जस्ट अबाउट इश्यूइंग कार्ड्स। यहां पर ये बैंक्स की हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग स्पेंडिंग, कस्टमर रिटेंशन, रिवॉर्ड रिडेम्पशन, पर्सनलाइज्ड ऑफर्स, रियल टाइम नोटिफिकेशंस। सो अ क्रेडिट कार्ड इज नॉट जस्ट अ पेमेंट प्रोडक्ट, इट्स एन एंगेजमेंट प्रोडक्ट। दैट इज अ फिलॉसफी ऑफ दिस कंपनी। तो ये है वो चीजें जो इस कंपनी को अलग बनाती है। आई होप इट हेल्प्स। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

का प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: अपराध होने का।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्म शास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: इतना तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: एक और बार स्वागत है आपका। अब यहाँ पर हमारा शो अपने लास्ट स्टेज पर आ चुका है। ये बात करते हैं व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस कंपनी। तो इस कंपनी के जो सीईओ है रामानाथन जी, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी कि डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो बहुत स्मूथ होती जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, बट क्रेडिट कार्ड वो अभी भी है, वो दशकों पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं। इस आइडिया, अगर पेमेंट डिजिटल हो सकती है, क्रेडिट कार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं? सिंपल सा थॉट, कितना एक्सपेंड किया ये हमने आपको बताया यहाँ पर, कि कैसे इन्होंने एक नीश को उठाकर इतनी बड़ी कंपनी बना दी। इसी वजह से इस कंपनी की ग्रोथ ड्राइवर्स भी बहुत आपको पता होना चाहिए कि बहुत स्मूथली कंपनी ने ग्रो किया है। एम्बेडेड फाइनेंस, जो मैंने कहा कि ट्रैवल एप्स, ई कॉमर्स, रिटेल, फिनटेक, सब कुछ यहाँ पर है भैया, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की मार्केट ने ग्रो किया, बाई डिफॉल्ट कंपनी ने ग्रो किया, कंपनी को पोटेंशियल दिखाई दिया, एट द सेम टाइम वहाँ पर अर्ली इन्वेस्टर बन के सामने आए, ठीक है। को ब्रांडेड कार्ड्स, बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो अपने कार्ड्स को रिवॉर्ड करते हैं, तो इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। सिंपल सी बात है, हर बैंक के कार्ड को जैसा बैंक को चाहिए वैसे उनके कस्टमर को रिवॉर्ड मिल सकता है। यूपीआई प्लस क्रेडिट, पूरा इंडिया जब यूपीआई के ऊपर मूव कर रहा है तो ये क्रेडिट को भी यूपीआई पर ले गए। सो हाइपरफेस हैज बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये है जी वो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, और उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए इतना काफी है समझने के लिए कि भैया कैसे लोगों ने छोटे से छोटी चीजों को उठाया, एक्सपेंड किया और उनको इतना बड़ा बना दिया कि लोगों को पसंद आई वो चीजें, लोगों की एक्चुअली हेल्प हुई। अब इसी के साथ अपने शो को यहाँ पर हमें कंक्लूड करना होगा। सो हमने आज बात करी हाइपरफेस के बारे में, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंटरेस्टिंग फिनटेक स्टार्टअप, 2021 में स्टार्ट हुआ। नॉट जस्ट अबाउट बैंक, नॉट जस्ट अबाउट इशूइंग क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली, तो इन्होंने सिंपल एक टैग बनाया जहां पर क्रेडिट कार्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बाकी बैंक्स को ये एक्सेस दे करके कि आपको जो प्रोसेस चाहिए हम आपकी हेल्प उसमें कर देंगे। अब इसी के साथ इजाजत दीजिए, उम्मीद कर रहा हूं आज का शो आपको पसंद आया होगा। नाउ दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: पुल वहाँ अकेला क्या करे?
2: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
3: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
4: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम ऑल इज वेल, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो देता है आपको हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां, और वो भी एक्सपर्ट्स के द्वारा। इस प्रोग्राम को आप तक लाने का श्रेय जाता है SSV हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद को। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत चर्चाओं में है, सोशल मीडिया पर, न्यूज में, अखबारों में आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा, खास तौर पर से तब जब आपके घर में कोई डायबिटिक हो। डायबिटिक भी उस लेवल का कि जिनकी शुगर कंट्रोल में ना आ रही हो या फिर वो इंसुलिन लेते हो। अब इंसुलिन बेसिकली क्या है ये बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते, ये मैं नहीं बताना चाहती। लेकिन इंसुलिन को लेकर एक बहुत ज्यादा चर्चा में पिछले कुछ 10-15 दिनों से जो बात है वो ये है, अवीकली यानी हफ्ते में एक बार लगने वाला इंसुलिन। अगर आप इंसुलिन की प्रक्रिया को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि इंसुलिन दिन में 4 से 5 बार कई केसेस में पेशेंट्स को लगाया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में नेचुरल इंसुलिन नहीं बन रहा होता है और वो पूरी बॉडी में ब्लड में शुगर जो है, जो हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें से जो शुगर रिलीज होता है वो पूरे ब्लड में चला जाता है, इसीलिए शुगर लेवल हाई हो जाते हैं। सो इसी वजह से पेशेंट को इंसुलिन रिकमेंड किया जाता है।

0: रचना।
1: थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।
0: सर, वीकली के बारे में जितना हम जानते हैं, हमने सुना है, बहुत चर्चा में ये टॉपिक रहा है पिछले लगभग 10 दिन से। अब ये चर्चा में इसलिए भी रहा है क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो बहुत खुश है इसके बारे में जानकर, पर अभी भी इसको लेकर कंफ्यूजन बहुत है क्योंकि डॉक्टरी एडवाइस अभी भी देखने को नहीं मिले, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट सिचुएशन अलग होती है। सो अ वीकली बेसिकली ये कैसा इंसुलिन है?
1: जी मैम, जैसा आपने कहा कि नाम तो सब लोगों ने सुन लिया है कि एक नया इंजेक्शन आया है जो कि 7 दिन में एक बार देना पड़ता है और जिसका नाम है एवीकली। जैसा कि नाम बताता है, वंस इन ए वीक। अगर हम इसको ब्रेकअप करें तो ए वीकली एक ऐसी चीज जो कि सप्ताह में 7 दिन में एक बार देनी पड़े। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई कर दूं कि ये ओनली 7 ही दिन हुए हैं इसको, और ये लॉन्च एक्चुअली 9 जुलाई को हमारे देश में हुआ था।
0: जी
1: 9 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था और 10 को ये आया। तो मैं कहूंगा आपको कि 7 दिन से आप कह सकती हैं कि ये सोशल मीडिया में चर्चा पे, ए वीकली, जैसे कि आप कहें एक वीक से चर्चा में। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कई बार हमारे यहाँ ये होता है कि इंसुलिन, अब ये इंसुलिन सब मरीजों के लिए कारगर है क्या, या सब डायबिटीज के पेशेंट्स को ये ठीक कर सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर ये नया इंसुलिन आया तो काफ़ी लोगों को, हमारे जो डायबिटीज़ की बहुत सारे पेशेंट्स की ऐसी प्रोफाइल है जिनको कि काफ़ी ट्रेवल करना पड़ता है या जिनको इंसुलिन कम लेना पड़ता है, जिनकी डोज एक बार होती है, बेसिकली लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है मैम ये, जैसे आप समझ रही हैं कि 7 दिन में एक बार देना पड़ता है, तो ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, बेसिकली 7 दिन में देना पड़ता है। तो जो हमारा लेंटस, जिसको लोग आमतौर पर पेशेंट समझते हैं इस ब्रांड को, मैं इसलिए इसका नाम लेना चाहता हूँ, लेंटस, और एक होता है ट्रेसिबा। वैसे तो हमें किसी कंपनी का नाम नहीं चाहिए लेकिन लोगों की जानकारी की वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। तो जो एक वंस इन ए डे, मतलब जो रात के टाइम पे या सुबह के टाइम पे जो एक बार इंसुलिन लेते हैं, और वो लोग भी 7 दिन में 7 बार इंसुलिन बेसिकली लेते हैं। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉम्प्लायंस अच्छी नहीं रहती, उनको तकलीफ होती है रोज रोज इंसुलिन लेने में और प्रिक करने में, और उनके लिए ये बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन कौन सी प्रोफाइल में हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पर डेफिनेटली ये बहुत सारे पेशेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगा, और लॉन्ग टर्म में ये डायबिटीज़ की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लंबे समय पे, उनमें भी हेल्प करेगा। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात ये भी बताना चाहता हूँ कि स्टडी हुई थी रिसेंटली, उस पर यह पता चला था कि ऑलमोस्ट 90% पेशेंट जो होते हैं वो इंसुलिन को डिले करते हैं, लेना नहीं चाहते। जब भी डॉक्टर मैम उनको एडवाइस करता है कि आपको इंसुलिन की जरूरत है, उनको काउंसलिंग भी करता है, तो ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट ईयर्स तक, नॉट फॉर मंथ, फॉर ईयर्स दे डिले द इंसुलिन। सो व्हेन दे डिले द इंसुलिन दे अट्रैक्ट कॉम्प्लिकेशंस, यू नो, दे एम्ब्रेस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। तो ये स्टडी है कि 10-10 साल तक लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे इंसुलिन नहीं लेना, और कोई तरीका बता दो, इंसुलिन मैं नहीं लूंगा। तो उनके लिए ये बहुत कारगर होगा, और उनको समझाना अब हमारे लिए काफी आसान होगा।
0: जी बिल्कुल, यानी हफ्ते में एक बार लगने वाला इंसुलिन अ वीकली के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी है, लेकिन वो जानकारी आधी अधूरी है। आज हम प्रोग्राम ऑल इज वेल में अवीकली से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक ऐसा इंसुलिन जो हाल ही में आया है, एक हफ्ता ही हुआ है इसे भी आए हुए, लेकिन इस एक हफ्ते में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए जमा करके लाए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है, 8010781078। वक्त है एक छोटे से

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सी बातें चल रही हैं आज इंसुलिन के बारे में, क्योंकि हाल ही में आया अ वीकली यानी हफ्ते में एक बार लगने वाला इंसुलिन काफी चर्चा में है। बहुत सारे पेशेंट्स को इसको लेकर कंफ्यूजन है, डॉक्टरों से बात हो या ना हो, लेकिन हमारे एक्सपर्ट आपसे जानकारी जरूर साझा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर मीणा, बहुत सारी बातें हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है। किसी से पूछें या कोई वीडियो देखें तो वो कहते हैं ये टाइप 2 वालों के लिए ज्यादा अच्छी है। अब डायबिटीज मोटे तौर पर टाइप 1 टाइप 2 में जो है उसे बांटा गया है, पर ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो दवाई खाते हैं टाइप 2 वाले उनके लिए ज्यादा अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये टाइप 1 के लिए भी अच्छी है। तो रियलिटी क्या है इसकी?
1: जी मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो डायबिटीज़ होता है वो दो तरह का होता है, जैसा आपने भी कहा टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। अगर इसको मैं हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा ब्रेक करूं तो टाइप 1 जब आपकी बॉडी में इंसुलिन खत्म हो जाता है इसको टाइप 1 बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। और दूसरी डायबिटीज़ है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़, या हम दूसरे वर्ड में अगर मैं बोलूं तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज़। तो जो दूसरा है वो है जीवन शैली में, जब आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है, ओबेसिटी उससे जुड़ी हुई है जैसा आप समझ रही हैं, तो टाइप 2 से। तो मैं अगर अवीकली की बात करूं, जो हमारे देश में भी इस पे बात हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में यही कहना चाहता हूं मैम कि टाइप 1 डायबिटीज़ के जो लोग हैं उनके लिए अवीकली अभी फ़िलहाल में नहीं है। मैं ये पहले ही इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा डेंजर साइड इफ़ेक्ट और मैं कहूँगा काफ़ी कॉम्प्लिकेट टेड साइड इफेक्ट होता है, वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर को काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है और काफ़ी लंबे समय तक कम कर देता है, क्योंकि मैम ये लंबे समय तक काम करता है, 7 दिन में एक ही बार लगता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होते हैं उनका क्या होता है कि उनको एग्जैक्ट डोज और उनकी डोज को हमको ऊपर नीचे करना पड़ता है, प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, बहुत ही स्पेसिफिसिटी चाहिए इंसुलिन को देने की। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ इसको अगर अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेडिकल सुपरविजन में वो ले सकते हैं और हर मरीज डॉक्टर के सुपरविजन में ऑल टाइम रहता नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं, क्योंकि जो एवीकली है ये इंसुलिन जो है ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है, जैसे कि हमारे लेंटस ग्लार्जिन जो होता है जीन ग्रुप और डेग्लूडेक जो होता है, मैं ये नाम ले रहा हूं, इन इंसुलिन्स में एक और होता है आइकोडेक, इंसुलिन आइकोडेक, दैट इज एवीकली। तो इसका जो हाफ लाइफ होता है मैम वो होता है मोर देन 190 आवर्स, आप समझेंगे 190 घंटे से ज्यादा इसकी हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है मैम कि इतने घंटे तक, 190 घंटे तक मतलब 7 दिन तक ये आपके शरीर में रहेगा, तभी आप देख रही हैं कि 7 दिन में एक ही बार देना पड़ता है और शुगर को स्टडी मतलब कंट्रोल करके रखता है,
0: कंट्रोल करके रखेगा।
1: तो अगर कोई पेशेंट इसको ले लेता है, और जैसे किसी को लेंटस में उदाहरण के रूप में बताना चाहूं तो किसी को अगर रात में लेंटस चल रहा है, मान लो सपोज करो 20 यूनिट एक दिन में लेता है वो, तो आप देखेंगे 7 दिन में वो 140 यूनिट ले लेगा। आप देखेंगे अगर लेंटस वो एक दिन में 20 लेता है तो 7 दिन में 140 ले लेगा। तो उसको एवीकली का 140 यूनिट डोज अपन को एक ही दिन में देना है मैम, आप समझ गई, सारा लेंटस के डोज को कैलकुलेट करके अपन को 140 देना है। अगर मैं बात करूं एवीकली के वायल की, जो कि 1 ml में 700 यूनिट आती है मैम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए कि एक यूनिट जो होती है उसमें 700 यूनिट, 1 ml में 700 यूनिट आती है, और इसकी रेट ऑलमोस्ट 2500 के आसपास है, 2500 रुपए के आसपास। तो अगर थोड़ा सा भी मरीज इसको डोज को ऊपर नीचे कर देता है, मान लो
0: ये जानलेवा साबित हो सकता है,
1: जैसा बिल्कुल आपने ठीक कहा, 150 यूनिट ले लेता है, और खासतौर पर अगर वो सीनियर सिटीजन है और उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी, लीवर की बीमारी है, तो ये बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि इसका शुगर गिरी हुई शुगर लंबे समय तक शरीर में रहेगी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको किसको लेना है और कितना डोज लेना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो मैंने बताया हाफ लाइफ जिसको बोलते हैं वो 190 घंटे होती है। तो गलती से अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो बहुत ही लंबे समय तक रहेगा,
0: और बार बार कई बार आप सो रहे होते हैं तो भी ये रिस्क बरकरार रहता है।
1: यस यस। और खासतौर पर मैंने जैसा बोला कि पेशेंट की प्रोफाइल, अगर पेशेंट अवेयर नहीं है, अनअवेयर है, हम जिसको एक चीज बोलते हैं अनअवेयर हाइपोग्लाइसीमिया, खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन होते हैं और जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, जिनका हमारा जो सिस्टम होता है जो ये पता करता है कि अगर शुगर कम हो रही है तो बेचैनी, घबराहट, रेस्टलेसनेस हो रही है, यही ना पता चले लक्षण, और उसको हम एवीकली दे दें तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। इसलिए इसमें सतर्कता बहुत जरूरी है, जैसा हम बात करें,
0: मतलब सुपरविजन तो बहुत जबरदस्त चाहिए इसमें, कि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं इस इंसुलिन को लगाते हुए। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि खुद ही खरीद ली और खुद ही इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिस डॉक्टर से आप परामर्श ले रहे हैं उनकी परमिशन के बिना ये एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि ये लंबे समय तक आपकी बॉडी में रहती है, और अगर आपकी शुगर ज्यादा लो हो गई है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे और भी जानेंगे कि आखिर शुगर कितनी होनी चाहिए, यानी आपका HbA1c कितना होना चाहिए जब आपका इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस इंसुलिन का, या फिर आपकी रेगुलर शुगर कितनी है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बहुत हाई शुगर में ये काम करती है या फिर एवरेज शुगर में भी आप इसको लगाकर इजीली अपनी लाइफ जी सकते हैं? ऐसे कुछ सवाल और उनके जवाब लेंगे हम इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। हम बात कर रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन अ वीकली के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं? हम किसी ब्रांड को या किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं कैसी इंसुलिन के बारे में जो कि हाल ही में यानी हफ्ता भर पहला लॉन्च की गई है। बहुत सारे डायबिटिक जो हैं लोग यानी डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा खुशी है क्योंकि हर रोज़ 4 से 5 बार इंसुलिन लगा रहे हैं, 1 बार लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लगा रहे हैं। इतनी बार इंसुलिन लगाने के बाद बंदा थोड़ा सा तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ऐसे में कम इस्तेमाल होने वाली ज़्यादा असर दिखाने वाली इंसुलिन आपके लिए वाकई एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स जानने भी ज़रूरी हैं, वो हम बता रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीना जी जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में हमारे साथ आज जुड़े हैं और इंसुलिन से जुड़ी ही बहुत सी बातें हम उनसे जान रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र, काफ़ी सारी डिटेल आपने दी है, एक अच्छी खासी रिसर्च आपने करी हुई है इसके बारे में, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ जब हम बात कर रहे थे कि टाइप 2 वालों को ये ज़्यादा सूट करेगी अभी फिलहाल के लिए, सो टाइप 2 में भी कोई लेवल ऑफ जो शुगर होता है उसको देखकर ये प्रिस्क्राइब की जाएगी? HbA1c का डेटा देखना ज़रूरी है इसमें या किस प्रकार से किसी भी टाइप 2 वाले को ये रिकमेंड कर दी जाएगी?
1: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम कि एक्चुअली अगर आपके पास 100 पेशेंट है तो आप 100 को एक इंजेक्शन डायबिटीज़ में नहीं दे सकते। जैसे कि हम बात कर रहे थे तो हर पेशेंट की प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर पेशेंट की पर्सनल प्रोफाइल होती है खासतौर पे डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। तो मैं अगर इफ़ टू बी वेरी स्पेसिफिक, पीपल हु आर हैविंग HbA1c ऑफ 8.5, जो हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं जनरली वो जिनका HbA1c 8.5 के आसपास होता है उनको हम जनरली लॉन्ग एक्टिंग एक बार 24 घंटे में एक बार लेंटस या दूसरा जो इंसुलिन होता है वो देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ वीकली की भी की तो ये भी वैसे ही रहेगा कि अगर किसी का HbA1c 8.5 के आसपास है या किसी का फास्टिंग शुगर 120 के ऊपर जाता है अगर हम नॉर्मली बोलें, क्योंकि नॉर्मल फास्टिंग 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसिलीटर होता है, तो अगर किसी की HbA1c 8.5 है या किसी का फास्टिंग बहुत ज़्यादा रहता है तो उसको जिसको हम लेंटस पहले दे रहे थे जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है उसको बंद करके उन पेशेंट्स को हम वीकली पे ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको हम हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में प्रो एंड कॉन्स इसके बताएं कि इसका साइड इफेक्ट काफ़ी डेडली हो सकता है, और उनको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उनकी ईटिंग हैबिट्स कैसी है मैम, उनकी एक्टिविटी कैसी है, उनका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है। तो मैं वही कह रहा था कि ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके और उनको हम वीकली जिनका HbA1c 8.5 से ज़्यादा है उनको दे सकते हैं, और उनको स्ट्रिक्ट सुपरविजन में भी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंजेक्शन नया है, कुछ साइड इफेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अभी तक ऑब्जर्व नहीं किए गए हों, वो पेशेंट को देने के बाद ही पता चलें। तो ये है कि आप उनको दे सकते हो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बोला हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और एक और डेडली साइड इफेक्ट इसका होता है कि कई बार ये हेडेक और बीपी को कम कर देता है जिसको हाइपोटेंशन कहते हैं, तो उसके उस समय भी आपको चक्कर वॉमिटिंग या वीकनेस लग सकता है। और एक जो जिनको हार्ट की इश्यूज होते हैं, जिनको हार्ट फेलियर होता है या जिनको फ्लूइड रिटेंशन मतलब पैरों में सूजन होती है और उनका हार्ट का फंक्शन कम होता है, उनको भी ये वीकली रिकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि ये फ्लूड रिटेंशन या आपकी बॉडी में पानी को बढ़ा सकता है और हार्ट को फेल कर सकता है। इवन जो पेशेंट पहले से हार्ट की बीमारी वाले नहीं है उनको भी हार्ट का रिस्क कर सकता है। तो ये साइड इफेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट और काफी डेंजरस है। तो ये चीजें देख के और अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट को ये सब कुछ नहीं है तो आप वीकली आराम से दे सकते हो और सुपरवाइज कर सकते हो। 100% इसके बारे में ये पता चला है कि जो पेशेंट्स पहले लेंटस पे लॉन्ग एक्टिंग पे थे और उनको अगर हम वीकली देते हैं तो उनका शुगर बहुत बेटर कंट्रोल होता है और पेशेंट की कॉम्प्लायंस बहुत अच्छी होती है मैम, कि पेशेंट को लगता है यार मुझे 7 दिन में एक ही बार इंजेक्शन लगाना है, मतलब 365
0: थोड़ा रिलीफ होता है।
1: यस मैम, 365 इंजेक्शंस की जगह ओनली 52 इंजेक्शन लगाने, तो पेशेंट पॉजिटिविटी फील करता है और वो जो ट्रीटमेंट कॉम्प्लायंस है और परसिस्टेंस है, और खासतौर पर जिनको क्रॉनिक डायबिटीज है मैम लंबा और जिनका शुगर लगातार हाई रहता है उनके लिए बहुत कारगर है।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका शुगर हाई रहता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो थोड़ा ध्यान रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बॉडी में होता है।
1: और इसमें एक चीज़ और है कि वीकली लगाने के बावजूद भी आपको प्रांडियल इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। कई बार पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये लगा लिया तब और दूसरा इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जिनका HbA1c आपने जैसे बात करी, जिनका HbA1c 10 से भी ऊपर रहता है, मैं उदाहरण के रूप में बात करूँ जिनका 300 से ऊपर शुगर है मैम, तो उनको हम वीकली भी दे सकते हैं, और अगर उनका प्रांडियल मतलब खाने के समय अगर शुगर बढ़ता है तो हम वो इंसुलिन दे सकते हैं जो कि ओनली खाने वाली शुगर को नीचे करते हैं। बात करूँ जिसमें आके आपका हमारे फियास पाता है, हमारा एनपीएच आता है, कई तरह के इंसुलिन होते हैं जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग होते हैं, उनको हम दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे मन में बहुत ज्यादा आ रहा है कि ये तो हमने बात कर ली टाइप 1 टाइप 2 की, लेकिन अभी जेस्टेशनल की बात करते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को शुगर हो जाती है और डायबिटीज जब होती है, हालांकि वो बाद में कई बार रिवर्स भी हो जाती है, ठीक भी हो जाता है सब कुछ, लेकिन उस दौरान एक स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि अभी ये दवाई लेनी है, अभी इस तरीके की डाइट रखनी है, तो क्या यहाँ पर ये काम करेगी?
1: जैसे मैम आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम टेबलेट ज्यादा दे नहीं सकते हैं और उसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इंसुलिन होता है, जैसा आपने अभी बोला। या तो आप एक दवाई जिसका नाम है मेटफॉर्मिन, वो ओनली दे सकते हो, सेफ है। इसके अलावा अगर किसी को प्रेगनेंसी में जिसकी शुगर ज्यादा जाती है और जेस्टेशनल डायबिटीज, जैसा कि आपने कहा प्रेगनेंसी के दौरान की डायबिटीज है, तो उसमें हम इंसुलिन के अलावा और कुछ दे नहीं सकते हैं। तो मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि एवीकली उनको आप दे नहीं सकते हैं, बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि अगर एवीकली जो है अगर हाइपोग्लाइसीमिया करेगा तो उनको फीटस बच्चे को भी काफी तकलीफ हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे को भी हो सकता है मदर के साथ साथ। और जैसा हमने बोला था कि इसकी हाफ लाइफ 190 घंटे से ज्यादा है, तो हाइपोग्लाइसीमिया तो लंबा
0: कंट्रोल भी नहीं होगा
1: और काफी घातक हो सकता है। तो बिल्कुल अच्छा सवाल है। अभी मेरे को लगता है प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन को देना बिल्कुल ठीक नहीं है। जनरली हम प्रेगनेंसी में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं और थोड़ी देर में काम करके खत्म हो जाते हैं, प्रांडियल इंसुलिन जिनको बोलते हैं, जितना आपने खाना खाया आपकी शुगर ऊपर गई और जैसे ही हमने वो इंसुलिन दिया और आपकी शुगर कंट्रोल में आ गई और खत्म हो गया,
0: इतना ही काम वाले असर भी 3-3.5-4 घंटे
1: इतने लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हम जनरली दे ही नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल, यानी जेस्टेशनल डायबिटीज में भी इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये आप इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये भी जानना जरूरी है, जो हम आपको बताएंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो हमारी ऐप यानी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर ऐप स्टोर से, और पॉडकास्ट सेक्शन में आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको डॉक्टर सुरेंद्र मीणा के साथ हुई ये सारी बातचीत, जो खास तौर पर से इस 7 दिन में लगने वाली इंसुलिन के बारे में है, आपको मिल जाएगी, और जिसको आप कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में ऐसे शख्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिसे वाकई इस जानकारी की जरूरत हो। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के बारे में, जो हाल ही में रिलीज हुई है, यानी हाल ही में लॉन्च हुई है, मार्केट में आई है। अ वीकली इसका नाम है और अ वीकली से आप समझ ही गए होंगे हफ्ते में एक बार लगने वाली इंसुलिन, यानी रोज रोज के झंझट से काफी हद तक छुटकारा उन पेशेंट्स के लिए जो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर चीज जब आती है तो उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। हालांकि नुकसान ऐसे नहीं है, पर हाँ, अगर आप ध्यान ना दें तो ये नुकसान काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। अब ये सब आपको मैं नहीं बता रही हूँ, ये बता रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर मीणा, फाइनली अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब ये इंसुलिन लगाने वाले जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, या फिर कहें वो सारे लोग जो इंसुलिन का इस्तेमाल करने वाले हैं वीकली का, सबसे ज्यादा किन बातों का ध्यान रखें, क्या एहतियात बरतें?
1: सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैम, जो पहले से इंसुलिन लगा रहे होते हैं तो वो इंसुलिन के बारे में भी समझते हैं, इंसुलिन कैसे काम करता है और इंसुलिन का साइड इफेक्ट जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसको भी काफ़ी समझते हैं। कहते हैं कि वो उन्होंने इसको अनुभव किया है और उन्होंने ऑलरेडी इसको यूज़ किया, तो दे हैव गॉट ए बैकग्राउंड ऑफ इट इन देयर माइंड बैक ऑफ इट। तो इसमें यह होता है कि अगर उनको हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा तो वो बहुत अलर्ट होते हैं, वो ये भी समझते हैं कि आपको डोज को ऊपर नीचे कैसे करना है,
0: कैसे करना।
1: लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट में जैसा आपने कहा कि एक तो आपको इसमें हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आप डोज को बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 0.2 सीसी, जिसमें कि 140 यूनिट होता है, जैसा मैं बता रहा था कि 1 ml एवीक्ली का 700 यूनिट होती है, अगर आपने 0.2 से 0.3 कर दिया तो आप ऑलमोस्ट 40 यूनिट ऊपर चले जाओगे। तो 40 यूनिट ऊपर जाने का मतलब है कि आपकी शुगर 200-250 नीचे गिर जाएगी। तो आपको इसमें सतर्कता बहुत ज्यादा बरतनी है कि एग्जैक्ट डोज जाए, जो डोज है उसका क्वांटिफिकेशन जो है बिल्कुल प्रीसीजन एग्जैक्टली होना चाहिए। अगर 140 है तो 140 ही जाए, इसमें कैजुअल ना हो, इसमें हम लोग लापरवाही ना करें। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि आपको इंसुलिन स्टोर, जैसे आप औरों को करते हैं वैसे इसका भी स्टोरेज होता है, रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक लो बीपी करता है, तो ये ध्यान रखें, खासतौर पर कुछ लोग या कुछ महिलाएं जिनका कि जनरली बीपी हाइपोवोलीमिया, लो बीपी होता है, जिसको हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, और जिनको पहले से हेडेक या माइग्रेन वगैरह होता है, उनको हो सकता है हेडेक प्रेसिपिटेट हो सकता है बीपी कम होने की वजह से, और जिनको हार्ट के इश्यूज हैं जैसा हमने कहा, उन वो भी नहीं ले सकते हैं। और खासतौर पे जो अगर मैं कहूँ कि जो यंग जनरेशन होती है, और यंग जनरेशन को भी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर प्रॉपरली करें, क्योंकि कई बार वो ट्रेवल कर रहे होते हैं और उस समय उनके पास खाने की कोई चीज़ भी नहीं होती है, अगर उस समय उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया और उन्होंने एवीक्ली ले लिया, तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि यू शुड डेफिनेटली कैरी समथिंग इन योर पॉकेट ऑल द टाइम, सो इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया यू शुड इमीडिएटली टेक इट।
0: एक्चुअली में
1: ये बहुत जरूरी है,
0: ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, एक हफ्ते तक आपकी बॉडी में एकदम ठीक मात्रा में रहने वाली है, आपकी बॉडी की जरूरत के हिसाब से इंसुलिन रिलीज होने वाली है। सो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी शुगर लो हो जाती है आम भाषा में, तो आपके पास खाने पीने का सामान होना चाहिए उसको नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि एक हफ्ते तक आपको इस बात का ध्यान तो रखना ही
1: पड़ेगा। क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि लेंटस और ट्रेसिबा जो है उनसे ही हाइपोग्लाइसीमिया 24 घंटे काम करता है, डेग्लूडेक उससे हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा होता है, तो आप सोचो एवीक्ली से तो बहुत ही ज्यादा होगा।
0: बिल्कुल,
1: तो डेफिनेटली वी शुड यूज इट, बट देयर शुड बी पीपल, एवरीबॉडी शुड बी केयरफुल एंड दे शुड बी अवेयर अबाउट।
0: बिल्कुल,
1: इट इज गुड।
0: बिल्कुल, यानी सतर्कता के साथ आप इसका इस्तेमाल जरूर करें, और बिना किसी डॉक्टरी सलाह के, ये अवेलेबल भी नहीं होगी, यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इसको खरीद भी नहीं सकते हैं, बट अगर कहीं से खरीद भी लेते हैं किसी वजह से, आपको लगता है कि आपको बहुत नॉलेज हो गई है, सो प्लीज इसका इस्तेमाल, इसकी डोज डॉक्टर की सलाह से ही सेट करें, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको इस हफ्ते में एक दिन लगने वाली इंसुलिन के बारे में ज़रूर मिली है। हमने पूरी कोशिश करी है कि आपके सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सकें। फिलहाल आज प्रोग्राम ऑल इज वेल में इतना ही। डॉक्टर सुरेंद्र मीणा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: तो अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव मंच ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा, जहां हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में महारत हासिल की होती है। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया के एक बेहद प्रतिभाशाली और प्रॉमिसिंग यंग सितार मेस्ट्रो अधिराज चौधरी जी। अधिराज ने मात्र 6 वर्ष की आयु में सितार की साधना शुरू की और आज अपनी मेहनत, डेडिकेशन और एक्सेप्शनल टैलेंट के दम पर देश विदेश के कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। ये प्रसिद्ध जयपुर सेनिया घराना से जुड़े हैं और 17 फ्रेट सितार की दुर्लभ परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और संगीत तो मानो इन्हें विरासत में ही मिला है, क्योंकि ये महान सितार वादक पंडित देबू चौधरी जी के ग्रैंडसन हैं और पंडित प्रतीक चौधरी जी के सुपुत्र हैं। वर्तमान में ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत विदुषी श्रीमती अनुपम महाजन जी, श्री नील रंजन मुखर्जी तथा इंटरनेशनली एक्लेम्ड सितार मेस्ट्रो एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी पंडित नीलाद्री कुमार जी के मार्गदर्शन में सितार की गहन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हें CCRT स्कॉलरशिप, MS सुबुलक्ष्मणी फेलोशिप, कला उत्सव में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां और G20 समिट जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर प्रस्तुतियां और लगातार मिल रही सफलताएं इन्हें युवा पीढ़ी के सबसे प्रेरणादायक कलाकारों में शामिल करती हैं। और अपनी साधना, अनुशासन और संगीत के प्रति समर्पण के साथ अधिराज भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अधिराज की इंस्पायरिंग म्यूजिकल जर्नी, रियाज और इनके गुरुओं से मिली सीख और इनके सपनों और संगीत के प्रति इनके जुनून के बारे में। अधिराज जी, सबसे पहले क्रिएटिव मंच में आपका हार्दिक स्वागत है और संगीत से आपका पहला परिचय कैसे हुआ इस बारे में हमें बताइए।
5: थैंक यू सो मच। संगीत से मेरा पहला परिचय ऐसा ही हुआ कि मैं जब बहुत ही छोटी उम्र से मैं संगीत के ही माहौल में पला बड़ा हूँ। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी क्लासेस लेते थे, वह सितार वादक थे, तो फिर वही मैं सितार के माहौल में पला बड़ा हूँ। तो मैं बचपन से ही म्यूजिक सुनता आ रहा हूँ, तो मुझे इसीलिए म्यूजिक बहुत पसंद आने लग गया बचपन से। और उनके स्टूडेंट्स जब क्लास के लिए आते थे, मैं वहाँ भी बैठता था, मैं सबको सुनता था और मुझे बहुत मजा आता था। तो ऐसे ही करके मेरा संगीत से इंट्रोडक्शन हुआ था पहले।
4: लेकिन जैसे आपने बताया कि आपने 6 वर्ष की आयु से मतलब सीखना शुरू किया, तो हमें तो 6 साल का बच्चा बहुत ही छोटा लगता है कि अभी उसे सही से ABCD वगैरह भी सीख रहा है। और सितार तो एक अपने आप में बहुत शायद मुश्किल इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाता
5: जी,
4: है
5: जी।
4: तो कैसे आपने उस चीज को किया, या दादाजी और फादर की डांट से, मतलब क्या था उसके पीछे का आपका एक व्यू पॉइंट?
5: जी, मुझे जैसे कि बचपन से ही म्यूजिक बहुत पसंद आता था छोटी वर्ष की आयु से, और इसीलिए तो मुझे म्यूजिक मेरे दादाजी और पिताजी मतलब सब ने सोचा कि मुझे भी म्यूजिक में कुछ करना
4: सिखाना चाहिए।
5: तो और वो सितार वादक थे, तो उन्होंने मुझे शुरू करवाया सितार से
4: जी।
5: और फिर मुझे सितार, मैंने जैसे ही शुरू किया, मुझे सितार इतना पसंद आया कि मैं बस सितार ही करना चाहता था। बस मैंने यही सोचा कि मैं अब सितार ही बजाऊंगा। और मुझे तो मुझे उसी उम्र से सितार बहुत पसंद आने लग गया, तो मुझे उन्होंने फिर सिखाना शुरू करा। तो ऐसे ही करके मेरी रुचि बढ़ी म्यूजिक में और सितार की तरफ, इसलिए इस उम्र में मैंने सितार बजाना शुरू करा था।
4: जी जी जी। और अभी इस टाइम आपकी कितनी एज है?
5: जी, इस टाइम मैं 17 साल का हूँ।
4: वाह, मतलब 6 से बहुत साल हो गए आपको स्टार्ट किया, आपका पूरा अभी तक की लाइफ सितार बजा रहे हैं आप और फुल ऑन इंटरेस्ट के साथ, जैसे कि आप अपने बहुत स्टेज शोज भी करते हैं हमने देखा। सो एक चीज बताइए, आपका कभी वोकल में भी ध्यान गया या इंस्ट्रूमेंट के प्रति ही रुचि थी?
5: जी, मुझे वोकल भी बहुत पसंद है, पर इंस्ट्रूमेंट के प्रति मेरी रुचि ज्यादा है
4: जी।
5: क्योंकि मैंने सितार ही सीखा है, तो जो चीज़ मैंने सीखी है उसके प्रति मुझे सुनना, मुझे सभी चीज़ें सुननी बहुत अच्छी लगती है, पर सितार के लिए मेरी एक अलग ही डेडिकेशन है, मुझे सितार बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
6: अच्छा, तो जैसे हमने देखा है कि गिटार जब सीखते हैं तो उंगलियाँ काफ़ी मतलब फिंगर पे लगती है और कहते हैं छिल भी जाता है, तो आपने सितार तो मुझे लगता है और टफ है, तो किस तरीके से आपको भी कभी ऐसा होता था कि बहुत प्रैक्टिस करने से आपकी फिंगर्स ऐसे छिल गई है या कुछ चोट लग गई हो?
5: जी, वैसे तो सितार अगर आपको बजाना है तो उंगलियां छिलनी आई थिंक कंपलसरी है, जरूरी
6: अच्छा।
5: है ये उंगली, अगर आपकी उंगली छिलेगी नहीं तो सितार आप बजा नहीं सकते, क्योंकि
6: अच्छा।
5: वो उंगलियों में कैलसेस जो होते हैं, लाइंस जो होते हैं जो हम इसको बोलते हैं, वो सितार बजाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और शुरुआत में तो किसी को भी दर्द होगा अगर बजाएंगे, जैसे आपने

0: आपके गुरु रहे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो जनरल जैसे कोई व्यक्ति अगर सीखना चाहे, अपने किसी बच्चे को सिखाना चाहे, तो क्या एज होनी चाहिए? मतलब आपके तो घर का माहौल, चलिए हम कह सकते हैं कि वही था बचपन से, तो बट अगर किसी को प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है तो क्या 6 वर्ष में पॉसिबल है?
1: जी, वैसे तो सीखने की कोई एज नहीं है
0: जी।
1: अब जब चाहो, जिस एज में चाहो आप सब सीख सकते हो। सीख अगर डेडिकेशन है तो सब पॉसिबल है। पर अगर एक स्टार्टिंग में, अगर एक कम वर्ष की आयु से आप सीखते हो और अगर आपके घर में म्यूजिक का माहौल है तो एक एडवांटेज मिल जाता है पहले से ही,
0: कि
1: आप अच्छे से सीख पाते हो बचपन से। पर मेरे हिसाब से सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, मतलब कोई एज नहीं है आपके हिसाब से। और मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में सीखी हुई चीज बहुत अच्छे से हमें याद रहेगी, इंस्टेड ऑफ के हम अगर 10th 11th 12th की एज में सीखे तो, है ना?
1: यस।
0: ओके, तो संगीत के क्षेत्र में आपके दादाजी और पिताजी दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं, हमें पता है, तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का अनुभव कैसा है आपका?
1: जी, तो अभी अभी तो मेरी एज उतनी ज़्यादा है नहीं कि मुझे अच्छे से अनुभव हुआ हो और मुझे ज़्यादा म्यूज़िक में मैंने मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। बट अभी तक जो मैंने अपने ट्रेडिशन को आगे ले जाने की कोशिश रखी है, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी ऐसे ही अपने ट्रेडिशन को ले जाते रहूँ और काफ़ी बड़े बड़े मंचों पे परफॉर्म करूँ, अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाऊँ और अपने दादाजी और पिताजी का नाम रोशन करूँ आगे जाके। तो अभी तक मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है और मैं आगे जाके और अच्छा करना चाहता हूँ।
0: जी अधिराज, और हमारे तो यही विशेष है कि आगे जाकर आप और भी सक्सेसफुल रहें। सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से वापस आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को अधिराज जी के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सितार वादक अधिराज चौधरी जी। सो अभी तक अधिराज, हमने जाना कि आपने 6 वर्ष की आयु से सितार सीखना शुरू किया। आपके घर का माहौल था बहुत ही अच्छा, जिसके प्रति आपने अपना सितार बजाने की क्रिया को जारी रखा। सो अब हमें एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपका घराना है जयपुर सेनिया घराना, और गुरु शिष्य परंपरा, इन दो चीज़ों के बारे में हमें बताइए कि घराने एक्चुअल में क्या है, क्योंकि जनरल जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उन्हें नहीं पता कि घराने क्या होते हैं और गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, तो थोड़ा इसके बारे में हमें समझाइए।
1: तो घराने बेसिकली होते हैं स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक, जैसे ट्रेडिशन होता है, जो लोग ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो घराने के लोग ही करते हैं। तो एक घराना बेसिकली एक स्कूल ऑफ म्यूज़िक हो गया
0: जी।
1: जैसे कि बहुत अकेडमिक्स में, बहुत स्कूल, जैसे आपने पढ़े होंगे बहुत सब्जेक्ट्स में स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं साइकोलॉजी में, जैसे वैसे ही घराने भी स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक है। और हर घराने का अलग स्टाइल है म्यूज़िक अप्रोच करने का। कुछ घराने इंस्ट्रूमेंटल घराने होते हैं, सबसे पहले घराने वोकल घराने होते थे, उससे काफ़ी और घराने आए जो इंस्ट्रूमेंटल के घराने भी बने हैं। तो ऐसे ही कर करके बहुत घराने डेवलप हुए और सबका स्टाइल अलग होता है और यूनिक होता है। वैसे ही हमारा घराना है जयपुर सेनिया घराना, तो हमारे घराने की का हमारा घराना एक इंस्ट्रूमेंटल घराना है। तो उसका यूनिक स्टाइल ये है कि हमारे घराने में 17 पर्दे का सितार बजता है
0: जी,
1: 17 फेटेड सितार, और किसी घराने में नहीं है।
0: अच्छा।
1: हमारे घराने का यही यूनिक स्टाइल है 17 फेटेड सितार का, जो जनरेशन से पास होते आया है
0: जी।
1: हमारा घराना मसीद सेन जी से आता है, उस टाइम से लेके अभी तक ये जनरेशन में हमारा ट्रेडिशन पास होता गया है। तो ये हमारे घराने की खासियत है। और जी गुरु शिष्य परंपरा, उसमें जैसे मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे दादाजी और पिताजी से सीखने का मौका मिला, मेरे घर में ही म्यूज़िक का माहौल था, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट उस लिए। तो मैंने उनसे सीखा घर पे, तो मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। और मैं मानता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा म्यूज़िक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: अगर आप म्यूज़िक करना चाहते हैं तो आपको अपने गुरु के साथ रहना भी पड़ेगा। उनके साथ रहने के साथ साथ आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है
0: जी।
1: म्यूज़िक के अलावा भी काफ़ी आप चीज़ें सीखते हैं लाइफ में, और म्यूज़िक भी आपका काफ़ी अच्छा होता है, आप जानते हैं चीज़ों को। तो गुरु शिष्य परंपरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है म्यूज़िक में मेरे लिए
0: जी। तो आपके जीवन में आपके गुरुओं की सबसे बड़ी सीख क्या है
1: जी? मेरे लिए मेरे गुरुओं की सबसे बड़ी सीख है सिंसेरिटी, ऑनेस्टी और डिवोशन। म्यूज़िक में सिंसियर रहना है
0: जी,
1: हार्ड वर्किंग रहना है और ऑनेस्ट रहना है खुद से। कभी ऑनेस्ट ऑफकोर्स, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते।
0: बिल्कुल।
1: आपको अपना टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा म्यूज़िक अगर आपको करना है सीरियसली तो। और डिवोशन ऑफकोर्स, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो आपको उस फील्ड में अपने आप को पूरा डिवोट करना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा
0: जी।
1: तो जी यही है,
0: मतलब तन मन धन से अपनी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, रियाज भी करना है और एक सच्चाई
1: इंजॉय भी करना है, म्यूजिक को सुनना भी है।
0: हाँ, कहीं वो प्रेशर लेकर नहीं करना।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: म्यूजिक तो ऐसी चीज ही नहीं है कि प्रेशर लेकर किया जाए। बिल्कुल। तो आप कितने घंटे रियाज करते हैं
1: जी? वैसे मेरा फिक्स तो नहीं है, जब मुझे अभी मैंने 12th ख़त्म करा है।
0: अच्छा,
1: तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब रियाज कर लेता। मैं रोज़ रियाज करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा फिक्स टाइम नहीं है जी, बट कोशिश करता हूँ कि मैं और आगे अपने टाइम को बढ़ाऊँ रियाज में और मेहनत करूँ। तो जी यही मेरी कोशिश है
0: जी। तो आपने 12th में क्या स्ट्रीम थी आपके पास?
1: जी 12th में मेरे पास ह्यूमैनिटीज थी।
0: ओके, तो साथ में अपना प्रैक्टिस का समय निकाल पाते थे अपने लिए स्कूल के साथ साथ?
1: जी जी, मैं निकाल पाता था।
0: जैसे बोर्ड्स के एग्जाम है तो एक अलग प्रेशर होता है कि मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए,
1: वो तो होता है।
0: हाँ, तो उसी के चलते मैं बोल रही हूँ कि आप कितना समय दे पाते थे अपनी प्रैक्टिस को, रियाज को?
1: उसी के मैं तब शाम के आज में रियाज करा करता था, 7 बजे इस टाइम के अराउंड रियाज करता था
0: जी।
1: तो इस टाइम पे मैं कोशिश करता था रोज 1-1.5 घंटा निकाल लो रियाज के लिए। तो कोशिश होती थी, कभी कभी नहीं हो पाता था, बट मेरी कोशिश तो थी कि मैं रोज रियाज करूँ फिर भी
0: जी। जी जी, वैसे कोई भी अगर चीज़ है तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो वोकल है, डांस है या इंस्ट्रूमेंटल है, तो प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो जैसे सितार को ही आपने अपना वाद्य, मेन वाद्य जो चुना है, तो आपको कभी ऐसा ही लगा कि सितार की जगह कुछ और मुझे इंस्ट्रूमेंट चुनना चाहिए था? कभी वो चीज़ मन में नहीं आई आपके?
1: नहीं, ऐसी चीज़ मेरे मन में कभी भी नहीं आई, क्योंकि पहले से ही मैंने जब सितार सीखना शुरू करा था, सितार काफ़ी पसंद था, और अब भी मुझे तब से यही लगता आया है कि मैंने सितार को चूज़ करके काफ़ी अच्छी चीज़ करी, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर एंड फादर ने मुझे सितार के बारे में बहुत सिखाया, सितार मुझे सिखाया उन्होंने, तो तब से लेके और हमेशा मुझे यही लगता रहेगा कि सितार मेरे लिए बेस्ट है। मुझे बाकी और इंस्ट्रूमेंट सीखने का बहुत मन है, पर सितार ही मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट रहेगा, क्योंकि सितार की टोन बहुत पसंद आती है और सितार मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए हमें भी मतलब सुनने में बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ओके, और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है धीराज के आपको थकान है या आपका मन नहीं कर रहा है, मतलब करना चाहते हैं प्रैक्टिस बट एक होता है ना कि अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रहा, कभी होता है ऐसा या कभी भी नहीं होता?
1: वैसे ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि जब मैं सितार बजाता हूँ, जब मैं रियाज करने जाता हूँ, तो इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी, क्योंकि पूरा दिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे थकान हो, दिन की थकान हो, काम कुछ भी हो जाए, जैसे स्कूल की थकान हुई करती थी पहले, तो कुछ भी दिन में हो जाए, तो सितार जब मैं बजाने बैठता था और जब मैं अब भी बजाने बैठता हूँ, इट फील्स लाइक थेरेपी फॉर मी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बजा के
0: जी।
1: और उसमें तो मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मोटिवेशन नहीं आ रही बजाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होता है
0: जी।
1: उल्टा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बजाने के बाद, तो जी यही
0: मतलब एक फ्रेशनेस आती है,
1: फ्रेशनेस आ जाती है
0: जी जी जी। बिल्कुल। सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से वापस आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को अधिराज जी के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा।

0: भैया आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

वेलकम बैक साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सितार वादक अधिराज चौधरी जी। अधिराज, आपने आपकी जो उपलब्धियां हैं हमने बहुत सारी देखी है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं आप।

0: आपने देश के कई बड़े मंचों पर प्रस्तुति दी है अपनी, तो कौन सा मंच आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों?
1: जी, मेरे दिल के सबसे करीब है यूमैक फेस्टिवल। जब भी होता है मुझे उसमें बजाने का मौका मिलता है, तो वह इंस्टीट्यूशन मेरे दादाजी का है, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था पहले, तो यूमैक फेस्टिवल में मुझे बजाने का जब भी मौका मिलता है, हमेशा मौका मिलता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वह मंच मेरे दिल के बहुत करीब है।
0: जी। और यहाँ आपने अपने दादाजी की बात की, मैं चाहूँगी एक बार आप उनके बारे में और अपने पिताजी के बारे में अपने मुँह से खुद बताइए।
1: मेरे दादाजी एक गुरु गुरु से बढ़कर थे, वो मेंटर थे सबके लिए, उनके जितने भी स्टूडेंट्स आते थे सबको वो अच्छे से सिखाते थे, उनके लिए एक मेंटर थे। और जैसे उन्होंने उनको ज़िंदगी जीनी भी सिखाई और म्यूज़िक भी सिखाया, उन्होंने हमारे घराने के बारे में सबको सिखाया और सब सारी चीज़ें बताई जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और वो एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट होते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, और उनको जब भी वो अच्छा करते थे वो उनकी तारीफ नहीं करते थे, वो कहते थे और मेहनत करनी है हर बार में, ताकि ताकि ताकि वो और मेहनत कर सके स्टूडेंट्स। बट अंदर ही अंदर जब भी उनके स्टूडेंट्स अच्छा करते थे उनको भी अच्छा महसूस होता था, बट वो बताते नहीं थे। पर मेरे साथ मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे साथ कभी स्ट्रिक्ट नहीं थे वो, मुझे बहुत प्यार से सिखाते थे और मैंने ज़्यादा उन्हीं से सीखा है, अपने पिताजी से भी सीखा है पर मैंने दादाजी से ज़्यादा सीखा है। और मेरे पिताजी भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से सिखाते थे, पिताजी का स्टाइल बहुत यूनिक था, उनका लयकारियों पे ज़्यादा ध्यान था, लयकारी और उनकी स्पेशलिटी थी लयकारी स्पीड, और उनका अलग ही स्टाइल था, उनका बहुत यूनिक स्टाइल था मेरे पिताजी का। और उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी चीज़ें सिखाई, तो जी सब ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे सबसे सीखने का मौका मिला।
0: जी लिसनर्स, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं अधिराज से, उनके दादाजी और उनके पिताजी के बारे में, मैं आपको बता दूं पद्म भूषण पंडित देबू चौधरी जी अधिराज जी के दादाजी हैं और प्रतीक चौधरी जी इनके पिताजी, तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अधिराज को उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला, उनसे इतनी चीज़ें सीखने का मौका मिला। अधिराज, आई थिंक आप बहुत ही लकी, मैं कहूँगी आपको, क्योंकि अगर शायद वो ना होते तो 6 साल की वर्ष में बच्चा क्या करते हैं कुछ हमें पता ही नहीं होता।
1: मैं आज जो हूँ, मतलब मैंने सितार की फील्ड में उन्हीं की वजह से आया।
0: जी जी जी बिल्कुल। तो अभी हमने आपके जो उपलब्धियों की बात की, अब एक है G20 समिट, तो इसमें किस तरीके से आप पहुंचे यहाँ पर, इसके बारे में बताइए हमें।
1: G20 समिट में मुझे इनविटेशन जो वो स्टूडेंट्स को या म्यूजिशियंस को इनवाइट करते हैं, तो मुझे भी ऐसे इनवाइट करा था जी SNA के थ्रू, कि मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं G20 समिट में परफॉर्म कर सकता हूँ। एंड आई फील दैट आई एम वेरी लकी टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे G20 समिट में परफॉर्म करने का मौका मिला। एंड जी,
0: और आई थिंक वो बहुत ही बड़ा स्टेज,
1: बहुत बड़ा स्टेज था वहाँ पे, प्रेसिडेंट्स डिनर पे हमको परफॉर्म करने का मौका मिला और बहुत लोगों से मिला भी मैं, देश के अलग अलग जगह से लोग आए थे वहाँ पे, पूरे इंडिया के लोग थे और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत रेयर रेयर इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे थे वहाँ पे, तो मुझे बहुत चीज़ एक्सप्लोर करने का मौका मिला और मुझे बहुत नए नए लोगों से मिलने का मौका भी मिला, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी अच्छा था।
0: जी, और इतनी कम उम्र में आपको एक इतना बड़ा स्टेज मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। अधिराज, जहां हमने आपकी उपलब्धियों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो साथ ही आपकी एक दो उपलब्धियां और बहुत ही अच्छी है, जैसे की CCRT स्कॉलरशिप और MS सुब्बुलक्ष्मिनी फेलोशिप, ये दोनों मिलने के बाद आप कैसा आपने महसूस किया और क्या है इसके बारे में थोड़ा हमें एग्जैक्टली बताइए।
1: जी, जब मुझे स्कॉलरशिप और फेलोशिप अवार्ड मिला, तो फिर मुझे बहुत ऑनर्ड और गर्व फील हुआ कि एंड आई फेल्ट वेरी लकी टू गेट दीज अवार्ड्स। एंड CCRT में जब मेरा नाम रजिस्टर हुआ, तब मुझे ज़्यादा पता नहीं था CCRT के बारे में, क्योंकि तब मैं काफ़ी छोटा था, जब मैं 2019 में था CCRT। एंड CCRT इज़ बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यंग आर्टिस्ट को मौका देती है परफॉर्म करने के लिए, सो वो हर साल या वो टाइम टू टाइम में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जहाँ पे वो यंग आर्टिस्ट को बुलाते हैं और साथ में परफॉर्म करवाते हैं, और म्यूजिशियन वहाँ पे सब कुछ होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है और भी चीजें होती है, थिएटर भी होता है।
0: अच्छा।
1: और वो बहुत एक्सपोजर भी देते हैं सब यंग आर्टिस्ट को, और लोगों से मिल भी सकते हैं सब आर्टिस्ट,
0: मतलब यंग आर्टिस्ट के लिए बेसिकली ये है।
1: जी मुझे फेलोशिप मिला था उसके लिए आई एम वेरी ऑनर्ड बिकॉज फेलोशिप हर साल 50 स्टूडेंट्स को मिलता है, 50 म्यूजिक स्टूडेंट्स या म्यूजिशियंस को मिलता है फेलोशिप अवार्ड. और वहाँ पे भी सेम, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, वहाँ पे बहुत इंडिया के बहुत बहुत जगहों से लोगों से मिलने का मौका मिलता है. जी
0: नाइस, आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है आपकी उपलब्धियों की. हम आशा करते हैं ऐसे ही आप और नाम रोशन करिए. सो अब हम बात करते हैं अधिराज, युवा पीढ़ी और शास्त्रीय संगीत. तो आप क्या मानते हैं कि युवाओं को अगर शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित करना हो तो किस तरीके से किया जाएगा?
1: जी, युवाओं को शास्त्रीय संगीत की ओर अगर आकर्षित करना है तो उन्हें शास्त्रीय संगीत पहले सुनना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रीय संगीत बहुत गहरा है.
0: बिल्कुल.
1: और अगर जैसे कि अगर इंटरेस्ट आपका बाकी फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में है तो शुरुआत में आपको अगर आप शास्त्रीय संगीत सुनेंगे तो आपको ज्यादा ज्यादा सुनना पड़ेगा अगर आपको आकर्षित होना है तो.
0: जी.
1: और शास्त्रीय संगीत क्योंकि अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप उसमें खो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा क्योंकि शास्त्रीय संगीत, म्यूजिक इज एंडलेस चाहे किसी भी फॉर्म में हो. तो आकर्षित अगर करना है तो आपको सुनना पड़ेगा पहले अच्छे से.
0: अधिराज आपकी बातें भी ना बहुत गहरी है, उम्र आपकी इतनी छोटी है लेकिन आप इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं. डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को भी आज बहुत अच्छा लग रहा होगा आपका ये इंटरव्यू सुन के. आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान दे रहा है?
1: जी जरूर, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान मिल रही है, क्योंकि पहले जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो ज़्यादा लोग यंग जनरेशन जो थी वो शास्त्रीय संगीत को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती थी और म्यूजिशियंस को एक्सपोजर नहीं मिलता था. अभी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत म्यूजिशियंस को एक्सपोजर भी मिल रहा है और सब शास्त्रीय संगीत को सुन भी पा रहे हैं, लोगों तक संगीत पहुंच पा रहा है.
0: जी.
1: तो जी, सोशल मीडिया के थ्रू शास्त्रीय संगीत
0: मतलब पहचान मिल रही है और लोग सुन भी रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल.
1: और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं लोग.
0: जी. सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे अधिराज चौधरी जी के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अधिराज जी। और अधिराज एक बहुत ही अमेजिंग सितार प्लेयर हैं। सो अधिराज, अगर आप एक सितार प्लेयर ना होते तो आप क्या होते?
1: जी वैसे मैंने सोचा तो नहीं था कि अगर मैं सितार प्लेयर नहीं होता तो क्या होता। अच्छा। पर मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि मैं आगे एकेडमिक्स ही परस्यू करता अगर मैं सितार प्लेयर नहीं होता।
0: जी जी,
1: मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है।
0: अच्छा।
1: शायद वो परस्यू करता।
0: जी, और सितार के अलावा आपकी और क्या हॉबीज है? जैसे अभी तो जो भी आपका फ्री टाइम होता होगा आप सब अपना रियाज में ही देते होंगे, बट उसके अलावा क्या और हॉबीज है वो हम जानना चाहेंगे।
1: जी बाकी मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो
0: अच्छा।
1: मुझे स्पोर्ट्स देखना भी बहुत पसंद है।
0: तो स्पोर्ट्स में आप क्या खेलना पसंद करते हैं?
1: मुझे क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता भी हूँ और देखता भी हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है।
0: जी
1: जी,
0: नाइस। और अधिराज, एक लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे जो यंग पीढ़ी के लोग सितार सीखना चाहते हैं या संगीत को अपना आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
1: जी उनके लिए मैं, वैसे मैं संदेश देने के लिए मेरी उम्र काफ़ी छोटी है, बट फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको सितार सीखना है यंग पीढ़ी को, तो फिर आपको पहले एक आप किसी भी गुरु के पास जाइए, क्योंकि आप खुद से सीखने की कोशिश मत करिए।
0: जी,
1: क्योंकि एक गुरु ही है जो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: जी, तो आपको एक अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए और उसके बाद आपको जो भी गुरु जी बताए आपको उसमें अपना ध्यान से आपको उसमें ट्रेन करना चाहिए और अपने टेक्निक्स सही करने चाहिए और आपको सुनना चाहिए म्यूजिक अच्छे से। सुनना बहुत जरूरी है
0: जी,
1: बजाने के साथ साथ सुनना भी बहुत जरूरी है। तो जी आप अगर म्यूजिक सुनेंगे ज्यादा तो आपको और आइडियाज आएंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं, मैं यही कहना चाहूंगा।
0: जी आई होप जो लोग सुन रहे हैं और म्यूजिक में अपना करियर चुनना चाहते हैं उन्हें अधिराज की ये जो उन्होंने सजेस्ट किया है उसे फॉलो जरूर करेंगे। सो अधिराज, अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ करेंगे, ठीक है? सो आर यू रेडी?
1: जी जी।
0: ओके, सुबह का राग या शाम का राग?
1: वैसे मुझे सारे राग पसंद है, चाहे सुबह के हो कि शाम के हो, बट मैं शाम को रियाज ज्यादा करता हूँ इसलिए मेरा शाम का राग है।
0: जी, दादाजी पिताजी या गुरुजी की डांट सबसे ज्यादा किसकी पड़ी है डांट आपको?
1: दादाजी की।
0: अच्छा, मंच पर जाने से पहले एक आदत?
1: मैं मंच पर जाने से पहले मैं उस दिन रियाज नहीं करता, उस दिन मुझे फ्रेश रहना होता है कि सीधा जाके स्टेज पे ही या उससे पहले थोड़ा वार्म अप कर लूं, पर उस दिन मैं रियाज नहीं करता हूँ।
0: वाओ, पसंदीदा कलाकार कौन है आपके?
1: जी मेरे दादाजी।
0: जी
1: मुझे बहुत कलाकार पसंद है पर मेरे दादाजी मेरे फेवरेट।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक शब्द

0: मैं संगीत को अगर डिफाइन करेंगे किस तरीके से,
1: डेडिकेशन।
0: वाओ, तो थैंक यू सो मच अधिराज, आपके साथ आज बात करके बहुत ही अच्छा लगा हमें। और जाते जाते एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपके क्या आगे गोल्स है, क्या लक्ष्य हैं, किस तरीके से आप करेंगे उनको।
1: जी, आगे तो अभी मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स तो अभी ऐसे तो मैंने सोचा नहीं है, पर मुझे बस यही है मेरे दिमाग में कि मुझे अपने घराने का ट्रेडिशन आगे लेके जाना है। मुझे आगे सितार परस्यू करना है और आगे अपने घराने को लेके जाना है और बहुत मेहनत करनी है, बस यही है मेरा गोल।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपकी एक सोच, और आप बहुत ही अच्छे, आपने जो हमारे लिसनर्स को आज सीख दी डेफिनेटली वो अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे। और इतनी छोटी उम्र, सबसे बड़ी बात, इतनी छोटी उम्र में इतना ठहराव, दिस इज अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच अधिराज, आपके साथ आज हमें बहुत ही अच्छा लगा, आप हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हमारे स्टूडियो में। तो सो थैंक यू सो मच। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी एक ऐसे ही कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rashna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello. Good afternoon, namaskar, sat sri akal, ram ram, jai mata di, assalam alaikum dosto, main hu RJ Sagar, aaya hu lekar ke show Voice of Youth. Ye show hamara bahut khas apne aap mein ho jata hai kyunki har baar yahan par hamare sath kuch experts maujood hote hain. Un experts se hum log dheer sari baatein karte hain. Hum koshish karte hain janne ki skill sets ke bare mein, hum koshish karte hain unki expertise ke bare mein hum discuss kar paye, so that aapke paas by the end of this show kuch values ho. आज हमारे साथ यहाँ पर दो बहुत ख़ास मेहमान, बहुत ख़ास शख्सियत मौजूद हैं. ये दो एक मूवी के कास्ट हैं, मूवी के स्टार कास्ट हैं. और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक सज्जन हमारे साथ हैं जो डायरेक्टर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं. दूसरे हमारे साथ हैं जो कि एक्टर हैं. आइए बात करते हैं दोनों से, लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे हरीश जी और जावेद जी का. हरीश जी स्वागत है आपका.
2: धन्यवाद.
1: जावेद जी स्वागत है आपका.
3: धन्यवाद.
1: मैं शुरुआत करना चाहूँगा आप दोनों के डोमेन के बारे में. हमारे लिसनर्स को बताइए आप लोग क्या करते हैं, क्या प्रोफाइल है आपका, जितना आप बता सकते हैं प्लीज.
2: मैं बेसिकली एक्टर हूं और लिखने की कोशिश करता हूं, काफ़ी कुछ लिखा है अपनी फीलिंग्स, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या एक्चुअली में होता है क्या लाइफ में. तो क्योंकि मेरे जितने भी सॉन्ग्स हैं वो मीनिंगफुल रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप कई लोग राइटर्स को मैंने देखा लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, देखिए सभी अच्छा लिखते हैं, बट मुझे लगता है अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसका मतलब पता होना चाहिए कि आप क्या दे रहे हैं. तो ये मेरी कोशिश है कि अच्छा लिखने की.
1: सो बेसिकली आप एक राइटर हैं और एक एक्टर हैं.
2: जी.
1: और फरीदाबाद से हैं.
2: जी.
1: सो अमेजिंग. जावेद जी.
3: जी सर, मैं इस मूवी में सेकंड पार्ट मैंने किया है, सेकंड लीड की है मैंने इसमें. इससे पहले भी हम मूवी कर चुके हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग कर चुके हैं.
1: ओके.
3: जी. और ये मूवी करने में हमने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी लगन से हमने काम किया है इसमें, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसको देखें और हमें प्यार दें.
1: जी जी. थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, इससे पहले क्या करते थे आप?
3: इससे पहले तो सॉन्ग किए हैं मैंने और मूवी भी की है.
1: तो बेसिकली आप एक एक्टर हैं.
3: जी.
1: फरीदाबाद से ही हैं आप.
3: जी जी.
1: सो अमेजिंग, सो अमेजिंग. हरीश जी, बात करना चाहूंगा आपकी मूवी आ रही है दोस्तों, की मूवी आ रही है, उसका नाम है वाकिफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म है, लव ट्रायंगल और थ्रिलर फिल्म है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि फरीदाबाद से ही हैं और मूवी यहाँ पर आ रही है फरीदाबाद में. आज ही हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, पैन इंडिया मूवी लगने वाली है, तो बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग जाकर देखिएगा ज़रूर. लेकिन थोड़ा समझते हैं मूवी के बारे में, मुझे बताइए क्या है वाकिफ?
2: देखिए वाकिफ क्या है, एक ऐसी लव स्टोरी है जो स्टार्टिंग में दर्शकों को लगेगा कि हाँ बिल्कुल सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाएगी तो परत दर परत आपको चीज़ें खुलती चली जाएंगी, और आप एक टाइम पे ऐसे शौक, पहले 10 मिनट के बाद ही आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, आप चल रहे हो एकदम सीधा चल रहे हो, और सीधा चलते चलते आपको टर्न आ जाता है, तो जब शॉकिंग हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ है हमारे इसके अंदर. और सबसे हमारी ख़ास बात इसमें यह है कि हमने बहुत अच्छा म्यूजिकल फिल्म बनाने की कोशिश की है, जिसमें आपका हमारे जो मेल सिंगर हैं, आपका अमजद बागड़बा हैं, जिनका भी बहुत ही फेमस सॉन्ग हुआ था फुक फुकरे करके, फुकरे फिल्म का, तो दोनों फिल्म फुकरे का उन्होंने टाइटल ट्रैक किया है. इसके अलावा फिल्म आई थी अभी जिसमें सॉन्ग था गदर 2, सॉन्ग था अपना चलते रिश्क में पड़ जाते हैं, तो उसकी जितनी रुबाइयाँ की उन्होंने की है, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो. तो हमारे इसमें जितने भी मतलब मेल पार्ट सॉन्ग हैं उन्होंने किया है, और फीमेल हैं हमारे आपका संचिता भट्टाचार्य, जो पहले सारे का मापा लिटिल चैंप्स थी, तो उन्हीं से किया है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है उनकी, तो अच्छे सॉन्ग करने की कोशिश की है. क्योंकि क्या होता है अगर आप फिल्म देखने जा रहे हो, जब तक आपको फील ना आए फिल्म के अंदर, जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ ये तो मेरी कहानी चल रही है, तब तक मज़ा नहीं आता. क्योंकि हम जब फिल्म देखने जाते हैं 3 घंटे बैठते हैं सिनेमा के अंदर, तो सारी चीज़ें भूल के आप घर में फिल्म देखते हैं, आप कभी कहीं से आवाज़ आ रही है, कभी कहीं से, कभी कुछ है, लेकिन जब आप सिनेमा में देखते हैं तो आपको पूरा फोकस फिल्म पे होता है, और जब आपको फिल्म देखने में मज़ा आता है तो आप 3 घंटे के लिए दुनियादारी भूल जाते हैं. तो हमारी वही कोशिश है कि 3 घंटे के लिए लोगों को दुनिया से कनेक्ट ना होने दें और अपनी फिल्म से कनेक्ट कराएं.
1: बिल्कुल बिल्कुल. क्या थॉट था, कैसे आइडिया ये पनपा वाकिफ का?
2: हाँ, वाकिफ का एक्चुअली क्या है, मैंने अभी लास्ट फिल्म की थी हमारी समायरा, रिलीज हुई थी 2022 में, उसके बाद ये जो इसके राइटर हैं तो लोकचंद कंटिन्यू मेरे कांटेक्ट में थे, तो लास्ट टाइम हम मुंबई में थे तो उन्होंने मुझे दो तीन स्टोरियाँ सुनाई, लेकिन ये स्टोरी मुझे मतलब बिल्कुल कनेक्ट कर गई दिल को। तो मैंने उनसे बोला कि हम जब भी काम करेंगे साथ में इस स्टोरी पर काम करेंगे। पहले हम इसको वेब सीरीज़ का प्लान कर रहे थे, तो मैंने उनसे दो तीन बार सुना और उनके कुछ पॉइंट्स थे उन पर डिस्कस किया कि इसको अगर हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा। तो उनको अच्छा लगा सजेशन कि हाँ अगर हम इसको बड़ी फिल्म करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब बेसिकली उसमें एक करेक्टर ऐसा है कि आपको लगेगा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन सडन आपको पता लगता है इसका तो एक ये रूप भी है। तो वो चीज़ मुझे बहुत कनेक्ट की।
1: ओके जावेद जी, आप बताइए फिल्म के बारे में कुछ।
3: फिल्म के बारे में मैं अगर बोलूँ तो इस मूवी में जो मेन लीड है हीरो, उसका फ्रेंड हूँ मैं और बहुत क्लोज फ्रेंड दिखाया गया हूँ इस मूवी में। हमने काफ़ी मेहनत की है और 17-18 शहरों में हमने शूट किया है, और मूवी के जो कलाकार हैं ज़्यादातर हमारे फरीदाबाद के हैं, कुछ कोलकाता के हैं, मनोज बख्शी जी भी हैं इसमें जो बजरंगी भाईजान में थे, पुलिस वाले बने हुए थे, वो भी हैं इसमें, और उनका भी बहुत अच्छा काम है। तो उनके साथ काम करके हमें कुछ सीखने को मिला, तो हमें लगा कि ये बेस्ट है। तो आप लोगों को भी, ऑडियंस को, जब ये मूवी देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया है जिससे हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मूवी को देखें और जो हमारी गलतियां हैं उन्हें हमें आप लोग बताएं जिससे हम आगे और बेस्ट कर सकें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। ऑल राइट, हम दोस्तों लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपनी शो कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कास्ट बैठी हुई है वाकई फिल्म की, और जो हम बात कर रहे हैं जावेद जी और हरीश जी के साथ, आगे और डिस्कस करेंगे क्या प्रोसेस होता है एग्जैक्टली, हाउ इट गोज, हाउ टू फाइंड प्रोड्यूसर्स, हाउ एग्जैक्टली टू मेक श्योर दैट दिस इज समथिंग रिलेटेबल एंड यू शुड वॉच इट। वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइव।

0: यूथ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ यहाँ पर वाकिफ फिल्म की कास्ट बैठी हुई है और हम हरीश जी और जावेद जी से बात कर रहे हैं। अभी तक हमने समझने की कोशिश करी है एग्जैक्टली ये मूवी क्या है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ये थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। हरीश जी, बात करना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो फिल्म बनाना चाहते हैं अपनी। प्रोसेस क्या होता है एक फिल्म बनाने का? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक थॉट अच्छा लगा, अब उसको वहां से लेकर के पर्दे तक पहुंचाने तक का पूरा प्रोसेस मेरे को जानना है।
1: देखिए, अगर आपको कोई थॉट लगा अच्छा, तो आप उसको पहले वन लाइन स्टोरी आप लिख सकते हैं। वन लाइन में क्या है कि आपको जो मेन मेन पॉइंट लिखे जाते हैं, लेकिन फिल्म को सजाया कैसे जाता है फिल्म पे एक एक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टोरी लिखी और हो गया कंप्लीट। आपको स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स वगैरह सब कराने पड़ते हैं, जिसके लिए एक अनुभवी आपको राइटर की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी चीज़ों को सेम उतार सके। जब आपको चीज़ें हो जाती है, उसके बाद फिर आपको रिवाइज करते हैं कि हमारा कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं रहा कि जिसमें जो दर्शकों को पसंद ना आए। तो वो क्या होता है, हमारी फीलिंग्स कई कई बार बहुत हाई चली जाती हैं, लेकिन हमें दर्शकों के उससे भी देखना पड़ता है कि क्या, अगर मैं एज ए दर्शक हूँ और देखना है मुझे, तो मुझे क्या पसंद आएगा और क्या कनेक्ट करेगा मेरे दिल को। तो जब ये चीज़ें अच्छी हों, अगर अच्छी स्टोरी है आपके पास, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है अच्छी कास्ट की। जैसे करेक्टर है, एक मान लो कि इनोसेंट करेक्टर है और आपने उसमें कोई एरोगेंट करेक्टर डाल दिया, तो वो नहीं चलेगा। अगर इनोसेंट है तो आपको फेस देखना पड़ेगा कि कई डायलॉग्स नहीं होते, आपका सीन बिना कुछ बोले ही आपका करेक्टर बोल जाता है, तो आपको वो देखना पड़ता है। एक कास्टिंग डायरेक्टर अगर अच्छा है तो आपको ना कास्ट करेगा कि हाँ, ये करेक्टर इसके लिए परफेक्ट है। अगर आपकी प्रॉपर कास्टिंग हो जाती है, फिर आपको एक अनुभवी डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा कुछ होने के बाद फिर आपको एक एक आपकी लोकेशंस हैं, आपको लोकेशन से कहाँ कहाँ क्या क्या आपका सीन क्या मांग रहा है। जैसे हमारा एक सॉन्ग था, उसके लिए मैंने 3 महीने वेट किया। मौसम जैसे बारिश आएगी, लास्ट जून में हमने इसका शूट किया था गोवा में। पहले हमारा प्लान था कि हम इसको इधर ही शूट करेंगे स्टूडियो में, लेकिन सारे लोग कह रहे कि नहीं सर, कर लो स्टूडियो में कर लो। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं करना, थोड़ा रुको, वेट करते हैं मौसम का। मौसम जैसे चेंज हुआ, जून में बारिश स्टार्ट हुई, तो पूरा गोवा खाली पड़ा था, हम ही पूरा गोवा में घूम रहे थे। तो हमने गोवा में शूट किया, बहुत खूबसूरत गाना बना वो, और उसकी लाइन है, वहाँ तुम चले आना जहाँ ख्वाबों की बारिश हो। तो जहाँ ख्वाबों में बारिश हो, और अगर बारिश नहीं है तो फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए हमने उसका, देखो कई बार क्या होता है, क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, कहते हैं थोड़ा मूडी होते हैं, अगर आपको फील नहीं मिल रहा है तो फिर मज़ा नहीं। जब हमें मज़ा नहीं आया तो दर्शकों को कैसे मज़ा आएगा। तो मेरा मानना क्या है कि पहले हमें खुद को मज़ा आना चाहिए। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे हमने फिल्म की कंप्लीट और हमने प्रीव्यू रखा, मैंने पूरी कास्ट को, पूरे जो भी टेक्नीशियन सबको बिठाया, हमने प्रोजेक्टर लगाया, फिल्म चलाई स्टूडियो में अपने, और मैंने उनको बोला आप ये मत सोचो कि मुझे बुरा लगेगा, आप ये सोचो कि आप सिनेमा में फिल्म देख रहे हो, और अगर आपको कुछ चीज़ ख़राब लगी तो आप डायरेक्टर को किस वजह से गाली देना चाहोगे। आप पूरी फिल्म देखो, जहाँ आपको पॉइंट लगे अपना पॉइंट लिखो और आप वहाँ पे मुझे बोलो। तो टचवुड ये रहा कि सबने फिल्म देखी और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जहाँ पर हमारा वीक पॉइंट हो सकता है। तो इससे क्या होता है, जब हम अच्छी चीज़ बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। और देखो, गलतियाँ हम सभी करते हैं, आप जितने बड़े बड़े अपना मेकर हो, लेकिन गलतियाँ करते हैं और हम उन गलतियों से सीखते हैं। कि जब तक हम करेंगे नहीं तो गलती कैसे करेंगे, नहीं तो कैसे पता लगेगा कि हमने क्या किया है। उसके लिए भी तो काम करना पड़ेगा ना, गलती के लिए। अब काम ही नहीं करेंगे तो गलती भी कैसे करेंगे। तो इसलिए कोशिश है कि ये चीज़ें करनी चाहिए। अब जब हमने पूरी फिल्म मेकिंग कर ली, उसके बाद अच्छा आपका एडिटर है, एडिट किया, उसके लिए उस बीच में आपका अच्छे सॉन्ग सेलेक्शन, कि आपके थीम के अकॉर्डिंग आपके सॉन्ग्स क्या होने चाहिए, अच्छे राइटर हों, अब के ऊपर वाले का कर्म है कि मेरे को उसने थोड़ी अच्छी लिखने की ताकत दी है तो लिख लेता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ हमने इस पर की, कंपोजिशन की, उसका म्यूजिक वगैरह सारा कंप्लीट किया, फिर मिक्स विक्स करके सारा कुछ, उसके बाद फिर हमने उस सॉन्ग्स को कंप्लीट करने के बाद फिर हमने उसको शूट किया। अब शूट हो गया तो फिर एडिट वेडिट कंप्लीट करने के बाद हमने पूरी फिल्म को इकट्ठा किया, एडिट हो गई, सब कुछ हो गया, फिर हमने उसका प्रीव्यू रखा। प्रीव्यू के बाद फिर हमने सोचा कि अब हम इस पे काम कर सकते हैं आगे। फिर उसका प्रोसेस होता है, फिर आप सेंसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेंसर के बाद फिर यहाँ देखते हैं क्या सेंसर आपके, आपने कुछ ऐसा तो नहीं बनाया कि आपकी फिल्म में कट लगे। तो इसका भी हमें बहुत अच्छा वो रहा कि हम, मेरी फिल्म में कोई कट नहीं लगा। इवन जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे, उनसे मेरी मीटिंग हुई, जब उन्होंने पूरी फिल्म देख ली तो मुझे अंदर बुलाया, तो कह रहे सर आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं इसके? मैंने हाँ मैं ही हूँ। तो कह आपने कहाँ पे काम किया है इसका? तो मैंने कहा मैंने तो दिल्ली एनसीआर में किया है, मैक्सिमम गोवा और मुंबई शूट किया है कुछ टाइम, लेकिन मैं ज़्यादातर काम वहीं पे किया है। तो कर इससे पहले आपने कितना काम किया? मैंने इससे पहले मैंने काम तो काफ़ी सारा किया, लेकिन फिल्म एक की है मैंने, तो एज ए डायरेक्टर। तो कहते नहीं, अच्छा काम किया आपने। देखिए, अगर जिनके पास डेली की 4 फिल्में हैं सेंसर के लिए, अगर वो वहाँ के लोग आपको थोड़ा अप्रिशिएट करें, तो आपको लगता है कि आपने सच में कुछ किया है। तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो उससे मोटिवेशन मिलता है, और मुझे मिला तो मुझे लगा हाँ मैंने कुछ तो किया है करके। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, एक लॉबी होती है कि कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको धीरे धीरे पता लगता है कि आपको क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं, बैड आ रहे हैं, गुड आ रहे हैं, तो वहाँ से पता लग जाता है। फिर चर्चा चलती है। वो अभी क्या, जैसे देखो कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी इंडस्ट्री है, एक दूसरे से सब कनेक्टेड हैं लोग। अब जो कुछ चीज़ें अच्छी चलती हैं तो वो भी फैलती हैं, और ख़राब चलती हैं तो वो भी फैलती हैं। तो वहाँ पे जितने भी लाइन के लोग होते हैं वहाँ देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडियो में कोई ना कोई एक देख के गया, अच्छा यार उसका ये सीन बड़ा अच्छा लगा, तो उसने दूसरे से डिस्कस किया, तो ये चीज़ें करके फिर घूम फिर के हमारे पास ही आ जाती हैं वापस, यार इसने ऐसा किया था और आपको ये चीज़ लगी। तो इससे मतलब अच्छे मतलब व्यूज़ आ रहे हैं उन लोगों के, मतलब अच्छा लग रहा है, तो हमें भी मज़ा आ रहा है उनके। और एक होता ना कि अंदर गुदगुदी सी हो रही है कि यार देखो रिलीज होगी तो देखते हैं क्या होता है लोगों का।
0: बहुत सुंदर। प्रोड्यूसर कैसे ढूंढे जाते हैं? ये सारी बात तो हो गई कि चलो हमने मूवी को लिख लिया, हमारे पास आइडिया अच्छा है, हमने स्क्रीन प्ले लिख लिया, उसको स्टोरी लाइन हमारे पास कन्फर्म है, हमने रैकी कर ली, लोकेशन हमने ढूंढ ली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पैसा जो डालेगा, बिना पैसे के मूवी नहीं बन सकती।
1: ठीक ठीक
0: प्रोड्यूसर कैसे ढूंढे जाते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सच बताऊँ ना, मैंने प्रोड्यूसर नहीं ढूंढा इसके लिए, क्योंकि मैंने खुद प्रोड्यूस किया। उसका कारण है कि मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई गया था, तो वो मेरा 7-8 डेज का मतलब टूर था मेरा। वो पहली बार में मुझे समझ में आ गया था कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो अपने आप को स्टैंड करो पहले, तब आना। देखिए क्या होता है, बेसिकली जो न्यू कॉमर्स होते हैं यहाँ से बड़े बड़े सपने लेके मुंबई चले जाते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, बट उनको हकीकत में भी रखना चाहिए। देखो क्या होता है, मुंबई ऐसा नहीं कि आपको वहाँ फैलाए खड़ा है कि आओ मैं आपको एक्टर या एक्ट्रेस बना दूँ, ऐसा नहीं है। वहाँ आपके लिंक होने चाहिए सबसे पहले। अगर आपके लिंक हैं तो आपको काम मिल सकता है, लेकिन वो भी छोटा मोटा काम मिल सकता है। आपको डायरेक्ट कोई कास्ट लीड में नहीं करेगा, ये कड़वा है मगर सच यही है, क्योंकि मुझे पहली बार में समझ में आ गया था। क्योंकि मैंने पहले दिल्ली लेवल पर काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए, फिर मुंबई में ऑडिशंस दिए। ऑडिशंस में आपको क्या, जो ऑडिशंस लेते थे कास्टिंग डायरेक्टर्स आज खड़े होते थे, स्टैंडिंग ओवेशन देते थे कि बहुत अच्छा किया, लेकिन काम के नाम पे कुछ भी नहीं। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ऑडिशन नहीं दूंगा और किसी से काम मांगूंगा भी नहीं। मैं अपने आप को वैसा बनाऊंगा कि मैं लोगों को काम दे सकूँ, जो सच में टैलेंटेड लोग हैं उनको काम दे सकूँ, जो ब्रेक मुझे नहीं मिले मैं लोगों को दे सकूँ। और अपना था कि मेरा था बचपन से कि मुझे एक्टर ही बनना है। तो अभी वो काफ़ी सारे, देखो अगर आपकी सफलता बड़ी चाहिए तो स्ट्रगल भी बड़ा ही होगा, और मैं इसको स्ट्रगल की तरह भी नहीं देखता। एक मतलब आपकी एक सफ़र है ज़िंदगी का, जिसको आपको कैसे जीना है। हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कभी भी लाइफ ना आसान नहीं है, और अगर आसान होगी तो फिर वो लाइफ ही नहीं है। आप क्या कहानियाँ सुनाओगे लोगों को अगर आपकी आसान लाइफ हुई तो? अभी क्या है कि मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, मतलब खुद को आपकी कहानी से प्रेरणा मिलती है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो ये आपके लिए मतलब ऊपर वाले ने आपको चुना है उस करने के लिए कि हाँ आप अच्छा करो, ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो सकें। तो उसका मैं तो उसका बहुत मिस्टर शुक्रिया करता हूँ कि भाई उसने मुझे चुना है, मुझे चैलेंजेस दिए और उन पर खराबी उतरवा रहा है वो। क्योंकि देखो हमारी कुछ औकात नहीं है हम कुछ कर सकें, सब उसी का है। वो हमसे किससे क्या करवाना चाहता है, वो करवाना चाहता है तभी हम कर पाते हैं। और हमारे इसमें कहा था कि अगर आप अच्छे एक्टर हो तो डायरेक्टर आपको सबसे अच्छा सबसे मुश्किल रोल देगा, और अगर आप अच्छे एक्टर नहीं हो तो डायरेक्टर को बताइए तो कुछ कर नहीं सकता, तो इसको ठीक है साइड में खड़ा कर दो। तो अगर लाइफ आपसे करा रही है चीज़ें, तो इसका मतलब है कि उसको पता है कि आप कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें हम लोग ये चीज़ें करते हैं। अब प्रोड्यूसर, आपने कहा कि प्रोड्यूसर कैसे ढूंढा जाता है। देखिए कई लोगों के पास है, खुद के पास होता है, कई लोग ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढने का क्या, अभी जैसे मेरी कई अपना OTT प्लेटफॉर्म से मेरी बात चल रही थी, उनका सबका होता है कि आपके पास स्टार कास्ट क्या है। अगर आपके पास स्टार कास्ट अच्छी है, जिसका फेम है, तो आपको इजी प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास मोस्टली न्यू कास्ट है तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने दूसरा ही चुना कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मान लो कि मेरे पास स्टार कास्ट है तो ठीक है मिल जाएंगे प्रोड्यूसर्स, लेकिन कई लोग क्या होता है जिनको फिल्म की नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नहीं होते, तो वो क्या, आपने पैसा लगा दिया पर आपने वो चीज़ भी आप करवाओगे जो चीज़ें नहीं है टेक्निकल अच्छी, लेकिन मैं खुद का पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या अच्छा है, तो जो अच्छा है मैं वही करूँगा, ऐसा नहीं किसी प्रोड्यूसर के प्रेशर में आके मैं कुछ भी कर दूँगा। तो ये मैंने दूसरा रास्ता, मुश्किल है लेकिन वो चुना, तो ये चीज़ है। लेकिन जो नए लोग हैं जो नहीं कर सकते, तो उनको यही है कि आप अपने आप को पहले स्टैंड करो, अपने आप को प्रूव करो कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप वास्तव में टैलेंट हैं तो अच्छे टैलेंट को भी ब्रेक मिलता है, ऐसा नहीं है। और मेरा तो जितने भी लिसनर्स हैं आपके सुनने, उनको यही है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप मेहनत करिए, अपने आप को स्टैंड करिए, प्रूव करिए और सही प्रोडक्शन हाउस तक जाइए। देखिए आपके पास ना लाइफ में दो ऑप्शन आते हैं, या तो होता है शॉर्टकट या होता है लॉन्ग कट। अगर आपने जल्दी करना है, जल्दी का मतलब जल्दी की चीज़ें कभी भी ना आपको ईमानदारी से नहीं मिल सकती, ये सच है। लेकिन अगर आप पे खुद पे कॉन्फिडेंस है और पेशेंस है आपके अंदर, तो आप लंबा रास्ता चुनिए। लंबा रास्ता में क्या है कि अगर आप मंजिल जरूर थोड़ा धीमे पहुंच सकते हैं, लेकिन जो आपका सफर का मजा रहेगा ना उसको कोई बयान नहीं कर सकता, और लेकिन आप पहुंचोगे जरूर।
0: बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत बात आपने बोली हरी जी कि अगर एक एक्टर अच्छा है बहुत तो उसको हमेशा मुश्किल रोल देने की कोशिश की जाती है, रीज़न बीइंग कि वो उसको निभा लेगा, इसलिए शायद लाइफ जो आपको देती है समटाइम्स द डिफिकल्टीज आर नॉट इवन द डिफिकल्टीज, दीज आर योर हिडन लॉक्ड पोटेंशियल्स दैट यू वांट टू अनलॉक इट। सो ये बात हरीश जी यहाँ पर बहुत सुंदर अभी हमें बताई। लेते हैं और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे थोड़ा सा हम एक्टिंग के प्रोसेस को समझेंगे, थोड़ा सा हम राइटिंग के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, मैं हूं आरजे सागर। शो यहां पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ, आप हमारे साथ जुड़े हुए रेडियो 107.8 एफएम पर। हमारे साथ यहां पर वाकिफ फिल्म के कास्ट मौजूद हैं, हरीश जी हमारे साथ हैं, जावेद जी हमारे साथ हैं, और इन दोनों से बहुत सारी बातें अभी तक हमने कर ली हैं, आगे और बहुत सारी बातें हैं जो करनी है। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, मैं राइटिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। जब मैं टर्म यूज करता हूँ राइटिंग, मेरे दिमाग में कहानी है लेकिन वो कहानी बहुत वेग है। अब मुझे उसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है, उसका क्या प्रोसेस होता है?
1: देखिए, कोई भी कहानी है, पहला नंबर तो कोई भी कहानी वीक नहीं होती, हर कहानी अपने आप में एक स्ट्रेंथ रखती है। डिपेंड करता है कि हम उसको कितना डीप थिंकिंग रख सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि जब तक आप उसकी डीपनेस में नहीं जाएंगे, जब तक अंदर नहीं जाएंगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि आप उस करेक्टर, अगर मान लो आपने कोई करेक्टर बिल्ड किया है, तो उस करेक्टर को आप अपने आप को रोक दो, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता। जिस दिन आप ये सोचेंगे कि ये करेक्टर मैं हूँ और मुझे कैसे जीना है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपको कर, और फिर क्या होता है, जितने चैलेंजेस होते हैं ना उतना ही निखार भी आता है आपके अंदर। कोई स्टोरी अगर आपने लिखी है कि सिंपल देखिए, सिंपल तो आपने देखा होगा, जब हॉस्पिटल के अंदर होते हैं आप, वेंटिलेटर पे होते हैं, तो एक लाइन वहाँ पे चल रही होती है हार्ट बीट की, वो अगर वो सीधी चली गई तो इंसान खत्म हो जाता है ना। तो उसी तरीके से जैसे जितना वो अप एंड डाउन चल रही होती है, उतना मतलब आपकी हार्ट बीट चल रही होती है। तो वैसे ही राइटिंग का है, अगर आपने स्मूथ लिख दी तो ना तो दर्शकों को मजा आएगा और ना आपको खुद को मजा आएगा। तो जितनी आपके उतार चढ़ाव होंगे कहानी में, आप देखो कई बार चलता है ना, बहुत चीज़ें स्मूथ चल रही है, एकदम से टैक ब्रेक आ गया, तो अगर ये क्या हुआ। आपने बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे, सब कुछ चल रहा है, उनका जो ब्रेक लेंगे बीच में वो ऐसे मौके पर छोड़ देंगे कि आपको देखना ही पड़ेगा कि उसके बाद क्या, ब्रेक के बाद क्या। तो वही कहानी का मेन वो होता है कि आप लोगों को अंदर उनकी जिज्ञासा कितनी जगा के रखते हैं कि अब क्या होगा, नेक्स्ट सीन में क्या होगा। जहाँ आपने ये चीज़ जगा ली तो समझ लो कि आप एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जैसे अपना स्क्रीन प्ले डायलॉग्स करते हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, यार आप ये चीज़ करो, इसमें ऐसा करेंगे। क्योंकि हमारे जो इस फिल्म के जो राइटर हैं त्रिलोक चंद जी, उनसे मेरी काफ़ी डिस्कशन हुआ, मेरे क्लोज फ्रेंड है काफ़ी, तो उनसे काफ़ी डिस्कस होता था कि यार इसको ऐसे काफ़ी सारे सीन हमने चेंज किए जैसे उन्होंने लिखे, तो मुझे लगा यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसको आप मेरे तरीके से ऐसे लिखो। तब उनको मैंने समझाया, पहले हमारे थोड़ा सा उस पर होता था, बहस भी होती थी कि यार नहीं ऐसे नहीं, मैंने ऐसा लिख दिया तो ऐसा हो गया। तो मैंने कहा ये आपने लिखा, ये आपने अपना थोड़ा लिखा है, अब एज ए व्यूअर्स मुझे देखना है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। तब उनको समझ में आया, फिर बाद में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करते हैं। तो ये जब पूरी स्क्रिप्ट लॉक हो जाती है, फिर उसको आप दो तीन बार रिवाइज करते हैं, एज ए राइटर नहीं, एज ए व्यूअर्स, क्या हमें ये चीज़ में ख़राब लगेगा या कुछ ऐसा पॉइंट है तो ये सही लगेगा नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, एक फिल्म आई थी वो सात दिन, इसमें अनिल कपूर नसीरुद्दीन शाह थे, तो उसमें एंड होता है जिसमें अनिल कपूर होते हैं पंजाब से आए हुए एक मतलब लोकल सिंगर होते हैं, जो उनका सपना होता है कि मुंबई में बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनूँ, क्योंकि उनको ब्रेक नहीं मिलता। तो उनका लव अफेयर अपना पद्मिनी कोल्हापुरी ना, हाँ मे बी पद्मिनी कोल्हापुरी, उनसे होता है, उनकी मतलब बॉन्डिंग होती है। एक टाइम पे क्या, तो उनकी शादी हो जाती है, और शादी जब उनकी हो जाती है तो उनकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, क्योंकि वो शादी कहीं और करना चाहते थे और हो गया कहीं और। लेकिन उनकी शादी नसीरुद्दीन शाह से होती है, जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं पहले से, लेकिन उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो उनकी सेकेंड शादी होती है, उनकी बेटी होती है। तो जब वहाँ उनको नसीरुद्दीन शाह को पता लगता है कि जो मेरी वाइफ है अभी फिलहाल, लेकिन ये मतलब किसी और को चाहती थी, उनसे शादी करना चाहती है, वो बहुत ही मतलब अच्छे इंसान उनको दिखाया, तो वो चाहते हैं कि मैं इनकी शादी करा दूं दोबारा। तो वो अनिल कपूर जी को बुलाते हैं और ऐसे ऐसे बोलते हैं कि भाई मुझे एक म्यूजिक मतलब मैं एक फिल्म बना रहा हूँ उसमें ऐसे म्यूजिक, उनको कहानी सुनाते हैं कि ऐसे है एक लड़की है, उसकी शादी होगी लेकिन वो शादी कहीं और करना चाहती थी। तो जब उनको बताया तो उस पर सॉन्ग लिखने के लिए बोलते हैं, तो वो सॉन्ग लिखते हैं तो उनको समझ में आता, तो उन्होंने एक ही बोलते हैं कि भाई इसमें क्या है, किसी की प्रेमिका किसी की बीबी हो सकती है, मगर किसी की बीबी किसी की प्रेमिका नहीं हो सकती। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो दर्शकों को कनेक्ट करता है। आपने देखा है कि किसी की वाइफ है, उसका अफेयर हो गया, ठीक है, वो किसी और के साथ शादी कर ली, हस्बैंड ने किया, वो अपने एकदम हो गया कि वो देवता स्वरूप हो गया, लेकिन उसका क्या, वो जो करेक्टर उस लेडीज़ का क्या, या उसके जो पार्टनर है उसका क्या, वो तो विलेन बन गए ना, हालांकि विलेन वाला कुछ किया नहीं उन्होंने, भाई उनकी चाहत है, भगवान ने बना के उनको भेजा हो सकता है एक दूसरे के लिए, लेकिन वो विलेन साबित हो गए। लेकिन अनिल कपूर उनको बोलते हैं कि किसी की प्रेमिका किसी की वाइफ हो सकती है, लेकिन किसी की वाइफ किसी की प्रेमिका नहीं हो सकती, ये दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। तो ये वो पॉइंट हैं जो आपको पिच करते हैं। तो वो किया, एंड गया, वो ठीक है, उनके वियोग रहा, उनकी जुदाई रही, लेकिन वो जुदाई भी लोगों को पसंद आई। और सच में क्या होता है, देखो अगर आपका प्यार लव जो भी आप बोलते हैं वो कंप्लीट, देखो कंप्लीट तो कभी होता नहीं, और कंप्लीट हो गया तो प्यार है ही नहीं एक्चुअली। क्योंकि आप कोई भी कहानी देख लो, आप हम बोलेंगे भगवान की कहानी देख लो, राधे कृष्ण की कहानी देख लो, वो मिले नहीं कभी, लेकिन अलग भी हुए नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्यार के लिए शादी की ज़रूरत है, प्यार मतलब फीलिंग्स होती है। अगर आपने फील किया, हासिल करना एक्चुअली कभी प्यार होता ही नहीं है, प्यार का मतलब ही त्याग होता है। आप किसी को फील कर लो तो समझ लो वो प्यार होता है। तो वो जब ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम करते हैं तो एक अच्छी कहानी बन जाती है। जब ये अच्छी कहानी बनती है तो जब हमारे दिल तक कनेक्ट करती है तो लोगों को, जो कहते हैं जो दिल से निकलता है वो दिल तक जरूर पहुँचता है। तो ये
0: चीज़ एक्टिंग की बात करना चाहूँगा जी, एक्टिंग का प्रोसेस बताइए थोड़ा सा कि क्या प्रोसेस होता है एक्टिंग का।
1: देखिए एक्टिंग का मैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन एक्टिंग हमारे उसमें बोला जाता है कि तीन चीज़ें, एक तो आपका लिरिक्स यानी कि सॉन्ग्स लिखना, राइटिंग, एक्टिंग और पागल। ये आपको कोई बना नहीं सकता, ये ऊपर वाला ही दे, ये कुदरत की देन होती है। आप जितना मर्जी एक्टिंग किसी को सिखा लो, बहुत सारे एक्टर हैं इंडस्ट्री में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बहुत अच्छे अच्छे हैं जिनको आज भी एक्टिंग नहीं आती, और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमें एक्टिंग नहीं आती, वो किस्मत का खा रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे लीजेंड्स हैं जो मतलब पूरा एक्टिंग की यूनिवर्सिटी है, आप उनसे एक एक चीज़ में से, जैसे मैं सबसे पहले फॉलो करता था कादर खान जी को, मतलब आप उनका करेक्टर देख लो, आप जिस करेक्टर में आप उनको ढाल दोगे आपको लगेगा कि नहीं कि वो करेक्टर अलग है। अगर आपने उसको कॉमेडी डाला तो उनसे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं, अगर आपने उनको सीरियस डालो सीरियस करेक्टर में तो जब तक आपको रुलाना दें तब तक वो, तो जैसे मैं जो एक्टिंग में फॉलो करता हूँ अपना कादर खान जी जो अब नहीं रहे हमारे बीच में, इसके अलावा इरफान खान जी तो वो भी नहीं, इत्तेफाक देखो वो भी नहीं रहे, लेकिन मतलब लीजेंड एक्टिंग के लीजेंड। उस देखिए सभी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये किसी को भी नहीं कह रहा कि अच्छा है, लेकिन जो मेरे आइडल हैं इरफान खान, कादर खान ये हैं। और मैंने एक्टिंग किसको देख के शुरू किया, मैं अक्षय कुमार को बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली फिल्म देखी थी उनकी खिलाड़ी, उसमें कुछ ऐसा सीन था कि लास्ट में एक्शन सीन चल रहा था, उसके वो मर्सिडीज गाड़ी के ऊपर से जंप करके एक किक मारते हैं विलेन को, तो वो मैंने सीन देखा था और तभी से मैंने सोचा कि मुझे इनके जैसा बनना है, और तभी से मैंने ठाना और टच दिए कि मैं अपना मार्शल आर्ट में कराटे में ब्लैक बेल्ट फोर्ड हूँ, तो इसलिए मैंने उनको फॉलो किया और तो मैंने अपना कैरियर एज किया। लेकिन मेरा अभी फ़िलहाल मैं टीचिंग भी करता हूँ उसकी, कराटे की मेरी अकेडमीज हैं काफ़ी, तो उनमें बच्चों को सिखाता हूँ, और पिछले मतलब डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल्स काफ़ी खिलाए हुए हैं, अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेस लेते हैं। तो ये चीज़ है कि एक्टिंग ऐसी चीज़ है कि आपको कोई सिखाने, हाँ लेकिन आपको अगर आप में एक्टिंग के स्किल्स हैं आपको पॉलिश किया जा सकता है, और पॉलिश आप तब होते हो जब आप काम करते हो, परफेक्ट एक दिन में कोई भी नहीं होता, आप करते जाओ, गलतियाँ करोगे तभी सीखोगे, आप गलती करो सीखो फिर आगे सीखोगे, जब आपको उसके बाद अपनी गलतियाँ ढूंढो, ये नहीं कि अगर किसी ने बोला कि यार आपने तो अच्छा नहीं किया तो आप अरे नहीं मैंने तो अच्छा किया, अगर अच्छा नहीं किया एक्सेप्ट करूँ उनको कि हाँ ठीक है आगे मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा।
0: ठीक जावेद जी, आपसे बात करना चाहूँगा, आप बताइए आपका क्या प्रोसेस है एक्टिंग का।
2: एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो जैसे हम रियलिटी में आ जाएँ, अगर हम रियल लाइफ में जो कर रहे हैं अगर उसी हिसाब से करी जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर दूसरे के कहने पे कि हमको ऐसा करना है फिर गुस्सा लाना है तो नहीं आ सकता। जब तक हम अपने दिल से इस बात को नहीं समझेंगे ना, अपने मन में हमें गुस्सा लाना होगा तभी गुस्सा आएगा। और एक्टिंग के लिए जितनी मेहनत की जाए इतनी कम है। कुछ हीरो ऐसे भी हैं जिनको अगर आज कोई सीन मिला है तो पूरे 12-12 घंटे वो कमरे में बंद रहते हैं, उसके बाद एक्टिंग करते हैं, फिर गलती करते हैं, उसके बाद फिर अपने आप में सुधार लाते हैं। तो जितना मेहनत की जाए मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा अच्छा है, और एक्टिंग का कोई सीमा नहीं होती। एक्टिंग एक एक्टिंग ऐसी होती है कि हम ना कुछ बोल के हमारी आंखें ही बहुत कुछ बोल जाती हैं, और कुछ एक्टिंग ऐसी होती है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हम मान लिया कि कोई एक्शन सीन है या कुछ ऐसा है तो उसमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन जो अच्छा एक्टर है वो तो अपने इशारों में ही सब कुछ कर देता है, उसकी स्माइल ही काफ़ी होती है। अगर उसको बोलना है, किसी को डराना है, तो ज़रूरी नहीं कि वो गुस्से से डराए, वो अपनी आँखों से भी डरा देता है, तो इसको एक्टिंग बोलते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा अपनी फिल्म के बारे में बताइए, आपके कुछ गाने आउट हुए हैं, उनके नाम बताइए लोगों को, ताकि हमारे दर्शक हमारे श्रोताओं को पता लगे कौन कौन से गाने हैं।
1: हमारी फिल्म का जो एक सॉन्ग, मतलब 3 सॉन्ग अभी हमने आउट किए हैं, बाकी के अभी थोड़ा होल्ड किए हैं, अभी करेंगे बस जल्दी, अभी कुछ टाइम बाद आपको देखने को और सुनने को मिल जाएंगे। एक सॉन्ग है हमारा इसमें ख्वाबों की बारिश, उसके कुछ मैं आपको लाइनें सुना देता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मेल फीमेल दोनों डुइट है, उसकी लाइन है।

बारिश है। तो एक सॉन्ग हमारा ये है, ख्वाबों की बारिश। दूसरा है, जैसे अब लव ट्रायंगल है तो इसमें हमारा एक सॉन्ग है, दिल को मेरे चाहिए और एक तू।

0: तो ये बस एक तू और एक तू, इस पे कहानी चल रही है पूरी। एक सॉन्ग इसमें थोड़ा जैसे लव ट्रायंगल दिखाया है, तो उसमें जो मेरी वाइफ का करेक्टर जिन्होंने किया है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत ही इमोशनल फिल्म लगती है इसमें। तो उसके वर्ड हैं उसमें, एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो चीट कर रही हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि वो गलत है। एक्चुअली दोनों में कोई गलत नहीं होता। तो उसका ये है कि वर्ड है इसके, सपने सुहाने दिखाए ही क्यों थे, गीत मिलन के गाए ही क्यों थे, दिल मेरा जब तूने तोड़ना ही था, तो इतने वादे निभाए ही क्यों थे, जिंदगी से जाना था, जिंदगी से जाना था तो आए ही क्यों थे, जिंदगी से जाना था तो
1: तो
0: आए ही
1: आए
0: क्यों
1: क्यों
0: थे।
1: थे।
0: तो ये मतलब काफ़ी इमोशनल टच थी इस वाले सीन में। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग जो ये सीन कर रहे थे तो मेरे मतलब अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब उतना मतलब मैं इमोशनल हो गया था, मतलब आज भी मतलब वो ऐसे हम डबिंग पे कर रहे थे तो उस वाले सीन में भी मैं रो गया था। मतलब वो जो फील उसके अंदर आया सच में, जैसे अभी जावेद भाई ने कहा कि मतलब उसको आप रियल करते हो, तो जब आप करेक्टर में घुस जाते हो तो आपको फील आने लगता है। और उस करेक्टर में मतलब सीन करने के बाद कम से कम आधा घंटा मेरे मतलब आंसू नहीं रुके, उस करेक्टर को मैंने फील किया। अगर आपके बच्चे को, आपको पता लगे कि आपके बच्चे को किसी ने मार दिया, आपकी वाइफ ने आपके बच्चे को मार दिया, आपकी वाइफ ने आपके बच्चे को मार दिया और वो मुझे चीट कर रही है, तो और वो मुझे एक्सप्लेन कर रही है कि मैंने ऐसे मारा, तो मतलब क्या बीतेगी आपके ऊपर। तो ये इमोशंस जो निकल के आते हैं वो एक्चुअली अच्छी चीज़ है।
1: जी बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगस्त में ये मूवी आउट होगी, वाकिफ फिल्म का नाम है, लव ट्रायंगल है और थ्रिलर फिल्म है। हरीश जी ने इसको डायरेक्ट किया है, हरीश जी ही इसके प्रोड्यूसर हैं। और जाइएगा, अगर आपको दिखाई दे इसका पोस्टर तो ज़रूर जाकर के देखिएगा। फरीदाबाद शहर से निकली एक फिल्म है, फरीदाबाद में लिखी गई कहानी है और बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म है। पैन इंडिया आपको नज़र आएगी, जब मौका मिले ज़रूर देखिएगा। मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोनों का।
0: थैंक यू,
2: थैंक यू सर।
1: थैंक यू और ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे हमारे परिवार की तरफ से रेडियो मानवरचना की, कि आपकी फिल्म अच्छी हिट हो।
0: जी जी बिल्कुल, थैंक यू। आपको भी आना है, सभी को रेडियो मानवरचना का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इनवाइट किया है यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी पसंद आएगी लोगों को। और मैं सभी जितने भी आप मेरे लिसनर्स हैं उनको बोलना चाहूँगा कि एक बार आइए, आप फिल्म देखिए और फील करिए कि वाकिफ़ में एक्चुअली है क्या, किस चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो आप लोग आइए, सभी का वेलकम है। थैंक
1: बिल्कुल
0: यू।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, ऑन दिस नोट वक्त अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का भी हमने बात करी यहाँ पर मिस्टर हरीश और मिस्टर जावेद के साथ, और फिल्म थी वाकिफ जिसके बारे में यहाँ पर पूरी बात की गई। और उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। वी टॉक्ट अबाउट सो मेनी थिंग्स, वी टच द प्लॉट ऑफ द मूवी, वी टच सो मेनी थिंग्स अबाउट राइटिंग, डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड अ प्रोड्यूसर, हाउ टू बी एन एक्टर एंड सो ऑन। अगर आपको ये शो पसंद आया तो हमें अपना फीडबैक जरूर लिखकर भेजिएगा 8010781078 पर। बाकी जब मौका मिले वाकिफ फिल्म जरूर देखिएगा। और नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: देखिए किसान भाइयों, रबी मौसम में गेहूं भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ये ठंडी जलवायु में अच्छी वृद्धि करती है और हल्के पाले को भी सहन कर लेती है। लेकिन अनुकूल मौसम के साथ साथ गेहूं की फसल कई गंभीर रोगों की चपेट में भी आ जाती है। अगर इन रोगों की समय पर पहचान और उचित प्रबंधन ना किया जाए तो उत्पादन और दाने की गुणवत्ता दोनों पर गहरा असर पड़ता है, जिससे आप लोगों को आर्थिक हानि होती है। इसलिए किसान भाइयों, आपके लिए जरूरी है कि वो गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोगों, उनके लक्षणों और प्रभावी नियंत्रण उपायों की जानकारी होनी चाहिए। आज मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, उन रोगों के नाम बताऊंगा कि जो रोग आपकी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। आइए किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे रोग की जिसका नाम है भूरा रतुआ, जो कि गेहूं की फसल में लग जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भूरा रतुआ रोग है ना किसान भाइयों, ये फफूंद से फैलता है। ये रोग भारत के लगभग सभी गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो अक्सर हिमालयी और नीलगिरी पहाड़ियों से होती है, जहां से ये हवा के जरिए मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच जाता है। अब सवाल आता है कि इसकी यानी कि भूरा रतुआ की पहचान कैसे करें। इस रोग के लक्षण सबसे पहले पत्तियों पर दिखाई देते हैं किसान भाइयों। हाँ, पत्तियों पर नारंगी भूरे रंग के सुई की नोक जैसे छोटे छोटे धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, जो धीरे धीरे फैल कर पूरी पत्ती को ढक लेते हैं और बाद में ये धब्बे गहरे भूरे या काले रंग में बदल जाते हैं। अब फिर एक सवाल आता है कि इससे नुकसान क्या होता है। तो किसान भाइयों, भूरा रतुआ प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है, जिससे दाने का भराव ठीक से नहीं हो पाता और उपज में अच्छी खासी कमी आ जाती है। तो ये तो मैंने बात बता दी आपको भूरा रतुआ के बारे में। एक और रोग है जिसका नाम है पीला रतुआ। अब पीला रतुआ रोग कैसा होता है, इसकी पहचान कैसे करें और इससे नुकसान क्या होता है, ये सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं पीला रतुआ रोग के बारे में। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, ये जो रोग है ना पीला रतुआ, ठंडे मौसम में बड़ी तेजी से फैलने वाला रोग है। पीला रतुआ या इसको स्ट्राइप रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, कवक के कारण होता है। ये रोग ठंडे और नमी वाले वातावरण में बड़ी तेजी से फैलता है और उत्तर भारत में विशेष रूप से नुकसानदायक माना जाता है। इसकी पहचान कैसे करें, बताता हूँ। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग की लंबी धारियां दिखाई देती हैं, जो पत्तियों की नसों के समानांतर होती हैं। समय के साथ साथ ये जो धारियां है ना, पूरी पत्ती को पीला कर देती हैं और पीले रंग का पाउडर खेत में गिरने लगता है। नुकसान क्या है ये भी सुन लीजिए। अगर ये रोग कल्ले निकलने से पहले या उसी समय आ जाए तो बालियों का बनना रुक जाता है और उपज लगभग नष्ट हो सकती है। तापमान बढ़ने पर रोग का असर कम हो जाता है और पीली धारियां काले रंग में बदल जाती हैं। तो ये तो बात हो गई पीला रतुआ की। एक और रोग होता है जिसका नाम है काला या तना रतुआ। इसके बारे में भी आपसे बात होगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं उस रोग के बारे में जिसका नाम है काला या तना रतुआ। ये जो रोग है ना किसान भाइयों, फसल को गिराने वाला रोग है। काला रतुआ, जिसे तना रतुआ भी कहा जाता है, ये जो फफूंद होती है

उससे फैलता है। ये रोग ज्यादातर दक्षिण और मध्य भारत में पाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में ये आम तौर पर फसल पकने की अवस्था में दिखाई देता है। इसकी पहचान है पत्तियों और तनों पर गहरे भूरे या काले काले रंग के उभरे हुए धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये धब्बे पौधे की जो मजबूती होती है, मजबूती को कमजोर कर देते हैं। नुकसान की बात करें तो इस रोग के कारण पौधे गिरने लगते हैं, जिससे कटाई में कठिनाई होती है और उपज घट जाती है। पुरानी किस्मों की बात करें तो जैसे लोक वन में इसका प्रकोप अधिक देखा जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि फहीम ने तीन रोग बता दिए हैं, उन तीनों रोगों की पहचान बता दी है और उससे जो नुकसान होते हैं वो भी बता दिए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं बताया। ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं ना आपके जहन में, तो चलिए आपके इन प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: तो किसान भाइयों, मैंने आपसे तीन रतुआ रोगों के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन अब आपको मैं समस्या का समाधान बताऊंगा और किस तरह से गेहूं की फसलों का बचाव किया जा सकता है इन रतुआ रोगों से। ये सारी बातें आपके साथ बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तीनों रतुआ रोगों से बचाव के लिए रोकथाम सबसे प्रभावी उपाय है कि बुवाई के समय रोग प्रतिरोधी और उन्नत किस्मों का चयन करें। जो भी आपकी किस्म होगी उसके हिसाब से आपकी फसल होती है, इसलिए जब भी आप किस्मों का चयन करें तो किस्में अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि ये रोग आपकी फसल को कुछ हानि पहुंचा ही ना सकें। आइए किसान भाइयों, अब आपको मैं कुछ तकनीकी बातें बताता हूं, जिससे कि आपकी फसल बेहतर से बेहतर हो सके। बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, रोग के शुरुआती लक्षण दिखते ही प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी का 0.1% घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये जो उपाय है ना किसान भाइयों, ये उपाय रोग के फैलाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। लेकिन एक रोग और होता है, बताना आपको भूल गया, माफी चाहता हूँ, और वो रोग है करनाल बंट के नाम का रोग। ये रोग ऐसा होता है किसान भाइयों कि आपकी फसल की जो गुणवत्ता है उसको प्रभावित करने वाला रोग है। करनाल बंट रोग गेहूं का एक गंभीर रोग है, जिसकी पहचान सबसे पहले 1931 में हरियाणा के करनाल जिले में हुई थी, और ये रोग टिलेटिया इंडिका नाम के कवच के कारण होता है, जो मिट्टी में लंबे समय तक जीवित रह सकता है। प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो ये रोग ठंडे और नम क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मैदानी भाग, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अधिक पाया जाता है। गर्म जलवायु वाले राज्यों में इसका जो प्रकोप है वो कम होता है। अगर नुकसान की बात करें तो इस रोग में दानों के अंदर काला चूर्ण भर जाता है, जिससे दाने की गुणवत्ता, अंकुरण क्षमता और बाजार मूल्य घट जाता है। इसके कारण गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चलिए, समस्या की बात तो मैंने कर ली, अब समाधान भी सुन लीजिए, इससे बचाव के उपाय भी सुन लीजिए। बुवाई से पहले बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए और रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। दाना बनने की अवस्था में प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी का 0.1% घोल बनाकर छिड़क देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो फसल है उसका बचाव हो जाएगा और जो रोग आपकी फसल को हानि पहुंचाने वाले थे वो हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, अगर आपने इन बातों पर अमल कर लिया। तो किसान भाइयों, कुछ और भी बातें हैं आपके साथ साझा करूंगा, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फहीम के साथ अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं उन रोगों के बारे में, यानी कि गेहूं की फसल में जो रोग लग जाते हैं उनके बारे में आपको बहुत कुछ बताया है, किस तरह से उसकी पहचान की जाए, उससे नुकसान क्या होते हैं और इस रोग से बचाव के तरीके कौन कौन से हैं, वो सारी बातें आपसे की हैं। अगर गेहूं की फसल में इन रोगों का समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो उपज और गुणवत्ता दोनों को भारी नुकसान हो सकता है। नियमित फसल निरीक्षण, शुरुआती लक्षणों की पहचान और वैज्ञानिक तरीके से उपचार अपनाकर आप किसान भाई अपनी गेहूं की फसल को इन घातक रोगों से सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी बात के साथ अपने दोस्त फहीम को आज्ञा भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, आपसे फिर मुलाकात करूंगा और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।
1: दिल

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: अरे कुछ

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गोंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चीलों की कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं, इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की संत्रास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की? इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गोंडवी, ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देखकर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कह उठते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अदम अपनी कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की। तो ये अंदाज है अदम गौंडवी का। देखिए दोस्तों, अदम गौंडवी के कुछ प्रमुख गजल संग्रह हैं, उनका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं, जैसे धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। ये इनके प्रमुख गजल संग्रह हैं। कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। इनके शब्दों से आपको सच्चाई की महक आती महसूस होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अदम गोंडवी के बारे में आज आपसे बात हो रही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन मैं इनकी कुछ उपलब्धियां हैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 1998 में इन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार और 2001 में शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रतन सम्मान दिया गया था। आलोचकों का मानना है कि अदम को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो काबिल थे। अदम सत्ता के किसी पद्म सम्मान की परवाह किए बगैर हमेशा भारत की आम आवाम की आवाज बनते रहे। सत्ता प्रतिष्ठानों और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं और ता जिंदगी गूंजती रहेंगी। इसी बात के साथ आपका दोस्त वहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और इस हफ्ते फिर से आ गई हूं मैं आपके लिए लेकर कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक। और साथ ही हर संडे शाम 4 से 5 हम करते हैं मुलाकात, जिसमें हम करते हैं बहुत सारी ट्रेंड की बातें। साथ ही चाहे बात हो सोशल मीडिया की, या बात हमारी सोसाइटी की, या बात हमारे देश की, या बात हो विदेश की, हर टॉपिक को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर करते हैं। मैं आप तक पूरी जानकारी पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, और इसी के साथ आज भी ना आपके लिए खास टॉपिक लेकर आई हूँ। जी हाँ, खास टॉपिक ये इसलिए है क्योंकि आज के टाइम में हम जिन भी मीडियम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, रेडियो हो, हमारे इंटरनेट हो, या फिर जो भी चीज़ हमारी ब्रॉडकास्ट होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये एपिसोड आज थोड़ा सा खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मीडियम की जिसने दुनिया को जोड़ कर रखा हुआ है, और जिसने खबरों को घर घर तक पहुँचाया है, जिसने मनोरंजन, शिक्षा और जानकारी को हर इंसान तक पहुँचाने का काम किया है। जी हाँ, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के। जी हाँ, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है इसलिए क्योंकि इसी दिन से इसकी शुरुआत की गई थी। इसी दिन साल था 1927 जिसमें भारत में पहली बार ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई थी। शायद आज के डिजिटल युग में हम स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से घिरे हुए हैं। अगर हम अभी की बात करें ना, तो ब्रॉडकास्टिंग शब्द ना बहुत पुराना सा लगता है, लेकिन सच बात तो ये है कि आज हम जितने भी कम्युनिकेशंस जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब के पीछे जो जड़ कहते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग में छुपी हुई है। जी हाँ, सबसे पहले समझते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है। जब हम किसी संदेश को या फिर किसी जानकारी को या किसी कंटेंट को एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो हम किसके थ्रू करते हैं? वो हम ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू करते हैं, उसे ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। बहुत सारे लोगों तक एक मीडियम से कोई भी खबर या फिर जानकारी पहुंचाना, पहले ये काम रेडियो के माध्यम से होता था, फिर उसके बाद टेलीविजन आया। आज इंटरनेट ने इस दायरे को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया है, लेकिन उद्देश्य वही है, लोगों तक जानकारी को पहुंचाना। जरा कल्पना कीजिए कि अगर ब्रॉडकास्टिंग ना होती तो दुनिया कैसी होती? शायद किसी बड़े फैसले, किसी प्राकृतिक आपदा या फिर किसी महत्वपूर्ण खबर को लोगों तक पहुंचाया ही नहीं जा पाता। पहुंचाने में दिनों या फिर हफ्ते लग जाते अगर कोई इंसान एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है या फिर कहीं जाकर के उसको खबर पहुंचानी है। ब्रॉडकास्टिंग ने समय और दूरी दोनों की सीमाओं को तोड़ दिया है। इसी वजह से इसे कम्युनिकेशन की दुनिया का सबसे बड़ा क्रांति माना जाता है। ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ खबरें देने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि ये लोगों को जोड़ती है, उनकी आवाज को प्लेटफॉर्म देती है और समाज को एक दूसरे के करीब भी लेकर आती है। जब किसी गांव का किसान मौसम की जानकारी सुनता है, या फिर जब कोई विद्यार्थी शिक्षा संबंधी कार्यक्रम देखता है या फिर सुनता है, जब किसी दूर बैठे व्यक्ति तक एक जरूरी संदेश पहुंचाता है, तब ब्रॉडकास्टिंग अपना असली काम कर रहा होता है। आज के समय में ब्रॉडकास्टिंग का रूप जरूर बदल गया है, लेकिन रेडियो के साथ, टेलीविजन के साथ, पॉडकास्ट, इंटरनेट रेडियो और साथ ही यूट्यूब चैनल्स, लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। एक तरह से देखा जाए तो हर स्मार्टफोन ब्रॉडकास्टिंग का एक छोटा सा सेंटर पॉइंट है। तो दोस्तों, आज के इस खास नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे स्पेशल में आज हम जानेंगे ब्रॉडकास्टिंग को, और साथ ही उसके सफर पे आज हम निकले हैं रेडियो से लेकर AI तक का, और माइक्रोफोन से लेकर मोबाइल स्क्रीन तक का, ये ट्रेडिशनल मीडिया से लेकर डिजिटल दुनिया तक का आज हम सफर तय करने वाले हैं। तो चलिए, अब मेरा सवाल आपसे है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है, हमें जरूर बताइएगा। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078 पर। अभी मैं लूंगी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइट।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और ट्रेंडिंग तड़का में आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। जी हाँ, अब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत और उसके महत्वता के बारे में। जी हाँ, चलिए अब बात करते हैं उस मीडियम की तरफ जिसने भारत में ब्रॉडकास्टिंग की मजबूत नींव को रखा, यानी कि रेडियो। आज जब हम म्यूजिक एप्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, तब शायद रेडियो एक सिंपल डिवाइस लग सकता है, लेकिन एक समय जब था तब रेडियो सिर्फ एक मशीन ही नहीं था बल्कि घर का एक अहम सदस्य हुआ करता था। जी हाँ, सुबह की खबरें हो, शाम का गीत हो, क्रिकेट कॉमेंट्री हो या फिर मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे और वही रेडियो की सबसे बड़ी खासियत थी और आज भी है इसकी पहुँच। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ भाषा, संस्कृति और भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग है, वहाँ पर रेडियो ने हर कोने तक अपनी आवाज को पहुँचाया है। ऐसे कई गांव और दूर दराज के इलाके थे जहाँ पर टेलीविजन और इंटरनेट पहुँचने से पहले रेडियो ही जानकारी का सबसे भरोसेमंद स्रोत था। खेती किसानी से जुड़ी हुई सलाह, मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाओं की सूचना और शिक्षा संबंधी कार्यक्रम ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया था। रेडियो ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं दिया बल्कि जागरूकता और विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर हम भारत के रेडियो इतिहास की बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। विविध भारती जैसे चैनल्स ने संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बना ली। क्रिकेट कमेंट्री का जुनून भी रेडियो के माध्यम से हर घर तक पहुंचता था। लोग कल्पना के सहारे पूरे मैच को अपनी आंखों से सामने महसूस कर लेते थे और आज भी रेडियो का रेलिवेंस कम नहीं हुआ है। FM स्टेशंस, इंटरनेट रेडियो और कम्युनिटी रेडियो नए रूप में लोगों तक पहुंच रही है। खास तौर पर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थानीय मुद्दों, स्थानीय भाषा और समुदाय की आवाज को एक मजबूत मंच प्रदान करती है। ये ब्रॉडकास्टिंग का वो रूप है जो सीधे लोगों से जुड़ते हैं और उनकी बात उन तक ही नहीं बल्कि समाज तक पहुंचाते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि रेडियो सुनने के लिए आपको स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आप एक सफर में हो, काम कर रहे हो या फिर घर पर आराम क्यों ना कर रहे हो, रेडियो हमेशा आपके साथ चल सकता है। शायद इसीलिए रेडियो को अक्सर सबसे पर्सनल मीडियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आपके लिए एक और सवाल, क्या आपके पास रेडियो से जुड़ी कोई याद है जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है? हमें जरूर बताइएगा। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 पर। लूंगी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज ट्रेंडिंग तड़का में हम बात कर रहे हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में। जी हां, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग के बारे में इस सफर पर आज हम चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ समझाने की। अब तक हमने रेडियो के सुनहरे दौर की बात की, लेकिन फिर आया एक ऐसा मीडियम जिसने सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि तस्वीरों को भी लोगों के घर तक पहुंचाना शुरू कर दिया, यानी कि टेलीविजन। टेलीविजन ने ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू किया था। रेडियो पर लोग आवाज सुनकर कल्पना करते थे, लेकिन टीवी ने उन कल्पना को तस्वीरों का रूप दे दिया। भारत में टेलीविजन की शुरुआत धीरे धीरे हुई, लेकिन देखते ही देखते ये हर घर का हिस्सा बन गया। एक समय था जब घरों में सिर्फ एक टेलीविजन होता था, पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखा करता था। संडे का दिन खास होता था, लोग अपने काम जल्दी निपटाकर टीवी के सामने बैठ जाते थे। ये सिर्फ मनोरंजन ही नहीं था बल्कि परिवार को साथ भी लेकर आना था, एक माध्यम सा बन गया था। टेलीविजन ने खबरों को भी एक नई पहचान दी। जब किसी घटना को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि देखा भी जा सकता था, तो लोगों की समझ और जुड़ाव दोनों बदलने लगे। देश और दुनिया की घटनाएं अब सीधे ड्राइंग रूम तक पहुंचने लगी थी। लोगों को महसूस हुआ कि वे दुनिया से और भी ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी टेलीविजन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नॉलेज बेस्ड शोज ने सीखने की प्रक्रिया को और ज्यादा अधिक रोचक बना दिया था। कई लोगों ने टीवी के माध्यम से विज्ञान, इतिहास, संस्कृति और अन्य विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करी थी। मनोरंजन की बात करें तो टेलीविजन ने सीरियल्स, रियलिटी शोज, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग और लाइव इवेंट्स को भी नए स्तर तक पहुंचाया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक गेम्स हो या फिर किसी राष्ट्रीय उत्सव का सीधा प्रदर्शन क्यों ना हो, टेलीविजन ने लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया है। जब पूरा देश एक ही समय पर एक ही दृश्य देख रहा होता है, तब ब्रॉडकास्टिंग अपनी असली ताकत दिखाती है। लेकिन टेलीविजन का सफर यही नहीं रुका। समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली, केबल टीवी आया और फिर सैटेलाइट चैनल्स और फिर स्मार्ट टीवीज। व्यूअर्स के पास ऑप्शंस बढ़ने लगे और कंटेंट भी ज्यादा डाइवर्स होता गया। अब भले ही मोबाइल स्क्रीन्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म का जमाना आ गया है, लेकिन टेलीविजन ने ब्रॉडकास्टिंग को जिस तरह बदला, उसका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसने आवाज को चेहरा दिया और कहानियों को और भी ज्यादा जीवंत बना दिया। तो दोस्तों, आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा है जिसे देखने के लिए आप सब काम छोड़ देते हैं, हमें बताइएगा जरूर। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781076।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज ट्रेंडिंग तड़का में हम बात कर रहे हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में। जी हाँ, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। ब्रॉडकास्टिंग जो एक शब्द ही नहीं है बल्कि अपने पीछे लिए बहुत सारी कहानी छुपाए हुए है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उसने हमें क्या क्या चीजें दी जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं और इतने दूर दूर बैठे हुए लोगों से भी कनेक्ट कर पाते हैं या उनकी जानकारी हम तक पहुंच रही है। दोस्तों, रेडियो से टेलीविजन तक की जर्नी ने कम्युनिकेशन को एक नई पहचान दी, लेकिन फिर आई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने ब्रॉडकास्टिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट की। एक समय था जब ब्रॉडकास्टिंग का मतलब था कि कुछ चुनिंदा संस्थाएं या फिर मीडिया हाउसेस कॉन्टेंट बनाएंगे और लोग उसे देखेंगे या फिर सुनेंगे, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद ये इक्वेशन ही बदल दिया गया। आज सिर्फ बड़े चैनल से ब्रॉडकास्टर्स नहीं है बल्कि एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के साथ लगभग हर व्यक्ति ब्रॉडकास्टर बन चुका है या फिर बन सकता है। सोचिए, आज अगर किसी स्कूल में इवेंट हो, किसी कॉलेज में फेस्ट हो, किसी आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस हो या फिर किसी सोशल इश्यू पर बात क्यों ना करनी हो, तो उसे कुछ नहीं सेकेंड में दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। उसे कुछ नहीं करना होता, जैसे कि YouTube, Facebook लाइव, Instagram लाइव, X Space और कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ब्रॉडकास्टिंग को पहले से कहीं ज़्यादा एक्सेसिबल भी बना दिया है। इंटरनेट ने कंटेंट को सिर्फ ब्रॉडकास्ट ही नहीं किया बल्कि इंटरैक्टिव भी बना दिया है। पहले लिसनर्स और व्यूअर्स सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते थे, आज वे कमेंट्स भी कर सकते हैं, पोल्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लाइव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और अपनी राय को तुरंत वहां पर दे भी सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग अब एक तरफ से होने वाला कम्युनिकेशन नहीं रहा बल्कि दोनों तरफा कन्वर्सेशन बन चुकी है। इसी दौर में एक और शब्द बहुत पॉपुलर है, वो है कॉन्टेंट क्रिएटर। आज लाखों लोग एजुकेशनल वीडियोस, ट्रेवल वीडियोस, कुकिंग वीडियोस, टेक्नोलॉजी रिव्यूज और मोटिवेशनल कंटेंट बना रहे हैं। कई क्रिएटर्स की ऑडियंस ट्रेडिशनल टीवी चैनल से भी ज्यादा हो चुकी है। ये ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इंटरनेट ने इन्फॉर्मेशन को तेजी से फैलाया है, लेकिन कभी कभी गलत जानकारी भी उतनी ही जल्दी फैल जाती है। इसीलिए डिजिटल लिटरेसी और रिस्पॉन्सिबल कंटेंट कंजप्शन आज के समय में बहुत बड़ी जरूरत हो गई है। हमें ये समझना होगा कि वायरल होने वाली हर बात सच नहीं होती है। इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसने आवाजों को लोकतांत्रिक बना दिया है। आज छोटे शहरों, गांवों और अलग अलग समुदायों के लोग भी अपनी बात दुनिया के सामने रख सकते हैं। जहां पहले प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल था, आज प्लेटफॉर्म हर किसी की जेब में मौजूद है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इंटरनेट ने ब्रॉडकास्टिंग को बेहतर बनाया है या फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी बढ़ा दिया है? हमें जरूर बताइएगा। हमारा नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 पर। अभी लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, इसके बाद करेंगे और भी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर आज हम कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बात। जी हां, इस ब्रॉडकास्टिंग के सफर पे आज हम निकले हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, कब से शुरू हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे उसने अपनी जर्नी को आगे लेकर के आया, रेडियो से टेलीविजन, टेलीविजन से इंटरनेट तक की जर्नी के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे मीडियम की जिसने डिजिटल युग में आवाज की ताकत को फिर से साबित कर दिया है, यानी कि पॉडकास्ट। जी हाँ, अगर आपसे 10 से 15 साल पहले पूछा जाता कि लोग बिना वीडियो देखे सिर्फ आवाज सुनने के लिए घंटों का समय देंगे, तो शायद बहुत से लोग इस बात पर यकीन ना करते हो। लेकिन आज पॉडकास्ट दुनिया भर में तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, चाहे सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो या फिर बिजनेस हो, हेल्थ हो, स्टोरी टेलिंग हो, कॉमेडी हो, या फिर करंट अफेयर्स हो, या फिर कोई भी हर टॉपिक पर पॉडकास्ट जो है आजकल आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पॉडकास्ट होता क्या है। पॉडकास्ट असल में एक डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम होता है जिसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी उसे सुन सकते हैं, यही उसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। रेडियो में प्रोग्राम एक निर्धारित समय पर आता था, जबकि पॉडकास्ट आपके शेड्यूल के हिसाब से चलता है। आप ट्रेवल कर रहे हो, जिम में हो, वर्कआउट कर रहे हो, या फिर घर में हो, घर का काम क्यों ना कर रहे हो, पॉडकास्ट आपके साथ चल सकता है। पॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण भी है कि उसका पर्सनल कनेक्शन, जब कोई होस्ट सीधे आपसे बात करता है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है, या फिर किसी एक्सपर्ट के साथ गहरी चर्चा करता है, तो लिसनर को लगता है कि जैसे वो भी उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हो चुका है। इसी वजह से पॉडकास्ट को अक्सर इंटीमेट मीडियम भी कहा जाता है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि पॉडकास्ट ने कहानी सुनाने की पुरानी परंपरा को भी एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया है। पहले लोग रेडियो ड्रामास और कहानियां सुनते थे, और आज वही स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट के रूप में वापस आ रही है। और अगर इस तरह देखा जाए तो पॉडकास्ट कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग के पुराने और नए रूप का एक खूबसूरत संगम ही कहा जा सकता है इसको। आज के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स पॉडकास्ट के माध्यम से नए स्किल्स सीख रहे हैं। कुछ लोग मोटिवेशन के लिए सुनते हैं, कुछ लोग नॉलेज के लिए, और कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। ये मीडियम कॉन्टेंट को स्क्रीन से आजाद करके सीधा कानों और दिमाग तक पहुंचाता है। पॉडकास्ट की सफलता हमें एक बात सिखाती है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल क्यों ना जाए, एक अच्छी आवाज, एक अच्छी कहानी और एक अच्छा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन की वैल्यू कभी कम नहीं होती। तो दोस्तों, आप पॉडकास्ट सुनते हैं या नहीं? अगर हाँ, तो किस टॉपिक के पॉडकास्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मोटिवेशन, स्टोरी टेलिंग, बिजनेस, हेल्थ, या फिर कुछ और? हमें बताइएगा जरूर। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 पर। चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। इसके बाद बची है अभी हमारी और भी बहुत सारी बातें, वो भी करेंगे हम। तब तक सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था, उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, 3 साल और 7 दिन का। तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना, तो मैं उसमें जोड़ता जाता हूँ क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए, अतीत की अनंतता में क्या जुड़ोगे, क्या कटाओगे। अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी।
यहाँ कोई पहला नहीं है और यहाँ कोई अंत नहीं, हम सब संयुक्त हैं। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और न अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो, प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसा ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहां संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहां से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है जहाँ तख्ती लगी चुंदी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना यहाँ संसार खत्म, उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंदी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंदी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो, रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो कोई झंझट बकेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी। जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया, क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं, नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा? जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या? सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ,
कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था। फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखर करता कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया और उन्होंने कहा ये शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों में, इसकी कोई जरूरत नहीं। साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है, आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते। तो अकबर ने कहा तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचा। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी, साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेच लेगा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा रखोड़ बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके। आदमी का सिर किस काम आता है, अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या, ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से कहा कि दुखी है हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं। उल्टे लोग नाराज होते, जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या। तो अकबर ने कहा ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर, आदमी के सिर की कीमत क्या है, दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदे, तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरण में झुका दिया तुम्हें अड़चन क्या है, जिसका कोई मूल्य नहीं। इसका नाम झुकाना है, सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो, देखो सिर झुका रहे हो। तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है, मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा कि सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए, सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी प्रगट की, इसलिए पूरब में हम सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में जाके। हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं, पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं। ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर, अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं, सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है। तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों में, अब भूल जाओ सिर को, अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं, और अब पूछो कि सिर की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं। ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी, अब क्या करूं, व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं, ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण, मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे अभी, अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे। गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन
प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता है कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा, लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा, लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती। तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं। तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई। तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो, इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए। और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता। जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा। मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा। तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी। उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु साथ। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते हो, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक की जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को

प्रमाण नहीं पूछता, तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी। जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी, वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता है, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता है, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता है। वो तो कहता आओ, जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला था। धीरे धीरे गुरु की प्रभुध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे, चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है, यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है, इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है, लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है, तने इंद्र धनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विष बुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं, झुका इतने पर ही मत रोक, रुके रह जाना। झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना न चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे। तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली, फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं। मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक। तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब ये है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी ये है कि अभी झुके हो अब बिल्कुल मिट जाना, मिटकर ही तुम हो सकोगे। खो
खोकर ही तुम पा सकोगे। तुम जाओ तो ही परमात्मा। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूँ तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत। देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। देखो 25 साल की श्रद्धा जितनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझ पर जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी और यह श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क शायद ये है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ। लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पर श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई, मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी तुम्हारी श्रद्धा को परखो। तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं। अब फर्क समझना, जिसने सच में ही नानक पर श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पर श्रद्धा नहीं छोड़ता, मुझ पर श्रद्धा आ जाती और नानक पर श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा रही वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता, मुझ पर श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला है। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ था, साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी, दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं, सत्य एक है। जिन्होंने जाना है उसे एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है।
वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक टूट गई, ईसा पे जम गई, मुझ पे जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणता तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में ना रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सदी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पार। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइत काफी तर्क जुटाती। इंसानों तो कुछ तर्क नहीं दिए, लेकिन ईसाइत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइत जचती होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी, इसलिए तुम्हें जच गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसलिए अड़चन भी आ रही है। तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था, तो पूरे ईमान का क्या भरोसा? अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिस पे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होता, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत न हुआ। फिर ईसाइत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत न हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर पर भरोसा आ गया, ये सहयोगी बात है। अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना? तो तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर पर भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया, इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होगी, कुछ बातें पकड़नी होगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी।

को और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उसके अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो। अशांत तुम पाओगे, अशांति गई, और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाएगा, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे। तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं, बाइबल पढ़ते रहे होगे, तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा, ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाठशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाठशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती, तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल, अब तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप कहता है तो पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे, यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होने पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात, तो सुकरात ने कहा मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों पूछा पूछने वाले ने, क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना, असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा। जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है,
अगर किसी ने कारागृह

में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी। और ये तो भारी परतंत्रता हो गई, मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोल कर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले सूत्र, पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेसु अनुत्सुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनुत्सुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक साक्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई, वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। साक्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा बनते, कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो? पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले अल्प मात्र बनते ना कुछ, पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का? बुद्ध ने पूछा। राजा और भी सक्षम है और बोले अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है?
बुद्ध ने कहा तो फिर सोचो, अल्पमात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी, तुम गिरोगे कटोगे मरोगे और नदी ऐसी बहती रहे ऐसी ही बहती रहेगी और नदी को पता भी ना चलेगा। असार के लिए सार को गंवाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हृदय जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं, उनके शब्द शब्द में अर्थ है और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तू सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में और मालिक खींचे चले आए, तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं। ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है, और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उघड़ती हैं। पहली परत, आंखें हाथ नाक कान नौकरी, और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया, कान ने कह दिया और कान पर भरोसा कर लिया, स्वाद ने कह दिया और स्वाद पर भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है, और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुकी सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साथ और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को, और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जैसे कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूँ, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है। जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है। तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो, कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा दी, झगड़ा हो गया।
तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपद वासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते हैं। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है, पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए, जब झगड़े ही शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया, खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े, यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है, और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं। इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्त का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: And then again, mindsets हैं कि criminals कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग,
4: हाँ,
5: अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है, जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूसली अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूँ। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है, तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम, तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
4: Because I empathized with that victim.
5: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा, आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज, विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। When I understand कि मेरे अंदर clarity आई है, कोई मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, now I only have to empower, reform नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है, लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, there you go,
4: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
5: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है, और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
4: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
5: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं, तो बहुत इजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
4: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त तो, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
5: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला. ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा, तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
4: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति criminal नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
5: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
4: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे attitude.
5: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. जब कोई सामने से गुस्सा करता है, नाउ फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चली जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा. और फिर मैं उनको और दर्द दूं, बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And isliye jo hum kehte hain meditation ke liye time nahi hai, ya I don't have time for myself, what we don't realize is it's not just for myself, it's for my family also.
4: For my all loved ones, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, अनअवेयरनेस में मैं कहाँ तक कितना नुकसान. रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
5: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
4: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ. यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
5: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ. लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही
4: और मतलब ये मेरे लिए
5: वे, दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका, वो भूल चुके हैं. अपना सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए बॉटम लाइन, आई क्रिएट माय ओन सफरिंग. टिल व्हेन?
4: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक.
5: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी, नोबडी कैन कॉज मी पेन, ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
4: मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. सिस्टर शिवानी आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है. लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
5: ओम शांति.
4: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त हो के सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिपेक्ष में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो?
5: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना या क्षमा करना. जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
4: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो,
5: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूँ, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट परस्पेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं। लेकिन हमें

0: फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट. सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं. तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम. यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है. हमें इससे निकलना होगा, और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ. अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर. सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए. आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव, इफ आई नो द ट्रूथ, इफ आई एम एट पीस, देन आई कैन फॉरगिव. अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो फॉरगिवनेस कहाँ, वो पॉसिबल नहीं. तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
1: मैं ही करूँ,
0: मुझे करना है. अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी. क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी, या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, तो चोट किसको लगी? तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है? मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है. तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है? और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं? से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया. अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रीलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा? तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ. अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस. एक्चुअली मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे. नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या?
1: बिल्कुल. और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है. हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है.
0: एब्सोल्युटली. और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ. तो क्या होता है, वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं, वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव. सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है. और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट, तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूँ.
1: पेन में हूँ,
0: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा. मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट के मैं विक्टिम, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड. विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा. और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगे, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट, कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
1: I can talk about myself. Yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
0: Aapko pata hai mere saath kya hua. And wo ek record ki tarah play hota jata hai. Ke jahan jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte na, apna rona shuru kar dete hai. Ke mere saath kya hua, mere saath kya hua. We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहाँ पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते रहते हैं.
1: लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल. अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. इट इज, यू नो, एट टाइम्स आई हैव सीन पीपल एक्चुअली गेटिंग इन टू इट और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस विक्टिमाइज्ड, जो खासकर जो ज्यादा ट्रामा से गुजरे होते हैं, वो कौन सी विल पार है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते?
0: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर. अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट, क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. ऐसे कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
1: वही हो रही होती है,
0: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
1: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. एंड नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
0: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार. और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल. क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, यू नो. तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप.
1: आई थिंक समवेयर, यू नो, व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट, यू नो, वी आर एबल टू हेल्प समबडी.
0: ट्रू.
1: बिकॉज वी डोंट, वी वुड लाइक to help somebody,
0: right? But we're not really helping.
1: Yes,
0: you know, a help at that time would mean empowerment. Lekin baar baar keh kar ke hai aapke sath aisa hua, bichare aap, ab aapka kya hoga, ya even ye kehna koi baat nahi sab theek ho jayega, matlab it's not to hurt anyone, lekin koi baat nahi sab theek ho jayega wo theek hai, but by saying that we're saying ki abhi sab galat hai. You know, to jitna hum normalcy ko create kar sake, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति.